0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। एचआरआईटी यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: पवित्र सावन महीने का आज आखिरी सोमवार, देश भर के शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर परिसर। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर सोमनाथ महादेव का खास हरिहर चंदन श्रृंगार, एक ही स्वरूप में दिखे भगवान शिव और विष्णु, मनमोह लेने वाले दिव्य स्वरूप के श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कैलाश मानसरोवर यात्रा का हुआ समापन, नाथुला रूट से लौटे 464 श्रद्धालु, 10 जत्थों में पूरी हुई यात्रा, 20 जून को शुरू हुई थी यात्रा। आगर मालवा के सबसे बड़े पर्व की तैयारियां जोरों पर, आज निकलेगी बाबा बैद्यनाथ की शाही सवारी, 1.5 लाख भक्तों के लिए भंडारा तैयार। केरला की 19 साल की कजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में स्टेट क्राउन जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
4: भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, और तुम यहां आए हो मतलब पक्का है तुम्हारी अर्जी लग ही गई, काम सफल होगा। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें, समझ जाना तुम्हारे घर सेना आ चुकी है सन्यासी बाबा की, और आती है और आती भी है, बिगड़ी बनती भी है। हां थोड़ा देर लगेगी, तुम्हें थोड़ा देर लग रही होगी, जो कपड़ा ज्यादा गंदा होता वो सफाई ज्यादा मांगता, तुम्हें थोड़ा टाइम लग रही, ज्यादा ही कर्म काले हैं तुम्हारे, थोड़ा साफ होने दो, करो परिक्रमा, करो पेशी और भटको मत, अटको। अटपट लीला राम की, झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। तो ये दया करते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, और कलयुग में हनुमान जी जैसा कौन देवता होगा, और देवता चित्त न धरे ही हनुमत से ही सर्व सुख करी, इतना हम आज कह सकते हैं बहुत दावे के साथ। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया बागेश्वर धाम की दीवानी होगी। हमने जो यहां विद्याओं को महसूस किया, जो शक्तियों को महसूस किया, वो बड़ी चरम सीमा पे हमने देखा है, बड़ी उच्चता के शिखर पर हमने शक्तियों को महसूस किया अपने गुरु के सामने और गुरु की कृपा से। इतना कह सकते जब पूरी दुनिया से तुम हार जाना तब चले आना, और ना भी आना तुम जहां रहना और तुम कहवर देना सन्यासी बाबा आ जाओ, अब जरूरत है, देख लेना, कुछ ना कुछ अनुभव तुरंत दिखाई पड़ेगा, तुम देख लेना, उनकी उपस्थिति तुम्हें महसूस होगी, पर तुम कहना यहां से तभी काम हो पाएगा। पर देवता बड़ा तेज अद्भुत है, और बागेश्वर धाम का मतलब कोई बाबा नहीं, बागेश्वर धाम का मतलब बालाजी, बागेश्वर धाम का मतलब हिंदुत्व, बागेश्वर धाम का मतलब सनातन। दुनिया का पहला तीर्थ तुम्हारा बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिर नहीं बनाया जाता, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और इस साल तो 365 बेटियों का विवाह, हर दिन में एक बेटी का विवाह कोई धाम करवाता होगा, उसका नाम बागेश्वर धाम है। भारत का पहला तीर्थ जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा, भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां अनवरत 9-10 साल से दोनों समय भंडारा चल रहा है। और भारत का पहला तीर्थ 2027 में बागेश्वर धाम होगा, जहां मंदिर पर कृपा पाओ, अस्पताल में दवा पाओ। और प्रार्थना के दो ही दर, दो ही घर, दो ही द्वार है, एक मंदिर एक अस्पताल। प्रार्थनाएं दो जगह ही होती हैं, या तो मंदिर में या अस्पताल में। मंदिर में प्रार्थना कई बार झूठी होती, दिखावा की होती है, सेल्फी वाली होती, पर अस्पताल में कोई अपना व्यक्ति मृत्यु के बीच और जीवन के बीच में लड़ रहा होता तो दीवाल से जो प्रार्थना की जाती वो दिल से प्रार्थना की जाती है। भारत का पहला तीर्थ है बागेश्वर धाम। 2025 में एक ऐसी 1947 के बाद, 1947 के बाद घटना हुई जो आज तक शायद किसी तीर्थ पर ना हुई होगी, वो बागेश्वर धाम पर हुई। 48 घंटे में देश के प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति महोदया दोनों दर्शन करने बागेश्वर धाम पहुंची। पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां कन्या विवाह में 9 देशों के राजदूत धाम पर मत्था टेकने आए। उनमें कोई क्रिश्चियन था, कोई मुसलमान था, कोई नास्तिक था, लेकिन वो भी तिलक लगा करके, पटकी डालकर, बालाजी की परिक्रमा लगा करके बेटियों को आशीर्वाद देने आए हुए। पागलो, यहां तुम आ गए हो, इतनी बातें सुन ली हैं, दो बातें हम तुमसे पूछना चाहते, फिर दरबार शुरू करते। सुबह तो दरबार लगाया ही था और कह भी दिया था शाम को लगाएंगे, और फिर कह देते हैं सुबह फिर लगाएंगे। 15 तारीख तक दोनों टाइम दरबार लगाया जाएगा। सुबह धूप के कारण जल्दी चालू होगा, शाम को देर से चालू होगा, पर होगा ये तय है। 15 तारीख तक हम यही हैं, रोज दरबार लगाया जाएगा। तो दो बातें हम पूछना चाहते, पहली, क्या आप दरबारों में भटकना चाहते? क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहते? क्या अपना मजाक बनवाना चाहते? क्या आप चाहते कि आपकी हंसी उड़े? पक्का सोच लिया, बदल तो ना जाओगे? जीवन भर के लिए जी का होना पक्का? जोश में तो नहीं हाथ उठा रहे? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। पहली शर्त, 3 शर्तें। पहली शर्त, आज से हमारे चलना पड़ना। पूछो क्यों, पूछो क्यों? हम पागल आदमी, गांव के गवार, देहाती घूस, देहाती ठस, काय को पढ़ रहे? किसको मौका है? दूसरा रास्ता देखो। और वैसे भी तुम्हें गुरुओं की कहां कम, यूट्यूब खोलो, आजकल तो रील वाले गुरु इतने हैं। हम भी हैं उनमें एक, एक हम भी हैं। और तुम्हें कहां कमी, इंस्टाग्राम पे घुस जाओ, गुरु ही गुरु मिल जाएंगे। और वैसे भी तुम ऐसी आदतों के पक्के आदमी, तुम्हें हर 4-5 साल में नया गुरु चाहिए, थोड़ा अलग टाइप का। हमें ये भी तुम पे भरोसा है कि हमारे सामने कोई पंडाल लगा के बैठ जाए कि हम 3 घंटे में चमत्कार कर देंगे, यहां एक ना मिलेगा। एक वही मिलेगा जिसका टेंट होगा या जिसके बैरिकेडिंग होंगे, यही बेचारे सिक्योरिटी वाले, क्योंकि उन्हें वेतन देनी नहीं दे नहीं हमें, तो ये भरना जाएंगे, बाकी 3 घंटे के चमत्कार में सब जाएंगे। इसलिए अब ही मौका है, पहली शर्त यही है, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर में, तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। किसके? बोलो बोलो बोलो।
5: अरे जोर से बोलो भाई।
4: दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो। भोजन में यात्रा में लहसुन प्याज की थोड़ी मोड़ी छूट ही है, पीना खाना, खाना पीना नहीं, पीना खाना बंद कर दो कि तुम कल से खान पान भी बंद कर, पीना खाना बंद कर। और तीसरी सर, गिनती ना करना, विनती करना, बालाजी के सामने जाना, कह देना बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत उड़ गई मजा, अब बहुत दुत्कारे सहली, अब बहुत जगह माथा पटक लिया, अब बहुतों पे भरोसा कर लिया, अब हंसी ना करवाओ नाथ, अब बनाओ बिगड़ी, अब पकड़ लो बाह, अब पकड़ लो हाथ, चाहो तो डुबा दो, चाहो तो पार कर दो, पर एक बात जरूर कह देना, अब हमारी हंसी नहीं तुम्हारी हंसी होगी, अब सदा सदा के लिए हम तुम्हारे हो गए, चाहो तो गले लगाना और चाहो तो धुतकार देना, पर बाबा एक बात पक्का मानना, जीवन भर के लिए हम तुम्हारे हो गए हैं और तुम हमारे हो गए। इतना कह के उनके हो जाना, पर शर्त यह है, या तो तुम जुड़ना नहीं, और जुड़ना तुम मुड़ना नहीं, या तो तुम उनके बनो मत, और बन जाओ तो बन भी जाओ, यदि इनके बन गए तो तुम भी समझो बन गए, और तुम इनके ना बने तो तुम भी ना बने। आज के बाद या तो तुम समय बर्बाद करना बंद करो, काय को यहां धक्के खा रहे, काय को आ रहे, और काय को बेफिजुली में तुम इंतजार कर रहे चार चार घंटे, उठो जाओ घर, या फिर एक बात मान लो पते की, यदि तुम जिंदगी को बदलना चाहे, देखो हम तो चमत्कार ना कर पाएंगे, तुम हमारे भरोसे मत रहना कि हम चमत्कार कर देंगे या फिर ऐसे हाथ करेंगे सीधा सोना फेंक देंगे, ना हमारे चमत्कार में ना तुम पढ़ना, ना हम चमत्कार कर पाएंगे, हम ऐसे ही चमत्कार कर पा रहे होते तुमसे काहे को दान मांगते, तुमसे दान पेटी में काहे को डलवाते, खुदाई ना कर लेते, तो हम चमत्कार ना कर पाएंगे। और हम साफ साफ बात इसलिए बोलते हैं कि हम तुम्हें लफड़ों में फंसाना नहीं चाहते, बहुत क्लियर गुरु हैं और क्लियर कट बात करेंगे, हम तुम्हें आशा में ना रखेंगे, साफ साफ बात कहेंगे, हम चमत्कार ना करवा पाएंगे ना हम चमत्कार करते हैं। एक आदमी हमारे पास ऐसा है, आदमी नहीं है वो, एक महान आत्मा, एक ऐसा देवता है जो चमत्कार करता है, हमने देखा है, गरीबों को भी देखा यहां आते, अमीरों को भी देखा, पद वालों को भी देखा, कद वालों को भी देखा, हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, उनने सोचा नहीं और वो हुआ। बड़े बड़े लोग हमें भी कहते कैसा, तो हमने सोचा नहीं था, हम कहते थे हमें खुद नहीं पता कब हो गया, पर हो जाता है। उनका नाम है सन्यासी बाबा, और हम तुम्हें उनसे जोड़ना चाहते, हम भी तुम्हारी तरह यहां आए थे अर्जी लगाने, विपदा लेकर, जिस गांव में हम बैठे हैं, जहां आज ये तमाशे चल रहे, इसी गांव में हमने घर घर भीख मांगी, घर घर आलू मांगे, चावल मांगे, और कई जगह मिला कहीं नहीं मिला, दुत्कारें सही, एक ही जोड़ी कपड़े में ढाई ढाई साल गुजारे हमने, हमारी मां जिनके तुम दर्शन करने जाते, एक ही साड़ी में एक एक साल गुजारी उन्होंने, और फट गई तो कपड़े से बांध लेती, तार से बांध लेती थी, कभी कई बार साड़ी में सुराग हो जाता तो सुई ना हुई, धागा भी ना जुड़ा, तो बेचारी तार ली और उसको ऐसे मोड़ करके बांध लेती थी। हम भी तुम्हारी तरह आए थे धक्के खाते हुए, हम भी तुम्हारी तरह रोते हुए आए थे यहां अर्जी लेकर, पर हमें क्या पता था अर्जी लेकर आए हैं अर्जी लगाने वाले बन जाएंगे, पर बन गए। आदमी हम साफ हैं, बात बहुत मुंह पे तुम्हारे करेंगे, हम इतना कह सकते इनके घर देर है अंधेर नहीं है, हमने बहुतों को देखा, असंभव को भी संभव किया, ऐसी ऐसी बिगड़ी बनाई, ऐसी ऐसी इन्होंने लाज रखी, लोग यहां रोते हुए आए हंसते हुए गए। आज ही दिन में आए थे 52 साल उम्र, डॉक्टर ने मना कर दी कि कभी ना बेटा होगा, अचानक हमारे मुंह से कभी निकल गया होगा 4 साल पहले, तो जाओ तुम्हारे घर किलकारी गूंजेगी। आज वो बेटा को लेकर आए थे दोपहर में, नामकरण करवा गए और भंडारा करवा गए, ऊपर से एक बेटी का कन्यादान का खर्चा दे गए। ऐसी दया ऐसी कृपा, पिछली बार बैठे थे जब हम जा रहे थे यही माइक पर वो बता के गया, डॉक्टर ने कह दिया किडनी दोनों गई, डायलिसिस चल रहा है, ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं। पता नहीं उनने क्या नाटक किया, अब जर जांच में ही नहीं आ रहा है कि किडनी खराब थी। अब वो हमसे पूछ रहे हैं, हमने कहा हम क्या बताएं, हम तुमसे ही पूछे, तुम बता। हो जाता है अपने आप हो जाता है, वो लीला यहां हम नहीं करते, करने वाला है। उनके पास 46,000 सेना है, 24 घंटे घूमती है, आज भी वो शरीर में नहीं है लेकिन 24 घंटे वो सुनते हैं। चाहे जो तुम जहां सोच लो, ऐसी विद्या हमने देखी नहीं। भारतीयों पे तो विद्या चलती देखी, हम तो विदेश जाते हैं वहां भी ऐसे ऐसे नाटक कर देते। अभी जब गए हम जहां, WWE का पहलवान आया मिलने, भारी बॉडी बिल्डर, भारी शरीर लिए आया, और मिला था ऑस्ट्रेलिया में हमें। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही गए तो जिसके यहां वो काम करता था उसने बताया कि एक भारत के गुरु आए हैं, बड़े ऐसे ऐसे हैं, तो वो चेक करने आया था। हमने उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, बोला भी नहीं, फिर भी पगले आ गए। वो बता रहा था कि आप सपने में आ रहे तब से। हमने कहा भगवान कसम हम रूम से कहीं बाहर ही नहीं जाते, तुम्हारे सपने में क्या जाएंगे। लेकिन वो पगले आ गया, रोज कोई ना कोई तमाशा हुआ। अभी बाली में 8,00,000 का खर्चा करके आया, 3-4,00,000 का तो होटल खर्चा किया, टिकट खर्चा की, 3 दिन तक बैठा रहा, ध्यान करता रहा, जो राम को नहीं जानता था अब वो किताबों में पढ़ रहा, यूट्यूबों पर सुन रहा। ये सब प्रभाव, सब चमत्कार हमारे नहीं है, सन्यासी बाबा और बालाजी के हैं। हमारा कोई भी चमत्कार नहीं है, हम तो बहुत अच्छे आदमी थे, हमें जबरदस्ती यहां भेजा गया, और हमारा 1% इसमें दोष नहीं है। हमें ना दरबार लगाना था ना चमत्कार करना था, हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा। हम नहीं तो बहुत आलसी आदमी है, नींद हमें बहुत पसंद है, वो कभी पूरी होती नहीं, और हमारी तो ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। भूख भी गई, नींद भी गई, परिवार भी गया, जब से घर से निकले 1 रात ना रुक पाए घर। हमारे भी मन होते कभी क्रिकेट खेले, कभी बाहर बैठे, बाहर बैठो नहीं के तमाशे शुरू। समोसा हमने खा लिया था एक बार, देश की न्यूज बन गई थी, बाबा बागेश्वर समोसा खाते पकड़े, तो हम चैनल वालों को बोले भाई इसमें पकड़ने वाली कोई बात है यार। हाँ अब समोसा ना कोई आदमी खाए, समोसे ही तो खा रहे थे, किसी का भेजा थोड़ी खा रहे थे, देश में तो लोग भेजा खा रहे, हम तो समोसा खा लें तो आफत है, बड़ी मुसीबत है भैया, बड़ी आफते हैं, और भगवान चला रहे। तुम देखो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतने लोग लगे पीछे गिराने के, और तुम विचार करो इतने लोग लगे अब तक कब के ना निपट गए होते, इतने विरोधी लगे कब के ना निपट गए होगे, क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ, चैलेंज हुए, परीक्षाएं हुई, जांचें बैठी हम पे, स्पाई कैमरे लगे, लफड़े हुए, अरे हमले हुए, फिर भी बेचारे आज भी वो भौंक के भौंका ही रहे, और हम झोंके त्यों चल रहे। इससे समझ जाना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई करवा रहा है, और जो करवा रहा है, जो हमारे पीछे खड़ा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। अब वो बालाजी करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे। और हिंदुओं एक बात तो तुम पक्की मानना, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, और हमें लगता है ये दरबार लग ही इसीलिए रहा हलीउल्लाह वालों की ठठरी बारने की, वरना चादर फादर के चक्कर में इतने हिंदू बिगड़ गए थे। हमारे अगल बगल ही चादर वालों की यहां लाइन लगती थी, आजकल बेचारों की दुकानें बंद हो गई, मक्खियां मार रहे हैं, रोज हमारे लिए वीडियो डाल रहे हैं, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, बाबा ये करता, बाबा वो करता, पर हम भी कम ढीठ नहीं है उनसे, हम भी कह देते हैं हम जैसे हैं ऐसे हैं, तुम्हें जो लगे सो करो। अब वो इसलिए विरोध करते ताकि सनातन की आवाज को नीचे झुकाया जाए। पर एक बात तुम गारंटी मानना, हम मर जाएंगे हिंदुओं पर तुम्हारी नाक ना नीचे होने देंगे। प्राण चले जाएं, पर ऐसा तो ना कुछ करेंगे कि तुम्हें नीचे देखना पड़े। हां, जिएंगे जब तक ऐसे ही जिएंगे, हम अपने आप को बदल ना पाएंगे। हम आए हैं हिंदुओं के लिए, हमें भेजा है सनातन के लिए। जब तक ये काम हम पूरा ना कर लेंगे तब तक चुप ना बैठेंगे। हमारे आराध्य हनुमान जी भी तो यही कहते, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। उनको भी विश्राम नहीं, हम भी तब तक आराम ना करेंगे। मेरे पागलो, हम दरबार इसलिए नहीं लगाते कि तुम्हें प्रभावित करें, पैसा तो तुमसे लेते ही नहीं, दे दो तो मना भी नहीं। बहुत साफ आवत है, दे दोगे तो कर्जा हमें कम लेना पड़ेगा।

0: आएगा तुम्हारा भला होगा, और नहीं दो तो अपन को क्या, 365 कर रहे, नहीं आएगा तो अपन 65 करेंगे। कौन सा हमने कर्जा ले रखा कि ठेका ले रखा है, और हम ही भर को देश थोड़ी संभालना, कुछ तुम संभाल लो भैया। तो जितना होगा भगवान की माया।
1: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: पवित्र सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार, देश भर के शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर परिसर। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर सोमनाथ महादेव का खास हरिहर चंदन श्रृंगार, एक ही स्वरूप में दिखे भगवान शिव और विष्णु, मन मोह लेने वाले दिव्य स्वरूप के श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।

0: कैलाश मानसरोवर यात्रा का हुआ समापन। नाथूला रूट से लौटे 464 श्रद्धालु, 10 जत्थों में पूरी हुई यात्रा। 20 जून को शुरू हुई थी यात्रा। आगर मालवा के सबसे बड़े पर्व की तैयारी जोरों पर। आज निकलेगी बाबा बैजनाथ की शाही सवारी। 1.5 लाख भक्तों के लिए भंडारा तैयार। केरला की 19 साल की कजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। सबसे कम उम्र में स्टेट क्राउन जीत कर रचा इतिहास। अब दुनिया के बड़े मंच पर भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बेहद ही खास दिन है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। भगवान शिव की कृपा पाने की विशेष तिथि है और इसीलिए सुबह से ही देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी और देवघर में आज महादेव के जलाभिषेक के लिए देर रात से ही कतारें लगी हुई हैं। साथ ही दिल्ली, गाजियाबाद, अयोध्या, प्रयागराज सहित तमाम जगहों पर प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भोले भंडारी की पूजा अर्चना और अभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हर ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल है क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन अवसर माना जाता है। खास बात यह है कि इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रदोष काल का अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग बन रहा है। सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत और पूजन करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं। देश भर के शिवालयों में आज इसे एक महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। धूम देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह के रंग आज देखने को मिल रहे हैं?
1: जी देखिए, बिल्कुल, आज सावन का अंतिम सोमवार है और आज के दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। खासकर काशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक और प्रधान शिवलिंग बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ ये पूरा एक महा सावन का होता है। बहुत ही महापर्व के रूप में ये पूरा सावन का माह मनाया जाता है और कहीं ना कहीं आज अंतिम जलाभिषेक का ये मौका होता है जब न केवल बनारस बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर बाबा का जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, उनको बिलपत्र चढ़ाते हैं। तमाम जगह आज रुद्राभिषेक भी देखने को मिलता है। शिवालयों में, घरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में लोग करते हैं। माना जाता है कि आज के दिन बाबा के दर्शन करने से और जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से पूरे सावन जितना पुण्य मिलता है। अगर आज बात करें बनारस की तो पूरी काशी नगरी जो है वो हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान है। चाहे ये गंगा घाट का किनारा हो, श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक के लिए जल ले जाते हैं बाबा को, यहाँ गंगा स्नान करते हैं। तमाम कांवड़िए आ रहे हैं, प्रयागराज से होते हुए काशी आ रहे हैं और बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। तो आम श्रद्धालु भी हैं, आम शिव भक्त भी हैं और तमाम बाबा के जितने भक्त हैं वो अलग अलग रूपों में आज बाबा को जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। माना जाता है कि सावन का जो माह है उसमें बाबा एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मौका है, आज अंतिम मौका है सावन के सोमवार का, जिसमें कोई भी श्रद्धालु ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है। और आज मंदिर और मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका है गंगा घाट से लगाया वो पूरा का पूरा शिवमय होता है और पूरी काशी नगरी आज हर महादेव के उद्घोष से गूंजती है।
0: जी, बात करें अगर कांवड़ यात्रा की तो अब जिस तरह से समापन हो रहा है, आखिरी सोमवार है, कांवड़ियों में भी खासा उत्साह। कांवड़ यात्रा को लेकर जो तैयारियां की गई थी वो मुकम्मल हुई?
1: जी देखिए, बिल्कुल, खासकर बनारस आने वाले प्रयागराज से कांवड़िया होते हैं, पूरी की पूरी एक लेन यहाँ बनारस से प्रयागराज वाले रूट की खासतौर से कांवड़ियों के लिए ही पूरी एक लेन खाली रहती है और लगातार कवड़िया बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। तमाम यहाँ अन्य शिवालय हैं वहाँ भी पहुंच रहे हैं और बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। तो वहीं आम श्रद्धालु भी हैं, वे भी जलाभिषेक के लिए लगातार आ रहे हैं और माना जा रहा है कि आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे। करीबन 60 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड इस बार पूरे सावन के माह में देखने को मिलेगा।
0: बिल्कुल रोशन, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये बताता है कि किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में है और लगातार हर कोई अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज पहुंच रहा है। भगवान शिव का, महादेव का आशीर्वाद आज प्राप्त कर लेना चाहता है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहता है। बहुत शुक्रिया रोशन आपका तमाम जानकारी के लिए और गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: पवित्र सावन का अंतिम सोमवार आज देवघर से लेकर काशी तक हर महादेव की हो रही है जय जयकार। काशी में महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार, सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों ने लगाए बाबा के नाम के जयकारे, माहौल में घुली दिव्यता। गाजियाबाद की श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, शिव भक्तों ने किया महादेव का अभिषेक। मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर धाम में शिव भक्तों की भीड़, देर रात से ही लगी लंबी कतारें। सावन के अंतिम सोमवार पर तकरीबन 2.5 लाख शिव भक्तों की बाबा का रुद्राभिषेक करने की संभावना, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा परिसर। छतरपुर के जटाशंकर धाम में पूरी होती है हर मनोकामना, कई सालों से देश के कोने कोने से यहां पे आते हैं शिव भक्त। बोलबम के जय घोष से गूंजा नागेश्वरनाथ मंदिर परिसर, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी में आने वाले 1.5 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के लिए भंडारे की चल रही है तैयारी। 80 कुंतल कद्दू की सब्जी, 65 कुंतल आटे की पूड़ियां और 40 कुंतल मिठाई होगी तैयार। भक्तों के लिए खाना बनाने में 150 से ज्यादा लोग दिन रात जुटे, करीब 3 दिन में इतना बड़ा भोजन किया जा रहा है तैयार। आज निकलेगी बाबा बैजनाथ की शाही सवारी, सवारी में आप आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त भजन मंडलियों और झंडों के साथ पहुंचेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों के पंडाल में बैठकर व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा भोजन। भक्तों की एंट्री के लिए की गई है बैरिकेडिंग और पानी से बचने के लिए वाटर प्रूफ पंडाल तैयार किए गए हैं। केले के पत्तों पर रखी जा रही है पूड़ियां, आगरमालवा के लोग मिलकर भक्तों को परोसेंगे भोजन, कई साल पुरानी है ये परंपरा। श्रावण मास में अमरावती के आनंदेश्वर मंदिर में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, भोलेनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ और अभिषेक हुआ, भक्तों ने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए। 800 साल पुराना है आनंदेश्वर मंदिर, यादव कालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, हेमपंथी शैली में बना है प्राचीन शिव मंदिर। कासगंज में 131 मीटर लंबी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, हनुमान की पूंछ वाली कांवड़ ने खींचा सभी का ध्यान, 40 शिव भक्तों ने मिलकर उठाई विशाल कांवड़। कांवड़ में हनुमान और वानर सेना का दिखा दिव्य स्वरूप, हनुमान के रूप में नजर आए शिव भक्त, हनुमान की लंबी पूंछ से भरा गया गंगा जल। सिक्किम के नाथुला रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा हो गई पूरी, 464 श्रद्धालु 10 जत्थों में यात्रा करके वापस गैंगटोक पहुंचे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 20 जून को हुई थी शुरू। श्रद्धालुओं ने चाइना के तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन किए। यात्रा का आखिरी जत्था भी वापस पहुंच गया है गैंगटोक। इसके साथ ही इस साल की नाथुला रूट वाली यात्रा का समापन। समस्तीपुर स्टेशन पर गंगाजल लेने के लिए हजारों शिवभक्तों की भारी भीड़। ट्रेन के गेट और खिड़की से चढ़ते दिखे श्रद्धालु। यात्रियों की भीड़ देखकर रेलवे प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी। स्टेशन पर तैनात किए आरपीएफ। आरपीएफ ने लोगों से सुरक्षित यात्रा की अपील की। पुत्रदा एकादशी के मौके पर सोमनाथ महादेव का किया गया खास हरिहर। चंदन श्रृंगार, चंदन से सजे भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। हरिहर श्रृंगार में भगवान विष्णु यानी हरि और भगवान शिव यानी हर की एकता का संदेश। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को मानी जाती है समर्पित, जबकि सोमनाथ में शिव आराधना का विशेष महत्व है। चंदन के लेप और खास सजावट से सोमनाथ महादेव का रूप बेहद आकर्षक नजर आया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी इस साल 23 अगस्त को मनाई गई। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन व्रत और पूजा को संतान की खुशहाली से जोड़ा जाता है। पुत्रदा एकादशी पर सोमनाथ का हरिहर चंदन श्रृंगार भक्तों के लिए खास आकर्षण बना। सनातन परंपरा में भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसलमेर में भगवान शिव का हुआ भव्य महारुद्राभिषेक। बारिश की कामना को लेकर शिव मंदिर में हुआ विशेष अनुष्ठान। पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजन किया गया। 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ। गढ़ीसर तालाब में स्थित मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। महारुद्राभिषेक में अच्छी बारिश की कामना की गई। सुख शांति और समृद्धि के लिए विशेष पूजा की। हवन और आहूतियों से गूंजा पुरोहितों की बगीची परिसर। हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। अग्नि स्थापना और ब्रह्म पूजन विधि विधान से हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महारुद्र अभिषेक में शामिल हुए। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारी तेज। काली चौकी के महाराजा का हुआ भव्य आगमन। लालबाग इलाके में बप्पा के स्वागत के लिए भक्त उमड़े। ढोल ताशों की गूंज के बीच पहुंचे काली चौकी के महाराजा। बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा लालबाग। बप्पा की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। काली चौकी के महाराजा की विशाल मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। बप्पा के आगमन से गणेशोत्सव का बढ़ा उत्साह। गणेशोत्सव से पहले मुंबई में दिखा उत्सव का रंग। काली चौकी के महाराजा के आगमन से भक्तिमय हुआ माहौल। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लहराया गया धर्म ध्वज। श्रावण शुक्ल पक्ष में राम मंदिर का बदला गया ध्वज। नया ध्वज बना आकर्षण का केंद्र। दर्शन के लिए राम मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। नए धर्म ध्वज से रामनगरी का माहौल हुआ भक्तिमय। नए ध्वज पर सूर्य ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह। तो वहीं त्रिकोणाकार धर्म ध्वज पर दिखे धार्मिक प्रतीक। लहराते हुए ध्वज ने खींचा ध्यान। राम मंदिर परिसर में धार्मिक परंपरा का हुआ निर्वहन। विधि विधान से नए ध्वज का हुआ आरोहण। ध्वज परिवर्तन के दौरान मंदिर परिसर का दिखा विहंगम दृश्य। रामनगरी में नए धर्म ध्वज को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। नागपुर में ढोल ताशा बजाने का बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने बजाया ढोल। नागपुर में ढोल ताशे की गूंज से माहौल जोश से भर गया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर का नाम हुआ दर्ज। ध्वजधारकों ने ढोल ताशा पथकों का किया नेतृत्व। 200 से ज्यादा ढोल ताशा पथकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हजारों युवाओं ने एक साथ ढोल ताशे की मिलाई ताल। युवाओं की शानदार प्रस्तुति ने खींचा दर्शकों का ध्यान। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आयोजकों को दिया प्रमाण पत्र, युवाओं ने अपनी कला से बनाया नया कीर्तिमान।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के अंतिम सोमवार के महिमा की और इसके पूजा विधान की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार के बारे में। सावन का अंतिम सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी महिमा, पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। अब ये मौका आपको दोबारा अगले साल ही मिल पाएगा, इसीलिए इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास आप इस साल में कर सकते हैं, नहीं तो आपको वर्ष भर रुकना पड़ेगा। अंतिम सोमवार पर द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसके कारण हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। यानी कि द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु और सावन का सोमवार है भगवान शिव का, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। तो सावन का अंतिम सोमवार है, आप किस तरह से पूजा उपासना करें सरल तरीके से ताकि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। प्रातः काल या प्रदोष काल में पूजा करिएगा। प्रातः काल भी कर सकते हैं 12 बजे के पहले, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में पूजा कर सकते हैं। स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा, घर से नंगे पैर जाइए मंदिर तक और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और इसके बाद पुरुष पूर्ण साष्टांग करेंगे, महिलाएं अर्ध साष्टांग करेंगी। मंदिर में खड़े होकर या किसी किनारे बैठकर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन में केवल फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। शाम की पूजा समाप्त हो जाने के बाद केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें या जरूरत हो तो फल खा लें। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सवेरे अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप बीमार हैं, उपवास नहीं रख सकते, आपको बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो उपवास की चिंता ना करें। ऐसी स्थिति में आप केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। और इस बार के सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह या प्रदोष काल में शिव जी को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिएगा ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके। देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे छोटे छोटे। पहला प्रयोग है, अगर आप संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, सारी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और ये जल अपने घर से भर कर ले जाइए। शिव मंदिर का जल शिव जी को वहीं का जल वहीं मत चढ़ाइएगा। इसके बाद चाहें तो मंदिर में बैठ जाएं या घर चले आएं और नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। अगर आप ये सरल सा उपाय सावन के अंतिम सोमवार पर करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा, चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध, भूल कर भी केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद 11 माला घर पर या मंदिर में बैठ करके ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ये काम आप सावन के अंतिम सोमवार पर कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप संतान सुख चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी मिल करके अगर एक साथ उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। शिव जी को खीर का भोग लगाएं, चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घी के 9 दीपक जलाएं और इसके पश्चात ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करिएगा। आप मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं और घर पर भी शिव जी को भोग लगाकर इस मंत्र का जप करें, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको दूर करना चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं तो क्या करेंगे? दूध दही शहद शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं और पंचामृत ले जाकर जरा सा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें और फिर 11 माला एक विशेष मंत्र का जप करेंगे, ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करिए। आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। जिन लोगों को पैसे रुपए की दिक्कत जरूरत से ज्यादा है, ऐसे लोग सावन के अंतिम सोमवार पर कम से कम 3 बार दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। शिव जी के मंदिर में आप इत्मीनान से बैठकर कम से कम 108 बार राम नाम का जप करिए। राम राम राम राम राम नाम का अगर शिव जी के मंदिर में आप जप करेंगे तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपके मन में एक अनजाना सा डर रहता है, अनजाना सा भय वहम रहता है, तो क्या करें, रोज सवेरे स्नान के बाद एक लोटा जल ले लें। इस जल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से 5 बार घुमा लें, वार लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 1 महीने तक करें, आपके मन की चिंता वहम डर ये बड़े आसानी से दूर हो जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: पवित्र सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार, देश भर के शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर परिसर। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर सोमनाथ महादेव का खास हरिहर चंदन श्रृंगार, एक ही स्वरूप में दिखे भगवान शिव और विष्णु, मन मोह लेने वाले दिव्य स्वरूप के श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कैलाश मानसरोवर यात्रा का हुआ समापन, नाथूला रूट से लौटे 464 श्रद्धालु, 10 जत्थों में पूरी हुई यात्रा, 20 जून को शुरू हुई थी यात्रा। आगर मालवा के सबसे बड़े पर्व की तैयारी जोरों पर, आज निकलेगी बाबा बैजनाथ की शाही सवारी, 1.5 लाख भक्तों के लिए भंडारा तैयार। केरला की 19 साल की कजिया लिज मिजों बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में स्टेट क्राउन जीत कर रचा इतिहास, अब दुनिया के बड़े मंच पर भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
0: नमस्कार। नमस्कार।
5: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव को पसंद आने वाले यानी उनके अति प्रिय महीने सावन के बारे में। तो देखिए, सावन का अंतिम सोमवार है, तो ऐसे में अंतिम सोमवार क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी महिमा के बारे में भी आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: शिव जी के मंदिर में आप इत्मीनान से बैठकर कम से कम 108 बार राम नाम का जप करिए। राम राम राम राम राम नाम का अगर शिव जी के मंदिर में आप जप करेंगे तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 24 अगस्त 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:28 तक चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार के बारे में। सावन का अंतिम सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी महिमा, पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। अब ये मौका आपको दोबारा अगले साल ही मिल पाएगा, इसीलिए इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास आप इस साल में कर सकते हैं, नहीं तो आपको वर्ष भर रुकना पड़ेगा। अंतिम सोमवार पर द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसके कारण हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। यानी कि द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु और सावन का सोमवार है भगवान शिव का, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए।
5: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, करियर में आपके सुधार होगा, करियर में साथ में बेहतरी होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि सावन के सोमवार की आखिरकार पूजा विधि क्या है।
0: तो सावन का अंतिम सोमवार है, आप किस तरह से पूजा उपासना करें सरल तरीके से ताकि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। प्रातः काल या प्रदोष काल में पूजा करिएगा, प्रातः काल भी कर सकते हैं 12 बजे के पहले, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में पूजा कर सकते हैं। स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा, घर से नंगे पैर जाइए मंदिर तक और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और इसके बाद पुरुष पूर्ण साष्टांग करेंगे, महिलाएं अर्ध साष्टांग करेंगी। मंदिर में खड़े होकर या किसी किनारे बैठकर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन में केवल फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। शाम की पूजा समाप्त हो जाने के बाद केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें या जरूरत हो तो फल खा लें। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सवेरे अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप बीमार हैं, उपवास नहीं रख सकते, आपको बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो उपवास की चिंता ना करें। ऐसी स्थिति में आप केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा और इस बार के सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह या प्रदोष काल में शिव जी को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिएगा ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती नीलम त्यागी ने लिखा है, मेरठ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 4 नवंबर 2008, 5:39 शाम को, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर चुका है लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो आगे वो क्या करेगा, किस तरह के करियर में जाएगा। नीलम जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके बेटे की कुंडली में एक तो चंद्रमा अग्नि के इलाके में चला गया है, दूसरा वो राहु के साथ बैठा है, मन को स्थिर नहीं होने दे रहा या भटकाव पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके बेटे के जीवन में सुधार होने का समय इस साल के नवंबर से दिखाई दे रहा है। और आगे अगर आपका बेटा कंप्यूटर की पढ़ाई करे, मैनेजमेंट की पढ़ाई करे, तो इन क्षेत्रों में आपके पुत्र को बेहतर सफलता मिलेगी। एक अपने बेटे को मोती बनवा के पहना दीजिए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहनाएं और आप अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो उससे बेटे के जीवन पर फर्क पड़ेगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अब पंडित जी से दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं कि वो किस व्यूअर का लेने वाले हैं ये सवाल। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है आप उसे नोट कर सकते हैं और उस पर अपने प्रश्न हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला सवाल यानी कि दूसरा सवाल आप किस व्यूअर का लेने जा रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न नाजिया ने हमें लिखा है। नाजिया हमें पंजाब से मेल लिखती हैं। 9 अक्टूबर 1993 का जन्म है, 6:15 शाम को अबोहर पंजाब। ये पूछ रही हैं कि मेरी कुंडली में संतान का योग कब है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नाजिया आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा राहु की चल रही है। अप्रैल 2027 तक, अब से लेकर अगले साल के अप्रैल तक आपकी संतान की प्राप्ति का समय चल रहा है। अगर प्रयास किया जाए तो अब से लेकर के अप्रैल 27 के बीच में आप कंसीव कर जाएंगी, ये संभावना बनती है और अगले साल आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक है, लेकिन अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। एक मोती बनवा के पहनिएगा, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और बुधवार को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो देखिए सावन का अंतिम सोमवार है, ऐसे में सावन के अंतिम सोमवार के दिन विशेष प्रयोग आप क्या कुछ कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए सावन के अंतिम सोमवार पर हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे छोटे छोटे। पहला प्रयोग है, अगर आप संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, सारी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और ये जल अपने घर से भर कर ले जाइए। शिव मंदिर का जल शिव जी को वहीं का जल वहीं मत चढ़ाइएगा। इसके बाद चाहें तो मंदिर में बैठ जाएं या घर चले आएं और नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। अगर आप ये सरल सा उपाय सावन के अंतिम सोमवार पर करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और इसे लेकर आप काफी चिंतित है, काफी परेशान है, तो देखिए सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में शीघ्र विवाह के लिए क्या कुछ कर सकते हैं आप, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे, शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध, भूल कर भी केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद 11

0: के अंतिम सोमवार पर कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: तो चलिए बातचीत का इस सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में संतान सुख के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं इसके बारे में।
0: अगर आप संतान सुख चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी मिल करके अगर एक साथ उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। शिव जी को खीर का भोग लगाएं, चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घी के 9 दीपक जलाएं और इसके पश्चात ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करिएगा। आप मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं और घर पर भी शिव जी को भोग लगाकर इस मंत्र का जप करें, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी।
1: तो देखिए, मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए, अगर आप लगातार हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, उससे परेशान हैं, तो सावन के आखिरी सोमवार पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: आपको स्वयं स्वास्थ्य की समस्या रहती हो या परिवार में, हित मित्रों में किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत हो, तो उसके लिए सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करेंगे? शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाएं या एक ही बेलपत्र को धो धोकर 108 बार चढ़ाइएगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद इत्मीनान से बैठ करके ओम जूम सह माम पालय पालय

0: माम पाले पाले इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा।
1: और अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, धन लाभ चाहते हैं, तो सावन के आखिरी सोमवार पर आपको क्या कुछ करना चाहिए, आइए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से।
0: अगर आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको दूर करना चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो क्या करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं और पंचामृत ले जाकर जरा सा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें और फिर 11 माला एक विशेष मंत्र का जप करेंगे, ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय। इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करिए, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। जिन लोगों को पैसे रुपए की दिक्कत जरूरत से ज्यादा है, ऐसे लोग सावन के अंतिम सोमवार पर कम से कम 3 बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनकी कामनाएं पूरी होंगी।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस पे और का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न प्रियांशु शॉ ने हमें लिखा है। प्रियांशु हमें झारखंड से मेल लिखते हैं। 10 दिसंबर 2002 का जन्म है। 11:32 प्रातः, झरिया, झारखंड। ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रियांशु, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। आपका समय बिल्कुल बेहतर चल रहा है और अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें तो सरकारी सेवा में या कंप्यूटर के किसी क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी मिलेगी। 2027-28 का समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, आपको सफलता बेहतर मिल पाएगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि आखिरकार हम पंडित जी से कैसे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर हमारी इस वक्त ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। आपको करना बस इतना है कि हमारे इस ईमेल आईडी पर अपने बर्थ डिटेल्स के साथ अपना सवाल लिख करके भेज देना है, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न सत्य नारायण वैष्णव जी ने लिखा है, हमें जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 4 अगस्त 1998, 8:05 प्रातः जोधपुर राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री के करियर की क्या संभावना है, क्या मेरी बेटी सरकारी नौकरी में जाएगी और उसके विवाह के योग कब बन रहे हैं। सत्यनारायण जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा केतु की चल रही है। सबसे पहले बता दें कि आपकी बेटी के विवाह का समय चल रहा है और अक्टूबर 2027 के पहले इनकी शादी हो जानी चाहिए। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाएं, अगर ये एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाएं तो उसमें इनको सफलता जल्दी मिलेगी, उसमें सफलता की संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। अपनी बेटी को एक मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे इनको मूंगा पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अगर कर सकें तो रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 24 अगस्त को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला जो साल है, आने वाला वर्ष है, वो कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 24 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में बड़ा बदलाव दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज के कार्यक्रम की जिज्ञासा है क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि चंद्रमा के लिए किन चीजों का दान कब कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा के लिए सफेद चीजों का दान किया जाता है। चावल, चीनी, दूध, इसका दान करना बेहतर होता है। ये दान सोमवार की शाम को करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा का दान तभी करिएगा जब चंद्रमा कुंडली में खराब हो।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 24 अगस्त 2026 यानी कि दिन सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइएगा। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 24 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की गड़बड़ियां क्या हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मिथुन। आप निर्णय लेने के मामले में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अक्सर गलती करते हैं, तो निर्णयों के मामले में सावधानी रखें और एक साथ बहुत सारे काम करने का प्रयास ना करें।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी, अगर आपके मन में एक अनजाना सा डर रहता है, अनजाना सा भय वहम रहता है, तो क्या करें? रोज सवेरे स्नान के बाद एक लोटा जल ले लें। इस जल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से 5 बार घुमा लें, वार लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 1 महीने तक करें। आपके मन की चिंता, वहम, डर ये बड़े आसानी से दूर हो जाएंगे।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: रंगों की होली तो आप हर साल खेलते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर जो खेली गई है हरिद्वार में। आपको बता दें जब धर्म नगरी हरिद्वार के घाटों पर आस्था का समंदर उमड़ता है, तो परंपराएं सिर्फ रंगों में नहीं बल्कि पवित्रता के अनूठे रूपों में ढल जाती हैं। यहां की पावन हर की पैड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है जिसमें श्रद्धा और उल्लास की धाराएं एक साथ बहती हैं। मुल्तान ज्योत महोत्सव के खास अवसर पर यहां मां गंगा की आंचल में दूध की धार और आस्था की ज्योत मिली, तो पूरा वातावरण अलौकिक हो उठा। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सदियों पुरानी इस अटूट परंपरा का जीवंत प्रतीक है।
8: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियां लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए
9: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता हम प्रवाहित करते हैं, पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
8: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी, तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहाँ पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहां पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
9: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
8: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
5: सभी मिलजुल के रहे, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितनी शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें करना।
8: हर की पैड़ी पर दूर की होली के उत्सव में आस्था का अद्भुत संगम नजर आता है। इसमें शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम दे रहे हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: और अब खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा ये त्योहार 28 तारीख को मनाया जाएगा, जिसको लेकर देश भर के तमाम बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों से सज गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। इस बार बाजार में 10 रुपए से लेकर 300 से 400 रुपए तक की राखियां मौजूद हैं और हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिजाइन देखने को मिल रहे हैं।
10: आने वाला है भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते की पहचान वाला पर्व रक्षाबंधन। बहनें राखी का धागा बांधकर भाई से रक्षा का लेती हैं प्रण। चार दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके लिए बहनें जोर शोर से तैयारी में लगी हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्यारे भाई की कलाई राखी के धागे से सजाएंगी। राखी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बहनों की भीड़ है और दुकानें तरह तरह के राखियों से गुलजार है। हरियाणा के करनाल में भी बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियां बहनों को लुभा रही हैं। कोई मोतियों वाली राखी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी। कुल मिलाकर बाजार में राखियों की ढेरों वैरायटी है।
11: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब कि फेस्टिवल है कि दोनों की पेयर है सबसे बेस्ट है वो। बाकी सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी, जैसे आपकी चॉइस है। बच्चे छोटे भी है, उनके डोरेमोन वाली भी है, नगों वाली भी है, छोटे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है।
10: बाजारों में भीड़ है, राखियों की बिक्री भी जमकर हो रही है, जिससे दुकानदार भी खुश हैं। बिहार के गया में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजा हुआ है। अलग अलग वैरायटी की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही है। भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें अच्छी से अच्छी राखियों की खरीदारी की चाहत में बाजार का रुख कर रही है।
12: अच्छी अच्छी राखियाँ आई हुई है। हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा अच्छी अच्छी राखियाँ आई हुई है।
10: राजस्थान के पाली में बिक रही इन राखियों को देखिए, ये राखियाँ इको फ्रेंडली है। वजह यह है कि ये राखियाँ गोबर से बनी है। अलग अलग आकृतियों को समेटे ये राखियाँ काफी पसंद की जा रही है। यही नहीं, इन राखियों में बीज भी डाला गया, यानी जब भी आप इन राखियों को कलाई से उतारेंगे तो इसे गमले में डालने से पौधा उगने लग जाएगा, जो स्नेह का पौधा होगा, जीवन भर भाई बहन का स्नेह का प्रतीक बना रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी करेगा।
13: तो ये है कि जो अपने भाई की राखी बांधेगी तो गाय का गोबर जो अपने स्किन से तो टच होता है, तो वो अपने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये राखी बांधने से हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूँ और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूँ।
10: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ के RMS पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है, जो रात 9 बजे तक काम करता है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है।
14: हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है, जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इससे मद्देनजर जो भीड़ है, वो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है, ताकि हमारी जो बहने हैं जो राखी भेजने के लिए आई है, उनको कम से कम तकलीफ।
15: बहुत ही अच्छी सुविधा है। हम लोगों को यहाँ बहुत टाइम लग रहा था, पर ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहनों के लिए राखी के लिए इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, नया काउंटर खोला है। हम सभी बहने बहुत खुशी में है।
10: डाकघर में राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है, ताकि राखियां खराब ना हो। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, पाली से भरत भूषण जोशी और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चाइना की राजधानी बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी कि रोबोट ओलंपिक चल रहा है। इसमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट ने ना सिर्फ फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखाया है, बल्कि नए नए रिकॉर्ड्स बनाकर भी इंसानों को दंग किया है। इनमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट।
16: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
17: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया।
16: यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है, उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद हजार से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
18: क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: पवित्र सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार, देश भर के शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर परिसर। कैलाश मानसरोवर यात्रा का हुआ समापन, नाथुला रूट से लौटे 464 श्रद्धालु, 10 जत्थों में पूरी हुई यात्रा, 20 जून को शुरू हुई थी यात्रा। आगरमालवा के सबसे बड़े पर्व की तैयारी जोरों पर, आज निकले की बाबा बैजनाथ की शाही सवारी, 1.5 लाख भक्तों के लिए भंडारा तैयार। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर हरियाली के बीच से गुजरती वंदे भारत का ड्रोन विजुअल किया पोस्ट, लिखा नए जमाने की ट्रेन। ओडिशा में 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, जोरदार बारिश के साथ कई नदियां उफान पर, कई जिलों में आज स्कूल बंद। केरलम की 19 साल की केजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में स्टेट क्राउन जीतकर रचा इतिहास, अब दुनिया के बड़े मंच पर भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणीश एम ने जीता कानिशा ओपन 2026 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब, बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता घोषित हुए प्रणीश एम। हंगरी में भारतीय दूतावास ने चैंपियन को बधाई दी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।
21: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: आज शुभ समाचार का शुभारंभ सावन के अंतिम सोमवार से करेंगे, आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने में आज शिव मंदिरों और शिवालयों में महादेव की पूजा और जलाभिषेक के लिए किस तरह भारी भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धा और भक्ति का कितना सुंदर माहौल है, और साथ ही आपको बताएंगे शिव जी की कृपा पाने के लिए आज कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाएंगे सावन के रंग।
21: वहीं इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जैसलमेर और दिखाएंगे वहां पर आखिर क्यों किया गया है महारुद्राभिषेक। वैसे तो सावन का महीना है, महादेव की पूजा चल रही है, लेकिन मानसून का सीजन चल रहा है तो अच्छी बारिश के लिए किस तरह से लोग भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, इसकी भी झलक आगे दिखाएंगे।
7: और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बात राखी के त्योहार की भी होगी, और आपको हम दिखाएंगे 4 दिन बाद होने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के लिए किस तरह से देश भर में तैयारियां चल रही हैं। आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने से राखी की तैयारियों के रंग और बताएंगे भाइयों की कलाई में बांधने के लिए राखी की इस बार बहनों की क्या पसंद है।
21: इसके अलावा बात गणपति उत्सव की तैयारियों की भी होगी, और आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, कितना उल्लास लोगों में है और इस बार क्या क्या खास होने जा रहा है।
7: और इसी बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे परंपरा और संस्कृति के रंगों से जुड़ी कुछ और खास खबरें, आपको दिखाएंगे गुलाबी नगरी जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले की तस्वीरें, किसने मारी बाजी ये सब आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का। पवित्र सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार है, महादेव के मंदिरों में सुबह से तांता लगा हुआ है।
21: पवित्र सावन महीने का आज आखिरी सोमवार, महादेव के मंदिरों में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। देशभर में गूंज रहा है हर हर महादेव का उद्घोष। काशी, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार में विशेष आराधना का दौर जारी है। विधि विधान से की जा रही है महादेव की पूजा। सावन के अंतिम सोमवारी पर प्रसिद्ध बाबा सहेश्वरनाथ मंदिर में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा। रात 1 बजे पूजा संपन्न होते ही बाबा सहेश्वरनाथ का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पट खोलते ही हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा और भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू कर दिया। वहीं आज सावन के पावन महीने का अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के मंगला आरती के पहले उनका श्रृंगार बाबा विश्वनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगला आरती मंदिर में पुजारियों ने किया और इस दौरान पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। मंदिर में प्रवेश के लिए पहले कांवड़ियों का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। सिक्किम के नाथुला रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी हो गई। 464 श्रद्धालु 10 जत्थों में यात्रा करके वापस गंगटोक पहुंच गए हैं और इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा 20 जून को शुरू हुई थी। श्रद्धालुओं ने तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन किए। वहीं मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान काली चौकी के महाराजा का भव्य आगमन हुआ। बापा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। ढोल नगाड़ों और गणपति बापा मोरिया के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा।
2: श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी पर अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर नया धर्म ध्वज लहराया गया। नए ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बनाए गए हैं। नए ध्वज को देखकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है।
21: तो वही महाराष्ट्र की पारंपरिक ढोल ताशा संस्कृति ने नागपुर में नया इतिहास रच दिया। रेशम बाग मैदान में आयोजित मंथन फॉर युवा कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने यह रिकॉर्ड बनाया। कार्यक्रम में 25,000 से अधिक युवक युवतियों ने हिस्सा लिया है।
2: हिमाचल प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले 36 मंदिरों में 2.5 साल से ज्यादा समय में करीब 420 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। राज्य सरकार ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। सबसे ज्यादा चढ़ावा हमीरपुर के बाबा बालकनाथ देवता सिद्ध मंदिर में आया और यहां पर 99 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला।
21: वहीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले का पिंक सिटी जयपुर में आयोजित किया गया और इस सौंदर्य प्रतियोगिता में 52 सुंदरियां शामिल हुई। प्रतियोगिताओं को परखने के लिए एक खास कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें मनोरंजन जगत के जाने माने चेहरे शामिल हुए। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन, उर्वशी रौटेला और सेलिना जेटली इस प्रतियोगिता में बतौर जज शामिल हुई। रात तकरीबन 2 बजे पर विनर के नाम का ऐलान किया गया और केरल की केजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है।

0: और चलिए शुभ समाचार में सबसे पहले बात भगवान शिव के अति प्रिय सावन की। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। भगवान शिव की कृपा पाने की विशेष तिथि है और इसलिए सुबह से ही देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है।
1: वाराणसी और देवघर में आज महादेव के जलाभिषेक के लिए देर रात से ही कतारें लगी हुई हैं। साथ ही दिल्ली, गाजियाबाद और अयोध्या, प्रयागराज सहित तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भोले भंडारी की पूजा अर्चना, जलाभिषेक किया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर ओर श्रद्धालु और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है
0: क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन अवसर माना जाता है ये। खास बात यह है कि इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रदोष काल का अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग बन रहा है। सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का सोमवार का व्रत और पूजन करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
1: तो सावन के आखिरी सोमवार के पावन अवसर पर हम आपको सीधे काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ धाम लिए चलते हैं। आप इन दोनों धाम के लाइव दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ की लाइव तस्वीरें। आप घर बैठे बाबा विश्वनाथ और श्री सोमनाथ के शुभ दर्शन कर सकते हैं।
0: देखिए जीएनटी के माध्यम से ये दिव्य दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। भगवान शिव की किस तरह से यहाँ पर पूजन हो रहा है। आज सावन का अंतिम सोमवार है और इसलिए बेहद भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं ये जो हम सीधे आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन दोनों धामों का शुमार महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होता है और ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके सामने हम करवा रहे हैं। मान्यता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान से मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और इसी वजह से बाबा का धाम पूरी दुनिया में विशेष स्थान रखता है।
1: तो सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। ऐसे में महादेव के इस स्वरूप के दर्शन से साधक को पाप कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी जगह चंद्रदेव ने भोलेनाथ की आराधना की थी और उनसे श्राप मुक्त जीवन का वरदान पाया था।

0: और चलिए आपको उज्जैन लिए चलते हैं, जहां पर सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा महाकाल का दरबार सज गया है। आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्ति का ऐसा रंग देखने को मिल रहा है जिसे देखकर हर दिल शिवमय हो जाए।
1: भांग चंदन सूखे मेवे से बाबा का अद्भुत अलौकिक श्रृंगार किया गया। उसके बाद भस्मारती ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर अलौकिक भस्मारती और महाअभिषेक के साथ विशेष पूजा की शुरुआत हुई।
0: सूरज की पहली किरण डूबने से पहले ही लाखों शिव भक्तों ने बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और पुण्य लाभ कमाया है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से यहाँ पर आरती पूजन हो रहा है, सुनिए।

0: तो चलिए अब सावन की इस पूरी तस्वीरों को दिखाने के लिए अलग अलग शिवालयों से हमारे खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। धर्मेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी आप मुंबई में कहां पर मौजूद हैं? आज सावन का सोमवार, ऐसे में क्या अद्भुत नजारा देख पा रहे हैं वहां पर?
1: ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, यही गूंज महादेव की न केवल मुंबई बल्कि देश भर में गूंज रही है। मैं मौजूद हूं इस समय मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में और आपको बताएं कि महाराष्ट्र का ये दूसरा श्रावण है जो कि 13 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलने वाला है। थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से दृश्य देखें, एक बड़ी तादाद में शिवभक्त इस समय बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ पड़े हैं, खास तौर से बाबा का न केवल दर्शन करने के लिए बल्कि यहां आने के बाद जो एक अलग ही तरह की शांति अनुभव होती है वो ग्रहण करने के लिए शिव भगवान के पहुंचने के पहले लोग नंदी का दर्शन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि नंदी का दर्शन करके उनके कान में जो भी मिन्नतें हैं वो मांग ली जाए तो सीधे शिव भगवान तक पहुंच जाती है और शिव नंदी को बहुत मानते हैं, इस वजह से तुरंत ही उनकी बातें सुन लेते। देखिए, हर कोई अपनी बातें नंदी माँ के कान में रखना चाह रहा है। अब सीधे आपको दर्शन कराते हैं बाबुलनाथ बाबा के और आप देखें किस तरीके से एक अच्छी खासी भीड़ जो है न केवल मुंबई से बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से बाबुलनाथ मंदिर में पहुंची हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ है, कैमरा भीतर तक नहीं जा पाएगा लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। अगले बुलेटिन में बाबा का जो अभिषेक होगा, दोपहर की आरती होगी, वो आप तक पहुंचा दे। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य न केवल यहां का है बल्कि खास तौर से सीधे बाबा का दर्शन करने के बाद यहां पर श्री गणेश जी की प्रतिमा भी रखी गई है, वहां भी लोग दर्शन करते हैं और इस तरह से घंटियां यहां बजाई जाती है। थोड़ा सा एक और भी मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूं, ये देखिए बकायदा हनुमान जी को भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, इनका भी दर्शन करते हैं। और अब जरा सा वो तस्वीरें देखें जहां पर श्रद्धालु जो हैं अलग अलग जगहों से आकर घंटों कतार में रह के भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंचे हुए हैं। खास बात ये भी है इस मंदिर का कि 300 साल पुराना यहाँ का इतिहास तो है, पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन बकायदा मंदिर में परिसर में आने के बाद में कलश मिलता है, कलश में जल भर के जलाभिषेक जाकर किया जा सकता है और इस तरह से मिल्क भी रखे हुए दूध है यहाँ पर वो भी चढ़ाया जा रहा है।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई, तस्वीरें आगे भी आप दिखाइएगा, आपके पास हम लौटेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हमारे साथ पंकज प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज, संगम की नगरी में आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है?
2: सावन के आखिरी सोमवार पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है, मनकामेश्वर मंदिर में लगी हुई है और सुबह से ही श्रद्धालु भोलेनाथ को एक लोटा जल और दूध चढ़ाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु सुबह से यहाँ आ रहे हैं और भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है एक लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, हाथों में बेलपत्र है और तमाम भोलेनाथ को जो प्रसन्न करने वाली चीजें हैं वो यहाँ पर श्रद्धालु लेके आ रहे हैं और यहाँ।
0: चलिए ठीक है पंकज, तस्वीरें दिखाइएगा एक बार। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। रोशन हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी आप किस मंदिर में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा।
3: जी देखिए, ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रधान काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बाहर हम 4 नंबर गेट के खड़े हैं और देख सकते हैं ये जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग है और उसमें भी सबसे प्रधान ज्योतिर्लिंग है। सावन का पावन माह चल रहा है और अंतिम सोमवार है तो भला इस मौके का कोई भी जो भक्त है आस्थावान शिव भक्त वो फायदा जरूर उठाना, बाबा के दरबार में आके उनका जलाभिषेक करना चाहता है, दूधाभिषेक करना चाहता है, उनको बिलपत्र चढ़ाना चाहता है। इस बीती रात से ही यहाँ तमाम धार्मिक गया था और अब जैसे ही मंगला आरती खत्म हुई और तब से लेकर लगातार आने का सिलसिला जारी है, लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु काशी विश्वनाथ में पहुंच रहे हैं, धाम पहुंच रहे हैं और बाबा से अपनी अर्जी लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि नजरें जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में श्रद्धालु हैं, गंगा घाट से लेकर और यहाँ तक प्री गेटिंग की गई है और व्यवस्थाएं की गई है। माना जाता है कि पूरे सावन भर अगर शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक जो नहीं कर पाते हैं तो आज के इस खास दिन अगर बाबा करते हैं तो उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और आज मौसम भी बहुत सुहाना है। पिछली बार आज चौथी बार सावन पे है, जब जब सावन का सोमवार काशी में खास तौर से आ रहा है, काशी में लोग मना रहे हैं इस पर्व के रूप में, तो मौसम बहुत सुहाना हो जा रहा है। यहाँ कहा जाए तो जो भोलेनाथ है वो अपने भक्तों की परीक्षा नहीं ले रहे हैं, और मौसम बीती रात से ही बहुत अच्छा हो गया है। उमस और गर्मी से पहले ही लोगों को निजात मिल चुकी है। तमाम जो भक्त हैं वे भी लगातार पहुंच रहे हैं, हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और दर्शन हो?
4: जी मैं बनारस का रहने वाला हूँ। दर्शन तो बहुत ही सुगम हुआ, जो कि एकदम अविश्वसनीय
0: जी। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे, और जो ये तस्वीरें आपने दिखाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ऐसे बीच तस्वीरें सावन के अंतिम सोमवार पर अलग अलग शिवालयों से निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें आज के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था और भक्ति का भूतपूर्व समंदर उमड़ रहा है। आज तड़के

0: मंदिर प्रशासन द्वारा कावड़ियों और शिव भक्तों का स्वागत गुलाब के फूलों की पंखड़ियों की वर्षा के साथ किया गया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और ड्रोन निगरानी के बीच लाखों भक्त कतारबद्ध होकर बाबा के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
1: देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक जगह जगह पर शिवालयों में कुछ ऐसी ही धूम देखने को मिल रही है। किस तरह की सजावट यहाँ पर की

0: का रंग बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। हर ओर हर हर महादेव, बम भोले और बोल बम की गूंज सुनाई दे रही है। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें। सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर दिल्ली के सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस विशेष दिन पर महादेव और माता गौरी के दर्शन के लिए मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। उमस और भीषण गर्मी की परवाह ना करते हुए हजारों शिव भक्त तड़के से ही कतारों में लगकर भगवान शिव का पवित्र गंगा जल, दूध और पंचामृत से भव्य जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और चलिए अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं और वहां लिए चलते हैं सावन के अंतिम सोमवार के शुभ अवसर पर। यहां पर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है वो तस्वीर आप देख लीजिए। सावन का अंतिम सोमवार भगवान शिव के भक्तों के लिए अलौकिक उत्सव लेकर आया है। आज मुंबई के सबसे प्राचीन शिवालयों में से एक बाबुलनाथ मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं।
1: पवित्र जल और दूध के साथ पुष्प, बेलपत्र और चंदन लेकर मंदिर पहुंचे शिव भक्त पूरी तरह से शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर आस्था की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगला आरती के बाद से ही कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की।
0: वहीं मंदिर परिसर में गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों ने माहौल को शिवमय बना दिया है। ये माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। श्रद्धालुओं का उत्साह, उनका जोश, उनका उमंग, उनकी आस्था देखते ही बन रही है।
1: तो चलिए हम अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुंबई आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। धर्मेंद्र, आप वहां पर श्रद्धालु से बातचीत कीजिएगा, बताइएगा कि आज सावन के सोमवार पर वो क्या कुछ मनोकामना लेकर मंदिर आए हैं, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करने के लिए पहुंचे।
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें कि मंदिर में तीन तरह की कतारें हैं। ये देखिए, पहली कतार है जो सीधे बाबा तक, शिव भक्त तक पहुंचती हैं और वहां जाकर के लोग आरती ले लेते हैं। कोशिश करते हैं अब जो कतार में खड़े उनसे ही बातचीत करने, लेकिन उनसे पहले बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें इस समय मुंबई से हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि सुबह से ही इंद्र देवता जो है वो बहुत ज्यादा ही खुश है और सुबह से ही अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन मंदिर के पूरे परिसर को बारिश से बचाने के लिए टेंट में तब्दील कर दिया गया है। और ये दूसरी कतार है जो अंतिम तक, जहां तक भी नजरें जाए वहां तक देखने को मिलती है। देखिए, अलग अलग कोने से लोग पहुंचे हुए हैं, पीछे भी एक पर्दा लगा हुआ है जहां घूम घूम कर लोग कतार लगाकर यहां पहुंच रहे हैं। खास बात इस मंदिर की ये भी है कि यहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से आप जलाभिषेक कर सकते हैं, जिसकी पूरी तैयारी मंदिर ट्रस्ट द्वारा करी जाती है। ये देखिए, यहां पर छोटे छोटे कलश जो हैं रखे गए हैं और हर कोई यहां पहुंचता है, कलश उठाता है, उसमें जल भरता है और फिर धीरे धीरे बप्पा की तरफ पहुंच जाता है। इस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं कि आज जो दूसरा श्रावण है कितना खास है। कहाँ से आई हैं बहन जी आप? आज दूसरा श्रावण है तो कितना खास है, क्या कुछ आज चढ़ाना चाहिए, कुछ बताएंगे? देखिए, कितनी भाई कितनी देर से खड़े हैं
3: आप? 2 घंटे हो गए।
2: 2 घंटे हो गए, अब कैसा लग रहा है मंदिर परिसर में पहुँच के?
3: अच्छा,
2: श्रावण में जरूरी है दर्शन करना।
3: हाँ,
2: क्या बात है, आप लोग भी साथ में ही हैं सारे?
3: हाँ, सब साथ में आए हैं।
2: कौन सी जगह से आए?
3: अंधेरी से आए।
2: अच्छा, ये बताइए कि आज के दिन कितना खास आपके लिए?
3: बहुत खास है, महादेव के जो भी भक्त है सबके लिए बहुत, आज तीसरा मतलब आखिरी वो है ना सोमवार। हाँ, तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्साह है।
2: ओके, बाहर तो अच्छी खासी बारिश हुई होगी। ये देखिए, तमाम लोग यहाँ भी पहुंचे हुए हैं। बाहर बारिश हो रही थी माता जी? बाहर बारिश
4: नहीं, अभी तो नहीं है।
2: अभी नहीं है, कितनी देर से आप वैसे खड़े हैं?
4: 2 घंटा हो गया।
2: तो क्या क्या लाया है भगवान को चढ़ाने के लिए आज? सबसे खास चीज क्या है आपके हाथ?

0: बेलपत्ता।
1: बेलपत्र, अच्छा ओके। और भी देखिए तमाम लोग हैं, आप कहाँ से हैं?
2: हम तारदेव से। तारदेव
1: जी, ऐसा लग रहा थक गए होंगे दो घंटे से।
2: दो घंटे फिलहाल तो खड़े हैं, अभी थोड़ी बारिश हुई और बस पूजा कर।
3: बिल्कुल धर्मेंद्र, और यहाँ से बहुत अच्छी तस्वीरें, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं मुंबई, जहाँ पर धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं। धर्मेंद्र के बाद हम पंकज के पास चलेंगे। पंकज, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आपको, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार, श्रद्धालुओं में अपार भक्ति आस्था देखने को मिलती है आज के दिन, और आज के दिन को एक पर्व के तौर पर मनाया जाता है।
4: बिल्कुल, यहाँ पर जो मनकामेश्वर मंदिर है, सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है। और प्रयागराज के इस मनकामेश्वर मंदिर में जो भी श्रद्धालु यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ श्रद्धालु हाथों में जल लिए हैं, दूध लिए हैं, बेलपत्र और फूल और तमाम जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो वस्तुएं हैं वो लेकर के आए हैं। और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। हम कुछ श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करेंगे। आज दूध लेकर के आई है भोलेनाथ के चढ़ाने के लिए, क्या कामना करेंगे?
5: भगवान सबको शांति दे।
4: सब अच्छे से। क्या क्या लेकर चढ़ाने के लिए आई है? अच्छा, क्या कामना करते हैं यहाँ भोलेनाथ से आकर के? अच्छा, कहा जाता है भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं और एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल समस्या का हल। कितनी लंबी लाइन लगी है? बारिश की वजह से।
3: चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे पंकज, आप एक बार दोबारा सभी से बात करिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी महाकवरेज सावन को लेकर जारी रहेगी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: सावन के अंतिम सोमवार का महत्व, सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: पवित्र सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार, देशभर के शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर परिसर।
12: कैलाश मानसरोवर यात्रा का हुआ समापन, नाथुला रूट से लौटे 464 श्रद्धालु, 10 जत्थों में पूरी हुई यात्रा, 20 जून को शुरू हुई थी यात्रा।
3: आगर मालवा के सबसे बड़े पर्व की तैयारियां जोरों पर, आज निकलेगी बाबा बैजनाथ की शाही सवारी, 1.5 लाख भक्तों के लिए भंडारा तैयार।
12: प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: तो ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। सावन के आखिरी सोमवार के पावन अवसर पर हम आपको सीधे काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ धाम लिए चलते हैं।
12: आप इन दोनों धाम के लाइव दर्शन कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ धाम की तस्वीरें अब होंगी। ये तस्वीरें देखिए, आप घर बैठे बाबा विश्वनाथ और श्री सोमनाथ के शुभ दर्शन करिए। इन दोनों धाम का शुमार महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होता है। मान्यता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान से मनुष्य का जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और इसी वजह से बाबा का धाम पूरी दुनिया में विशेष स्थान रखता है।
3: तो देखिए, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महादेव के स्वरूप के दर्शन के से साधक को पाप कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी जगह चंद्रदेव ने भोलेनाथ की आराधना की थी और उनसे श्राप मुक्त जीवन का वरदान पाया था।

0: और चलिए अब आपको मुंबई में शिव दर्शन कराते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तस्वीरें दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि समय बढ़ रहा है तो उसके साथ क्या श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है।
1: देखिए अमूनन रोजाना अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा शिव भक्त जो हैं वो बाबुलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब बात सोमवार और श्रावण की हो तो ये आंकड़ा जो है वो 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कल ही के दिन रविवार का दिन था, 70,000 के आसपास जो भक्त हैं वो आए थे दर्शन करने के लिए। इसके अलावा अगर पिछले सोमवार की बात करें तो 1,00,000 से ज्यादा के लोग जो हैं दर्शन करने के लिए आए थे। बड़ी ही महिमा मानी जाती है बाबुलनाथ मंदिर की। साउथ मुंबई में ये मंदिर बसा हुआ है, बड़े अस्तीले से लोग यहाँ पहुँचते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और उसके बाद बड़े अस्तीले से यहाँ बैठ करके उनकी आरती की जाती है। देखिए हर कोई हाथ जोड़े जो है खड़ा हुआ है और थोड़ा मंदिर का गठन देखिए, 300 साल पुराना ये पौराणिक मंदिर है और इनकी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। ऐसा कहते हैं कि बाबा यहाँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते, जो कोई भी पहुँचता है उनकी मिन्नतें बाबा तुरंत ही मान लेते हैं। आपको बताएं कि मंदिर का ये दूसरा परिसर है, दूसरा भाग है जहां पर शिव के अलावा दूसरे भी जो ईश्वर हैं उन्हें स्थापित किया गया है। एक बड़ी सुरक्षा, एक कड़ी सुरक्षा के बीच यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। पुलिस की एक बहुत बड़ी संख्या सुरक्षा के मद्देनजर तो होती ही है, लेकिन जो मंदिर परिसर है, ट्रस्ट है, उनकी कमेटी द्वारा भी सेवादार यहां पर मौजूद होते हैं, जैसा कि इस समय ये यहां पर बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने के लिए अगर शक्ति है, ईश्वर की आराधना है, तो लगभग 108 सीढ़ियां हैं, उसे चढ़कर भी मंदिर में आया जा सकता है। ये वही सीढ़ियां हैं, लेकिन जिन्हें ताकत नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए यहां पर लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है, जो लिफ्ट द्वारा भी मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दूसरे ईश्वरों को जहां पर विराजमान किया गया है, वहां भी लोग बड़े अस्तीले से बैठते हैं और अपने परिवार संग तस्वीरें खिंचवाते हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हैं और भी जो ट्रस्ट में चढ़ावा चढ़ाना होता है वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा देखें इस तरफ से, ओम नमः शिवाय यहां न केवल लिखा है बल्कि मंदिर के सारे ही तरफ लिखा हुआ है। फूलों से मंदिर के पूरे परिसर को सजाया गया है, लाइटिंग से सजाया गया है और शाम का दृश्य, शाम की तस्वीरें यहां पर बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। आपको बताएं कि लगभग 4 बार मंदिर में पूजा आरती की जाती है, 6 बजे मंदिर का द्वार खोला जाता है, रात को 11 बजे मंदिर का द्वार बंद किया जाता है, पहली ही आरती जो है 7 बजे होती है और अब 1.5 घंटे बाद यानी कि 12:30 बजे के आसपास दूसरी आरती होगी। लेकिन उससे पहले शिव भगवान का जो लिंग है यहाँ पर, उन्हें साफ सुथरा किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है दूध, जल और बहुत सारे फूल हार उस पर चढ़ाए गए होते हैं। उसके बाद उनका शुद्धिकरण करके फिर उनका अभिषेक किया जाएगा, फिर पूजा आरती करके लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा दर्शन करने के लिए, यानी कि लगभग 40 मिनट तक मंदिर का जो द्वार है वो बंद होगा। यहाँ पर काफी महंत होते हैं, एक मुख्य महंत के अलावा जो भी कोई चाहता है अपने परिवार संग आकर यहाँ अभिषेक करा सकता है और इस तरह से महंत जो है परिवारों के अभिषेक करवाते हैं, उनकी जो मिन्नतें हैं वो सीधे ईश्वर तक पहुंचाते हैं। देखिए किस तरीके से बाबा के सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, उत्सुक हैं।
0: बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है बाबुलनाथ मंदिर को और जिस तरह से आपने बताया 300 साल पुराना मंदिर है, इसकी मान्यता के बारे में भी आपसे समझेंगे, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच पंकज प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, श्रद्धालुओं में बहुत जोश आज के दिन देखने को मिलता है, अंतिम सोमवार है सावन का और इसे लोग एक अवसर की तरह देखते हैं। आज मंदिर में पहुंच जाएं, आप मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचे हुए हैं और यहां पर श्रद्धालुओं में किस तरह का जोश जरा उनसे बात कीजिए।
2: बिल्कुल, यहां पर श्रद्धालु सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर आप आए हैं बजरंगबली को जल चढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे? आज बारिश भी हुई थी यहाँ पर, बिल्कुल यह श्रद्धालु यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर हैं, जल चढ़ाने के लिए हैं, क्या कहेंगे?
3: बहुत बहुत बहुत नया दर्शन मिला मुझे और भोले बाबा का कुछ काम भी करने के लिए।
0: पंकज, आज के दिन लोगों में जोश और उत्साह तो है ही, तो जरा उन्हें कहिए कि अपनी आवाज में भी जोश दिखाएं और तेज बोले ताकि हम तक भी आवाज पहुंचे।
2: बिल्कुल, यहाँ पर आप भी आए हैं दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ का क्या कहेंगे, क्या कामना कर रहे हैं?
3: मनोकामना, सबका मनोकामना, सबका हित, सबकी भलाई, सबकी।
2: अच्छा, सुबह से ही यहाँ पर भक्तों के, जब भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है,
3: ये उनकी कृपा है, सावन की महिमा है, बादल भी है, बरसात भी है, भूत भी, फिर भी लोग आ रहे हैं।
4: अच्छा, यहाँ पर सभी भक्त सुबह से ही जब आते हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हाथों में एक लोटा जल और तमाम बेल पत्र लेकर के आए, क्या कहेंगे आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए? भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हैं और इस तरह से यहाँ आप भी यहाँ पर भगवान को चढ़ाने के लिए बेल पत्र लाए?
5: जी जी, भगवान के दर्शन करने आए।
4: क्या कामना करेंगे?
5: कामना करेंगे जल्दी सफलता मिले।
4: आप छात्र हैं?
5: जी
4: बिल्कुल। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु हैं बजरंग यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आए हैं और तमाम इस तरह से यहाँ पर।
0: ठीक है पंकज, आपके पास लौटेंगे। काशी से रोशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे उनसे एक बार बात कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि लगभग कितना इंतजार उनको करना पड़ रहा है भोलेनाथ के दर्शन के लिए।
6: जी देखिए, बिल्कुल तो बताया जा रहा था और मंदिर की तरफ से दावे भी किए जा रहे थे कि बहुत जल्द दर्शन कराया जाएगा और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष इंतजाम की भी बात कही गई थी, लेकिन हम श्रद्धालुओं से ही कोशिश करेंगे बात करने की कितना वक्त लगा उनको दर्शन करने में, कितना आप लोग दर्शन कर लिया, कितने बजे आए थे और कहाँ से आ रहे हैं?
7: हम लोग बिहार पटना से आ रहे हैं।
6: अच्छा, कितना वक्त लगा
7: दर्शन करने में? आधा घंटा लगा।
6: कतार में लगे और आधे घंटे
7: में बाबा का दर्शन।
6: आम श्रद्धालु के नाते का दर्शन?
7: नहीं, आम श्रद्धालु का दर्शन
6: आधे घंटे में। क्या क्या
7: व्यवस्था? बहुत बढ़िया है, हवा पानी सब चीज मिल रही है यहाँ पे, बढ़िया का सुविधा है सब किसी बम लोगों के लिए और मतलब जल उल के लिए भी।

0: सुगम दर्शन होगा।
1: आप कहाँ से आ रहे हैं?
2: बता
3: जिला सासाराम
1: जी। दर्शन हो गए?
3: नहीं जा रहे
1: दर्शन। अब दर्शन हो गए आपके?
3: यही एक घंटा लगा है, यही गए वाराणसी के,
1: एक घंटे में दर्शन। हाँ देख सकते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है। कहाँ से आना हुआ था? हालांकि देख सकते हैं जो श्रद्धालु बता रहे हैं कि आधे से एक घंटा दर्शन में ही समय लग रहा है, इससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत हो रही है और वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पे हमारी मौजूदगी है और लगातार आज दिन भर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जाएगी। और देख सकते हैं इस तरह से ये जो बैटरी वाली जो कार है ये भी स्पेशली रखी गई है, श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त सुविधा दी गई है, क्योंकि आसपास का जो पूरा इलाका है ये नो व्हीकल जोन किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है और यहाँ पे पूरी तरह से वाहनों,
4: क्योंकि यहाँ पर खासा भीड़ देखने को मिल रही है पंकज, तो यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, धर्मेंद्र के पास चलते हैं। बाबुलनाथ मंदिर के 300 साल पुराने होने का जिक्र आप कर रहे थे, जरा इसकी मान्यता के बारे में बताइए, क्या विशेषता है?
5: देखिए बड़ी सुंदर सी कहानी है। सबसे पहले मैं आपको मंदिर में जो खंभे इस तरह से बनाए गए हैं उसकी सुंदरता मैं दिखा दूं। हर तरफ कहीं विष्णु भगवान, कहीं माता लक्ष्मी, तो कहीं पे हनुमान जी, तो कहीं पर श्री गणेश की प्रतिमा, कुछ इस तरीके से मंदिर के हर द्वार हर खंभे पर बनाई गई है। 300 साल पुरानी ये मंदिर है और जो कहानी हम तक पहुंचाई गई है, जो हम समझ पा रहे हैं कि बाबुल नाम का पहले ये साउथ मुंबई में जिस जगह पे ये मंदिर है यहाँ पर चरवाहा अपने गाय और बछड़िया भैंस लेकर आते थे चराने के लिए। एक तरह से चराहा का ये पूरी जगह थी। ग्वाला नाम का एक चरवाहा था और उसकी जो सबसे पसंदीदा गाय थी उनका नाम था काफिला। काफिला लगातार 2 महीने से जब भी आती थी यहाँ पर चराहा करने के लिए तो एक ही जगह रुक जाया करती थी और फिर वहां से हिलती नहीं थी। हर कोई हिलाने की कोशिश करता था पर वो नहीं हिलती थी। फिर दूसरे तीसरे महीने से ये देखने लग गया कि वो खुद ही दूध भी वहां देते जा रही हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के बीच ये बातें होने लगी और पूरे गांव, पूरे मुंबई भर में ये चर्चा होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फाइनली यहां पर एक राजा थे जिनका नाम था भीमसेन और वो राजा के पास ये खबर पहुंची। राजा ने वहां खुदाई की, खुदाई करने के बाद कई फीट नीचे गहराई से शिवलिंग की स्थापना हुई और तब से शिवलिंग को यहां पर स्थापित कर दिया गया। और उस समय के जो राजा थे भीम सिंह, उन्होंने पैसे लगा करके जो है एक भव्य रूप से मंदिर का यहां पर निर्माण किया। उसके बाद ब्रिटिश की सत्ता यहाँ पर आई, मंदिर को उन्होंने कुछ नुकसान किया, लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से गए और देश को आजादी मिली तो स्थानीय जो भी नेता थे, जो उद्योगपति थे, आसपास के जो गुजराती और मारवाड़ी समाज है, धीरे धीरे उन्होंने इस सोनेरी कलर से बाबुलनाथ मंदिर को रूप दे दिया। साउथ मुंबई का एकमात्र मंदिर बाबुलनाथ, और ग्वाले का नाम बाबुल था इसलिए उसके नाम पर यह मंदिर का नामकरण कर दिया गया। बाबुलनाथ मंदिर से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, न केवल आम बल्कि खास, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी भी खास तौर से श्रावण के सोमवार में बाबा का दर्शन यहाँ पर करने आते हैं। साथ ही साथ जो कोई भी अपना नया काम शुरू करने जा रहा है वो भी यहाँ पर आकर बाबा का दर्शन करता है। परिवार संग लोग यहाँ पर अभिषेक कराते हैं और कुछ इस तरीके से शिव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं
4: और भी अद्भुत तस्वीरें दिखाइएगा। पंकज के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं सभी को। पंकज, जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? बेल पत्र, क्या क्या उनकी थाली में आप क्या देख पा रहे हैं?
6: बिल्कुल, यहाँ पर जो भोलेनाथ का मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर, वहां पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हाथों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दूध है और ये मिठाई है और बेल पत्र है। तमाम जो भगवान भोलेनाथ को पसंद चीजें हैं वो यहाँ पर लेके आए हैं। मदार की माला है और हाथों में दूध और जल लेकर के श्रद्धालु यहाँ आए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान स्वयं हुए थे और भगवान राम ने भी यहाँ पूजा की थी। पूजा के बाद यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं। क्या क्या बजरंगबली को लेकर भोलेनाथ को लेके आए हैं आप?
7: आज मैं भोलेनाथ चढ़ाया, पूजा पर किया और नाम धतूरा जो भी मतलब छोड़ते हैं सब चढ़ाया। आज महादेव कृपा, हमें चाहता हूँ महादेव कृपा पूरे प्रयागराज पे बनी रहे।
6: क्या क्या कामना करते हैं यहाँ पर भोलेनाथ के तरह से मनोकामनाएं पूरी करते हैं?
7: बाबा पंचमेश्वर महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करते, जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। सभी श्रद्धा भाव सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, जिस तरह के ये भक्त
4: बिल्कुल पंकज। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, पंकज, धर्मेंद्र और रोशन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत जानकारी आप सभी ने हम तक पहुंचाई है, दिखाया किस तरह का जोश आज श्रद्धालुओं में बना हुआ है, और तमाम शिवालयों से आपने जो तस्वीरें दिखाई उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: तो आज सावन का सोमवार है और भक्तों का तांता शिवालयों में लगा हुआ है। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीरें, भक्तों की भीड़ नजर आ रही है।
4: और चलिए अब बात करते हैं मिस इंडिया यूनिवर्स की।

0: और हम बात कर रहे हैं उस खुशखबरी की जिसका सभी को इंतजार था। दुनिया भर में मशहूर मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता की एक बार फिर से गुलाबी नगरी जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस बार केरला की सुंदरी काजिया लीज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश इसमें दूसरे स्थान पर रही और गुजरात की अनुश्री तीसरे स्थान पर रही। तो ये खिताब जीतने के बाद अब काजिया लीज मेजो भारत का प्रतिनिधित्व विश्व की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स में करेंगी।
0: आपको बता दें ग्लैमर आत्मविश्वास प्रतिभा और भारतीय संस्कृति से सजे इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देश भर से चुने हुए प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व का शानदार प्रदर्शन किया। आपको दिखा रहे हैं इस प्रतियोगिता के भव्य ग्रैंड फिनाले की खास तस्वीरें। जयपुर में आयोजित इस भव्य समारोह ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक भारत की नई पहचान को एक मंच पर प्रस्तुत भी किया।
1: कार्यक्रम में फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े विशिष्ट अतिथियों, निर्णायकों, सेलिब्रिटीज, फैशन विशेषज्ञों तथा गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी ने समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। देश भर से 52 प्रतिभाशाली प्रतिभागियों ने ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया है।
0: देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया की प्रतियोगिता यहाँ पर संपूर्ण हो चुकी है और काजिया ने खिताब अपने नाम कर लिया है। किस तरह से यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया, अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ क्लिप्स हैं जो हम आपको ग्रैंड फिनाले से दिखा रहे हैं जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था और वहाँ की भी संस्कृति, वहाँ की आधुनिकता का भी यहाँ पर एक झलक देखने को मिली है।
2: University is going to represent the nation. Do you know competing or rather delegate representing with
1: तो गुलाबी नगरी में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन और इस बार केरल की सुंदरी काजिया लीज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश जो कि दूसरे स्थान पर रही तो वहीं गुजरात की अनुश्री तीसरे स्थान पर हुई। तो ये खिताब जीतने के बाद अब काजिया लीज मेजो भारत का प्रतिनिधित्व तो विश्व की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स में करने वाली है।
3: I feel on top of the world and actually on top of the universe. This has been a dream for as long as I can remember and being able to actually wear this crown, to be able to bear the fruits of all my years of hard work, it feels so surreal but I know that destiny works wonders and I'm so grateful to God. I've been preparing for this journey for over 3 years now and Miss Universe has always been the goal and now it is time for me to showcase to the world what it means to be India and I'm ready to do everything to bring back the crown. We have a few months before me and I promise you that I will do everything in my powers to make sure that our country is proud at Miss Universe.
0: तो देखिए ग्लैमर आत्मविश्वास प्रतिभा और भारतीय संस्कृति से सजे इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देश भर से चुने हुए कॉम्पिटिटर्स पहुंचे हुए थे। अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट, अपनी पर्सनालिटी का उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आपको दिखा रहे हैं इस प्रतियोगिता के भव्य ग्रैंड फिनाले की तस्वीरें।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का। आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने में पीछे नहीं है। देखिए शालिनी कपूर की फनी इंस्टा स्टोरी।
1: चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं?
2: पागल है तू।
3: आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी तो उसको फोन नहीं करेगी, बात आई समझ में?
4: उसको फोन आया
3: तो फोन काट देने का, आई बात समझ में?
5: पढ़े हो?
6: जी दिन भर।
5: हा?
6: दस ले।
5: हा?
6: दस तक।
5: दस तक पढ़े हो?
6: हाँ।
5: केवल दस तक? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तक नहीं? ग्यारह नहीं पढ़े?
6: नहीं।
5: बारह नहीं पढ़े?
6: नहीं।
5: फिर हिसाब कैसे करते होगे जब बारह नहीं पढ़े तो?
6: कुल कुलूटर से।
5: अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक।
6: हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं।
0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
7: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान, और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: पवित्र सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार, हरिद्वार काशी से लेकर प्रयागराज तक के शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर परिसर। सूरत के गौ सेवकों की अनोखी पहल, गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई जा रही इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण की रक्षा और गौ माता से जोड़ने का दिया संदेश। दमन में मॉनसून फेस्टिवल की धूम देखने को मिली, कार्यक्रम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, निकाली गई शानदार सांस्कृतिक परेड। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर हरियाली के बीच से गुजरती वंदे भारत का ड्रोन विजुअल पोस्ट किया, लिखा नए जमाने की ट्रेन। ओडिशा में 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, जोरदार बारिश से कई नदियां उफान पर, कई जिलों में आज स्कूल बंद। केरलम की 19 साल की काजिया लिज मिजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में स्टेट क्राउन जीत कर रचा इतिहास, अब दुनिया के बड़े मंच पर भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश स्वयं ने जीता कानिशा ओपन 2026 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब, बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता घोषित हुए प्रणेश स्वयं, हंगरी में भारतीय दूतावास ने चैंपियन को बधाई दी।
14: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के अंतिम सोमवार के महिमा की और इसके पूजा विधान की, बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। शत्र रात के 8:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे देखिए आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार के बारे में। सावन का अंतिम सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी महिमा, पहले ये

समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। अब ये मौका आपको दोबारा अगले साल ही मिल पाएगा, इसीलिए इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास आप इस साल में कर सकते हैं, नहीं तो आपको वर्ष भर रुकना पड़ेगा। अंतिम सोमवार पर द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसके कारण हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। यानी कि द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु और सावन का सोमवार है भगवान शिव का, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। मेष राशि, करियर में आपके सुधार होगा, करियर में साथ में बेहतरी होती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सावन का अंतिम सोमवार है, आप किस तरह से पूजा उपासना करें सरल तरीके से ताकि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं? प्रातः काल या प्रदोष काल में पूजा करिएगा, प्रातः काल भी कर सकते हैं 12 बजे के पहले, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में पूजा कर सकते हैं। स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा, घर से नंगे पैर जाइए मंदिर तक, और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और इसके बाद पुरुष

पूर्ण साष्टांग करेंगे, महिलाएं अर्ध साष्टांग करेंगी। मंदिर में खड़े होकर या किसी किनारे बैठकर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन में केवल फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। शाम की पूजा समाप्त हो जाने के बाद केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें या जरूरत हो तो फल खा लें। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सवेरे अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप बीमार हैं, उपवास नहीं रख सकते, आपको बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो उपवास की चिंता ना करें। ऐसी स्थिति में आप केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। और इस बार के सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह या प्रदोष काल में शिव जी को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिएगा ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, हालांकि काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे छोटे छोटे। पहला प्रयोग है, अगर आप संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, सारी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और ये जल अपने घर से भर कर ले जाइए। शिव मंदिर का जल शिव जी को वहीं का जल वहीं मत चढ़ाइएगा। इसके बाद चाहें तो मंदिर में बैठ जाएं या घर चले आएं और नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। अगर आप ये सरल सा उपाय सावन के अंतिम सोमवार पर करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे, शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा, चंदन की सुगंध या

गुलाब की सुगंध भूल कर भी केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद 11 माला घर पर या मंदिर में बैठ करके ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ये काम आप सावन के अंतिम सोमवार पर कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप संतान सुख चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी मिल करके अगर एक साथ उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। शिव जी को खीर का भोग लगाएं, चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घी के 9 दीपक जलाएं और इसके पश्चात ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करिएगा। आप मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं और घर पर भी शिव जी को भोग लगाकर इस मंत्र का जप करें, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको दूर करना चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं तो क्या करेंगे? दूध दही शहद शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं और पंचामृत ले जाकर जरा सा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें और फिर 11 माला एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करिए, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। जिन लोगों को पैसे रुपए की दिक्कत जरूरत से ज्यादा है, ऐसे लोग सावन के अंतिम सोमवार पर कम से कम 3 बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। शिव जी के मंदिर में आप इत्मीनान से बैठकर
कम से कम 108 बार राम नाम का जप करिए। राम राम राम राम राम नाम का अगर शिव जी के मंदिर में आप जप करेंगे तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपके मन में एक अनजाना सा डर रहता है, अनजाना सा भय वहम रहता है, तो क्या करें? रोज सवेरे स्नान के बाद एक लोटा जल ले लें। इस जल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से 5 बार घुमा लें, वार लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 1 महीने तक करें, आपके मन की चिंता वहम डर ये बड़े आसानी से दूर हो जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, और तुम यहां आए हो मतलब पक्का है तुम्हारी अर्जी लग ही गई, काम सफल होगा। और स्वप्न में दो दिन तक बंदर दिखाई दें, समझ जाना तुम्हारे घर सेना आ चुकी है सन्यासी बाबा की। और आती है, और आती भी है, बिगड़ी बनती भी है। हां थोड़ा देर लगेगी, तुम्हें थोड़ा देर लग रही होगी, जो कपड़ा ज्यादा गंदा होता वो सफाई ज्यादा मांगता, तुम्हें थोड़ा टाइम लग रही, ज्यादा ही कर्म काले हैं तुम्हारे, थोड़ा साफ होने दो, करो परकम्मा, करो पेशी, और भटको मत, अटको। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जा। तो ये दया करते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, और कलयुग में हनुमान जी जैसा कौन देवता होगा। और देवता चित्त न धरे ही, हनुमत से ही सर्व सुख करी, इतना हम आज कह सकते हैं बहुत दावे के साथ। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया बागेश्वर धाम की दीवानी होगी। हमने जो यहां विद्याओं को महसूस किया, जो शक्तियों को महसूस

किया वो बड़ी चरम सीमा पे हमने देखा है, बड़ी उच्चता के शिखर पर हमने शक्तियों को महसूस किया अपने गुरु के सामने और गुरु की कृपा से। इतना कह सकते हैं

हमने शक्तियों को महसूस किया अपने गुरु के सामने और गुरु की कृपा से। इतना कह सकते जब पूरी दुनिया से तुम हार जाना तब चले आना, और ना भी आना तुम जहां रहना और तुम कहबर देना सन्यासी बाबा आ जाओ अब जरूरत है, देख लेना कुछ ना कुछ अनुभव तुरंत दिखाई पड़ेगा, तुम देख लेना उनकी उपस्थिति तुम्हें महसूस होगी, पर तुम कहना यहां से तभी काम हो पाएगा। पर देवता बड़ा तेज अद्भुत है, और बागेश्वर धाम का मतलब कोई बाबा नहीं, बागेश्वर धाम का मतलब बालाजी, बागेश्वर धाम का मतलब हिंदुत्व, बागेश्वर धाम का मतलब सनातन, दुनिया का पहला तीर्थ तुम्हारा बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिर नहीं बनाया जाता, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और इस साल तो 365 बेटियों का विवाह है, हर दिन में एक बेटी का विवाह कोई धाम करवाता होगा, उसका नाम बागेश्वर धाम है। भारत का पहला तीर्थ जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा, भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां अनवरत 9-10 साल से दोनों समय भंडारा चल रहा है, और भारत का पहला तीर्थ 2027 में बागेश्वर धाम होगा, जहां मंदिर पर कृपा पाओ अस्पताल में दवा पाओ। और प्रार्थना के दो ही दर, दो ही घर, दो ही द्वार है, एक मंदिर एक अस्पताल, प्रार्थनाएं दो जगह ही होती हैं, या तो मंदिर में या अस्पताल में। मंदिर में प्रार्थना कई बार झूठी होती, दिखावा की होती है, सेल्फी वाली होती, पर अस्पताल में कोई अपना व्यक्ति मृत्यु के बीच और जीवन के बीच में लड़ रहा होता तो दीवाल से जो प्रार्थना की जाती वो दिल से प्रार्थना की जाती है। भारत का पहला तीर्थ है बागेश्वर धाम। 2025 में एक ऐसी 1947 के बाद 1947 के बाद घटना हुई जो आज तक शायद किसी तीर्थ पर ना हुई होगी, वो बागेश्वर धाम पर हुई। 48 घंटे में देश के प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति महोदया दोनों दर्शन करने बागेश्वर धाम पहुंची। पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां कन्या विवाह में 9 देशों के राजदूत धाम पर मत्था टेकने आए, उनमें कोई क्रिश्चियन था, कोई मुसलमान था, कोई नास्तिक था, लेकिन वो भी तिलक लगा करके, पटकी डालकर, बालाजी की परिक्रमा लगा करके बेटियों को आशीर्वाद देने आए हुए। पागलो, यहां तुम आ गए हो, इतनी बातें सुन ली हैं, दो बातें हम तुमसे पूछना चाहते, फिर दरबार शुरू करते। सुबह तो दरबार लगाया ही था और कह भी दिया था शाम को लगाएंगे, और फिर कह देते हैं सुबह फिर लगाएंगे। 15 तारीख तक दोनों टाइम दरबार लगाया जाएगा, सुबह धूप के कारण जल्दी चालू होगा, शाम को देर से चालू होगा, पर होगा ये तय है। 15 तारीख तक हम यही हैं, रोज दरबार लगाया जाएगा। तो दो बातें हम पूछना चाहते, पहली, क्या आप दरबारों में भटकना चाहते, क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहते, क्या अपना मजाक बनवाना चाहते, क्या आप चाहते कि आपकी हंसी उड़े? पक्का सोच लिया, बदल तो ना जाओगे, जीवन भर के लिए जी का होना कच्चा पक्का, जोश में तो नहीं हाथ उठा रहे, हाथ नीचे करो पीटने के काम आएंगे। पहली शर्त, तीन शर्तें, पहली शर्त, आज से हमारे चलना पड़ना। पूछो क्यों, पूछो क्यों, हम पागल आदमी, गांव के गवार, देहाती घूस, देहाती ठस, काय को पढ़ रहे, किसको मौका है, दूसरा रास्ता देखो। और वैसे भी तुम्हें गुरुओं की कहां कमी, यूट्यूब खोलो, आजकल तो रील वाले गुरु इतने हैं, हम भी हैं उनमें एक, एक हम भी हैं, और तुम्हें कहां कमी, इंस्टाग्राम पे घुस जाओ, गुरु ही गुरु मिल जाएंगे। और वैसे भी तुम ऐसी आदतों के पक्के आदमी,

0: में हर चार पांच साल में नया गुरु चाहिए, थोड़ा अलग टाइप का। हमें ये भी तुम पे भरोसा है कि हमारे सामने कोई पंडाल लगा के बैठ जाए कि हम तीन घंटे में चमत्कार कर देंगे, यहां एक ना मिलेगा। एक वही मिलेगा जिसका टेंट होगा या जिसके बैरिकेडिंग होंगे, यही बेचारे सिक्योरिटी वाले, क्योंकि उन्हें वेतन देनी नहीं देनी हमें, तो ये भरना जाएंगे, बाकी तीन घंटे के चमत्कार में सब जाएंगे। इसलिए अब ही मौका है, पहली शर्त यही है, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर में, तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। किसके? बोलो बोलो बोलो।
1: अरे जोर से बोलो भाई।
0: दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो। भोजन में यात्रा में लहसुन प्याज की थोड़ी मोड़ी छूटे ही है, पीना खाना, खाना पीना नहीं, पीना खाना बंद कर दो, कि तुम कल से खान पान भी बंद कर, पीना खाना बंद कर। और तीसरी शर्त, गिनती ना करना, विनती करना, बालाजी के सामने जाना, कह देना बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत उड़ गई मजा, अब बहुत दुत्कारे सहली, अब बहुत जगह माथा पटक लिया, अब बहुतों पे भरोसा कर लिया, अब हंसी ना करवाओ नाथ, अब बनाओ बिगड़ी, अब पकड़ लो बाण, अब पकड़ लो हाथ, चाहो तो डुबा दो, चाहो तो पार कर दो, पर एक बात जरूर कह देना, अब हमारी हंसी नहीं तुम्हारी हंसी होगी, अब सदा सदा के लिए हम तुम्हारे हो गए, चाहो तो गले लगाना और चाहो तो दुत्कार देना, पर बाबा एक बात पक्का मानना, जीवन भर के लिए हम तुम्हारे हो गए हैं और तुम हमारे हो गए। इतना कह के उनके हो जाना, पर शर्त यह है, या तो तुम जुड़ना नहीं, और जुड़ना तुम मुड़ना नहीं, या तो तुम उनके बनो मत, और बन जाओ तो बन भी जाओ। यदि इनके बन गए तो तुम भी समझो बन गए, और तुम इनके ना बने तो तुम भी ना बने। आज के बाद या तो तुम समय दे बर्बाद करना बंद करो, काय को यहां धक्के खा रहे, काय को आ रहे, और काय को बेफिजुली में तुम इंतजार कर रहे चार चार घंटे, उठो जाओ घर। या फिर एक बात मान लो पते की, यदि तुम जिंदगी को बदलना चाहे, देखो हम तो चमत्कार ना कर पाएंगे, तुम हमारे भरोसे मत रहना कि हम चमत्कार कर देंगे या फिर ऐसे हाथ करेंगे सीधा सोना फेंक देंगे, ना हमारे चमत्कार में ना तुम पढ़ना, ना हम चमत्कार कर पाएंगे, हम ऐसे ही चमत्कार कर पा रहे होते तुमसे काहे को दान मांगते, तुमसे दान पेटी में काहे को डलवाते, खुदा ही ना कर लेते, तो हम चमत्कार ना कर पाएंगे। और हम साफ साफ बात इसलिए बोलते हैं कि हम तुम्हें लफड़ों में फंसाना नहीं चाहते, बहुत क्लियर गुरु हैं और क्लियर कट बात करेंगे, हम तुम्हें आशा में ना रखेंगे, साफ साफ बात कहेंगे, हम चमत्कार ना करवा पाएंगे, ना हम चमत्कार करते हैं। एक आदमी हमारे पास ऐसा है, आदमी नहीं है वो, एक महान आत्मा, एक ऐसा देवता है जो चमत्कार करता है, हमने देखा है, गरीबों को भी देखा यहां आते, अमीरों को भी देखा, पद वालों को भी देखा, कद वालों को भी देखा, हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, उनने सोचा नहीं और वो हुआ। बड़े बड़े लोग हमें भी कहते कि ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, हम कहते थे हमें खुद नहीं पता कब हो गया, पर हो जाता है। उनका नाम है सन्यासी बाबा, और हम तुम्हें उनसे जोड़ना चाहते, हम भी तुम्हारी तरह यहां आए थे अर्जी लगाने, विपदा लेकर, जिस गांव में हम बैठे हैं, जहां आज ये तमाशे चल रहे, इसी गांव में हमने घर घर भीख मांगी, घर घर आलू मांगे, चावल मांगे, और कई जगह मिला कई नहीं मिला, दुत्कार है सही। एक ही जोड़ी कपड़े में ढाई ढाई साल गुजारे हमने। हमारी मां जिनके तुम दर्शन करने जाते, एक ही साड़ी में एक एक साल गुजारी उन्होंने। और फट गई तो कपड़े से बांध लेती, तार से बांध लेती थी। कभी कई बार साड़ी में सुराग हो जाता तो सुई ना हुई, धागा भी ना जुड़ा, तो बेचारी तार ली और उसको ऐसे मोड़ करके बांध लेती थी। हम भी तुम्हारी तरह आए थे धक्के खाते हुए, हम भी तुम्हारी तरह रोते हुए आए थे यहां अर्जी लेकर। पर हमें क्या पता था अर्जी लेकर आए हैं अर्जी लगाने वाले बन जाएंगे, पर बन गए। आदमी हम साफ हैं, बात बहुत मुंह पे तुम्हारे करेंगे। हम इतना कह सकते इनके घर देर है अंधेर नहीं है। हमने बहुतों को देखा, असंभव को भी संभव किया, ऐसी ऐसी बिगड़ी बनाई, ऐसी ऐसी इन्होंने लाज रखी, लोग यहां रोते हुए आए हंसते हुए गए। आज ही दिन में आए थे, 52 साल उम्र, डॉक्टर ने मना कर दी कि कभी ना बेटा होगा। अचानक हमारे मुंह से कभी निकल गया होगा 4 साल पहले, तो जाओ तुम्हारे घर किलकारी गूंजेगी। आज वो बेटा को लेकर आए थे दोपहर में, नामकरण करवा गए और भंडारा करवा गए, ऊपर से एक बेटी का कन्यादान का खर्चा दे गए। ऐसी दया ऐसी कृपा। पिछली बार बैठे थे जब हम जा रहे थे यही माइक पे, वो बता के गया, डॉक्टर ने कह दिया किडनी दोनों गई, डायलिसिस चल रहा है, ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं। पता नहीं उनने क्या नाटक किया, अब जर जांच में ही नहीं आ रहा है कि किडनी खराब थी। अब वो हमसे पूछ रहे हैं, हमने कहा हम क्या बताएं, हम तुमसे ही पूछे, तुम बताओ। हो जाता है अपने आप हो जाता है, वो लीला यहां हम नहीं करते। करने वाला है, उनके पास 46,000 सेना 24 घंटे घूमती है। आज भी वो शरीर में नहीं है लेकिन 24 घंटे वो सुनते हैं। चाहे जो तुम जहां सोच लो, ऐसी विद्या हमने देखी नहीं। भारतीयों पे तो विद्या चलती देखी, हम तो विदेश जाते हैं वहां भी ऐसे ऐसे नाटक कर देते। अभी जब गए हम जहां, WWE का पहलवान आया मिलने, भारी बॉडी बिल्डर, भारी शरीर लिए आया, और मिला था ऑस्ट्रेलिया में हमें। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही गए तो जिसके यहां वो काम करता था उसने बताया कि एक भारत के गुरु आए हैं, बड़े ऐसे ऐसे हैं, तो वो चेक करने आया था। हमने उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, बोला भी नहीं, फिर भी पगले आ गए। वो बता रहा था कि आप सपने में आ रहे तब से। हमने कहा भगवान कसम हम रूम से कहीं बाहर ही नहीं जाते, तुम्हारे सपने में क्या जाएंगे। लेकिन वो पगले आ गया, रोज कोई ना कोई तमाशा हुआ। अभी बाली में 8 लाख का खर्चा करके आया, 3-4 लाख का तो होटल खर्चा किया, टिकट खर्चा की, 3 दिन तक बैठा रहा, ध्यान करता रहा, जो राम को नहीं जानता था अब वो किताबों में पढ़ रहा, यूट्यूबों पर सुन रहा। ये सब प्रभाव सब चमत्कार हमारे नहीं है, सन्यासी बाबा और बालाजी के हैं। हमारा कोई भी चमत्कार नहीं है, हम तो बहुत अच्छे आदमी थे, हमें जबरदस्ती यहां भेजा गया, और हमारा 1% इसमें दोष नहीं है। हमें ना दरबार लगाना था ना चमत्कार करना था, हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा। हम नहीं तो बहुत आलसी आदमी है, नींद हमें बहुत पसंद है, वो कभी पूरी होती नहीं। और हमारी तो ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत, भूख भी गई नींद भी गई परिवार भी गया, जब से घर से निकले 1 रात ना रुक पाए घर। हमारी भी मन होते कभी क्रिकेट खेले, कभी बाहर बैठे, बाहर बैठो नहीं के तमाशे शुरू। समोसा हमने खा लिया था एक बार, देश की न्यूज बन गई थी, बाबा बागेश्वर समोसा खाते पकड़े। तो हम चैनल वालों को बोले भाई इसमें पकड़ने वाली कोई बात है यार, हाँ अब समोसा ना कोई आदमी खाए, समोसे ही तो खा रहे थे, किसी का भेजा थोड़ी खा रहे थे, देश में तो लोग भेजा खा रहे, हम तो समोसा खा लें तो आफत है, बड़ी मुसीबत है भैया, बड़ी आफतें हैं, पर भगवान चला रहे। तुम देखो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतने लोग लगे पीछे गिराने के, और तुम विचार करो, इतने लोग लगे अब तक कब के ना निपट गए होते, इतने विरोधी लगे कब के ना निपट गए होगे, क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ, चैलेंज हुए, परीक्षाएं हुई, जांचें बैठी हम पे, स्पाई कैमरे लगे, लफड़े हुए, अरे हमले हुए, फिर भी बेचारे आज भी वो भौंक के भौंका ही रहे और हम ज्यों के त्यों चल रहे। इससे समझ जाना चाहिए हम नहीं कर रहे, हमसे कोई करवा रहा है, और जो करवा रहा है, जो हमारे पीछे खड़ा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। अब वो बालाजी करवा रहे हम नहीं करवा रहे। और हिंदुओं एक बात तो तुम पक्की मानना, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, और हमें लगता है ये दरबार लग ही इसीलिए रहा हलीउल्लाह वालों की ठटरी बारने की, वरना चादर फादर के चक्कर में इतने हिंदू बिगड़ गए थे, हमारे अगल बगल ही चादर वालों की यहां लाइन लगती थी, आजकल बेचारों की दुकानें बंद हो गई, मक्खियां मार रहे हैं, रोज हमारे लिए वीडियो डाल रहे हैं, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, बाबा ये करता, बाबा वो करता, पर हम भी कम ढीठ नहीं है उनसे, हम भी कह देते हैं हम जैसे हैं ऐसे हैं, तुम्हें जो लगे सो करो। अब वो इसलिए विरोध करते ताकि सनातन की आवाज को नीचे झुकाया जाए, पर एक बात तुम गारंटी मानना, हम मर जाएंगे हिंदुओं पर तुम्हारी नाक ना नीचे होने देंगे, प्राण चले जाएं पर ऐसा तो ना कुछ करेंगे कि तुम्हें नीचे देखना पड़े, हां जिएंगे जब तक ऐसे ही जिएंगे, हम अपने आप को बदल ना पाएंगे, हम आए हैं हिंदुओं के लिए, हमें भेजा है सनातन के लिए, जब तक ये काम हम पूरा ना कर लेंगे तब तक चुप ना बैठेंगे। हमारे आराध्य हनुमान जी भी तो यही कहते, राम काज कीन्हे बिन मोही कहां विश्राम, उनको भी विश्राम नहीं, हम भी तब तक आराम ना करेंगे। मेरे पागलों, हम दरबार इसलिए नहीं लगाते कि तुम्हें प्रभावित करें, पैसा तो तुमसे लेते ही नहीं, दे दो तो मना भी नहीं, बहुत साफ आवत है, दे दोगे तो कर्जा हमें कम लेना पड़ेगा, दे दोगे तो बेटी का विवाह हो जाएगा, तुम एक आध ईंट अपनी हॉस्पिटल में लगा दोगे, हमारा अस्पताल जल्दी बन जाएगा, तुम कुछ दे दोगे तो वहां ईंट लगेगी, किसी के जीवन बचेगा, उसका पुण्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, किसी बेटी का घर बसेगा, वो तुमको आशीर्वाद देगी, किसी भंडारे में किसी के मुंह में निवाला जाएगा, तुम्हारा भला होगा, और नहीं दो तो अपन को क्या, 365 कर रहे, नहीं आएगा तो अपन 65 करेंगे, कौन सा हमने कर्जा ले रखा कि ठेका ले रखा है, और हम ही भर को देश थोड़ी संभालना, कुछ तुम संभाल लो भैया, तो जितना होगा भगवान की माया,

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए रामबाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
7: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
17: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है, ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
18: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: पवित्र सावन महीने का आज आखिरी सोमवार, हरिद्वार काशी से लेकर प्रयागराज तक के शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर परिसर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलोत्सव की धूम, मेवा ड्राई फ्रूट से किया गया बाबा का श्रृंगार, झांकियों का भी प्रदर्शन। सूरत के गौसेवकों की अनोखी पहल, गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई जा रही इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण की रक्षा और गोमाता से जोड़ने का दिया संदेश। दमन में मॉनसून फेस्टिवल की धूम, कार्यक्रम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, निकाली गई शानदार सांस्कृतिक परेड। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर हरियाली के बीच से गुजरती वंदे भारत का ड्रोन विजुअल किया पोस्ट, लिखा नए जमाने की ट्रेन। छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, एमपी में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 से 3 दिनों तक कई राज्यों में बारिश की संभावना, अंडमान और निकोबार में आंधी तूफान के आसार। केरलम की 19 साल की काजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में स्टेट क्राउन जीतकर रचा इतिहास, अब दुनिया के बड़े मंच पर भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश शेम ने जीता कानिशा ओपन 2026 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब, बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता घोषित हुए प्रणेश शेम, हंगरी में भारतीय दूतावास ने चैंपियन को दी बधाई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: पवित्र सावन का अंतिम सोमवार आज देवघर से लेकर काशी तक हर महादेव की हो रही है जयकारे। काशी में महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार, सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों ने लगाए बाबा के नाम के जयकारे, माहौल में घुली दिव्यता। गाजियाबाद के श्री दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, शिव भक्तों ने किया महादेव का अभिषेक। सावन के आखिरी सोमवार पर मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में उमड़े लाखों भक्त, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। बाबा बाबुलनाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, हर हर महादेव के जयकारों के बीच दर्शन पूजन जारी। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़े कावड़िए, बाबा का पवित्र नदियों के जल से कर रहे हैं जलाभिषेक। कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का समंदर, कतारों में लगातार भक्त कर रहे हैं महादेव के दर्शन। समस्तीपुर में अंतिम सोमवारी पर प्रसिद्ध धानेश्वर स्थान मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारों के साथ किया पूजा पाठ। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतार, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता, श्रद्धालुओं ने बेलपत्र गंगा जल से किया भोलेनाथ की पूजा। गुजरात में दूसरे सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का किया दूध अभिषेक। लखनऊ में सावन के आखिरी सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। आखिरी सोमवार में भक्तों ने किया विधि विधान से पूजा। सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल की भस्म आरती में उमड़ी भक्तों की भीड़। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का हुआ पंचामृत अभिषेक। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। विधि विधान से हो रही है महादेव की पूजा। जयपुर में सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने तड़केश्वर नाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। हरिद्वार में कनखल महादेव मंदिर में पूजा पाठ का दौर जारी। भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। रोहतास में पायलट बाबा आश्रम स्थित सोमनाथ मंदिर में ओघेरेश्वर महादेव के शिवलिंग की हुई विशेष पूजा अर्चना। साल में दो ही बार खुलते हैं मंदिर के द्वार। एमपी के छतरपुर के जटाशंकर धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़। देर रात से लगी लंबी कतार। सावन के अंतिम सोमवार पर तकरीबन 2.5 लाख शिव भक्तों की बाबा का रुद्र अभिषेक करने की संभावना। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा परिसर। छतरपुर के जटाशंकर धाम में पूरी होती है हर मनोकामना। हर कई सालों से देश के कोने कोने से यहां पर आते हैं शिव भक्त। बोलबम के जयघोष से गूंजा नागेश्वरनाथ का मंदिर परिसर। शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बाबा वैद्यनाथ की शाही सवारी में आने वाले 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों के लिए भंडारे की चल रही है तैयारी। 80 क्विंटल कद्दू की सब्जी, 65 क्विंटल आटे की पूड़ियां और 40 क्विंटल मिठाई होगी तैयार। भक्तों के लिए खाना बनाने में 150 से ज्यादा लोग दिन रात जुटे हुए हैं। करीब 3 दिन में इतना बड़ा भोजन किया जा रहा है तैयार। आज निकलेगी बाबा वैद्यनाथ की शाही सवारी। सवारी में आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त भजन मंडलियों और झंडों के साथ पहुंचेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों को पंडाल में बैठाकर व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा भोजन। भक्तों की एंट्री के लिए की गई है बैरिगेटिंग और पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफ पंडाल। केले के पत्तों पर रखी जा रही है पूड़ियां। आगर मालवा के लोग मिलकर भक्तों को परोसेंगे भोजन। कई साल पुरानी परंपरा। केरलम की 19 साल की काजिया लिज मेजो को ने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज। अब काजिया नवंबर में प्यूर्टो रिको में होने वाले मिस यूनिवर्स में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। जयपुर में हुए फिनाले में कुल 52 फाइनलिस्ट ने खिताब के लिए मुकाबला किया। काजिया के 7 टॉप 5 में वैष्णवी गणेश, अनुश्री, तेजस्विनी श्रीवास्तव और अनुभा विशिष्ट पहुंची। जजों की टीम में सुष्मिता सेन, उर्वशी, सेलेना जेटली, रिया सिंघा और जैसे नाम रहे शामिल। पैनल में मिस यूनिवर्स विजेता से लेकर ब्यूटी एक्सपर्ट तक कई बड़े नाम आए नजर। फिनाले में जज बनी उर्वशी। तिरंगे से प्रेरित खूबसूरत गाउन में नजर आई। खूब चर्चा में रहा उनका लुक। काजिया इससे पहले मिस यूनिवर्स केरल 2026 जीत चुकी थी। कानून की पढ़ाई कर रही काजिया भारत की उम्मीद बनकर ग्लोबल मिस यूनिवर्स मंच पर उतरेंगी। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर वंदे भारत ट्रेन का ड्रोन विजुअल किया पोस्ट। जंगल के बीच लकीर से गुजरती ट्रेन के विजुअल को लोग कर रहे हैं काफी पसंद। रेल मंत्री ने लिखा, मेक इन इंडिया के नए ट्रेन जमाने में ट्रेन। दमन में मॉनसून फेस्टिवल का भव्य आगाज। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी मुख्य अतिथि। फेस्टिवल में सांस्कृतिक परेड, लाइव बैंड और म्यूजिकल नाइट्स बनी मुख्य आकर्षण। कई मशहूर हस्तियां भी बनेंगी आयोजन का हिस्सा। दमन के मॉनसून फेस्टिवल 2026 में मुखौटे पहनकर पहुंचे लोग। भांगड़ा और ढोल ने भी जमाया। शतरंज की दुनिया से भारत के लिए शानदार खबर। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश शेम ने जीता कानिशा ओपन शतरंज टूर्नामेंट। 9वें रोमांचक दौर के बाद प्रणेश ने दर्ज की जीत। बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर बने विजेता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने नए चैंपियन को दी बधाई। एक्स पर लिखा, इंडियन टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर चमकते हुए देखकर हो रहा है बहुत गर्व। रविंद्र जडेजा ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर कदम रखते ही रचा इतिहास। डब्ल्यूटीसी के इतिहास में 50 मैच खेलने वाले पहले एशियाई और भारतीय क्रिकेटर बने। रविंद्र जडेजा ने साल 2012 में किया था अपना टेस्ट डेब्यू। अब तक खेले गए अपने 50 मैच में उन्होंने 2675 रन बनाए और 160 विकेट चटकाए। उत्तरकाशी के मुखवा गांव में प्राकृतिक सामग्री से बन रही हैं अनोखी राखियां। भोजपत्र, केदारपाती और ब्रह्म कमल का किया जा रहा है इस्तेमाल। मुखवा की महिलाओं ने राखी से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। स्थानीय संस्कृति के साथ स्वरोजगार को भी मिल रहा है बढ़ावा। मुखवा की प्राकृतिक राखियों को बाजार में उतारने की तैयारी। प्लास्टिक राखियों के बीच बना रही है अलग पहचान। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में तेंदुए के खतरे से निपटने की तैयारी। वन्य जीवों को दूर रखने के लिए लगाया गया अलार्म सिस्टम। पुत्रदा एकादशी के मौके पर सोमनाथ महादेव का किया गया खास हरिहर चंदन श्रृंगार। चंदन से सजे भोलेनाथ के दिव्य रूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है।

में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब
मिलाकर मैं

0: मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो, बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के अंतिम सोमवार के दिन आज दिल्ली एनसीआर में बहार मौसम हुआ खुशगवार, तेज आंधी के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। पवित्र सावन महीने का आखिरी सोमवार पर शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा मंदिर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलोत्सव की धूम, ड्राई फ्रूट से किया गया बाबा का श्रृंगार, झांकियों का भी प्रदर्शन। दमन में मॉनसून फेस्टिवल की धूम, कार्यक्रम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, निकाली गई शानदार सांस्कृतिक परेड। तमिलनाडु के सीएम विजय ने खोला तोहफों का पिटारा, महिलाओं को पोंगल 2027 से हर साल मिलेंगे 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मिलेगी फ्री में सफर की सुविधा। केरलम की काजिया लिज मिजू बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में क्राउन जीतकर रचा इतिहास, अब मिस यूनिवर्स के खिताब पर निगाहें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, भगवान शिव की कृपा पाने की विशेष तिथि। इसलिए सुबह से ही देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। हर ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन अवसर माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत और पूजन करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले है प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की, जहां पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास का इलाका हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जयकारों से गूंजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर भी देखिए, श्रद्धालु की जमकर भीड़ है। तड़के होने वाली भस्म आरती के लिए रात से ही मंदिर के बाहर कतार लगना शुरू हो गई है। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खुले, भस्म आरती की शुरुआत हुई। दूध, दही, घी, शहद और फलों से रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया गया। सावन की अंतिम सोमवारी होने के कारण सवेरे से ही देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु की अपार भीड़ जुटी हुई है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन में सावन की चौथी सोमवारी को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। जानकारों के अनुसार आज के दिन पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के पावन महीने के अंतिम सोमवार को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के मंगला आरती के पहले ही उनका श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद बाबा विश्वनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगला आरती की गई। कांवड़ियों और शिव भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, हरिद्वार के दशवेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा। भोले के भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें भी बेहद भव्य है। यहाँ पर भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए शिवाजी का जलाभिषेक कर रहे हैं। गोरखपुर में झारखंडी महादेव का अभिषेक करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो वहीं कानपुर में नागेश्वर महादेव की पूरी श्रद्धा से भक्ति की जा रही है। वहीं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर के शिव भक्त तड़के सुबह से जलाभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें भी बेहद भव्य है। यहां पर जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़े। आखिरी सोमवार पर फतेहपुर शेखावटी के ऐतिहासिक पूरा महादेव मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, शिव जी को प्रिय भी है, इसलिए आपको दिखाते हैं कि भगवान शिव पर आधारित खास पेशकश सृष्टि के श्वास्वत साक्षी शिव।

महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन का आखिरी सोमवार तो और ज्यादा महत्व होता है। दरअसल ऐसे में अगर भगवान शिव की बात हो तो वो इस संसार के आदि देव हैं। अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं है। यही वजह है कि सनातन के ग्रंथ में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से, जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी, जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्यम के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है, और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सदगुरु है। कबीर के पद का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, और एक गुपुत मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरे। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह्य तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़रदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या अवतार की कोई भी कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है, स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्वान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता भी बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मी के अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो सर्जन पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र सृजन पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणा मूर्ति का। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित है। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्तवत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदि योगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदि योगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के अंतिम सोमवार के दिन आज दिल्ली NCR में बाहर मौसम हुआ खुशगवार, तेज आंधी के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। पवित्र सावन के महीने का आखिरी सोमवार पर शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर। बिहार के हाजीपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर में की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना, बम भोले के लगाए जयकारे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलनोत्सव की धूम देखने को मिली, ड्राई फ्रूट से किया गया बाबा का श्रृंगार, झांकियों का भी प्रदर्शन। दमन में मॉनसून फेस्टिवल की धूम, कार्यक्रम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, निकाली गई शानदार सांस्कृतिक परेड। तमिलनाडु के सीएम विजय ने खोला तोहफों का पिटारा, महिलाओं को पोंगल 2027 से हर साल मिलेंगे 3 LPG सिलेंडर मुफ्त, ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मिलेगी फ्री में सफर की सुविधा। केरलम की केजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में क्राउन जीतकर रचा इतिहास, अब मिस यूनिवर्स के खिताब पर निगाहें।

0: देखिए कहते हैं आदि है अंत है, शिव ही अनंत है, समय है काल है, शिव ही महाकाल है। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो आज का दिन बेहद खास है। आज शिव को प्रिय सावन का आखिरी सोमवार है, यानी महादेव की कृपा पाने का एक और विशेष दिन है। आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए, आज के दिन का महत्व क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ खास मेहमान अरविंद जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: चलिए अरविंद जी के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि आज के दिन की विशेष महिमा क्या है। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि सावन का सोमवार अंतिम सोमवार है। सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये दिन भगवान की साधना आराधना को समर्पित है। देशभर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी। शिवालयों की तस्वीरें भी लगातार आपको सुबह से हम दिखा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु निकले हैं अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्ति की अविरल धारा आपको नजर आएगी। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर गोरखपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, जयपुर की ये तमाम तस्वीरें आपके सामने।
1: देखिए तमाम शिव मंदिरों में भोलेनाथ की जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़ रहे हैं। हर रोज श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। और खास बात यह भी है कि इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रदोष काल का अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग बन रहा है। सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन का सोमवार का व्रत पूजन करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो देश भर के शिवालयों में तो आस्था का सैलाब नजर आ ही रहा है। भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धा और भक्ति की ऐसी ही उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है।
0: और देखिए सुबह से ही ऐसी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बाबा के इन धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ धाम हो या वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम हो, तमाम ज्योतिर्लिंगों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक किया, बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया और सुख समृद्धि की उन्होंने कामना भी की।
1: तो देखिए देश भर के शिवालयों से तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से सनातन के इस महापर्व की तरह आज के अंतिम सोमवार को, सावन के इस सोमवार को मनाया जा रहा है, क्या कुछ खासियत है, किस तरह से पूजा करें, क्या कुछ विधान है, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम चीजों के बारे में आज पंडित जी से हम जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। हर हर महादेव।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अब तक तो लोग जिन्होंने पूजा की है उन्होंने की है, इसके बाद पूरा दिन, क्योंकि आज सोमवार है, बहुत खास पर्व की तरह मनाया जा रहा है, किस तरह से पूजा करें और शुभ मुहूर्त क्या है?
2: जी सबसे पहले भोलेनाथ जी का जो है ध्यान करते हैं, उसके बाद मैं आपको शुभ मुहूर्त से अवगत कराता हूँ। अशीत

0: भवति। अर्थात शारदा माँ बागम्बनी सरस्वती यदि आजीवन उनके गुणों का व्याख्यान लिखें तो भगवान शिव के गुणों का व्याख्यान नहीं लिख सकती हैं। आज सोमवार है और श्रावण का अंतिम सोमवार है। दिन पूरा ही शुभमयी है, लेकिन संध्याकालीन टाइम पे जो भगवान शिव का विशेष मुहूर्त होता है वो प्रदोषकालीन वेला का समय होता है। और आज आप मान लीजिए कुछ चीज़ें आपने पूरे महीने में नहीं कर पाई हैं, जल नहीं चढ़ा पाए हैं, या कोई चीज़ आपको जो है करनी थी वो नहीं हो पाया, तो आज अंतिम सोमवार है और आप संध्याकालीन भी नहा धुल करके भगवान शिव को जल अर्पित कर देते हैं तो वह सभी पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज विशेष योग भी है और प्रदोषकालीन बेला भगवान शिव की विशिष्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपने रुद्राक्ष नहीं धारण किया है तो आज के दिन आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या मान लीजिए आपने जो है किसी भी तरह से व्रत नहीं रख पाए हैं, किसी भी तरह से कुछ नहीं कर पाए हैं, तो संध्याकालीन जा करके भगवान शिव को जल अर्पित करके उनकी आरती कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको पूरे श्रावण का फल प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप किसी भी तरह की हारी बीमारी से ग्रसित हैं और आपको किसी भी तरह से जो है आराम दवाइयों से नहीं लग रहा है तो कुशोदक जल, उस जल में थोड़ा कुसा डाल लेंगे और फिर भगवान को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो वेंटिलेटर में भी लेटे हुए हैं, कोई दवा जो काम नहीं कर रही है, उसमें भी भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन यदि कोई दे सकता है तो भगवान शिव ही दे सकते हैं। श्मशान में भी आप जब जाते हैं ना तो कहते हैं ना, चिता भस्मा लेपो गरल मशनम देख पट धरो जटाधारी कंठे भुजगहारी पशुपति। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब प्राणी को सभी त्याग जाते हैं उस वक्त भगवान शिव उसको अपने रोम रोम में विलीन कर लेते हैं। श्मशान घाट में आप भगवान शिव की तस्वीर को देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भीषण बीमारी से ग्रसित है वह भगवान शिव की आराधना करे, निश्चित रूप से उसको जो है निरोग और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। जिन महिलाओं के संतान की कोई दिक्कत है वो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें या संध्याकालीन टाइम पे दूध चढ़ाएं और उसमें जो है भगवान शिव से संतान की कामना करें। जिन दंपति की
1: बिल्कुल, चलिए अरविंद जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस से हैं रोशन जायसवाल और मुंबई से हैं हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे। मुंबई का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, जरा दिखाइए सुबह से कैसी रौनक है यहां पर।
2: देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र यानी कि मराठी मानुस का आज दूसरा सोमवार है, अभी दो सोमवार उनके और बचे हैं और आने वाला जो 13 सितंबर है तब तक श्रावण महाराष्ट्र और मुंबई में मनाया जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में जो टीले पर मौजूद है और कहीं ना कहीं मुंबई महाराष्ट्र देश भर की मान्यता है, लोग तमाम आते हैं यहां बाबुलनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, घंटों कतार में खड़े होने के बाद ही बाबा तक पहुंचा जाता है, जिसकी तस्वीरें हमारे कैमरे के माध्यम से आप देखें। राजू रेवेनकर वीडियो जर्नलिस्ट है, जिनसे कहना चाहेंगे थोड़ा सा श्रद्धालुओं की तस्वीरें दिखाएं और कोशिश करें कि मंदिर का जो प्रांगण है वहां तक भी पहुंचे। बाबा के ठीक सामने नंदी जी विराजमान हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं और खास तौर से ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं कि उनके कानों में कही गई हुई बातें सीधे शिव भगवान तक पहुंचती हैं और मान ली जाती हैं। ये देखिए तमाम लोग इस समय सिर्फ शिव भगवान की एक झलक देखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि 300 साल पुराना इतिहास रहा है बाबुलनाथ मंदिर का, पौराणिक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं और बकायदा शिवलिंग पर लोग जाकर के जलाभिषेक भी कर सकते हैं। कलश का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, जल भी उसमें उसकी भी व्यवस्था है, साथ ही साथ दूध की भी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही है। बकायदा लोग यहाँ पर आकर न केवल जलाभिषेक कराते हैं बल्कि यहाँ मौजूद जितने भी महाजन हैं महंत हैं कुछ इस तरीके से अभिषेक भी कराया जा सकता है। देखिए मंदिर का प्रांगण एक बहुत बड़े सीमा पर आधारित है, बकायदा लोग यहाँ पर शिव भगवान के दर्शन करते हैं और कुछ इस तरीके का यहाँ माहौल होता है। देखिए बकायदा यहाँ पर मिट्टी का कलश लेकर के और उसमें बेल डाल करके जल डाल करके अब आप जो है दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, अक्सर हमेशा आपका यहाँ आना जाना होता है, क्या कहेंगे?
3: बचपन से आ रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, साक्षात शंभू खड़े बस।
2: हर सोमवार आते हैं सिर्फ श्रावण?
3: नहीं रोज,
2: प्रतिदिन प्रतिदिन,
3: यस बोरीवली से।
2: बोरीवली से? अच्छा, आज करीब एक डेढ़ घंटा लगता है।
3: हाँ बस,
2: इतनी मान्यता है, इतनी मानते हैं
3: सरस्त है, कष्ट हरो दुख हरो काल हरो।
2: ओके, तो इस तरीके से देखिए रोज आते हैं, न केवल श्रावण बल्कि सोमवार भी। यहाँ भी देखिए किस तरीके से भक्ति पूजा का, अच्छा आप जो है मैं देख रहा हूँ लगातार भक्ति में पूरी तरह से डूब गए हैं, क्या कहेंगे स्पेशल श्रावण और सोमवार को?
4: सबसे बड़ी बात है कि पवित्र पुण्य श्रावण मास की आप सभी को शुभकामनाएं, और देवों के देव महादेव, महादेव जी की नगरी में आए हैं तो बस पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास से सब दर्शन कीजिए, महादेव सबका कल्याण करे, यही मेरी भावना है, यही
2: आशा। क्या कहना चाहेंगे साहब, शिव भगवान की आरती और संध्या?
5: महादेव महादेव, बाबूलनाथ की परम सबके ऊपर कृपा है, अपने यहाँ आने के बोलने के अनुसार जरूर पड़ता है, दादा सब समझ जाता है, सबके रक्षा करता है, हर हर महादेव, जय बाबूलाल,
2: महादेव हर महादेव। तो देखा आपने जिस तरीके से लोग यहाँ पर बकायदा पूजा करते हैं, और ये देखिए ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है, यहाँ पर जितने भी महंत हैं महाराज हैं वो अपने जजमान को लेकर के बैठते हैं और यहाँ पर उनका अभिषेक किया जाता है। लेकिन तस्वीरें सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो रही, ये दूसरी भी कतार देखें, घंटों से लोग किस कदर और किस तरीके से खड़े हुए हैं। हालांकि इंद्र देवता भी आज मुंबई में सुबह से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा बरस रहे हैं, बावजूद इसके लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और भले ही घंटों कतारों में जरूर यहाँ पे इनको खड़ा रहना।
1: अच्छी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच बाकी शिवालयों की तस्वीरें भी जरा एक बार जीएनटी के दर्शकों को दिखा देते हैं। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं ऐसी मान्यता है, और 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। देखिए तस्वीरें सुबह से आपको लगातार दिखा रहे हैं, यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है लेकिन सावन के महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। आज सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर सोमनाथ तस्वीरें इस मंदिर की आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा यहाँ पर आपको नजर आएगी। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि के श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए देश भर के अलग अलग तस्वीरें तो लगातार आपको दिखा रहे हैं हम जीएनटी पर, लेकिन ये तस्वीर भी देख लीजिए। सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था और भक्ति का अभूतपूर्व समंदर उमड़ पड़ा। आज तड़के दिव्य मंगला आरती के साथ बाबा विश्वनाथ के विशेष महाअभिषेक और जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरी काशी नगरी को शिवमय बना दिया। इस पावन दिन पर बाबा विश्वनाथ का गंगा जल, दूध और पंचामृत से विशेष महाअभिषेक किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों और शिवभक्तों का स्वागत गुलाब के फूलों की पंखड़ियों की वर्षा के साथ हुआ। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर, ड्रोन निगरानी यहां पर की जा रही है, लाखों भक्त कतार

0: तरफ केवल शिव भक्ति के रंग आपको नजर आएंगे, हर तरफ हर हर महादेव और बम भोले की गूंज भी आपको सुबह से सुनाई दे रही है।
1: सावन का पावन माह हो और अंतिम सोमवार, ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनके जलाभिषेक करने से भक्त कैसे अछूते रह सकते हैं। यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। बीती रात से ही भक्तों के आने का सिलसिला, कतार में लगने का सिलसिला जारी हो गया था। मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया और कांवड़िया, आम भक्त, डाक बम, तमाम इन रूपों में भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। माना जाता है कि पूरे सावन माह में जो भक्त शिव भक्त दर्शन नहीं कर पाते हैं बाबा का, उनका जलाभिषेक नहीं कर पाते, वे आज सावन के इस अंतिम दिन बाबा के दर्शन कर लेते हैं और जलाभिषेक कर लेते हैं तो पूरे सावन का पुण्य उनको मिलता है। यही कारण है कि आज शिव भक्त न केवल बनारस बल्कि प्रयागराज से भी जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जी लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। तो रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन के सोमवार के दिन बाबा के दर्शनों का सौभाग्य बहुत बिरलों को मिल पाता है और हम दोनों आए और दर्शन हो गए, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं प्रभु की कृपा के। बाबा के का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। श्रावण का आखिरी सोमवार था, उस दिन हम लोग पहुंच पाए और दर्शन हुए, तो इसके लिए हम लोगों को बड़ा अलौकिक अनुभव है।
3: दर्शन होकर बाहर निकले हैं, ये अविश्वसनीय है हम लोग के जीवन में। बाबा वैद्यनाथ धाम का हम लोग दर्शन कर चुके हैं और जाके रामेश्वरम में दर्शन कर चुके हैं वगैरह वगैरह, बट यहाँ का जो क्या बोलते हैं सबसे अच्छा माना जाता है वो दर्शन हुआ और इतने अच्छे से हुआ, इतने कम समय की प्लानिंग में हुआ, इसका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम।
4: यहाँ पे बस हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज दर्शन कर पाए आज के ऑस्पिशियस दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके।
5: ये चतुर्थ सोमवार है, बाबा का शुभ दिन है जो पवित्र माना जाता है सबसे, और हर बार हम लोग सोमवार को ही आते हैं।
0: और चलिए अब आपको संगम की नगरी प्रयागराज लिए चलते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाले चौथे और अंतिम सोमवार के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मन कामेश्वर मंदिर में स्वयंभू विराजमान भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु गंगा जल, शहद और दूध से जलाभिषेक करने और भगवान भोले का कमल पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और मदार अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भगवान भोले शंकर से पूरे देश में सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मन कामेश्वर मंदिर में पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, तस्वीरें देखिए।
1: सावन का महीना चल रहा है और सावन का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। हम इस वक्त प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में है जहाँ पर भोलेनाथ श्रद्धालुओं के मन की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी करते हैं और कहा जाता है कि श्रद्धालु यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाएं तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं और यहाँ पर उनकी जो मनोकामनाएं हैं श्रद्धालुओं की वो भगवान पूरी करते हैं। ये गर्भगृह है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी हुई है और सभी एक लोटा जल चढ़ाकर श्रद्धालु भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ पर भक्त हैं लगातार भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये बताइए, सेवा कर रहे हैं, क्या कहें?
6: बस बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा हो जाए, बस बाबा भोलेनाथ खुश हो जाए। बस
1: सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी,
6: बस सुबह 4 बजे में बाबा की कृपा है हो रही है, बाबा की जल चढ़ रहा है। आप लोग बाबा की बस यही कृपा है, सबको बुलाते रहे, दर्शन देते रहे, यही भक्त का निवेदन है बाबा से।
1: बिल्कुल, यहाँ पर भक्त हैं, सेवा कर रहे हैं और ये देखिए लंबी लाइनें हैं, यहाँ पर सभी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर प्रसन्न करने की जो कोशिश है वो चल रही है। हाथों में प्रसाद है, बेलपत्र है और यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं।
7: हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं, सभी महिलाएं यहाँ पर है, श्रद्धालु हैं। ये बताइए, यहाँ पर आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है, यहाँ पर आप आई हैं, क्या कहेंगे, क्या कामना है?
8: भोलेनाथ से यही कामना है कि सबको सुख समृद्धि दे, सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, बस उनकी कृपा ही मिल जाए, यही सबसे बड़ी वो है।
7: अच्छा, एक लोटा जल से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं?
8: एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, आप ना भी चढ़ाइए, बस दर्शन आप कर लीजिए, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं।
7: कामेश्वर मंदिर नाम है, मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है?
8: सारी मनोकामनाएं पूरी थी, आप जो जिस इच्छा से आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी।
7: बिल्कुल, यहाँ पर आप भी आई है, भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें?
9: एक लोटा जल चढ़ा के भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं।
7: क्या कामना करते हैं?
9: कोई कामना नहीं, सब भोले बाबा सब पूरा कर देते हैं। अच्छा,
7: बिल्कुल। और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे, आप यहाँ पर आई हैं, हाथों में प्रसाद लिए हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, क्या कहेंगे?
9: बस हर हर महादेव, बस हाँ, और क्या, बस बहुत अच्छे बाबा, हमारी बहुत मनोकामना पूरी हुई, यहाँ को हमको आते हुए 20 साल हो गए हैं, 20 साल से हमारा इतना ज्यादा मतलब वो है कि हमको बहुत ज्यादा ही कैसा पता है।
7: आज सावन का आखिरी सोमवार है,
9: बस हम बाबा से यही कहेंगे कि बस सबकी मनोकामना पूरी करे, जिनकी जिनकी जो चाहत है बस।
7: यहाँ पर भक्त हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हुई ऐसी कामना है, और प्रयागराज में आज सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ सुबह से लगी हुई है, और यहाँ पर सभी भक्त भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज स्टूडियो।
0: चलिए, प्रयागराज की तस्वीरें तो आपने देख ली, सीधे आपको बनारस लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल मौजूद हैं। आज के दिन की कैसी रौनक है वो दिखाने के लिए रोशन कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा दिखाइए पीछे की रौनक।
10: जी देखिए, ये बनारस का दशाश्वमेध घाट है
0: जी।
10: और दशाश्वमेध घाट पर आज पैर रखने तक की भी जगह नहीं है, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है, और देख सकते हैं कि चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। थोड़ी मुश्किल जरूर आती है, क्योंकि ये बाढ़ का ये सीजन है, और जिस घाट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सिर्फ उसी घाट तक सीमित रह जा रहे हैं। अगल बगल जिस तरह बट के श्रद्धालु गंगा स्नान कर लेते हैं, जलाभिषेक के लिए जल ले जाते हैं, तो एक दूसरे से सभी घाट कनेक्ट हुआ करते थे, लेकिन बाढ़ की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को, श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है, आने वाले कांवड़ियों को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह में कहीं भी कमी नजर नहीं आ रही है। इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर है, और लगातार यहाँ पर आज पूरे दिन का ये सिलसिला देखने को मिलेगा कि श्रद्धालु कांवड़ियों

0: माँ गंगा का जल ले रहे हैं और फिर जाके इंतजार करते हुए कतार में लगते हुए बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने मनोकामना की पूर्ति की, इच्छाओं की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, तस्वीरें आप दिखाइएगा। इसी बीच पंडित जी, आप देख रहे हैं किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की आस्था अपार देखने को मिल रही है। ऐसे में ये जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि पूजा करने की सही विधि क्या है, ताकि ये जो लोग बड़ी संख्या में अपनी आस्था भक्ति लिए हुए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, इनकी साधना में कोई बाधा ना आए।
2: जी जी, बड़ा उत्तम आपने जो है प्रश्न किया। देखिए, विधि भगवान शिव की पूजा में सर्वोपरि जो है वो भाव की है। आपका भाव सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ये सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद अब विधि किसको कैसे क्या आप अर्पित करें, इसके विषय में बताते हैं। देखिए, संपूर्ण देवताओं में एक शिव परिवार ही ऐसा है जिसका पूरा परिवार पूजनीय है। भगवान शिव, भगवती गौरी, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, सर्प और उसके साथ साथ इनके जो और परिवार हैं, जैसे गणेश जी के पुत्र हैं शुभ, लाभ, पत्नी रिद्धि, सिद्धि, उनके भी जो है पुत्र अमोद, प्रमोद, उनकी भी पत्नियां जो तुष्टि और पुष्टि। कहने का तात्पर्य कि आप ब्रह्मांड में देखें तो पूरे संसार में यदि आकलन किया जाए तो 60-65% जो उपासक मिलेंगे वो भगवान शिव की आराधना करते हुए मिलेंगे, बाकी 33-35% में सभी देवी देवता आते हैं। आपने पूछा क्रम क्या है, तो क्रम देखिए, सबसे पहले जब आप जल अर्पित करें तो गजानन गणेश को अर्पित करें जो भगवान शिव के दाईं तरफ रहते हैं। इसके बाद माता पार्वती को अर्पित करें जो बाम भाग में गिरिजा यानी माँ गौरी रहती हैं। माँ गौरी के ही जस्ट जो है दाहिने तरफ कार्तिकेय रहते हैं। इसके बाद भगवान शिव के ठीक सामने जो है गणपति, वो नंदी रहते हैं, आप नंदी को अर्पित करें। ठीक भगवान शिव के पीछे यानी उनके अंगरक्षक सर्प सेवक, उनको अर्पित करें। लास्ट में भगवान शिव को अर्पित करें। इसके साथ साथ कुछ देवता और उनके साथ में पूजे जाते हैं, जैसे वीरभद्र, कुबेर और उसके साथ साथ अशोक सुंदरी, तो उनके लिए जलहरी में आप जल अर्पित करें। क्रम आपका रहा ये, और कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। भगवान शिव के यहाँ जब जल अर्पित करने आप जाएं तो भूल करके तांबे के पात्र में दूध मिला करके ना ले जाएं। तांबे के पात्र में जल तो बहुत सुंदर है, लेकिन दूध जैसे मिला देंगे विष का काम करेगा। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, इसका विशेष ध्यान देंगे। भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, वो माँ शिव और पार्वती के बीच की जो है एक तरह से सीमा और परिधि होती है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे कि भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है, गणपति जी को तुलसी वहाँ पे आप ना चढ़ाएं, और माँ गौरी का श्रृंगार अवश्य करें और माँ गौरी का ग्रंथि बंधन अवश्य करें, यानी भगवान शिव और माँ पार्वती का गठजोड़ा। उससे क्या होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन मधुरमयी रहेगा, कभी भी कोई तनाव और स्ट्रेस आप दोनों के जीवन में नहीं आएगी। तो ये इस प्रकार का आपको जो है
1: बिल्कुल
2: भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।
1: चलिए बिल्कुल, इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि आज के दिन क्या कुछ अर्पित करना चाहिए और किस सही तरीके से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। लौटते हूँ पंडित जी आपके पास, लेकिन मुंबई की तस्वीरें दिखाना बनता है, क्योंकि मुंबई में आज सावन का दूसरा सोमवार है, जैसे कि धर्मेंद्र ने भी जानकारी दी थी। सावन सोमवार के शुभ मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आएगा। आज मुंबई के सबसे प्राचीन शिवालयों में से एक बाबुलनाथ मंदिर की तस्वीरें देख लीजिए। शिव भक्ति के मिलन की गूंज चारों तरफ आपको सुनाई देगी। पवित्र जल और दूध के साथ पुष्प, बेल, पत्र और चंदन लेकर मंदिर पहुंचे शिव भक्त पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में सराबोर हैं। मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर आस्था की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। मंगला आरती के बाद से कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों ने माहौल को और भी शिवमय बना दिया। और चलिए मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, बाबुलनाथ मंदिर की जब भी हम बात करते हैं या जिक्र होता है इस जगह का, स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर, खुद ही भगवान शिव ने यहाँ पर लोगों को दर्शन दिए, इसके पीछे की मान्यता जरा बताइए।
3: बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपडेट दे देता हूं। फिलहाल इस समय बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए रोका गया है, क्योंकि यहां पर जो शिवलिंग पे सुबह से ही प्रसाद, फूल, हार, दूध चढ़ाए जा रहे हैं, साफ सफाई करने का काम जो है अब शुरू हो चुका है और लगभग आधे घंटे ये सारी चीजें चलने वाली हैं। भगवान को जल चढ़ाकर उन्हें जो है नहलाया धुलाया जाएगा, फिर उनका जलाभिषेक किया जाएगा, फिर रुद्राभिषेक और अभिषेक करा जाएगा, उसके बाद में आरती करी जाएगी। बेसिकली 40 से 50 मिनट की अवधि है ये सारे काम यहाँ पे होने वाले हैं, और उससे पहले

0: देखिए घंटों से कतार में खड़े जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से होल्ड हैं, अपने लाइन में खड़े हुए हैं। शिव भक्त के सिर्फ शिव भक्त हैं ये सारे, और सिर्फ एक बार दर्शन ले ले। थोड़ा सा एक मैं बात करना चाहूंगा, मैं देखता हूँ हर हर हर सोमवार आप यहाँ पर आती हैं और स्पेशली श्रावण और सोमवार है, क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ये बहुत बहुत हम लोग सौभाग्य है, हमारे सोमवार एक बाबलनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या रखा है आपने अपनी थाली में, क्या क्या ले रहे हैं?
1: भगवान के लिए बिलपत्र फूल सब चढ़ाने के लिए क्या है।
0: अच्छा, मन्नतें होंगी पूरी हो जाएगी आपकी? मन
1: जरूर, सबका मन्नत पूरी हो जाएगा, महाकाल का आशीर्वाद, बाबलनाथ का आशीर्वाद से सबका मन्नत पूरी हो जाएगी।
0: माता श्री कहाँ से?
2: जी यही मुंबई से है।
0: कैसा लग रहा है मंदिर परिसर में आके, और अब दर्शन करने वाले, कुछ देर ही आपको वेट करना है?
2: जी बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शनों का सौभाग्य मिला।
0: स्पेशली श्रावण सोमवार आते हो हमेशा?
2: नहीं, मैं तो अभी यहाँ आके 2 महीने ही हुए हैं, तो पहली बार ही आई हूँ।
0: आप बताएं थोड़ा सा, कितना बाबुलनाथ बाबा को आप चाहती हैं, और स्पेशली श्रावण सोमवार आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है?
3: ये बाबुलनाथ मंदिर तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन श्रावण सोमवार तो हमारे बहुत ही दिल के पास है। मैं पूरे श्रावण मास कर रही हूँ, मतलब तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इधर दर्शन करके अभी, और मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ।
0: इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको ये भी दिखाएंगे कि मंदिर बंद होने के बाद किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो अभी कतार में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से 2.5-3 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा के दरबार में यहाँ पहुंचा जाता है। भले कितना भी थकावट हो गई हो, लेकिन बाबा को देखते ही एक अलग ही तरह की ऊर्जा आ जाती है। अब आते हैं मान्यता पर बाबुलनाथ मंदिर के, तो आपको बताया करीब 300 साल पुराना इतिहास रहा है। थोड़ा सा मंदिर की बनावट देखें, इन्हें देखकर ही पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया होगा इस मंदिर को। देखिए बाबुलनाथ मंदिर 300 साल पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था। कहते ये हैं कि पहाड़ का ये टीला है जहाँ पर ये मंदिर है, और चरवाहे यहाँ पर अपनी गाय बछड़े लेकर चराने के लिए आते थे। एक ग्वाला था जिसका नाम बाबुल था, और उसकी एक फेवरेट गाय थी जिसका नाम काफिला गाय था, और वो गाय रोजाना एक ही जगह पर जाकर के रुक जाती थी और वहां पर ही दूध भी देती थी। धीरे धीरे ये चीजें 3-4 महीने चली, स्थानीय लोगों को पता चला, स्थानीय प्रधान को, सरपंच को, स्थानीय हर किसी को इस बात का पता चला, तो लोगों ने ये पता लगाना शुरू किया कि आखिर ये गाय एक ही जगह आके क्यों रुकती है। खुदाई हुई और कई काफी फिट नीचे से अचानक ही शिव लिंग जो है वो प्रकट हो गए, और उसके बाद जो उस समय के राजा भीम सिंह यहाँ पर हुआ करते थे, उन्होंने मंदिर का इस तरह से निर्माण करा दिया। और उसके बाद में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कोशिश की मंदिर को उजाड़ने की, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय हैं उन्होंने मंदिर को एक नया ही रूप, नया अवतार दिया है। आपको बताएं बस थोड़ा सा समय और बचा हुआ है आरती के लिए, हर कोई यहाँ पर उत्सुक है और उत्साहित भी है। मंदिर के ठीक सामने श्री गणेश जी की भी प्रतिमा रखी गई है। पहले लोग कतार में आने के बाद श्री गणेश जी का दर्शन करते हैं, और फिर काफी जद्दोजहद के बाद फाइनली शिव भगवान का दर्शन उन्हें हो पाता है, ऐसा
4: जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, बहुत अच्छे शब्दों में आपने इतिहास के बारे में बताया इस मंदिर के बारे में, और जैसा कि आपने कहा आरती शुरू होने वाली है, हम भी लौटेंगे आपसे कुछ ही देर के बाद, तस्वीरें देखेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। पंडित जी, पंडित अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद महाकवरेज लगातार जारी है।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के अंतिम सोमवार के दिन आज दिल्ली एनसीआर में बाहर मौसम हुआ खुशगवार, तेज आंधी के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। पवित्र सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार, शिवालयों में सुबह से भक्तों की कतार, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर। बिहार के हाजीपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर में की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना, बम भोले के लगाए यहां पर जयकारे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, ड्राई फ्रूट से किया गया बाबा का श्रृंगार, झांकियों का भी प्रदर्शन। दमन में मॉनसून फेस्टिवल की धूम, कार्यक्रम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, निकाली गई शानदार सांस्कृतिक परेड। तमिलनाडु के सीएम विजय ने खोला तोहफों का पिटारा, महिलाओं को पोंगल 2027 से हर साल मिलेंगे 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मिलेगी फ्री में सफर की सुविधा। केरलम की केजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, सबसे कम उम्र में क्राउन जीत कर रचा इतिहास, अब मिस यूनिवर्स के खिताब पर निगाहें।

0: और चलिए खास पेशकश लगातार जारी है। उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर सज गया है बाबा महाकाल का दरबार। आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्ति का आपको ऐसा रंग देखने को मिला जिसे देख हर दिल शिवमय हो जाए। सावन के आखिरी सोमवार पर रात 12 बजे से ही मंदिर के बाहर कतार लगना शुरू हो गई थी। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खुले। सबसे पहले भगवान को हरिओम जल चढ़ाया गया, इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत की गई।
1: तो वहीं दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के उपरांत पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। आरती पूजन का यह अद्भुत नजारा देखकर भक्त अभिभूत हो उठे। पूजन श्रृंगार की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। सूरज की पहली किरण उगने से पहले ही लाखों शिव भक्तों ने बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया।
2: बाबा महाकाल सर के दरबार में प्रातः काल बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई है। कुंटलो दूध दही से बाबा का अभिषेक किया गया है। चूंकि बाबा का आज अंतिम सोमवार है इसलिए बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है, विशेष पूजन अर्चन की गई है। उसके पश्चात भगवान महाकाल के दरबार में भक्त लोग जय महाकाल का उद्घोष कर रहे हैं और साल भर तक बाबा महाकाल इस सोमवार का इंतजार करते हैं और आज बाबा महाकाल का ये सोमवार दिव्य दर्शन भक्त लोगों को दिए जा रहे हैं। जय महाकाल।
3: पूरे देशवासियों को जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। आज सावन का चतुर्थ सोमवार और देखो कितनी बड़ी बात, आज एकादशी भी है। नर व नारायण दोनों का मिलन हो रहा, हर और हरि का मिलन हो रहा, हरिहर का। कहते हैं कि आज एकादशी के दिन और वो भी सोमवार का आना, इन दोनों का संयोग अति दुर्लभ है। मनुष्य देह पाना बहुत आसान है लेकिन यह दुर्लभ संयोग देख पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्धात्मनावान शुभ स्वभावात् करोदि यद यद सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेतत्। आज चतुर्थ सोमवार और परम एकादशी के दिन समस्त देशवासियों के साथ समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले चराचर जीव को भगवान शिव की मंगल कामना मिले, उनका कल्याण मिले, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभा भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
4: मेरे को तो इतना ब्लेस्ड फीलिंग आ रही है कि मैं सावन के लास्ट सोमवार महाकाल में हूँ, जो मैं मतलब एक साल से अर्जी लगा रही थी और आज जाके ये अर्जी लगी है। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब और ये इतनी पावन जगह है, इतनी एनर्जी है यहाँ पे कि मैं तो आज धन्य हो गई।
5: हम आज पहली बार आए हैं और हमारे को पहली बार भस्म आरती में बैठने का मौका मिला, नंदीगृह में बैठने का मौका मिला। अंदर से इतनी पावरफुल फीलिंग आ रही है कि हम बयां नहीं कर सकते कि जो दुख दे सब खत्म हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में खड़े हैं आज। इससे अच्छी और मतलब कुछ नहीं हो सकती।
6: ऐसे लग रहा है जिंदगी धन्य हो गई है हमारी। तो मैंने सोचा भी नहीं था बाबा मुझे दूसरी बार इतनी जल्दी बुला लेंगे। मैं तीसरे चौथे महीने में दोबारा आई हूँ और मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही बाबा को अर्जी लगाई होगी कि मेरी बस कोई मनोकामना थी वो पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे नहीं पता था बाबा इतनी जल्दी बुला लेंगे और जिनके साथ बुलाया उनका भी धन्यवाद और बाबा का भी धन्यवाद। जय जय महाकाल।
1: तो देखिए जगह जगह पर शिवालयों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं बनारस, भगवान शिव की नगरी बनारस में। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, वहां की तस्वीरें तो आप लगातार दिखा ही रहे हैं जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। काशी में हमने देखा है कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन तक तमाम तरह के इंतजाम एकदम भरपूर किए जाते हैं। इंतजामों के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं?
7: जी देखिए, बिल्कुल सावन की शुरुआत के करीबन एक महीना पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और जो एसओपी है वो कुंभ मेले की ही तर्ज पर लागू की गई थी, ताकि एक अभी बीते वर्षों में जो कुंभ का एक महापर्व बीता है तो उसको लेकर पहले जो तैयारी हो रखी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को ग्राउंड को उतारते हुए शासन प्रशासन पुलिस विभाग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जो काशी श्रद्धालु आते हैं ज्यादातर प्रयागराज से आते हैं, तो हर बार सावन में देखा जाता है कि कांवड़ियों के लिए पूरी की पूरी इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लेकर वाराणसी की एक लेन खाली करा दी जाती है। उसके अलावा सावन में खासकर सोमवार के दिन जगह जगह जो काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग है रूट डाइवर्जन किया जाता है और वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है और खासकर जगह जगह जैसा कि दिखाई पड़ रहा है सावन का माह चल रहा है तो बाढ़ की विभीषिका भी इस दौरान रहती है। और इस समय हमारी मौजूदगी दशाश्वमेध घाट पर है और सावन के करीबन आधा बीतने के बाद जल का जल स्तर का बढ़ाव शुरू होता है और पक्के घाटों का आपकी देखिए संपर्क टूट गया है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। और जो घाटों पे जगह है वो काफी कम रह जाती है, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती रहती है जो स्नानार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ से जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुँचने के लिए आते हैं, तो उनको सुरक्षित रूप से यहाँ गंगा स्नान कराना, उनको सुरक्षित रूप से यहाँ से निकालना, उनको लगातार वार्न करना, हिदायत देना कि वो गहरे पानी में न जाए, बैरिकेटिंग और जेटी के दायरे में रख के ही गंगा स्नान करें। इस समय देखिए जल पुलिस के इस चौकी में हमारी मौजूदगी है, लगातार जो जल पुलिस के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, वे लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। तो कुल मिला के कई जोन और कई सेक्टर में पूरे बनारस को बांटा जाता है और कई इसमें अधिकारियों से लेके निचले स्तर तक की पूरी ड्यूटी लगाई जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की मदद ली जाती है, पीएससी की मदद ली जाती है और यहाँ तक कि जो सिविल डिफेंस है उसकी भी मदद ली जाती है और स्काउट्स के जो यहाँ छात्र हैं, देखने में तस्वीरें आती है उनकी उनकी तक की मदद ली जाती है। लेकिन मतलब हर संभव प्रयास सावन के इस पूरे पावन माह को सकुशल संपन्न कराने की जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की हमेशा रहती है।
0: बिल्कुल रोशन, देखिए जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िया और श्रद्धालु पहुंचे हैं तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहां पर जाहिर सी बात है कि टीमों की तैनाती की गई है और सुव्यवस्थित तरीके से सारी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। रोशन, लौटती हूं आपके पास। अरविंद जी, आपके पास आते हुए अरविंद जी, जितने भी सावन के सोमवार का हम जिक्र करते हैं और आज चूंकि अंतिम सोमवार है, अब ये बताइए कि जो भी चीजें अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई भी शख्स भगवान शिव को अर्पित करता है, चाहे वो दूध हो, दही हो, धतूरा हो या फिर भांग, ये बताइए कि इन चीजों को अर्पित करने का अलग अलग तरह का फल प्राप्त होता है, ऐसा भी है?
8: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आप जल अर्पित करते हैं, जल से आप निरोग होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। जो आप दूध अर्पित करते हैं, दूध से आपको धन धान्य की वृद्धि होती है, इसको कहते हैं दूधो नहाओ भूतो फलो। और जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनको संतान में पुत्र की प्राप्ति होती है। आप गन्ने का जो रस चढ़ाते हैं, गन्ने से जो अभिषेक करते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में जो है आपके व्यापार की वृद्धि होती है और धन संपदा में आपकी जो है बढ़ोतरी होती है। आप दधि से यदि आप जो दही चढ़ाते हैं उससे जो यक्ष्म रोग आदि होते हैं उससे आपकी निवृत्ति मिलती है। उसमें जो शहद चढ़ाते हैं, शहद से आपके जो है व्यापार में वृद्धि होती है। तो कहने का तात्पर्य, आप जो कुछ चीज़ चढ़ाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ की जो है प्राप्ति होती है। भगवान शिव की आराधना में जो आपकी दिशा विशेष मायने रखती है। देखिए, पूरब और उत्तर तो दिशा होती है पूजा के लिए, लेकिन सर्वोत्तम जो भगवान शिव की दिशा होती है वह ईशान कोण होती है, पूरब और उत्तर का कोना, जिसके विषय में कहते हैं कि सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्यमान भवोद्भवाय नमः। तो जो ईशान आय, जो ईशान कोण है, वो भगवान शिव का है। और ये जो मैंने अभी बोला है, भगवान शिव के पंचमुख हैं, जिनके अलग अलग जो है नाम हैं। और भगवान शिव क्या हैं, भगवान शिव के परिवार की जो आप पूजा करते हैं ना, तो बहुत स्पीड से मैं आपको बता दूं कि गणपति की पूजन से आपके जीवन में विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, नष्ट होती हैं। माँ गौरी के पूजन से आपका दाम्पत्य जीवन सुखदमय और बड़ा ही मधुरमय व्यतीत होता है। आप जो कार्तिकेय जी का पूजन करते हैं तो आप जो है शत्रु बाधा आदि दोषों से बचते हैं और किसी प्रकार की कोई जो है आपको वैसी दिक्कत नहीं आती जो अचानक दिक्कत आती है। जो आप नंदी का पूजन करते हैं उसमें आप जो है हर तरह की चोट चपेट एक्सीडेंट और जिसको कहें कि जो आपको पशुपति प्रकार का जो एक व्यक्ति जो आघात करता है, मारण मोहन उच्चाटन आदि का करता है, उससे आप बचते हैं। और जो सर्प की आराधना करते हैं तो अकाल मृत्यु से आपकी जो है बचाव होती है। और जो भगवान शिव की आराधना करते हैं तो सब कुछ फल के दाता हैं, इसीलिए उनके विषय में कहते हैं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई दाता है तो भगवान शिव हैं, क्योंकि सदा सच्चिदा उनने पूरे ब्रह्मांड को दिया और स्वयं जाकर के उनने हिमालय पकड़ा। तो भगवान शिव के पूजा से सभी के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे भारत देश में हो या विश्व में हो, जो दाम्पत्य जीवन में रहने वाले प्राणी हैं वो खास करके भगवान शिव की आराधना अवश्य करेंगे।
1: जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत जरूरी बातें आपने हमें बताई हैं, जिससे दर्शकों की जो पूजा करने वाले लोग हैं उनकी पूजा संपूर्ण हो सके, इसलिए ये बातें जान लेना बहुत जरूरी है। इस तरह की और जानकारी आगे आपसे लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर दिल्ली के सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस विशेष दिन पर महादेव और माता गौरी के दर्शन के लिए मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है।
0: और देखिए, उमस और भीषण गर्मी की परवाह ना करते हुए हजारों शिव भक्त तड़के से ही कतारों में लगकर भगवान शिव का पवित्र गंगा जल, दूध और पंचामृत से भव्य जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, इसी बीच भक्तों की आस्था भी जस की तस बनी हुई है। तो देखिए, सावन के चौथे और अंतिम सोमवार के इस पावन मौके पर रामनगरी अयोध्या भी आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आई। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिव भक्तों ने आज इस खास मौके पर भोले बाबा का जलाभिषेक किया, उन्हें दतूरा, भांग, बेलपत्र अर्पित किए। मंदिर परिसर में गूंजते वैदिक मंत्रोच्चारण और हर हर महादेव के जयघोष ने माहौल को अलौकिक आध्यात्मिक आनंद से भर दिया।
1: तो देखिए, दर्शन से पहले अयोध्या के पवित्र सरयू नदी पर श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में स्नान ध्यान किया है और इसके बाद पूजा अर्चना की है। दुग्ध अभिषेक की एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवलिंग पर यहाँ पर बेलपत्र अर्पित करते हुए जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालुओं की तस्वीर। तो सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को गोरखपुर के ऐतिहासिक झारखंडी महादेव मंदिर, गोरखनाथ मंदिर परिसर के शिवालय और पौराणिक मुक्तेश्वरनाथ मंदिर सहित सभी प्रमुख शिव मंदिरों में तड़के सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही है। पवित्र नदियों से जल लेकर पहुंचे कांवड़िए और स्थानीय श्रद्धालु कतारों में लगकर भगवान शिव का गंगा जल, दूध और पंचामृत से भव्य महाअभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखिए, शंखनाद, डमरू की थाप और बम बम भोले के घोष के बीच में केसरिया रंग में रंगे कांवड़ियों का उल्लास भी दिखते ही बन रहा है। आज के दिन गोरखपुर के पौराणिक शिव मंदिरों में सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को जलाभिषेक के लिए रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दर्ज की जा रही है। सावन के समापन के इस पावन दिन पर महादेव को जल अर्पित करने के लिए कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ पड़ा। दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाकर महादेव की आराधना करने पहुंचे भक्तों के भारी उत्साह ने पूरी धर्म नगरी को दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया।
9: इसमें जो आज सावन का लास्ट सोमवार है, जिसमें भीड़ तो लगभग 50-60 हज़ार तो जाएंगे ही जाएंगे। और यहाँ का जो मान्यता रहती है, जैसे इन लोगों के द्वारा जो भी पूजा अर्चना की जाती है, मन्नतें जो होती हैं वो पूरा होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है भीड़ जाते होती है।
10: आज सावन का अंतिम सोमवार है तो सभी लोग आते हैं पूजा करने, क्योंकि ये सोमवार हमको फिर एक साल बाद मिलेगा, इसलिए आज हम लोग का महत्वपूर्ण है। और हमें भगवान से यही इच्छा है कि सब लोग को अच्छे से रखें, हम लोग अपनी इच्छाएं को जो भी भगवान के सामने प्रकट करते हैं। और हर हर महादेव।
11: देखिए, ये स्वयंभू भोलेनाथ है, महादेव झारखंडी स्वयंभू भोलेनाथ है, यहाँ स्वयं अवतरित हुए हैं। और सावन का अंतिम सोमवार है, आप देख रहे हैं सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग कतार में लग करके यहाँ भगवान भोलेनाथ को अपना जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भगवान भोलेनाथ को यहाँ एक बार एक लोटा जल चढ़ा लेता है, उसकी जो भी मन्नतें हैं वो पूरी हो जाती है।
12: कल्ला भगवान से यही मांगे हैं, पर परिवार को, पूरा देशवासियों को स्वस्थ रखें और मस्त रखें और व्यस्त रखें, यही प्रभु जी से निवेदन है।
1: तो देखिए, तमाम शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम जानकारियां पंडित जी हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। फिलहाल यहां वक्त हो चला है लंच टाइम में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी महाकवरेज लगातार जारी है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: चलिए, श्रद्धा आस्था उल्लास से भरी हुई ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाई रहे हैं। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है, तो इस पावन मौके पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित ऐतिहासिक प्राचीन श्री तारकेश्वर नाथ महादेव मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए। श्रद्धा और भक्ति का विहंगम दृश्य यहां पर भी देखने को मिला। सावन माह के इस अंतिम सोमवार को महादेव के पूर्णाहुति, जल अर्पण और विशेष आशीर्वाद के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का समंदर यहां पर नजर आया। तो अपने अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी आस्था के हिसाब से और श्रद्धा के हिसाब से तमाम श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का आज किस तरह से जलाभिषेक किया वो आपको तस्वीरें सुबह से हम दिखा रहे हैं। शिवालयों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें आपके सामने।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के विश्व प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर दिल्ली एनसीआर के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में आस्था और भक्ति का विहंगम नजारा देखने को मिला। सावन मास के इस अंतिम सोमवार को महादेव के पूर्ण आहूति जलाभिषेक के लिए आधी रात से ही लाखों शिव भक्तों और कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार शिव भक्तों के लिए बेहद भावुक और उत्सवमयी दिन लेकर आया है। शंखनाद, डमरू की गूंज और बम बम भोले की गूंज के साथ पूरा मंदिर परिसर एक अलौकिक ऊर्जा से सराबोर है। आइए सावन के इस अंतिम सोमवार पर घर बैठे दर्शन करते हैं बाबा दूधेश्वर नाथ के इस कल्याणकारी स्वरूप के।
0: देखिए, देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दी। कानपुर के नागेश्वर में भी सुबह से ही शुरुआती घंटों में लाखों श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए। मंदिर परिसर में गूंजते वैदिक मंत्रोच्चारण और हर हर महादेव के जय घोष ने माहौल को अलौकिक आध्यात्मिक आनंद से भर दिया।
1: देखिए, तमाम शिवालयों की तस्वीरें हमने आपको बताई, तमाम जानकारी भी आपके साथ साझा की। पंडित जी ने खास जानकारी साझा की, क्या है पूजा का विधि विधान, क्या है खासियत, क्या कुछ है मान्यता, ये सब कुछ बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।
2: धन्यवाद आप लोगों का भी।
0: और चलिए, इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दिन भर में ये तस्वीरें आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए गुरिया सुबह के साथ। नमस्कार।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के अंतिम सोमवार के दिन आज दिल्ली NCR में बाहर मौसम हुआ खुशगवार, तेज आंधी के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। पवित्र सावन के महीने का आखिरी सोमवार पर शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे मंदिर। बिहार के हाजीपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर में की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की, बम बम भोले के लगाए जयकारे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, ड्राई फ्रूट से किया गया बाबा का श्रृंगार, झांकियों का भी प्रदर्शन। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत, अमेठी में बनी AK-203 शेर असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल, 100% स्वदेशी उपकरणों से बनी राइफल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। तमिलनाडु के सीएम विजय ने खोला तोहफों का पिटारा, महिलाओं को पोंगल 2027 से हर साल मिलेंगे 3 LPG सिलेंडर मुफ्त, ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मिलेगी फ्री में सफर की सुविधा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: दिल्ली NCR में सावन के आखिरी सोमवार पर मॉनसून ने जबरदस्त करवट ली, आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। दिल्ली NCR में बारिश के साथ ही तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, लोगों को उमस से भी मिली राहत। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से खड़क सिंह मार्ग के कई इलाकों में भरा पानी, कनॉट प्लेस के पास शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जलभराव। गाजियाबाद में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी, मौसम हुआ सुहावना। गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में हुई तेज बारिश, बिजली चमकने के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तक की रफ्तार से चली हवाएं।

0: देश के कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध का एक हिस्सा टूटा। सैकड़ों एकड़ में फसलें डूबी, राहत बचाव का काम जारी। बिहार के दानापुर में गंगा और सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। संगम नगरी प्रयागराज में भी बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। कई घाट डूबे, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। वाराणसी से राहत की खबर। धीरे धीरे कम हो रहा है गंगा का जलस्तर, घाट से उतर रहा है पानी। पवित्र सावन का अंतिम सोमवार आज देवघर से लेकर काशी तक हर घर महादेव की जय जयकार सुनने को मिल रही। काशी में महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार, सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों ने लगाई बाबा के नाम की जयकारे, माहौल में घुली दिव्यता। गाजियाबाद के श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, शिव भक्तों ने किया महादेव का अभिषेक। सावन के आखिरी सोमवार पर मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में उमड़े लाखों भक्त, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बाबा बाबुलनाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, हर हर महादेव के जयकारों के बीच दर्शन पूजन जारी। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़े कांवड़िए, बाबा का पवित्र नदियों के जल से कर रहे हैं अभिषेक। कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का समंदर, कतारों में लगकर भक्त कर रहे हैं महादेव के दर्शन। समस्तीपुर में अंतिम सोमवारी पर प्रसिद्ध थानेश्वर स्थान मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा पाठ जारी। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतार, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा, श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, गंगा जल से किया भोलेनाथ की पूजा अर्चना। गुजरात में दूसरे सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक किया। लखनऊ में सावन के आखिरी सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, आखिरी सोमवार में भक्तों ने विधि विधान से पूजा की। सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल की भस्म आरती में उमड़ी भक्तों की भीड़, दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का हुआ पंचामृत अभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, विधि विधान से हो रही है महादेव की पूजा। जयपुर में सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने तड़केश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा परिसर। हरिद्वार में कनखल महादेव मंदिर में पूजा पाठ का दौर जारी, भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। रोहतास में पायलट बाबा आश्रम स्थित सोमनाथ मंदिर में अघोरेश्वर महादेव के शिवलिंग की हुई विशेष पूजा अर्चना, साल में दो ही बार खुलते हैं मंदिर के द्वार। मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर धाम में शिव भक्तों की भीड़, देर रात से ही लगी लंबी कतारें। सावन के अंतिम सोमवार पर तकरीबन 2.5 लाख शिव भक्तों की बाबा का रुद्र अभिषेक करने की संभावना, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा परिसर। छतरपुर के जटाशंकर धाम में पूरी होती है हर मनोकामना, कई सालों से देश के कोने कोने से यहां आते हैं शिव भक्त। बोलबम के जय घोष से गूंजा नागेश्वर नाथ का मंदिर परिसर, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी में आने वाले 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों के लिए भंडारे की चल रही है तैयारी। 80 कुंतल कद्दू की सब्जी, 65 कुंतल आटे की पूड़ियां और 40 कुंतल मिठाई होगी तैयार। भक्तों के लिए खाना बनाने में 150 से ज्यादा लोग दिन रात जुटे हुए हैं। करीब 3 दिनों में इतना बड़ा भोजन तैयार किया जा रहा है। आज निकलेगी बाबा बैजनाथ की शाही सवारी। सवारी में आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में भक्त भजन मंडलियों और झंडों के साथ पहुंचेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों को पंडाल में बैठाकर व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा भोजन। भक्तों की एंट्री के लिए की गई है बैरिकेडिंग और पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफ पंडाल की तैयारी। केले के पत्तों पर रखी जा रही है पूड़ियां। आगरमालवा के लोग मिलकर भक्तों को परोसेंगे भोजन। कई साल पुरानी है ये परंपरा। बघा में सावन की आखिरी सोमवारी पर नर्मदेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। 80,000 श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। हाजीपुर बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। भक्तिमय हुआ माहौल। पाली में सावन के दौरान मंदिरों में आकर्षक झूलों में झुलाया जा रहा भगवान कृष्ण को अलग अलग झांकियां और सजावट श्रद्धालुओं को कर रही हैं आकर्षक। रंगजी मंदिर में चलती झांकियों के साथ भगवान के मनमोहक स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। रघुनाथ मंदिर के आदमकद झूले भी श्रद्धालुओं के यहां पर खींच रहे हैं ध्यान। गोपीनाथ मंदिर में कृत्रिम फूलों से हरियाली के बीच सजाया गया भगवान का झूला। दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा देखने को मिला। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर वंदे भारत ट्रेन का ड्रोन विजुअल पोस्ट किया। जंगल के बीच लकीर से गुजरती ट्रेन के विजुअल को लोग कर रहे हैं काफी पसंद। रेल मंत्री ने लिखा मेक इन इंडिया के नए ट्रेन जमाने को ट्रेन। दमन में मॉनसून फेस्टिवल का भव्य आगाज। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी मुख्य अतिथि। फेस्टिवल में सांस्कृतिक परेड, लाइव बैंड और म्यूजिकल नाइट्स बने मुख्य आकर्षण। कई मशहूर हस्तियां भी बनेंगी आयोजन का हिस्सा। दमन के मॉनसून फेस्टिवल 2026 में मुखौटा पहनकर पहुंचे लोग, भांगड़ा और ढोल ने भी जमाया रंग। शतरंज की दुनिया से भारत के लिए शानदार खबर। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने जीता कानिशा ओपन शतरंज टूर्नामेंट। 9वीं रोमांचक दौर के बाद प्रणेश ने दर्ज की जीत। बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर बने विजेता। हंगरी में भारतीय दूतावास के नए चैंपियन को बधाई दी। एक्स पर लिखा है इंडियन टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर चमकते हुए देखकर हो रहा है बहुत गर्व। रविंद्र जडेजा ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर कदम रखते ही रचा इतिहास। WTC के इतिहास में 50 मैचेस खेलने वाले पहले एशियाई और भारतीय क्रिकेटर बने। रविंद्र जडेजा ने साल 2012 में किया था अपना टेस्ट डेब्यू। अब तक खेले गए अपने 50 मैचेस में उन्होंने 2675 रन बनाए हैं, 160 विकेट भी चटकाए। उत्तरकाशी के मुखवा गांव में प्राकृतिक सामग्री से बन रही हैं अनोखी राखियां। भोजपत्र, केदारपाती और ब्रह्म कमल का किया जा रहा है इस्तेमाल। मुखवा की महिलाओं ने राखी से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। स्थानीय संस्कृति के साथ स्वरोजगार को भी मिल रहा है बढ़ावा। मुखवा की प्राकृतिक राखियों को बाजार में उतारने की तैयारी। प्लास्टिक राखियों के बीच बना रही हैं अलग पहचान। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में तेंदुए के खतरे से निपटने की तैयारी। वन्य जीवों को दूर रखने के लिए लगाया गया अलार्म सिस्टम। पुत्रदा एकादशी के मौके पर सोमनाथ महादेव का किया गया खास हरिहर चंदन श्रृंगार। चंदन से सजे भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा। केरलम के 19 साल की काजिया लिज मिजो ने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब। अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करेंगी। काजिया मिस यूनिवर्स में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। नवंबर 2026 में प्यूर्टो रिको की सैन जुआन शहर में होगी 75वां मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता। जयपुर में हुए फिनाले में कुल 52 फाइनलिस्ट ने खिताब के लिए मुकाबला किया। काजिया के साथ टॉप 5 में वैष्णवी गणेश, अनुश्री सातविलकर, तेजस्विनी श्रीवास्तव और अनुभा वशिष्ठ पहुंची। जजों की टीम में सुष्मिता सेन, उर्वशी रोटेरा, सलीना जेटली, रिया सिंघा जैसे नाम शामिल रहे। पैनल में मिस यूनिवर्स विजेता से लेकर ब्यूटी एक्सपर्ट तक कई बड़े नाम नजर आए। काजिया इससे पहले मिस यूनिवर्स केरला 2026 जीत चुकी थी। कानून की पढ़ाई कर रही काजिया भारत की उम्मीद बनकर ग्लोबल मिस यूनिवर्स मंच पर उतरेंगी। बीजिंग में रोबोट के हाथों की अनोखी प्रतियोगिता हुई। रोबोट ने चिमटी से उठाई बीन्स। रोबोट कितनी सफाई से छोटी चीजें उठा सकता है इसका हुआ टेस्ट। वैज्ञानिक देख रहे हैं ऐसे रोबोट आगे घर और काम की जगहों पर कैसे मदद करेंगे। प्रतियोगिता में रोबोट के हाथों को दूर बैठा कर कंट्रोल किया गया। हर सही तरीके से उठाई गई बीन को गिना गया और टीमों के प्रदर्शन की जांच हुई। बीजिंग के गेम्स में रोबोट को अलग अलग असली काम करने की चुनौती दी गई। मकसद है रोबोट को ऐसे काम सिखाना जिसमें हाथों की बारीक हरकत जरूरी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है रोबोटिक हाथ आगे कई रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं से पता चलता है रोबोट इंसानों जैसे काम करने में कितने बेहतर हो रहे हैं। जापान भीषण गर्मी से पालतू जानवरों को बचाने की शानदार पहल। डॉग्स और कैट्स को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए फैन सूट किया गया तैयार। टोक्यो की कंपनी ने बनाया पंखे लगे हुए पफी जैकेट। कॉलर में आइस पैक लगवाकर हवा को किया जाता है ठंडा। जापान में 40 डिग्री तक पहुंच रहे तापमान के बीच पेट कूलिंग जैकेट की बढ़ी डिमांड। 2022 से बिक चुके करीब 10,000 सूट भारतीय रुपए में करीब 10,000 रुपए है नए मॉडल की कीमत। सिनसिनाटी ओपन कोको गॉल्फ बनी चैंपियन। फिल्स ने जीता पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब। अमेरिका की कोको गॉफ ने जेसिका पोगुला को 6-2 6-4 से मात दी। गॉफ ने करियर का 12वां सिंगल्स टाइटल अपने नाम किया। चाइना में रोबोट्स ने खेलों की दुनिया में मचाई धूम। बीजिंग में शुरू हुआ वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। रोबोट्स ने किकबॉक्सिंग में जमकर मुकाबला किया। 80 किलो वर्ग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने फाइट की। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने रेस में भी हिस्सा लिया। बड़े और छोटे रोबोट्स ने रेस में दिखाई अपनी ताकत। रोबोट्स के बीच ब्लॉक स्केटिंग प्रतियोगिता भी हुई। रोबोट्स ने ताइची का प्रदर्शन कर सबको चौंकाया। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में भारी संख्या में पहुंचे दर्शक। रोबोट्स खेलों का जमकर आनंद लिया। चाइना के रोबोट तियांगोंग ने 400 मीटर में जीता गोल्ड। तियांगोंग ने 38.15 सेकंड में रेस पूरी की। तियांगोंग ने शेंजन के रोबोट को पीछे छोड़कर गोल्ड पर कब्जा किया। 100 मीटर रेस में भी तोड़ा था दुनिया के सबसे धावक उसेन बोल्ट का 15 साल का रिकॉर्ड। बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 16 देशों की 600 से ज्यादा टीमें शामिल। गेम्स में करीब 2000 ह्यूमनॉइड रोबोट शामिल। रोबोट्स ने मार्चिंग और अलग अलग खेलों में दिखाया अपना दम। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ टेनिस खेला। रोबोट्स ने बॉक्सिंग में भी मुकाबला किया। फुटबॉल से लेकर फैक्ट्री तक रोबोट्स की परखी जा रही है क्षमता। चोंगकिंग यूनिवर्सिटी की टीम ने तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया में मार्शल आर्ट्स गेम्स की जली मशाल। प्योंगयांग में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी आयोजित हुई। 10वें इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स की तैयारी शुरू हुई। मार्शल आर्ट्स की मशाल खिलाड़ियों को सौंपी गई। समारोह में टाइकोंडो का शानदार प्रदर्शन हुआ। स्कूली बच्चों ने टाइकोंडो के दिखाए हैरतअंगेज करतब। वुशु के प्रदर्शन ने खींचा सभी दर्शकों का ध्यान। अलग अलग मार्शल आर्ट्स के साथ कराटे का भी शानदार प्रदर्शन किया गया। मशाल प्रज्वलन के साथ इंटरनेशनल गेम्स का बढ़ा उत्साह, अक्टूबर में किर्गिस्तान में गेम्स का होगा आयोजन।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नागपुर में ढोल ताशा बजाने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया। यहां 4000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक साथ ढोल ताशा बजाया। ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए

0: 4000 से ज्यादा ढोल ताशे जब एक साथ बजे तो इस जोशीले संगीत ने विश्व कीर्तिमान बना दिया। नागपुर में इन ढोल ताशों की गूंज जमीन से लेकर आसमान तक सुनाई दी। रविवार का दिन नागपुर में इन ढोल ताशा ग्रुप के नाम रहा। जिंजी संवाद मुहिम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मकसद था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना। करीब 585 ध्वज धारकों ने अपने अपने ग्रुप्स के साथ इस महा आयोजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के लिए नागपुर समेत विदर्भ के अलग अलग शहरों से 2000 से ज्यादा ढोल ताशा ग्रुप्स को बुलाया गया था। इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ मौजूद थे। हर ग्रुप के ध्वजा धारक ने अपने ढोल ताशा ग्रुप का नेतृत्व किया। सभी ने मिलकर जब एक ही लय में ढोल बजाया तो वहां मौजूद हर शख्स जोश से भर गया और इस आयोजन ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को इस विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट भी दिया। नागपुर में हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आयोजन का मकसद भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो लेकिन इस आयोजन के जरिए महाराष्ट्र के तमाम ढोल ताशा ग्रुप्स को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका भी मिला और ये आयोजन नौजवानों के जोश और उत्साह की मिसाल बन गया। नागपुर से योगेश वसंत पांडे, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के अंतिम सोमवार के दिन आज दिल्ली NCR में बाहर मौसम हुआ खुशगवार, तेज आंधी के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। पवित्र सावन के महीने का आखिरी सोमवार पर शिवालयों में सुबह से भक्तों का तांता, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। बिहार के हाजीपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर में की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की, बम बम भोले के लगाए जयकारे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलनोत्सव की धूम देखने को मिली, ड्राई फ्रूट से किया गया बाबा का श्रृंगार, झांकियों का भी प्रदर्शन। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत, अमेठी में बनी AK-203 शेर असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल, 100% स्वदेशी उपकरणों से बनी राइफल, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। तमिलनाडु के सीएम विजय ने खोला तोहफों का पिटारा, महिलाओं को पोंगल 2027 में हर साल मिलेंगे 3 LPG सिलेंडर मुफ्त, ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मिलेगी फ्री में सफर की सुविधा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर है हम फिर एक बार सास बहू और पेटिया यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। बारिश हो, तेज धूप हो या फिर मौसम अपना अचानक मूड बदल ले, एक चीज जो हमेशा हमारा साथ निभाती है वो है ये छाते। और देखिए, छाता ना सिर्फ हमें बारिश से नहीं बचाता बल्कि ये तो सुरक्षा और उसके साथ साथ सूझबूझ की भी एक निशानी है, क्योंकि देखिए जब रहेगा छाता हमारे पास तो हम पहले ही खराब मौसम से बच जाएंगे। और आजकल जब हम छातों की वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक, विंडप्रूफ, फोल्डिंग, इतनी वैरायटी है मार्केट में अवेलेबल कि आपके लिए चूज करना भी हो जाएगा मुश्किल। और एक बात जो आप हमेशा याद रखें, बारिश में भीग जाने के बाद छाते को हमेशा खोल कर सुखाएं ताकि ये अच्छे से सूख जाए और इसमें जंग लगने का डर ना हो, और उसके साथ साथ छाते में बदबू भी नहीं होती है। और आज तो हमारे ये एंटरटेनमेंट का सफर भी एक मजबूत छाते की तरह है जो एंटरटेनमेंट की बारिश में आपका साथ निभाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखेगा परिवार का प्यार, एकजुट होंगे अभीरा अरमान, मायरा और मुक्ति,
5: जी हाँ नौनी का बोधी प्रेग्नेंट है।
4: सीरियल सैराब में श्रेया लगाएगी नौनिका पर प्रेग्नेंट होने का इल्जाम, घर वालों को लगेगा जोर का झटका। राध्या देगी अग्नि परीक्षा। रुचिता पर फूटेगा दादी का गुस्सा।
6: नौराई माची लाड़ा ची लाड़ा ची गड़ा ही लचन।
4: और हुई गुम यादे की डॉक्टर सृष्टि यानी की गुल की जोशी का होगा मेकओवर, देखेंगे उनका दुल्हन वाला अंदाज सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है सूरज और ईशा की इस कहानी में आज। क्या फिर से आया है कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट या फिर कोई नया ड्रामा?
1: आकाश का बॉम्ब अटैक, खतरे में पड़ेगी मिहिका और बंटी की जान। ईशा सूरज की नई परेशानी, दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में भाई जैसे ही सूरज और ईशा को ये पता चला कि मिहिका घर से भाग निकली है, देखिए कैसे पूरा परिवार मिहिका को मार्केट तक ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, जहां आकाश भी पहले से ही मौजूद है, जो कि जैसे तैसे कर बस मिहिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी तो देखिए भाई काव्या को मिहिका मिल तो जाती है, लेकिन आकाश फिर भी उस पर बम फेंक देता है, और जैसे ही ये उड़ता हुआ बम मिहिका और काव्या के पास आने वाला होता है, भाई बंटी आकर इन दोनों को बचा लेता है। के चलते आकाश का प्लान कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है, लेकिन मिहिका और काव्या की जान बच जाती है, लेकिन खतरे में पड़ जाती है बंटी की जान, क्योंकि उसके हाथ पर गहरी चोट लग गई है। इन्हीं सब धमाकों के बीच सूरज और ईशा भी पहुंच जाते हैं, जो पूरी सिचुएशन को देखकर काफी घबरा जाते हैं। वही जरा देखिए तो कैसे ईशा मिहिका के गले लगकर भाई उसे लाड़ और दुलार कर रही है। भाई इतनी सी बच्ची घर छोड़कर चली गई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये बात ईशा के समझ ही नहीं आ रही है। तो वही दूसरी ओर देखिए कैसे भाई सूरज भी बंटी का शुक्रिया अदा कर रहा है। इतना ही नहीं भाई उसने फिर एक बार अपनी बहना के हाथों बंटी का हाथ थमाया, इस बात का एहसास करते हुए कि इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है।
2: तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो।
3: बंटी कुछ दिनों से भागा हुआ है हमारे मोहल्ले से, और रिया को लेकर भागा हुआ है तो उसको वो बेचारा अभी प्यार में, उसे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आकाश आ चुका है और आकाश एक अलग तहलका मचा रहा है, जिस तहलके की वजह से ईशा सूरज आपस में बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात करते करते दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तुतुमैमैं हो जाती है, एंड वो तुतुमैमैं मिहिका सुन लेती है, और मिहिका को ऐसे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनका माइंड कब यू नो ट्रॉमा में चले जाए हमें नहीं पता रहता, और वही चीज़ उसे ट्रॉमा कर जाती है और वो घर छोड़कर भाग जाती है। अब वो घर छोड़कर भाग गई है और उसे अस्थमा है, तो अब उसे परेशानी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कहाँ गई कहाँ भागी, तो सब पूरे घर वाले निकले हैं ढूंढने निकले हैं, ईशा सूरज काव्या सब लोग ढूंढने निकले हैं, और ढूंढते ढूंढते मार्केट में पहुँचते हैं, मार्केट में बहुत सारा ढूंढते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मिहिका दिखती है, वहीं पर आकाश भी है जो कि तीसरी आँखें, वो भी देख रहा है कि मिहिका यहाँ पे आई है, अब मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि सूरज ईशा को मतलब कि जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाना, और ईशा की वर्दी उतरवा दूंगा कि बच्चे का केयर नहीं कर पा रहे, कोर्ट में ये करूँगा वो करूँगा, और वो बॉम्ब वगैरह फेंकने की कोशिश करता है कि मिहिका को अस्थमा और बढ़ जाए पटाखे की धुएँ की वजह से, और एक बॉम्ब तो फोड़ देता है, पटाखे फोड़ देता है, दूसरा जैसे वो सुतली मतलब कि रस्सी बम फेंकना चाहता है, बंटी वहाँ पर पहुँचता है, मिहिका को बचाता है, मतलब कि हाथ में आ जाता है, एंड बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, हाथ में ही उसके ब्लड आने लगता है। तो उसी समय सूरज ईशा भी पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि फाइनली काव्या और रिया को काव्या और क्या मेका को बचा लिया बंटी ने, तो बंटी को बंटी के लिए वो मोमेंट, सूरज ईशा के लिए वो मोमेंट होता है बंटी और काव्या का। तो दिस इज ऑल बिकॉज हम खुद बात करते समय इन सारी बातों में फंस रहे हैं, तो ऑडियंस कितना फंसेगी देखने में ही मजा आएगा।
1: ऐसे में देखिए कैसे इन सब के बीच काव्या ने भी अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़कर बंटी के खून भरे हाथों में बांध दिया, ताकि उसकी चोट को आराम मिल सके और खून बहना भी बंद हो। भाई फिलहाल तो आकाश नाकामयाब हो गया है मिहिका को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते, लेकिन अब इन सब हंगामों के बीच क्या सूरज और ईशा पता लगा पाएंगे आकाश का ये षड्यंत्र, या फिर आकाश फिर एक बार ईशा और सूरज को नई मुसीबत में डालता हुआ नजर आएगा?
0: सूरज, आकाश,
4: तो क्या फैसला किया? मेरी वर्दी वापस करोगी या मेरी बच्ची?
0: कुछ भी नहीं।
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आखिरी दिन मीका के साथ।
0: असली खूबसूरती तो वही है जो हर मौसम में हमें मुस्कुराना सिखा दे, और बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर राधा और प्रथम का ये रिश्ता। तो क्या कुछ हो रहा है मन अति सुंदर की इस कहानी में, क्या कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है हमारे लिए इंटरेस्टिंग मोड जो लेकर आएगा कहानी में दी मच नीडेड ड्रामा? यस ऑफ कोर्स, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
1: में कैद होकर अग्नि परीक्षा देती राध्या, दादी ने फिर चला षड्यंत्र। शुरू हुई राध्या का वजन कम करने की प्रक्रिया। टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर दादी लेकर आई है वैजी को, और ऐसे में दादी ने राध्या को इस घेरे में बिठा दिया है और वैजी ने लगा दी है इस घेरे में आग। भाई इस सर्कल के बीच राध्या बैठी है इस उम्मीद से कि इस उपाय से उसका वजन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो दादी का नया खेल है राध्या को परेशान करने का, लेकिन भोली भाली राध्या इस बात को भी मानकर देखिए कैसे प्रक्रिया करने के लिए राजी भी हो गई और कर भी रही है, भले ही उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो।
5: अब आप गहरी और लंबी सांसें लीजिए और आंखें बंद करके भोलेनाथ को जाप कीजिए।

है बारिश तो इतना बरस कि वो जा ना सके, लेकिन तो इतना भी ना बरस कि वो आ ना सके। कुछ ऐसा ही होता है ना प्यार का एहसास, और यहाँ पर भी है हमारे लिए प्यार की बारिश और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी। लेकर चलते हैं।

0: ड्रामा तो होगा ही ना, जहाँ राध्या है और उसकी दादी है, तो ड्रामा ना हो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब नया ड्रामा ये है कि उसको पतले करने के एक नए तरीके के टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक वैद्य जी को बुलाया गया है, वैद्य जी जो हैं वो आएंगे और उसको पतला करेंगे। अब वैद्य पतला करेंगे, अब घर में सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं दादी को कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक वैद्य पतला करने लगे तो जिम की क्या ज़रूरत है, और सारी दुनिया पतली हो सकती है फिर तो। पर दादी तो बोलती है नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा तो कुछ पता नहीं। दादी का थोड़ा सा मूड इसमें इमोशनल भी है, वो कहती है कि मेरा कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का, कहीं मैं मर जाऊँ तो मैं प्रथम के बेटे को ना देख पाऊँ, मुझे एक बच्चा देखना है घर में। वो इस चक्कर में इन सबको इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मैं इसलिए, और मेरे को कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस एक बार ही राध्या का बच्चा देखना चाहती हूँ, और मैं कोई राध्या की दुश्मन नहीं हूँ, ये दादी का कहना है। और वो इस चक्कर में एक वैद्य जी को लेकर आती है, और वैद्य जी राध्या का एक पतले होने का उपाय करते हैं।
1: तुम्हारा वजन कम करने के लिए ना हम एक वैद्य जी से प्रक्रिया करवा रहे हैं, बस वो थोड़ी देर में आते होंगे, तुम तैयार रहना।
2: आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो अब जो उपाय बताएंगे हम वो करेंगे।
1: यही सही मौका है राध्या को सबक सिखाने का।
3: ऐसे में आग के धुएं की वजह से राध्या बेहोश हो जाती है, और फिर ओमकार का गुस्सा फूटता है, वो ये प्रक्रिया बीच में रुकवाता है और राध्या को इस आग से बाहर निकालते हैं सभी घर वाले।
4: बस करिए आप लोग, राध्या की हालत खराब हो रही है, क्या करेंगे आप?
5: चुप कर जाओ, जब तक तुझे पूरी नहीं हो जाती राध्या अंदर ही रहेगी, पूजा में कोई भी पूरी नहीं करेगी।
4: मां क्या हो गया आपको? राध्या बेहोश हो गई है, चार से बढ़कर कोई भी नहीं।

0: अध्याय होश में आती है, लेकिन इस पर भी दादी मानती नहीं। वो तो दूसरी प्रक्रिया कराने की बात भी करती है और बेचारी राध्या इस बात के लिए भी मान गई है। ऐसे में देखिए कैसे घर में बहस छिड़ चुकी है।
1: आप सब निश्चिंत रहिए, इसके आगे की प्रक्रिया इतनी कठिन नहीं।
2: और राध्या कोई प्रक्रिया, कोई पूजा कुछ नहीं करेगी। बस
3: तो कुछ एक फंक्शन था हमारे घर में, तो जो आस पड़ोस की औरतें होती हैं, माँ की सहेलियाँ होती हैं, ताने बहुत मारती हैं कि शादी हो गया, तेरा बेटा नहीं हो रहा है, तेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इसको पतला कर, जो बकवास होता है। तो फिर अब माँ जो हैं थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, तो वैद्य को बुला करके लेके आती हैं और वो अग्नि में, चारों तरफ से अग्नि के बीच में उसको बैठाती हैं और उसकी परीक्षा ली जाती है। और सडनली जब हम देखते हैं तो थोड़े बहुत हम एजुकेटेड हैं, तो पुराने ख्यालात से हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, तो बुरा लग रहा है देखने में, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, माए सब क्या कर रही हो, अगर ऐसे वजन कम होता तो इसे पूजा करके, अगर वजन कम होता तो पूरी दुनिया पतली हो जाती। वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसीजर है। तो बट उनको ये था कि सहेलियों ने बोला है तो वो ऐसा ही करेंगे, तो वही पुराने ख्यालात उनके दिमाग में जो चल रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं, राध्या हो रही है, तो फिलहाल ये ड्रामा चल रहा है अभी।
0: दादी तो खेल पर खेल खेल रही है, अब देखना होगा कि राध्या इस खेल में दोबारा फंसती है या नहीं, क्योंकि इन सब से प्रथम तो नदारद है, वो किसी काम से बाहर जो गया है, जब वो आएगा तब असली तमाशा शुरू होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: बारिश और मोहब्बत दोनों का अपना ही अलग जादू होता है। वैसे जादू तो है इस जुनूनी की इस कहानी में भी। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ और देखते हैं किस हाल में हैं आज रूहानी और गुरु। क्या कहानी में फिर से आ रहा है कोई नया मोड़, जो लेकर आ रहा है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। लेट्स फाइंड आउट।
5: गुरु रूहानी के परिवार को मिली जानलेवा धमकी। नागेश्वर ने दिया रूहानी को ओपन चैलेंज।
6: सिर्फ तो मेरी डिग्री चलेगी, बस कि तुम गुरु की जिंदगी से भी जाओगे। जिस दिन अपना गुरु बाहुबली बनेगा।
5: क्या आ जाएगी मियां बीवी के रिश्ते में दरार? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भैयाज बाहुबली परिवार में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि घर में कोई रख गया है ऐसा पार्सल जिसे देखकर तो रूहानी गुरु और नागेश्वर के होश ही उड़ गए। भाई जरा देखिए तो कैसे इस बक्से में एक डॉल यानी कि एक बेबी रखा हुआ है और उसी के साथ साथ पूरे परिवार की तस्वीरें भी हैं, जिस पर क्रॉस मार दिया गया है और उस पर ये चेतावनी लिखी है कि बस 5 दिन और इन 5 दिनों में पूरे बाहुबली परिवार का काम तमाम हो जाएगा। भाई जिसे देखकर तो पूरा घर सदमे में है।
7: आज दिन में सब खत्म, बचा सको तो बचा लो।
8: अभी आपने ये कब देखा?
7: अभी बस 2 मिनट पहले।
5: ऐसे में गुरु दौड़कर बाहर जाता है ये देखने के लिए कि आखिर ये पार्सल कौन उनके घर रख गया है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। भाई ये देखने के बाद तो गुरु और भी टेंशन में है कि आखिर ऐसा कौन आ गया है जो उनके घर में घुसकर उन्हें धमकी दे रहा है।

0: किस कितनी हिम्मत होगी हमारे घर में घुसकर हमें धमकी देने की।
1: इन सब में पूरे घर वाले बस यही सोच रहे हैं कि आखिर इस सिचुएशन में क्या और कैसे किया जाए। लेकिन तभी ही रूहानी को अस्पताल निकलना पड़ता है, जिसके लिए गुरु उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन रूहानी नहीं सुनती है।
0: जब तक ये पार्सल देने वाले का पता नहीं चल जाता तब तक तो रुक सकती हो ना।
2: नहीं गुरु, मुझे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है।
3: चाहती है तो जाने दो, कोई बच्ची तो है नहीं, अपना फैसला खुद ले सकती हो।
1: वही इन सब तमाशों के बीच चल रही है बहू और ससुर में टशनबाजी, जहां पर नागेश्वर चाहता है कि गुरु बाहुबली की पगड़ी पहन ले, तो वही रूहानी ने भी ठान लिया है वो अपने पति को एक पढ़ा लिखा इंसान बनाकर ही मारेगी। ऐसे में देखिए कैसे दोनों के बीच चल रही है बहसबाजी।
4: ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। इसे मैंने जहन नहीं मिलाया है।
5: तुम्हारी माँ सही सलामत है? बधाई। जो काम तो मधुरा छोड़ गई थी उसे पूरा कर लें।

0: फिर तुम्हारी डिग्री चलेगी और कि तुम गुरु की जिंदगी से भी जाओगे। जिस दिन अपना गुरु बाहुबली बनेगा
1: वो दिन कभी नहीं आएगा।

0: जानवी और रुचिता का प्लान। दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर में दादी कर रही है रुचिता का बेसब्री से इंतजार, क्योंकि उसने जानवी को निहाल से मिलवाने भेजा था, लेकिन रुचिता आ नहीं रही है। और जैसे ही वो घर लौटी तो देखिए कैसे रुचिता पर अत्याचार कर दादी उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही है, ये बिना देखे कि पहले से ही रुचिता के हाथ में पट्टी लगी हुई है। ऐसे में बेचारी रुचिता बुरी तरह से घबरा गई है। दादी के सवाल खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं और बेचारी रुचिता पूरी तरह से घबराई हुई है। तभी वहाँ जानवी भी पहुँच जाती है और फिर सारा सच सामने आता है। रुचिता बताती है कि कैसे वो चक्कर खाकर गिर गई थी और निहाल ने उसे अस्पताल पहुँचाया।
1: किसी अच्छे से शान से रेस्टोरेंट में दो लोगों की टेबल बुक करवा दे।
2: सुन, एक काम कर, जल्दी से उस रेस्टोरेंट में जा जहाँ जानवी गई है, देख वो पहुँची कि नहीं।
3: जानवी भी पहुँच गई होंगी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: डॉक्टर,
2: क्या हुआ इन्हें?
1: पता नहीं, अचानक से बेहोश हो गई, जल्दी कुछ कीजिए।
0: लेकिन दादी रुचिता पर भड़कती जा रही है, क्योंकि निहाल और जानवी तो मिल नहीं पाए, उल्टा रुचिता की वजह से निहाल तीज की पूजा में नहीं जा पाया। इस वजह से घर में बवाल शुरू हो चुका है।
4: क्या कर रही थी तू उनके साथ?
5: रुचिता पीछे
4: अभी एक है, क्या हुआ?
6: जानवी कुछ बोले यार।
4: अरे बोल बड़ी नानी। मामी जल्दी से घर को घुसे, बहुत तेज भूख लगी। आज ये घर वाले ने तो पूजा करवा करवा के मेरी पैटी बुझा दी। आप ना जल्दी से खाना दो मुझे। बड़ी नानी आप तो बोल रहे थे कि वो लोग मेरे करियर को सपोर्ट करेंगे, पर उनकी घर की औरतें तो पल्लू संभालने नहीं रह जाती, तो मुझे भी पल्लू संभालना पड़ेगा। तेरे कारण निहाल जी अपने घर नहीं पहुंच पाए तीज पूजा के लिए, अस्पताल भागना पड़ा उन्हें। अरे क्या पता, कितनी तो मोटी चमड़ी के तेरी है, फिर तुझे ऐसे घर के चक्कर कैसे आ गया खड़े खड़े है? अब वैसे भी रसोई में जाकर दिन में तुम्हें वो नमकीन कुतरते मेरे सामने, फिर चक्कर आ गया। मैंने तुझे भेजा था, जब तुझे जानवी नहीं मिली थी सीधे पाँव घर आना चाहिए था, वहां पर रुक गई, चक्कर खा के गिर गई। क्या तमाशा है ये, समझ में नहीं आता।
7: अरे दादी, अभी आप इन दोनों को चिल्ला क्यों रही है? सुबह से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया, पहले कुछ खा ले फिर आप सवाल जवाब कर लीजिएगा। मैं पहले खाना लगा देती हूँ, आप उसके बाद सब बोल दीजिएगा।
4: हाँ लगाओ खाना और ठूसो बैठ के आराम से, खाने के लिए तो बैठ।
1: किसी अच्छे से शान से रेस्टोरेंट में दो लोगों की टेबल बुक करवा दे।
2: सुन, एक काम कर, जल्दी से उस रेस्टोरेंट में जा जहाँ जानवी गई है, देख वो पहुँची कि नहीं।
3: जानवी भी पहुँच गई होंगी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: डॉक्टर,
2: क्या हुआ इन्हें?
1: पता नहीं, अचानक से बेहोश हो गई, जल्दी कुछ कीजिए।
0: खैर वही वहीं दूसरी तरफ आ गए हैं जानवी के होने वाले ससुराल वाले लेकर शगुन। ऐसे में नानी तो काफी खुश है क्योंकि जानवी के लिए वो रिश्ता जो लेकर आए हैं ऐसे में शगुन भी आ चुका है और घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन जानवी तो शादी ही नहीं करना चाहती। अब इसके बाद कहानी कैसा मोड़ लेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे सितारे से जिसने ना हर मौसम में अपनी मुस्कान से हमारा दिल जीत लिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है, तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, अभी तो सस्पेंस को और बढ़ाएंगे। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां हमारी टीम ने की है आपके फेवरेट सितारे से ये प्यारी सी मुलाकात। गेट सेट

0: सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सोनी सब के सीरियल हुई गुम यादें के सेट पर, जहां पर फिल्माया जा रहा है शादी का सीन। जी हां, सीरियल में नया ट्विस्ट आया है, जहां पर हो रही है डॉक्टर सृष्टि की शादी, लेकिन डॉक्टर देव से नहीं बल्कि दिग्विजय से। जी हां, यही तो है कहानी का नया ट्विस्ट, जहां देव को छोड़ सृष्टि किसी और के साथ गठबंधन करने को तैयार है। खैर, शादी में जब ट्विस्ट आएंगे तब आएंगे, फिलहाल तो हम सीधा चलते हैं सृष्टि यानी कि गुलकी के मेकअप रूम में, जहां आज होगा उनका मेकओवर और वो 16 श्रृंगार कर बनेंगी दुल्हनिया। भाई वैसे तो सीरियल में डॉक्टर के लुक में ज्यादा मेकअप नहीं होता है, लेकिन आज ये सारी कसर निकालने वाली है। दुल्हन के लुक में हैवी मेकअप भी होगा, कॉस्ट्यूम भी होगी, ढेर सारी ज्वेलरी भी होगी और ये दुल्हनिया हो जाएंगी रेडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेकअप के इस प्रोसेस की और सीधा करते हैं मेकअप की शुरुआत।
1: हाय, दिस इज गुलकी जोशी एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर सृष्टि ऑफ हुई गुम यादें। एंड आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम शादी कर रहे हैं। लेट मी थिंक, फर्स्ट शो में दो बार हुई थी, आई थिंक 13-14 बार हो चुकी है मेरी शादी। दिस इज प्रोबेबली माई 15th वेडिंग ऑन स्क्रीन। बट हाँ, आज का इज स्पेशल बिकॉज आज मैं फुल मराठी लुक में तैयार होने वाली हूँ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच विल बी लाइक प्रॉपर नथनी और वो सर पे लगाने वाले को क्या बोलते हैं, काय मंडक त्याला, जो भी वो उसको बोलते हैं, नववारी साड़ी एंड ब्राइट कलर्स एंड हिरवे बांगड़िया। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर द लुक। इसके पहले नववारी बहुत बार पहनी है, बट आई थिंक शादी के लिए नहीं पहनी है। हाँ, आइटम नंबर जरूर बनी थी मैं एक बार मैडम सर में। कौन सा गाना था वो जिसमें रेड नववारी पहन के डांस किया था, थाने में ही डांस किया था भाई, मुंगड़ा नवारी नहीं थी, अरे नवारी थी, नहीं नहीं प्रॉपर नवारी थी वो, पर वो
2: बनी हुई
1: नवारी थी। आया यस, तो उसमें आइटम नंबर जरूर किया है, जिसकी अभी तक रील्स और एडिट्स में देखती रहती हूँ।
3: आयशा, सृष्टि
4: नमस्ते,
3: आयुष्मती राहुल। वैसे तूने तो कहा था सृष्टि सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है।
1: हाँ, वो लड़के का लुक चेंज कराना चाहिए, उसका कुर्ता चेंज करना आसान है कि मेरी साड़ी चेंज करना आसान है, बट अब सास तो सास होती है। सो आई साहब की डिमांड है कि मैं उनके बेटे के हिसाब से मैचिंग साड़ी पहनूं, इसी वजह से मैं नहीं बता सकती आगे क्या। मैं ऑलमोस्ट बताने वाली थी। आई थिंक थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लैम और ग्लिटरी रखेंगे, यूजुअली माई मेकअप इज वेरी सटल, हल्का सा लाइनर, हल्का सा नेचुरल, तो आज हम फुल ब्लोन फुल एकदम ग्लैम शैम मेकअप करेंगे, वेरी ग्लिटरी, थिक आई लाइनर, लाउड लिपस्टिक, एवरीथिंग बिग बिकॉज इट्स अ वेडिंग।
5: अपनी पहचान दम घुटता है तुम्हारे साथ सृष्टि, अपना परिवार सब खो दिया मैंने।
1: तो पहला प्यार हमेशा से डॉक्टर देव थे, ठीक है, फिर डॉक्टर देव जो है बन गए खड़ूस, फिर डॉक्टर देव से हम हो गए अलग, फिर ये डिगी भाई साहब आए एकदम सॉफ्टी क्यूटी शाहरुख खान बन के हमारे लाइफ में, उन्होंने अच्छे से पटा लिया, पर तब तक डॉक्टर देव की याददाश्त वापस आ गई। तो एक पॉइंट था जो पर्सनली मुझे बड़ा मजा आ रहा था शो में, कि दोनों हीरो मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं दोनों से भाव खा रही हूँ। But finally, of course, the better man won. Diggy B is more loving, more consistent, ज़्यादा loyal है वो, ज़्यादा क्या बोलते हैं, understanding है. So finally, she chose the better man. और अब बस देव आकर मेरी शादी में गाएगा चन्ना मेरिया गाने वाला है वो मेरी शादी में आके। देव का कुछ नहीं, देव के डॉक्टर प्रीति मिल जाएगी, बहुत ऑप्शन है यार। Have you seen Dev? He's a good looking man. He'll find a lot of options.
6: जी, अच्छा सा प्यारा सा डिजाइन लगा दो।
5: बता क्या बनाना,
6: जो तुम्हारा दिल करे।
5: कुछ ऐसा बना दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया, मेहंदी का रंग छूटता नहीं आसानी से।
6: मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि कभी छूटे।
0: तो आई मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में शुरुआत हुई है आई मेकअप से। भाई दुल्हन का लुक है, ऐसे में आई मेकअप थोड़ा ब्राइट है।

0: लगा।
1: तो भाई शूटिंग तो चल ही रही थी, बेस का मेकअप हो गया, हल्का टचअप देकर आंखों को निखारा गया और फिलहाल मेकअप आधा हो चुका है, लेकिन अभी लुक में कई और चीजें ऐड होनी बाकी है।

0: सो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है. कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी बाकी है, वो हम करेंगे फाइनली चेंज करने के बाद. और थोड़ा सा गैप क्यों लग रहा है वो राज जानने के लिए देखते रहिए. यस, चलो लेट्स चेंज. नवारी फॉर द नवराई.
1: तो भाई अब बारी झटपट से चेंज करने की. और आज ये दुल्हनिया पहनने वाली है नवारी साड़ी, जो इनकी होने वाली सासू माँ ने ही इन्हें दी है. तो चलिए देखते हैं कैसा है इनका ये आउटफिट.
0: मन में क्या बज रहा है पता है हमको आज कल है. बस कब से मैं 3 दिनों से ये नवारी साड़ी पहन रही हूँ और 3 दिनों से यही गाना चल रहा है मेरे दिमाग में. अभी तो बहुत कुछ बाकी है. अभी हम अपना थोड़ा सा आई मेकअप चेंज करेंगे, थोड़ा हैवी करेंगे, ग्लिटरी करेंगे, बाल बेसिक रखेंगे बिकॉज मराठी वेडिंग्स में हेयर इज यूजुअली वेरी सिंपल. बट इसके ऊपर आएगा गजरा, बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी, नथ. अभी तो बहुत अभी तो शुरुआत है.
2: अपनी चेहरे पे चांदनी, मैं हूँ अंधेरा, तू मेरी रोशनी, तू सबसे पहले तेरे पे.
0: प्रॉपर इन्होंने पहना ये नवारी साड़ी है ये बिल्कुल. हमने थैंक यू श्रुति दीदी, ये पिछले 3 दिनों से शी इज बीन हेल्पिंग मी एंड उषा मैम फॉर दिस. और हमारे लिए अभी फिलहाल सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट इंसान ये है क्योंकि इन्हीं की वजह से हम वॉशरूम भी जा पाएंगे. कितनी भी खुश हो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी है. ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ. सास सास होती है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है. रब्बा ने
1: तो भाई नवारी साड़ी तो पहन ली, अब बारी मेकअप को और निखारने की, क्योंकि आई मेकअप में कुछ चेंजेस हैं और इसी के साथ साथ ढेर सारी ज्वेलरी पहनने की, जो इस तरह से सजाई गई है. और ये सब कुछ होने के बाद ही ब्राइडल लुक पूरा होगा.
2: कितनों की लव स्टोरी.
0: यस, सो लाइक आई सेड कि हम मिलेंगे आपको चेंज करने के बाद. सो आई हैव चेंज्ड इनटू माय ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना बेबी काम डाउन काम डाउन. हाँ, सो ये ड्रेस मेरा हो चुका है, मेरी साड़ी नवारी सेट हो चुकी है. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स ऑफ ग्रीन एंड एकदम टिपिकल प्रॉपर. ये शादी वाली है, मेरी माँ ये सब देख के इमोशनल होने वाली है. एंड एज यू कैन सी वहाँ पर सारी ज्वेलरी सेट हो रही है. असली है ना? हाँ असली है ब्रो, असली असली गजरा. देखो कैरेक्टर सृष्टि का है. हाँ जी, ये नथ है. ए लगा मंटा तेरे जो कान पे ऐसे ऊपर लगाते हैं,
3: बुगड़ी.

0: हार है, तीन अलग अलग है अभी। मन की अमावस्या है और धूप झड़ियों वाले त्योहार। जिगी इज अ पेंटर, रियली जिगी इज एन आर्टिस्ट। और सारी महंगी ज्वेलरी जो है मुझे आई साहिब ने दी है। मेरी पेंटिंग बनाई है, मेरा स्केच बना के ही तो पटाया है उन्होंने। ऐसा था किसी रेफरेंस में था, आई डोंट थिंक हमने ऐसा शूट किया है कुछ, बट ऐसा डेफिनेटली रेफरेंस में था। एंड डिगीज कैरेक्टर हैज ऑलवेज बीन दिस स्वीट पॉइस्ड रिच आर्टिस्टिक बॉय विद अ स्ट्रांग मॉम, इसलिए उसको स्ट्रांग फीमेल्स पसंद भी हैं। अब यही दो स्ट्रांग फीमेल्स आपस में लड़ रही हैं, सो इट्स अ नाइस कैरेक्टराइजेशन। एंड थैंक्स टू आई साहिब आई गेट ज्वेलरी, रियली नाइस ज्वेलरी। चलो अब ये फटाफट पहनना शुरू करते हैं।
1: तो देखा आपने, यहाँ नथनी है, चूड़ियाँ है, ढेर सारी ज्वेलरीज है और है गजरा, जिसके बाद पूरी तरह से महाराष्ट्रीय दुल्हन के लुक में तैयार हो जाएंगी डॉक्टर सृष्टि यानी गुलकी जोशी।
0: तीनों चीजें हम साथ में कर रहे हैं, ये आई मेकअप भी चेंज करेंगे, ये पीछे मेरे बाल भी ठीक करेंगे और गजरा भी लगाएंगी, और ये मैडम जो है जो अभी कंटिन्यूटी का फोटो देख के जद्दोजहद चल रही है जिनके जीवन में कि क्या पहनाना है और क्या नहीं, वो साथ में ज्वेलरी भी बनाएंगी, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है और काम है बहुत ज्यादा। तो लेट्स बिगिन।
2: यस,
0: मुझे कुछ नहीं करना है।

0: इसी के साथ हमारा लुक कंप्लीट होता है. बाप रे, आई फील सो मच लाइक अ गर्ल यार, इतना गली गली लग रहा है मुझे, शर्मा वर्मा भी रही हूँ मैं, बस किसे याद करके वो नहीं पता. Anyway, the thing is, so this is the entire look and I am very happy with it. एक आई थिंक इसमें कमर पट्टा भी है जो अभी ऐड होने वाला है, बिकॉज वो डिसाइड हो रहा है कि कौन से डिजाइन का हम कमर पट्टा पहनेंगे. बट अदर देन दिस, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, दिस इज हाउ माई नेक्स्ट टू डेज आर गोना लुक लाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप यू गाइस हैड अ फन टाइम वॉचिंग दिस टू. एक और चीज बाकी है, इतनी सारी नहीं, रुको जरा,
1: रुको जरा, सबर करो. ये है 5 किलो का शोखिया जो भवरे, ये मैं ये ऐसे कहूंगी कि इनको मेरी सुख की जान दुख में करना पसंद है. ये वो है, आओ बेटा, आओ बेटा मेरे पास.

0: सारी ज्वेलरी पहनी है। मंडप में पहुंचने से पहले वो जो सर पे एक जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो भी लगाने वाले हैं। रिंग है, बांडिया है, वी हैव 3 डिफरेंट नेकलेसेस, वी हैव अ नथ, वी हैव इयररिंग्स, इयररिंग्स के साथ आई डोंट नो काय म्हणतात त्याला, बट गजरा भी है, और मतलब द होल थिंग। वन मोर स्टिल थिंग स्टिल रिमेनिंग व्हिच इज द कमर पट्टा, वो हम लगाएंगे। फिर हम एक और चीज लगाएंगे जिसे कहते हैं माइक, क्योंकि इतना सब तैयार होने के बाद शूटिंग भी करनी होती है। सिर्फ तैयार नहीं होना है, जीवन में काम भी करना होता है। हमको आज कल है एक गोइंग इन माय हेड की
1: और नवराही बाजी
0: अब हमको आज कल है इंतजार, कोई आए लेके प्यार।
2: थोड़ा सा स्माइल कर दो, दांत मत दिखाना, ये तुम्हारी स्माइल है। अब ना दीवार की तरफ टर्न कर जाओ, नजरें नीचे रखना, एक नई नवेली दुल्हन की तरह।
3: वासी जी,
4: रोबोट थोड़ी आप, ये कमांड मिलेगा आपको, वॉक, स्टॉप, लुक अप, लुक डाउन, स्माइल, ये क्या है?
2: जो देखना था मुझे, मैंने देख लिया कि सृष्टि का एक्स हस्बैंड आज भी उसकी लाइफ में कितनी ही दखल अंदाजी करता है।
0: सो थैंक यू सास बहू और बेटियां, मुझे तो बहुत मजा आया ये आप लोगों के साथ पूरा अपना लुक शेयर करके। आई होप आप लोगों को भी ये देखकर उतना ही मजा आया होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शादी होगी कि नहीं होगी ये जानने के लिए प्लीज देखते रहे यादें।
5: तो देखा आपने, गुलकी के डांस से ये साफ जाहिर हो गया कि उन्हें अपना ये लुक काफी पसंद आया है। बात करें सीरियल की तो देखिए, शुरू हो चुकी हैं शादी की तैयारियां और फिल्माया जा रहा है ये सीन जहां पर दिग्विजय है, डॉक्टर सृष्टि है और है आई साहिब यानी कि होने वाली सासू माँ।
0: उस चेहरे में और इस चेहरे में बहुत फर्क है। I'm not real, I'm AI. Let's see who can crack it. मतलब बालों की लटों से लेके सर के पिंपल तक सब डिटेलिंग AI इतना नेचुरल कर रहा है, दुनिया खतरे में।
5: भाई अब तक ये तय नहीं है कि क्या वाकई डॉक्टर सृष्टि की शादी दिग्विजय से होगी या डॉक्टर देव आकर शादी में ट्विस्ट लाएंगे। भाई ये तो सीरियल में आगे की कहानी में पता चलेगा ही, फिलहाल तो शादी का ड्रामा शुरू हो चुका है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: की तरह कभी कभी मनोरंजन की दुनिया में भी अचानक खबरों की बौछार हो जाती है, तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट जहां हम दिखाएंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया भी हर दिन नहीं होती है जैसी। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज़।

देश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं लॉक ऑफ फेम योगेश और आकांक्षा की, जो फिर एक बार साथ साथ फैंस के लिए आ रहे हैं। जी हां, आ गया है इनका नया म्यूजिक वीडियो, जिसका नाम है आंखों में तेरी। देख लीजिए इसकी झलक।

अनुष्का रंजन और आदित्य सील के घर आई हैं खुशियाँ। भाई इनके घर ट्विंस बेबी गर्ल्स ने जन्म लिया है। ऐसे में ये खुशखबरी इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाई है। हमारी तरफ से भी इन्हें ढेर सारी बधाइयाँ। वैसे आपको बता दें कि अनुष्का और आदित्य ने अपनी बेटियों का नाम भी रख दिया है वीवा रंजन सील और माही रंजन सील।

जल्द आने वाली है अजय देवगन की दृश्यम द कंक्लूजन, जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। ऐसे में देख लीजिए इसका पोस्टर। इसी के साथ अजय देवगन एक सुपर नेचुरल फिल्म में नजर आएंगे, जो लेकर आ रहे हैं रोहित गुजराज। इस हॉरर फिल्म का नाम है ग्रह प्रवेश।

0: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का नया प्रोमो सामने आया है, जहां खतरों से खेल रहे हैं ये खिलाड़ी। भाई इन्हें दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन टास्क तो कंप्लीट करना ही है।
1: रिलैक्स रिलैक्स परारा।
2: जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना कुछ गाड़ी खरीद रहा होता है, कुछ अचीव कर रहा होता है, सब बड़े सक्सेसफुल हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फेलियर्स पिछले एक साल के।
0: और फिर जावेद ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया है, बिग बॉस सीजन 20 से वो रिजेक्ट हो चुकी है। इससे पहले भी वो लॉकअप और खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 से रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसे में उर्फी अपने साल 2026 को ईयर ऑफ रिजेक्शंस बता रही है।
2: खतरों के खिलाड़ी कर लेती हूँ, उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड देन जहाँ मैं ब्रांड डील्स करती थी लाइक 5-6 महीने में, सडनली अब मैं 3-4 महीने में दो आधी कर रही हूँ, उससे ज्यादा मुझे मिली नहीं रही है। और हाँ, प्लेग्राउंड में भी मुझे रिप्लेस कर दिया इस साल, लास्ट ईयर में मेंटोर थी। और फिर मुझे लॉकअप का ऑफर आया तो मैंने सोचा कर लेते हैं, लेकिन फिर ना एक शो से मेरी एक दिन की डेट क्लैश हो रही तो दूसरे शो वालों ने करने नहीं दिए क्योंकि वो पहले साइन किया था। फिर जब लॉकअप शुरू हो गया तब मुझे दूसरे शो वाले बोलते कि अरे हमारा शो तो आगे चला गया है। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक, ये सब कुछ हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, हो जाने दो, मैं ना बिग बॉस ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक रियलिटी शो करना था, मतलब वो तो रखा ही हुआ है। सो व्हेन आई अप्रोच्ड बिग बॉस पीपल, हमारी मीटिंग हुई एंड देन दे जस्ट रिजेक्टेड मी, मतलब आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम बिग बॉस। I genuinely think that this year has been a year of rejection.
0: SS Rajamouli लेकर आ रही हैं नई फिल्म जिसका नाम है वाराणसी। और खबरों की माने तो वो ये फिल्म 50 लैंग्वेजेस में ला सकते हैं 120 कंट्रीज के अक्रॉस। ऐसे में वो चुन रहे हैं ह्यूमन

0: सहारिया, आसिफा सैयद, राकेश बेदी और अपार शक्ति खुराना की नई फिल्म प्रेम के तानु आ रही है, जिसका टीजर सामने आया है।
1: अच्छा, मैं भी तुम्हें सेम टू सेम शराब देता हूँ, तुम्हें भी 4 साल कोई लौंडा नहीं मिलने वाला।

0: संजय लीला भंसाली तैयार हैं अपने मच अवेटेड प्रोजेक्ट मधुबाला की बायोपिक के लिए, जिस पर काम सितंबर में शुरू होने वाला है। इसी के साथ संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग का भी रैप अप कर दिया है। वैसे खबरों की माने तो मधुबाला की बायोपिक में सारा अर्जुन निभाएंगी लेजेंडरी एक्ट्रेस का किरदार।
1: अरे पुष्पांडी, ले आया आपका सामान।
2: आराम बेटा, तू पुष्पा जी का काम करने में सबसे आगे रहता है।
3: हटिया, मेरे राम को कुछ मत बोलो।
2: पुष्पा जी, आप इस बच्चे का ज्यादा फायदा मत उठाया करो।
0: हो रहा है दिलों की रामलीला और तुमसे तुम तक का इंटीग्रेशन, जहां शो के प्रमोशंस में ये जुट गए हैं।
3: बस इसी प्यार और अपनेपन से ही तो रिश्ता इतना मजबूत होता है। अच्छा बेटा, ये तो बता, तो तेरी लीला मैडम है ना, उसके एग्जाम कब आ रहा है?
4: 24 तारीख से।
3: अच्छा, भगवान करे सब अच्छा हो।
2: सब अच्छा हो। लो चलता हूँ, ठीक है?
3: ठीक।
0: सामने आया है मिर्जापुर द मूवी का पोस्टर, आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर। जल्द होने वाली है हेना खान की बहन की शादी, ऐसे में वो पहुंच गई हैं कश्मीर और वहां के रिचुअल्स और फेस्टिवल और शादी की रस्मों को कर रही हैं वो दिल खोल कर एंजॉय।

0: जूही, जब तक तुम केस सॉल्व ना कर दो तुम घर के अंदर नहीं आओ।
1: जूही मूवी का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां जूही का सहारा बना है संयम।
2: जूही को अकेला छोड़ता ही नहीं,
3: छुड़वाइए, अलग कर पाइए इन दोनों को।
4: रिश्ते भी छाते की तरह ही होते हैं, एंड टाइम पर उनकी अहमियत समझ आती है, स्पेशली जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं, तभी तो समझ में आता है कौन हमारा साथ देगा और कौन हो जाएगा दूर। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर, और देखते हैं क्या बदले बदले से हैं यहाँ पर इनके रिश्ते के रंग, क्या कुछ हो रहा है अभीरा और अरमान की इस कहानी में आज। लेट्स चेक इट आउट।

0: तू है तो
1: मुक्ति की एक्सरसाइज मायरा का खाना
0: लगती है। तू है तो
1: मायरा को खाता देख परेशान मुक्ति।

अभीरा अरमान मायरा और मुक्ति में शुरू हुई बहसबाजी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा देखिए कैसे मुक्ति को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मायरा बैठकर कचौड़ियां खा रही है और वो सारी चीजें जिसे देख देख कर मुक्ति को हो रही है जलन। भाई मुक्ति भी ये सब खाना चाहती है लेकिन एक्सरसाइज के चलते उसे हेल्दी फूड ही खाना होगा और इसी बात को लेकर इनमें शुरू हो गई है बहसबाजी यानी कि खट्टी मीठी नोकझोंक। क्योंकि अरमान और अभीरा तो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं मुक्ति को फिट रखने की, खुद अरमान भी उसके साथ भाग रहे हैं और हो गए हैं एक स्ट्रिक्ट कोच।

0: आप ये सब नहीं ले सकते।
1: तो क्या ले सकती हो? मेरी को लिए फ्रूट बोल और मेरी बात चलिए।
0: अगर आप टेन राउंड चलाओ उसके बाद आना।
1: नहीं
0: टेन राउंड कब है ना? एक काम करते पानी के 15 राउंड करते हैं उसके बाद आपका जल्दी ब्रेकफास्ट करते
1: हैं। नहीं पापा मुझे वो खाना है जो पत्ते खा रही
0: है। अरे नहीं खा सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि बैडमिंटन टीम में आपको मायरा नहीं है।
2: और वैसे भी दो मैं तो फिर हम बॉडी को लगता नहीं तुम्हारी पास
1: तो उसमें
0: ठूक है। ओके ओके दैट्स इट।

0: बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चल रहा है मेरी तरफ से, तो बहुत रनिंग हो रही है, डाइटिंग हो रही है, इसे कचोरी खाते हुए देखना पड़ रहा है ऐसी, क्योंकि मुझे कचोरी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: और बहुत ही अच्छा सीन था भाई वो, ऊपर से आज मेरा बर्थडे,
0: बर्थडे इतना खाने, हाँ इतना लकी, आई मीन इतना लकी पर्सन, बर्थडे के दिन बैठ के बस खा रही है, बस खा रही हूँ मैं, भागे जा रही हूँ। तो मेरी तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो गई।
2: मुझे तो डांटना वाटना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऐसे मैं अपने अंदर की एक वो जगाती हूँ, जैसे हम बहुत सारी रील्स में देखते हैं ना कि मैं एक्चुअली वही चीज सोच, क्या है तुम दोनों को चलता रहता है, वो करने में मुझे मजा आता है, क्योंकि रील्स में एक्चुअली किसी के कोई बच्चे नहीं है, बट दे आर डूइंग अ स्किट, तो उस तरह से मैं सोच के थोड़ा सा कॉमिकल वे में लेती हूँ।
3: एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया, फिर एक बार शुरू हो गई है अरमान और अभीरा में बहसबाजी। दमानीस के चलते असल में कृष्ण की मूर्ति को लेकर यहाँ बवाल शुरू हो गया है, जहाँ अरमान और अभीरा के थॉट्स आपस में मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में मायरा जहाँ अपनी मम्मी अभीरा के साथ है, तो वही मुक्ति अरमान के साथ है। वही पहले तो इन दोनों में ही बहसबाजी शुरू हो जाती है और फिर पूरा परिवार एक साथ अपने व्यूज देने लगता है।
4: कपड़े बदलते हो, कपड़े नहीं हो गए, सूरज की रोशनी हो
5: गए। कैसे सोचने, यहाँ इस घर में किसी और को किसी और की परवाह है कहाँ?
4: ये बात सही है, परवाह के नाम पे दुनिया के सामने दरी बन के बिछ जाओ बस।
5: मत बिछो, लेकिन दूसरों की श्रद्धा की परवाह तो करो।
4: हाँ तो उन्हें हमारी श्रद्धा की परवाह है क्या?
6: ओके,
5: धीरे-धीरे जा रही
6: है, आओ पीछे,
4: ये सही है, परवाह के नाम पे दुनिया के सामने दरी बन के बिछ जाओ बस।
5: मत बिछो, लेकिन दूसरों की श्रद्धा की रिस्पेक्ट तो करो।
4: उन्हें हमारी श्रद्धा की परवाह है क्या?
5: ओए, तुम दोनों कहाँ चली?
4: इतना सारा सामान यहाँ पे फैला कर, ये सब कपड़े वपड़े यहाँ पर फैला के रखे हुए,
5: ये सब हमारे करने के लिए है। क्या है ये सब, तुम दोनों हेल्प नहीं कर पाओगी?
4: कितना काम करेंगे आप?
0: हम दोनों को पता है आप क्या कर रहे हो, तो बारिश की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे हो और हमारी भी हॉलीडे कर रहे
5: हो। इसका पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही बात के लिए लड़ रहा हूँ। भगवान जी से ऊपर कुछ नहीं होता।
4: तो फिर भगवान की सुनो ना, कान्हा जी हमें इंडायरेक्टली बता रहे हैं कि उन्हें दमानीस क्या नहीं जाना है।
5: तुम कान्हा जी का मैसेज समझे ही नहीं, वो हमें बेटर ह्यूमन बीइंग्स बनने का एक चांस दे रहे हैं।
4: ओ प्लीज, ये बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के चक्कर में मैं वर्स पोता नहीं बन सकता।
7: मुझे
4: दमानीस से लड़ने का कोई शौक नहीं है, पर अगर वो मूर्ति भी छिन गई दादी सा से तो उनका दिल टूट जाएगा। अभी हमारे सामने कान्हा जी को एक लालची बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए यूज करना चाह रहा है और तुम चाह रही हो कि मैं उन्हें नहीं रोकूं?
0: रोको पापा, मुझे आपकी बात बिल्कुल करेक्ट लग रही है और मुझे हमारे मम्मा की
3: ऐसे में इनकी बहसबाजी चल ही रही होती है कि अचानक अभीरा की तरफ एक बॉल आती है, लेकिन अरमान उसे बचा लेता है और फिर कहीं न कहीं अरमान को समझ में आता है कि अभीरा सही थी।
0: मैं पापा की साइड हो जाती हूँ क्योंकि मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है। ये मम्मा की साइड हो जाती है क्योंकि पापा का ये कहना है कि मतलब हमेशा से पदार्थ ही पूजा करते हुए आए हैं, तो इस बार दमानीस कर रहे हैं, तो दादी सा बहुत अपसेट हो जाते हैं और उन्हें मूर्ति नहीं देना है, तो इस वजह से पापा मैं पापा की साइड चली जाती हूँ, बिकॉज मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है, सही लगता है। और मैं मम्मा की साइड हो जाती हूँ क्योंकि मतलब पूजा तो अब होनी है कुछ भी करके, और उस मतलब वो मूर्ति सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे उदयपुर का जो है उस मूर्ति के ऊपर भरोसा आस्था है
1: बहुत सारे लोग,
0: हाँ बहुत, हाँ मूर्ति से तो हमारा ये है कि किसी भी मूर्ति में अगर हम दिल से चाहें तो वो आ सकता है, बट अगर सभी लोग चाहते हैं कि वो ही मूर्ति पूरे जो होती है हमेशा पूजा उसमें यूज हो, तो हमें दे देनी चाहिए वो मूर्ति, जो कि सही भी है।
3: सीरियल में तो काफी गोलमाल चल रहे हैं, लेकिन बात करें रियल लाइफ की तो आज है मायरा का रियल वाला बर्थडे, जिसे कुछ इस तरह ये सेलिब्रेट कर रहे हैं रील बनाकर।
7: बिठाओ बिठाओ दीदी,
3: वैसे इसी के साथ आज बताया माँ बेटी की इस जोड़ी ने, यानी कि अभीरा और मायरा ने, रियल बॉन्ड इनका कैसा है।
0: मुझे तो बर्थडे के दिन काम करना अच्छा लगता है, पूरा दिन नहीं हाफ डे अच्छा लगता है, बट हाँ मेरे को तो चाहिए था कि मैं बर्थडे के दिन शूट करूं, एंड मैं कर रही हूँ शूट। तो अब तक तो बर्थडे अच्छा ही जा रहा है, रात को हमने सेलिब्रेट किया, फोटोज़ वगैरह खींची जो मैं पोस्ट भी कर चुकी हूँ, एंड फिर यहाँ पे आई मैं सुबह, यहाँ पे सब ने विश किया और फिर मेरे कोरियोग्राफर्स आए थे, अनु मैम और रेजी सर, वो केक लेके आए थे, उन्होंने पूरा मेरा मुंह भर दिया था केक से, फिर मैंने फिर से सब साफ करके रेडी वेडी हुई, तो अभी सीन्स कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे तो। लेकिन आज बहुत कम लोग हैं, सिर्फ हम चार ही हैं, मैं, मम्मा पापा और मुक्ति, तो हम चार ही लोग हैं, तो बाकी सब पूरी फैमिली कल होगी।
2: अर्शिया बहुत ही टैलेंटेड, शी इज़ गुड एट सिंगिंग ऑल्सो, डांसिंग तो हम सब ने देखी है, बट शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी गुड एक्टर, वेरी डेडिकेटेड, फोकस्ड, सारी लाइन्स इसके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होती, हमारे हाथ में फिर भी एक बार होती है, तो इसके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होती, सब रट्टा मार के आती है, शी नोज एवरी थिंग एंड शी इज़ वेरी फोकस्ड एंड आई नो शी विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी काइंड एंड वेरी समझदार पर्सन। मतलब मैंने इतने टाइम में बहुत सारी सिचुएशन में इसको देखा है एंड आई थिंक इसने बहुत समझदारी के साथ उन सिचुएशंस में डील किया है, जहाँ पे इसकी एज में होकर वो समझदारी दिखाना इज थोड़ा डिफिकल्ट, मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज मैं व्हेन आई वाज एट हर एज आई डोंट थिंक आई वाज दैट
0: दैट मैच्योर,
2: बट या शी इज वेरी नाइस, कभी कभी डांट भी देती
0: हूँ, कभी कभी जब मैं, मतलब
2: जब ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं ना
0: सीन के बीच में, मैं तो कभी कभी हो जाता है ना, मैं तो करती, मैं फुल टाइम मस्ती करती रहती हूँ, तो कभी, बट जब सीरियस सीन होता है और कुछ तो हो जाते हैं, रुक जाओ अभी मार पड़ जाएंगे, बट हाँ ये सब तो चलता है हमारे बीच। और आज तक मैंने कभी, मतलब ऐसा दीदी के साथ शूट नहीं किया, तो इन रियल लाइफ भी दीदी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं, जैसे मायरा के कैरेक्टर अभी 18 इयर्स ओल्ड हुआ तो उन्होंने वो
2: शी इज़ डूइंग सो वेल बिकॉज वो कैरेक्टर पकड़ना, शी इज जस्ट टर्न 16, तो थिंकिंग फ्रॉम इन द शूज ऑफ एन 18 ईयर ओल्ड इज डिफिकल्ट एट योर एज। मतलब एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी के बाद आपको लगता है कि अगर आप जैसे 25 साल के हो तो आप 30 साल के इंसान से दोस्ती कर सकते हो, लेकिन आप 15 के हो तो 20 साल के इंसान से दोस्ती करना मेंटल उस समय गैप बहुत ज़्यादा होता है, बट बीइंग एट हर एज एंड 18 की तरह सोचना एंड देन फिर वो सारी चीजें करना एंड चेंज ओवर लाना,
0: इन्होंने तो बहुत हेल्प की है मेरी, लाइक
2: नहीं
0: की है, अरे झूठे, टोन ऐसा, टोन मेरी, टोन मतलब पिच हाई हो जाती थी कभी कभी,
2: बोला था इसने खुद सब कुछ किया है, मैंने कोई हेल्प नहीं किया, दैट्स नॉट हेल्प।
3: तो भाई बात करें सीरियल की, तो अब देखना होगा कि कान्हा की इस मूर्ति को लेकर अभी कौन से नए बवाल होंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: उम्मीदों की बारिश में हमेशा खुशियों का छाता साथ रखना चाहिए, कुछ ऐसा ही कह रही हैं हमसे हमारी नौनिका। तसे नौनिका और ईशान, हम तो चाहते हैं कि अब आपकी जिंदगी में हो सिर्फ और सिर्फ प्यार की बारिश, बस यूं ही रहें आप एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या करें, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो शायद क्रिएट करेंगे आपके बीच ढेर सारा कन्फ्यूजन, बस आपको रखना है एक दूसरे पर विश्वास। लेकर चलते हैं आप सबको सैराब के सेट पर।
9: जी हाँ, नौनिका बोधी प्रेग्नेंट है।
3: श्रेया ने किया खुलासा। क्या नौनिका है प्रेग्नेंट? घर में शुरू हुआ नया बवाल। स्टॉप प्लस के सीरियल सैराब में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। भाई दादा दादी की एनिवर्सरी है और इस खास मौके पर देखिए कैसे सभी परिवार वाले एकजुट होकर खाना खा रहे हैं सेलिब्रेशन के बाद। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट का तड़का तो तब लगता है जब पहुँचती है नयनिका और श्रेया करती है खुलासा कि नयनिका प्रेग्नेंट है। भाई ये बात सुनकर खुद नयनिका भी सदमे में है और घर वालों को लगा है जोर का झटका।
7: आ जाओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे।
10: हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अब तो बोली को और भी कुछ का ख्याल रखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा क्योंकि इनके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है।
9: जी हाँ नयनिका बोधी प्रेग्नेंट है।

0: जी आपने देखी है वो ये न्यूज़? एक्चुअली मुझे भी अभी पता चला, अब आगे देखते हैं क्या होता है।
1: अब अचानक से ये पेपर मैंने डिस्कवर किया और श्रेया जैसी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट्स है, वो ऐसे ऐसे ढूंढ के निकालती है खबरें। तो उसको वो कमरे में गई थी फॉर सम रीज़न और उसने देखा कि एक एनवेलप जो है वो है, और उसने खोलकर उसने ये सोचा कि ईशान ने तो कुछ नहीं भेजा ना, लव लेटर है। इस क्यूरियोसिटी से उसने खोला और देखा वहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, और प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है, और प्रेगनेंसी रिपोर्ट है नौनिका की। तो वो भी शौक थी एंड खुश भी थी कि अब फाइनली वो घर से जाएगी। वैसे तो घर वालों ने उसे बोल दिया है कि तुम घर से जा सकती हो, पर नौनिका जा नहीं रही है बिकॉज हॉस्पिटल क्वार्टर्स में अभी कमरा खाली नहीं है, कहाँ पे रेंट लेगी नहीं लेगी, कुछ ना कुछ बहाने वो कर रही है। श्रेया के हिसाब से तो उसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि श्रेया के माइंड में ये भी है कि प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा ना देना पड़े। तो अभी उसके पास एक नया हथियार, श्रेया के पास एक नया हथियार आया है जो है ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट, और घर वालों के सामने वो रिवील कर रही है कि ये देखिए प्रेगनेंसी रिपोर्ट, नौनिका बोधी प्रेग्नेंट है।
2: भाई ये तो है सीरियल में आने वाला ट्विस्ट, लेकिन इससे पहले भी तमाशा हुआ था। असल में मिनी और रोमियो नौनिका को अपने कमरे से परिवार वालों के पास लेकर आए थे, और नौनिका लेकर आई है दादा दादी के लिए गिफ्ट उनकी एनिवर्सरी के मौके पर। लेकिन यहाँ श्रेया ने आग में घी डालने का काम कर दिया, और देखिए कैसे षड्यंत्र रचकर इस खुशी के माहौल को गम में बदल दिया, जहां सभी लोग नौनिका को ताने पर ताने दे रहे हैं, यहां तक कि उसकी बेटी टिन्नी भी नौनिका को खरी खोटी सुना रही है।
3: हमारी हिम्मत की बात है, हमारे लिए गिफ्ट लाइए, अब तो पैसे का रोक चुका है। देखिए वो दिन हमें पता है आपके पास पैसे की कमी तो अब है नहीं, आपको कोई मिल नहीं गया पता नहीं है गिफ्ट आप इसके पैसे से खरीद कर लाए, पर जहाँ तक मैं अपनी ससुराल वालों को जानती हूँ ना, तो किसी और के गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी।
4: आप ये सब क्या कह रहे हो, मम्मा जी ये किसी और के पैसे से खरीद है क्या? मम्मा के पास अपनी जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, मम्मा को क्या जरूरत है किसी और से पैसे लेने? मम्मा हम सबको पहले भी दे रही थी, आज भी दे रही है।
3: मम्मा ने ये गिफ्ट लाया, आपको इस घर में अपनी कोई भी जगह वापस नहीं मिलेगी, चाहे इस घर के लोग आपको यहाँ रखने के लिए मान दीजिए, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है, तो ये बिचारी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो आप? ये गिफ्ट लाकर आप सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो, तम्मी और बॉ दादा को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, आप किसी को खरीद नहीं पाओगे, स्पेशली मुझे, समझ गए ना आप?
5: अपनी ही माँ को और कितना जलील करेगी तिन्नी?
3: आपको पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान क्या है? कि आप मेरी माँ हो।
5: अगर ये मेरे हाथ में होता ना तिन्नी, तो मैं कब का मिटा देती, पर ऐसा करना मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे हाथ में है।
3: मैं चाहू ना तो मैं अपनी जिंदगी से आपको हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती हूँ।
6: तुम सब जो कर रहे हो ना बहुत गलत है।
3: एक इंसान जो एक एनिवर्सरी पे छोटा सा गिफ्ट लेके आया है, उसको आप इतने ताने मार रहे हो।
2: ऐसे में टिन्नी के साथ साथ घर वाले नौनिका के खिलाफ है, लेकिन नौनिका के साथ अगर कोई है तो वो है मिनी और रोमियो, जो उसके साथ डटकर खड़े हैं। लेकिन फिर भी सभी के ताने सुन नौनिका के आंसू बहने लगे और खुशी गम में बदल गई।
3: मिनी रोमियो लिसन, जरूरत से ज्यादा प्यार और अपनापन मत दिखाओ। तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब किसी की खुद की बेटी उनको दूर कर दी है, तो जरूर उसके पास कुछ वजह होगी।
7: मान लिया हम लोग इतना नहीं समझते, लेकिन आप तो सब कुछ अच्छे से समझते हो ना, तो फिर समझाओ सबको।
3: सॉरी मम्मी, मैं आपको नीचे लेकर आया और सबके सामने आपकी, आज इन लोगों ने घर में इतना खुशी का माहौल है, खाना लेके आया, किसी ने आपसे शिक्षा तक नहीं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो ठीक है हम भी नहीं खाएंगे।
0: ऑलरेडी नौनिका ये फेस कर ही रही है कि एक छोटा सा जनरेशन गैप है, जहाँ पर वो बच्ची उसको समझ नहीं रही है, और बीइंग नौनिका उसने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अपनी इच्छाओं को ऊपर रखा था, अपने दिल से कुछ चीज़ें फील की थी, तो वो अगर उसकी बेटी के लिए गलत है तो वो उसने वो भी बंद कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बेटी खुश नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ. स्टिल आफ्टर गिविंग अप एवरीथिंग उसकी बेटी फिर भी उसको नहीं समझ रही है, तो ऑब्वियसली वो एक दर्द है उसके अंदर. और अभी मम्मी पापा के जो मम्मी माँ बाबा हैं उनकी 50th एनिवर्सरी पे वो गिफ्ट लेकर आई है. एक्चुअली मैं वो नहीं आना चाहती थी नीचे, वो तो चुपचाप रख देती बेडरूम में, लेकिन जो मिनी और रोमियो हैं घर के और बच्चे, तो वो मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं, समझते हैं मुझे, तो वो चाहते थे कि मैं खुद आके सबके सामने गिफ्ट दूँ ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं ऐसे ही रह रही हूँ घर में. दैट ऑल्सो मेक सेंस, लेकिन कोई भी परिवार वाला समझ नहीं पाया, तो नौनिका यहाँ पे फिर से स्टेप बैक हो गई और तिनी ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई. पर अब कुछ किया नहीं जा सकता बिकॉज तिनी नहीं समझने वाली, तो आई थिंक टाइम विल ओनली हील द सिचुएशन, अब ऐसा लग रहा है.
2: तो भाई अब नयनिका अपने रिश्तों को कैसे संभालेगी ये तो देखा जाएगा ही, लेकिन फिलहाल क्या है नयनिका की प्रेगनेंसी का राज ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
8: बस दुआ इतनी ही है कि जिंदगी के हर मौसम में अपनों का साथ बना रहे. मन्नत हम तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ना रोजाना हो खुशियों की बारिश, आपके चेहरे पर रहे प्यारी सी मुस्कुराहट, लेकिन क्या करें जैसा ही हम ऐसे सोचते हैं वैसे ही आ जाता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, फिर वो खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, वो खत्म होता है तो तीसरा आ जाता है, लेकिन तभी तो बना रहता है हमारे लिए एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ. लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास.
2: मान्यता का खूनी खेल, विक्रांत ने जड़ा मान्यता को थप्पड़. कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर मान्यता दुआ को मारने पर तुली हुई है. उसे लग रहा है कि विक्रांत उससे दूर हुआ है तो उसकी वजह दुआ ही है, इसलिए देखिए कैसे वो उसे मारना चाहती है. लेकिन सही समय पर वहां विक्रांत आ जाता है जो मान्यता को थप्पड़ जड़ता है और दुआ को बचा लेता है. तभी वहां पर मन्नत और धैर्य भी आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि विक्रांत की याददाश्त लौट आई है.
9: तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की?
10: दुआ,
11: तुम्हारी वजह से अभी मुझसे दूर चला गया, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, आज तो तेरा मरना तय है.
9: तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की?
12: अगर इसकी याददाश्त वापस आई तो मेरा खेल खत्म.
2: लेकिन यहाँ पर विक्रांत अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और मान्यता से मीठी मीठी बातें करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर धैर्य के सामने ये सच का खुलासा हो गया कि विक्रांत की याददाश्त लौट आई है तो विक्रांत और मन्नत के प्लान पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि उन्हें धैर्य का खुलासा जो करना है. ऐसे में वो अपना नाटक कंटिन्यू करता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है. भाई मन्नत तो ये बात समझ जाती है और विक्रांत अपने गुस्से को दबाकर मान्यता से मीठी मीठी बातें कर रहा है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है.
9: वे वे वे क्या क्या क्या याद आ मैंने क्या बात कर
10: हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ओवन में डाल रही थी उसे। क्या इंसानों के राक्षस?
9: मैं एक बात कहूँ, बात है ना बहुत आगे बढ़ी, मैं एक बात कहता हूँ, मेरी गलत सुनो, जो इसने किया ना माफी के लायक नहीं है। अंकल जी मैं मानता हूँ माफी के लायक नहीं, पर बात यह है ना कि उसने ना मेरे खातिर किया है ना, मेरे खातिर किया, वो मेरे मिस कर दिया मुझे, लेकिन ना कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव और बात कुछ नहीं। देख पर देख मैं जानता हूँ तू उसकी माँ है, और नहीं नहीं तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, पर यह ना वो ना मैंने मिस कर दिया है कि नहीं, मैंने मिस कर दिया। और देख बात अगर कहेंगे गलती तेरी भी है, देखना उसकी शक्ल देखना, वो बस मेरे लिए आई है, वो आई है तो मेरे लिए ना यार। और अगर बात सच कहे बाजी तू बता, बात अगर कहे तो गलती इसकी भी है ना थोड़ी सी, अगर तू ये मेरे नाल शर्त नहीं रखती, बात सुन लो पूरी बात सुन लो उसके बाद बोलना जो बोल, अगर तू मेरे नाल शर्त नहीं रखती ना तो ये भी होता ही नहीं, तो मैं कहता हूं बस बाजी पुलिस को मत बुलाओ ना,
10: मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकती।
9: मेरी बात सुन तू, अच्छे से सुन ठीक है ना, तू है ना बस चार दिन की सब सेट हो जाना।
2: भाई फिलहाल तो विक्रांत ने सिचुएशन संभाल ली है, अब देखना होगा कि कैसे मन्नत और विक्रांत मिलकर सबको सबक सिखाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
8: इलेक्शन वाले छाते भी आते हैं जो सिर्फ हमें बारिश से ही नहीं बल्कि तेज धूप से भी बचाते हैं, और यहाँ आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि अभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली एंटरटेनमेंट वाली गुड न्यूज जो जुड़ी है आपकी फेवरेट कहानी से, जिसमें फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग मोड, यानी फिर से आया है आपके लिए एक नया ड्रामा। सो गेट सेट गो।
2: वृंदाने की दिनेश की जमकर धुलाई, पकड़ा गया वृंदा के गहनों का चोर, मार्केट में शुरू हुआ तमाशा, जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज वृंदा मार्केट गई थी और वहां पर उसने देख लिया उस चोर को जिसने वृंदा को बहुत पीटा था और उसके सारे गहने चुरा कर भाग गया था। भाई पहले तो वृंदा उसका सामना करने से डर रही है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उससे बदला लेने के लिए और उससे सवाल पूछने के लिए देखिए कैसे भरे मार्केट में इस लौकी से वो कर रही है दिनेश की जमकर पिटाई, और साथ ही साथ पूछ रही है ढेर सारे सवाल भी, और दिनेश तो बुरी तरह से घबरा गया है।

पहले तो वृंदा ने अपने फोन से इस चोर का यानी दिनेश का वीडियो निकाला और फिर वृंदा को उसने पकड़ लिया। तो देखिए कैसे मार्केट वालों को इकट्ठा कर वृंदा ने उसे बराबर सबक सिखाया।

क्या कर रही है तू? हाँ रिकॉर्ड कर रही मुझे, रिकॉर्ड कर।

0: मैंने कोई चोरी नहीं की।
1: मेरे गहने का
0: है। कौन से गहने?
1: झूठ बोल रहे।
0: मैंने कोई गहने,
1: मुझे बेहोश करके मेरे गहने चोरी नहीं
0: किए। मैंने कुछ नहीं किया।
1: मैं चोर नहीं हूँ।
0: पहले बोल छोड़ने को। नहीं, अरे नहीं,

0: जी एक्चुअली फाइनली जिसने मेरी चोरी मेरे गहने चुराए थे और जिस वजह से इतना बड़ा क्योस हुआ था, मेरे सर पे चोट आई थी जहाँ पर मैं पहली बार स्वाति दीदी से मिलती हूँ और कृष्णा काकी मुझे गुस्सा हो जाती हैं, मुझे भगा देती हैं, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। वो आज पहली बार जब वापस से दिख रहा है तो पहले तो मैं डर जाती हूँ, लाइक मुझे वैसे नहीं है कि नहीं चोर को पकड़ लूँ, मैं डर जाती हूँ। और फिर जैसे तैसे कृष्णा काकी की बातें याद आती हैं कि अगर कोई भी आगे से उससे बदतमीजी करेगा तो क्या करेगी, थप्पड़ मारेगी, थप्पड़ मारना सिखाती हैं। तो जो वो सब बातें याद आती हैं जैसे जैसे करके वहाँ पर पहुँचती हूँ और उसे कन्फर्म करती हूँ।
1: लौकी से पिटाई होगी, उसके बाद डंडे बरसेंगे और बहुत बुरी तरह से पिटाई होगी, वृंदा और स्वाति दोनों मिलकर मारेंगे। मतलब स्वाति को पता नहीं चलेगा मैं हूँ, पर वो दोनों मिलकर मुझे बहुत पीटते हैं, बिकॉज मैंने वृंदा को पहले पीटा था, मतलब डंडे से मारा था और उसकी सारी ज्वेलरी चुरा ली थी। तो इस बार वो मार्केट में मुझे देख लेती है, एक दो बार पहले हिट एंड मिस हो चुका है, पर इस बार मार्केट में मुझे देख लेती है, घबराई हुई है मुझसे, पर एट द सेम टाइम वो बोलती है कि नहीं मुझे बदला तो लेना है, मुझे अपने, अच्छा मेन उसका है कि मुझे अपने जो मेरी जो कंगन है, माँ की आखिरी निशानी है मेरे कंगन, वो मुझे चाहिए।
2: जहाँ एक तरफ वृंदा को अपना चोर मिल गया है तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र की हालत बेहाल हो गई है। देखिए कैसे वो सड़क पर ही सो रहा है, लेकिन अब तक नरेंद्र से वृंदा का सामना नहीं हो पाया है। तो भाई अब कहानी में कौन कौन से नए ट्विस्ट और आने बाकी हैं ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: तो आज का हमारा ये मानसून स्पेशल सफर यही समाप्त होता है। याद रखिए कि एक छाता हमें यही सिखाता है, सिर्फ बारिश से नहीं बचाता बल्कि हर मौसम में तैयार रहना भी सिखाता है। और हमारी ये जो जिंदगी है ना, ये भी मौसम की तरह है, कभी धूप तो कभी छांव, लेकिन अगर साथ अपनों का है ना तो जिंदगी का ये सफर आसान हो जाता है। आप रखिए अपने अच्छे से ख्याल। अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहु और बेटियां। बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: दिल्ली NCR में आंधी बारिश के साथ आई बहार, मौसम हुआ खुशगवार, कई इलाकों में झमाझम बरसात, गर्मी और उमस से मिली राहत। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे, भक्तों की भारी भीड़। चमोली में बारिश के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा जारी, अब तक 273,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। रायबरेली में छात्राओं ने सीएम योगी को तिलक लगाकर बांधी राखी, सीएम ने उपहार के साथ दिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में सैलानियों को लुभा रही विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने किया दीदार। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत, अमेठी में बनी 100% स्वदेशी AK-203 शेर असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और अमेरिका करेंगे बड़ा संयुक्त मिलिट्री अभ्यास, अगले महीने चीन और पाक सीमाओं पर होगी एक्सरसाइज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: दिल्ली NCR में सावन के आखिरी सोमवार पर मॉनसून ने ली जबरदस्त करवट, आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी। दिल्ली NCR में बारिश के साथ ही तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, लोगों को उमस से मिली राहत। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से खड़क सिंह मार्ग के कई इलाकों में भर गया पानी, कनॉट प्लेस के पास शिवाजी स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जल भराव। गाजियाबाद में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से दी राहत, मौसम हुआ खुशगवार। गुरुग्राम के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, बिजली चमकने के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली हवाएं। देश के कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध का एक हिस्सा टूट गया, सैकड़ों एकड़ में फसलें डूब गई, राहत बचाव का कार्य जारी। बिहार के दानापुर में गंगा और सोन नदी का जलस्तर खतरे के पार कर गया, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर, कई गांव डूब गए, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। वाराणसी से राहत की खबर, धीरे धीरे कम हो रहा गंगा का जलस्तर, घाट से उतर रहा पानी। पवित्र सावन का अंतिम सोमवार आज देवघर से लेकर काशी तक हर हर महादेव की हो रही जय जयकार। काशी में महादेव का भव्य श्रृंगार, सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की कतारें। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों ने लगाए बाबा के नाम के जयकारे, माहौल में खुली तेवता। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, शिव भक्तों ने किया महादेव का जलाभिषेक। सावन के आखिरी सोमवार पर मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में उमड़े लाखों भक्त, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। बाबा बाबुलनाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, हर हर महादेव के जयकारों के बीच में दर्शन पूजन जारी। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़े कांवड़िए, बाबा का पवित्र नदियों के जल से कर रहे जलाभिषेक। कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का समंदर, कतारों में लगकर भक्त कर रहे महादेव के दर्शन। समस्तीपुर में अंतिम सोमवारी पर प्रसिद्ध थानेश्वर स्थान मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा पाठ जारी। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, बड़ी संख्या में लोगों ने किया पूजा पाठ। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता, श्रद्धालुओं ने बेलपत्र गंगाजल से किया भोलेनाथ की पूजा अर्चना। गुजरात में दूसरे सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। लखनऊ में सावन के आखिरी सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, आखिरी सोमवार में भक्तों ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल की भस्म आरती में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, दूध दही घी शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का हुआ पंचामृत अभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, विधि विधान के साथ हो रही महादेव की पूजा अर्चना। जयपुर में सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने ताड़केश्वरनाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा परिसर। हरिद्वार में कणखल महादेव मंदिर में पूजा पाठ का दौर जारी, भक्त कर रहे जलाभिषेक। रोहतास में पायलट बाबा आश्रम स्थित सोमनाथ मंदिर में अघोरेश्वर महादेव के शिवलिंग की हुई विशेष पूजा अर्चना, साल में दो ही बार खुलते हैं मंदिर के पट। एमपी के छतरपुर के जटा शंकर धाम में शिव भक्तों की भीड़ लगी, भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी। सावन के अंतिम सोमवार पर शिव भक्तों ने किया बाबा का रुद्राभिषेक, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा पूरा परिसर। छतरपुर के जटा शंकर धाम में पूरी होती है हर मनोकामना, कई सालों से देश के कोने कोने से आते हैं शिव भक्त। बोलबम के जय घोष से गूंजा नागेश्वरनाथ का मंदिर परिसर, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी में आने वाले 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों के लिए भंडारे की चल रही तैयारी, 80 क्विंटल कद्दू की सब्जी, 65 क्विंटल आटे की पूड़ियां और मिठाई भी होगी तैयार। भक्तों के लिए खाना बनाने में 150 से ज्यादा लोग दिन रात में जुटे हैं, करीब 3 दिन में इतना बड़ा भोजन तैयार किया जा रहा। आज निकलेगी बाबा बैजनाथ की शाही सवारी, सवारी में आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त भी हिस्सा लेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों को पंडाल में बिठाकर व्यवस्थित तरीके से करवाया जाएगा भोजन। भक्तों की एंट्री के लिए की गई बैरिकेडिंग और पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफ पंडाल भी। केले के पत्तों पर रखी जा रही पूड़ियां, आगरमालवा के लोग मिलकर भक्तों को परोसेंगे भोजन, कई साल पुरानी है ये परंपरा। बगहा में सावन के आखिरी सोमवारी पर नर्मदेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 80,000 श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। हाजीपुर बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बरसात, भक्तिमय हुआ माहौल। पाली में सावन के दौरान मंदिरों में आकर्षक झूलों में झुलाया जा रहा भगवान कृष्ण को, अलग अलग झांकियां और सजावट श्रद्धालुओं को कर रही आकर्षित। रंगजी मंदिर में चलित झांकियों के साथ भगवान के मनमोहक स्वरूप के दर्शन हो रहे, रघुनाथ मंदिर के आदमकद झूले भी श्रद्धालुओं को खींच रहे अपनी तरफ। गोपीनाथ मंदिर में कृत्रिम फूलों से हरियाली के बीच सजाया जा रहा भगवान का झूला, दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु। भारी बारिश और ठंड के बीच भी हेमकुंड साहिब पहुंच रहे श्रद्धालु, पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे यात्री। हेमकुंड साहिब की 23 मई से शुरू हुई थी यात्रा, अब तक 2,73,300 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। मानसून की चुनौती के बीच में यात्रा मार्ग पर आवाजाही जारी, श्रद्धालुओं के लिए लंगर और गर्म भोजन के साथ मेडिकल टीम की तैनाती। इस साल अब तक 22,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे फूलों की घाटी, रंग बिरंगे फूल और बारिश के बाद खिली धूप बढ़ा रही घाटी की खूबसूरती। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मी जी नाथ महाराज मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, ड्राई फ्रूट से किया गया बाबा का श्रृंगार। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर वंदे भारत ट्रेन का ड्रोन विजुअल पोस्ट किया। जंगल के बीच लकीर से गुजरती ट्रेन के विजुअल्स को लोग कर रहे काफी पसंद, रेल मंत्री ने लिखा मेक इन इंडिया के नए ट्रेन जमाने की शुरुआत। दमन में मॉनसून फेस्टिवल का भव्य आगाज, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी मुख्य अतिथि। फेस्टिवल में सांस्कृतिक परेड, लाइव बैंड, म्यूजिकल नाइट्स बनी मुख्य आकर्षण का केंद्र, कई मशहूर हस्तियां भी बनेंगे आयोजन का हिस्सा। दमन के मॉनसून फेस्टिवल 2026 में मुखौटे पहनकर पहुंचे लोग, भांगड़ा और ढोल ने जमाया यहां पर रंग। शतरंज की दुनिया से भारत के लिए शानदार खबर, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने जीता कानिशा ओपन शतरंज टूर्नामेंट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है।

0: यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश के साथ आई बहार, मौसम हुआ खुशगवार, कई इलाकों में झमाझम बरसात, गर्मी और उमस से मिली राहत। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे, भक्तों की भारी भीड़ लगी। चमोली में बारिश के बीच में हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी, अब तक 2,73,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। रायबरेली में छात्राओं ने सीएम योगी को तिलक लगाकर बांधी राखी, सीएम ने उपहार के साथ दिया आशीर्वाद भी। उत्तराखंड में सैलानियों को लुभा रही विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, अब तक 22,000 से ज्यादा

0: ज्यादा लोगों ने किया दीदार। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत, अमेठी में बनी 100% स्वदेशी AK-203 शेर असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और अमेरिका करेंगे बड़ा संयुक्त मिलिट्री अभ्यास, अगले महीने चीन और पाक सीमाओं पर होगी एक्सरसाइज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से हो जाते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, उसका विधान और सावधानियां भी बताई गई हैं। तो ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा क्या है।

0: स्वयं।
1: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। वे देवताओं के भी हैं और असुरों के भी, तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है।
2: देखिए, श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव से अपने कल्याणार्थ कृपा प्राप्त करने का चातुर्मास में से सबसे अच्छा समय कहलाता है। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, रुद्राभिषेक जलाभिषेक आदि कर लेते हैं, तो पूरे श्रावण मास का शुभ फल आप प्राप्त कर लेते हैं।
1: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शंकर रुद्र है और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। माना जाता है कि शिव शंकर को जलाभिषेक सबसे अधिक प्रिय है और वो रुद्राभिषेक से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं।
2: शिव कल्याणार्थ है, शिव का अर्थ ही कल्याण देने वाला है। अगर आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकती है। शिव पूजन में उसकी अलग अलग प्रकार की वस्तु या सामग्री से भगवान का अभिषेक करने से भगवान क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं। एक लोटे जल से ही जो आपको वरदान दे दे, वो केवल भगवान शिव ही है। शिव अपने भक्तों में देव है, दानव है, मनुष्य है, कोई भेद नहीं करते। उनसे मांगने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
1: रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक में शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहाँ की नकारात्मकता का अंत होता है।
2: भगवान को अभिषेक बहुत पसंद है, तो जल दूध शहद आदि से जो अभिषेक करता है वो अपने मनोकामना मन इच्छित वरदान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कंठ में भगवान के हलाहल विष है, नीलकंठ नाम तभी है उनका, तो जो भगवान को जल अर्पण करता है भगवान को उससे अति आनंद अनुभव होता है और भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद देते हैं, उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
1: रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और खास जानकारियाँ देंगे। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन की कोई भी तिथि हो, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काट कर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।

0: शिव पुराण में है रुद्राभिषेक का गुणगान। कानन जलधारा के पान से महादेव देंगे वरदान। माना जाता है कि रुद्राभिषेक से न सिर्फ पाप का नाश होता है बल्कि रोग संबंधित बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विशेष कामनाओं के लिए रुद्राभिषेक से जुड़े प्रयोग अमोघ माने जाते हैं। किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। रुद्राभिषेक की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं।
1: देखिए रुद्र अभिषेक में भगवान का जो रुद्राष्टाध्यायी कहलाता है यानी कि भगवान के प्रशंसा के जो मुख्य मंत्र हैं, वो भगवान के आगे सम्मुख में कहे जाते हैं। वेद ध्वनि भगवान को अति प्रिय है क्योंकि वेदों को भगवान ने उत्पन्न किया है। साथ में अनवरत रूप से जल और दूध से अभिषेक चलता रहता है तो भगवान को तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं।
0: शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें? मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं।
1: किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराएं क्योंकि रुद्रा अभिषेक करने के लिए जो वेद मंत्र है वो ब्राह्मणों के कंठ में है। यदि ब्राह्मणों के बाद न करें तो केवल ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर मंत्र या नमः शिवाय से आप कर सकते हैं, जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। परंतु विधि विधान पूर्वक सभी प्रकार की सामग्रियों के साथ में, 16 प्रकार की सामग्रियों के साथ में भगवान का अभिषेक करें। साथ में बिल्वार्चन अवश्य करें, साथ में बिल्व पत्र को भगवान के 1008 नामों के साथ उनको अर्पण करें। ऐसा कौन सा सुख है धन संपत्ति विवाह जीवन में रोग मुक्ति जो इस प्रकार से अभिषेक करने से सफल ना हो जाए।
0: कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी, अब ये भी जान लीजिए। रुद्राभिषेक की वस्तुएं और प्रभाव। घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने रुद्राभिषेक कितना मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिवजी का निवास का ध्यान जरूरी करना है, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। महादेव का रुद्राभिषेक किन तिथियों पर करना है और किन तिथियों पर नहीं करना, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे।
2: शिव ही रुद्र हैं और मन में कामना कोई भी हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूरी कर देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवादि देव नहीं दे सकते। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही है शिव, उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। महाशिवरात्रि, सावन और प्रदोष की तिथि शिव को प्रसन्न करने और कामना पूर्ति के लिए सबसे मंगलकारी मानी गई है। हर तिथि पर अलग विधान के साथ, अलग पूजन सामग्री के साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिससे अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा, इसलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है तब क्यों रखना चाहिए हमें समय का ध्यान।
1: सबसे पहले अपना ध्यान ना भटकने दे और अपने पवित्रता का ध्यान रखें, शिवमय होके करें। देवो भूता देवो भवेत हम जब कहते हैं तो भगवान के जैसा पहले स्वयं बनना पड़ता है, तब भगवान का पूजन करना चाहिए। तो स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके, त्रिपुंड आदि चंदन या भस्म आदि युक्त होकर फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए, तब उसका सुफल प्राप्त होता है।
0: रुद्राभिषेक में रखें ध्यान, बिना शिव जी का निवास देखे कभी रुद्राभिषेक ना करें, इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना जरूरी है जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा हो। आस्था कहती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वे कभी माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकार का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। शिववास और रुद्राभिषेक, मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिवजी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे तो शिवजी का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीय व दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। आदिदेव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब नहीं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई हैं। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन तिथियों पर करें अभिषेक।
1: देखिए, सबसे सुंदर तो प्रदोष कहा गया है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी द्वादशी का संयोग या त्रयोदशी में आने वाला ये सुंदर समय है और प्रत्येक दिन में भी, जैसे सोमवार भगवान को अति प्रिय है, प्रदोष काल जब होता है तब करना चाहिए या शिवरात्रि पे करना चाहिए। उस समय तो चार पहर का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
0: शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। तो देखा आपने, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना फलकारी है रुद्राभिषेक। तो आप भी शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं का ध्यान रखते हुए कीजिए देवादिदेव महादेव का श्रृंगार, जिससे त्रिलोकी नाथ की आप पर कृपा बरसेगी अपार। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई में अब गणेशोत्सव के रंग दिखने लगे हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियां अब अलग अलग इलाकों में पंडाल में लाई जा रही हैं। इसी के साथ ही सड़कों पर भी गणेशोत्सव का उत्साह दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा के स्वागत में मुंबईकर जुटे हुए हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बप्पा। ढोल ताशो की गूंज, हर तरफ भक्ति का उल्लास। मुंबई में दिखने लगा है गणेश उत्सव का उत्साह। गणेश उत्सव में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस पर्व के रंग अभी से मुंबई में गहराने लगे हैं। गजानन की प्रतिमाएं अब पंडालों की तरफ आने लगी हैं। इस आगमन का उल्लास भी अब मुंबई की सड़कों पर दिखने लगा है। रविवार को जब मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा सड़क पर उतरी तो उनके स्वागत के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर मौजूद थे। एक भव्य जुलूस के साथ काला चौकी के महाराज की सवारी आगे बढ़ी। काला चौकी चा महाराज की प्रतिमा इस बार बेहद खूबसूरत दिख रही है। बाप्पा के सिर पर शेषनाग की छवि उकेरी गई है। उनके हाथ में एक चक्र है जबकि दूसरे हाथ में शंख सुसज्जित है। तीसरे हाथ से बाप्पा भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। गजानन की इस सवारी के साथ हर तरफ ढोल ताशे की गूंज सुनाई दे रही है। ध्वजाधारकों का डांस माहौल को और जोशीला बना रहा है। बाप्पा की सवारी के साथ हजारों लोग डांस करते हुए चल रहे थे। बाप्पा की सवारी जब अपने पंडाल की तरफ बढ़ी तो पूरा इलाका जश्न के रंग में रंगता जाता है। गणेश चतुर्थी में अभी कुछ ही दिन बाकी है लेकिन बाप्पा के आने की खुशी ने हर भक्त को जोश से भर दिया है। काला चौकीचा महाराज के साथ कामराजचा महाराज की खूबसूरत प्रतिमा भी रविवार को दिखी। कामराजचा महाराजा ने एक हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है तो दूसरे हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाप्पा की सवारी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इनमें बच्चे बड़े सभी शामिल थे।
1: लोग देख मतलब जैसा विसर्जन होता है, विसर्जन होने के 2 महीने बाद ही हमारा फिर से तैयारी चालू हो जाता है कि गणपति का क्या क्या प्लानिंग है, मीटिंग्स वगैरह ये है। और गणपति बप्पा हमारे मेहमान नहीं है, वो हमारे ही है, हमारे बीच के ही है। हम सब में गणपति बप्पा है और हम हमेशा गणपति बप्पा को बहुत प्राथमिकता दिया हम लोगों ने। हमारे मंडल को आज 23 साल हो गए, इसीलिए हम लोग 23 तारीख को आगमन रखे हैं सर। मतलब 23 तारीख 23 साल हो गए और ये आगमनगढ़ है 23, वो हिसाब से हम लोग ने रखा था।
0: जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख करीब आ रही है, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में बाप्पा के भक्तों का जोश बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब बाप्पा अपने विशाल पंडाल में विराजमान होंगे और गणेश चतुर्थी के दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नागपुर में ढोल ताशा बजाने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया। यहां 4,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक साथ ढोल ताशा बजाया। ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

0: 4000 से ज्यादा ढोल ताशे जब एक साथ बजे तो इस जोशीले संगीत ने विश्व कीर्तिमान बना दिया। नागपुर में इन ढोल ताशों की गूंज जमीन से लेकर आसमान तक सुनाई दी। रविवार का दिन नागपुर में इन ढोल ताशा ग्रुप के नाम रहा। जिंजी संवाद मुहिम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मकसद था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना। करीब 585 ध्वज धारकों ने अपने अपने ग्रुप्स के साथ इस महा आयोजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के लिए नागपुर समेत विदर्भ के अलग अलग शहरों से 2000 से ज्यादा ढोल ताशा ग्रुप्स को बुलाया गया था। इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ मौजूद थे। हर ग्रुप के ध्वजा धारक ने अपने ढोल ताशा ग्रुप का नेतृत्व किया। सभी ने मिलकर जब एक ही लय में ढोल बजाया तो वहां मौजूद हर शख्स जोश से भर गया और इस आयोजन ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को इस विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट भी दिया। नागपुर में हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आयोजन का मकसद भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, लेकिन इस आयोजन के जरिए महाराष्ट्र के तमाम ढोल ताशा ग्रुप्स को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका भी मिला और ये आयोजन नौजवानों के जोश और उत्साह की मिसाल बन गया। नागपुर से योगेश वसंत पांडे, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब बात मथुरा की कर लेते हैं। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन करवाने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है।
2: मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काली कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
3: हमारे के संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो शहीद बाल स्वरूप है और बालक को बाल के मौसम अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमें बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
2: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है, कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स की गई डाइवर्ट। देश भर के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार की रौनक, श्रद्धालु कर रहे महादेव का जलाभिषेक, हर हर महादेव की गूंज। राजस्थान के पाली में झूला महोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण के लिए बनाए गए खास झूले, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा जारी, अब तक 2,73,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। रायबरेली में सीएम योगी को छात्राओं ने बांधी राखी, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को दिया उपहार।

0: सोमवार और महासंयोग। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। आपको बता दें कि शिव में सावन है, आज चौथा सोमवार भी है, चौथा और आखिरी, और साथ ही साथ चार महासंयोग भी आज बन रहे हैं, तो आज इसी पर होगी बात। सावन महीने का चौथा सोमवार है, ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त महादेव के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। काशी से लेकर मुंबई तक हर ओर हर हर महादेव की गूंज है। तो सावन के आखिरी सोमवार पर क्या अद्भुत संयोग होगा, भोलेनाथ के पूजन से कैसे खुलेंगे सौभाग्य के द्वार, आज शिव कृपा पाने के क्या होंगे महा उपाय, किस मुहूर्त में बरसेगी शिव कृपा, भोलेनाथ के पूजन दर्शन का क्या विधान हो, महाराष्ट्र और गुजरात में अभी कितने सावन के सोमवार बाकी है, आज शाम आप कैसे करें पूजा, इन सभी पर होगी बात। हमारे साथ देश के बड़े ज्योतिषाचार्य, धर्मगुरु और कथावाचक भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है, आज शिव को प्रिय सावन का आखिरी सोमवार उनका है, यानी कि महादेव की कृपा पाने का एक और विशेष दिन है। सावन का सोमवार सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, ये दिन भगवान शिव की साधना आराधना को समर्पित है। देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर गोरखपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, जयपुर, तमाम जगहों पर मौजूद शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़ रहे हैं। हर ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। वाराणसी में भी भक्त महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
1: सावन का पावन माह हो और अंतिम सोमवार, ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनके जलाभिषेक करने से भक्त कैसे अछूते रह सकते हैं। यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। बीती रात से ही भक्तों के आने का सिलसिला, कतार में लगने का सिलसिला जारी हो गया था। मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया और कांवड़िया, आम भक्त, डाक बम, तमाम इन रूपों में भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं।
2: सावन के सोमवार के दिन बाबा के दर्शनों का सौभाग्य बहुत बिरलों को मिल पाता है और हम दोनों आए और दर्शन हो गए, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं प्रभु की कृपा के, बाबा के का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती।
3: आज का ये सौभाग्य हमें मिला है बाबा भोले की कृपा से। हम मुंबई में रहते हैं, ये हमारी धर्मपत्नी रजनी सिन्हा हैं। दो दिन पहले अचानक शायद बाबा का बुलावा आया, मैंने इनसे पूछा, बोले चल चलें, और आज दर्शन होकर बाहर निकले हैं। ये अविश्वसनीय है हम लोग के जीवन में।
4: आज चतुर्थ सोमवार है, बाबा का शुभ दिन है जो पवित्र माना जाता है सबसे, और हर बार हम लोग सोमवार को ही आते हैं।
5: लखनऊ से आए हैं हम लोग और यहाँ पे बस हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज दर्शन कर पाए आज के ऑस्पिशियस दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके।
1: उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं और अपनी अर्जी लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। तो रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
0: सावन, शिव और सोमवार। सावन में सोमवार का काफी महत्व है। आपको बता दें कि आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। 28 अगस्त तक दिल्ली और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में सावन रहेगा। इसी खास मौके पर काशी से प्रयागराज तक शिव मंदिरों में भीड़ है। सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हुआ था, इस बार सावन में चार सोमवार आए। पहला सोमवार 3 अगस्त को हुआ, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को रहा, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को था और चौथा सोमवार 24 अगस्त यानी कि आज है। आज महादेव की कृपा पाने का खास अवसर है। आज सोमवार को कई दुर्लभ योग भी बने हैं। आज सुबह प्रीति योग रहा, आज ही आयुष्मान योग भी है, वही हंस राज योग और बुद्धादित्य योग भी आज है। आज सिंह राशि में सूर्य बुध की युति है बनी है। आज रुद्राभिषेक काफी फलदायी बताया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में अब भी कांवड़ यात्रा चल रही है और इसी हफ्ते शुक्रवार को राखी और चंद्र ग्रहण भी है। वैसे महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में 28 अगस्त के बाद भी सावन है और वहां आज सावन का दूसरा सोमवार है। मुंबई में भी इस मौके पर काफी भीड़ उमड़ रही है।
6: ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, यही गूंज मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में गूंज रही है। हर शिव भक्त घंटों कतार में खड़े रहने के बाद बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं। श्रावण का दूसरा सोमवार है और देखिए किस तरीके की तस्वीरें बाबुलनाथ मंदिर से निकलकर बाहर आ रही है। सबसे पहले भक्तों की भीतर की तरफ भीड़ है, इस वजह से कैमरा वहां तक तो नहीं जा सकता है, लेकिन जहां तक हो सके बाबा के भीतर के प्रांगण की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहां पर जरूर दिखा देना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से यहां पर लोग स्पेशली बाबुलनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या रोजाना यहां आती है, करीब 10,000 से ज्यादा के लोग रोजाना आते हैं, लेकिन जब बात श्रावण और सोमवार की हो तो भक्तों का आंकड़ा तकरीबन 1,00,000 पार हो जाता है। ये जो कतार आप देख रहे हैं ये लगभग 2-2.5 घंटे लोग कतार में खड़े होकर के यहां तक पहुंचे हुए हैं और फाइनली बाबा के पास आकर के एक अलग ही तरह की ऊर्जा यहां पर लोगों में देखने को मिल रही है। शिव भगवान के ठीक सामने नंदी जी विराजे हैं जिन्हें फूलों से सजाया गया है। पूरा मंदिर सोने के कलर का होता है। खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में जो भी मिन्नतें कही जाए वो सीधे शिव भगवान तक पहुंच जाती हैं। देखिए आपको बताया कि करीब 300 साल पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर के प्रांगण का। थोड़ा सा कोशिश करते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से भी बात करने की, उसके बाद और भी आपको अपडेट देंगे। ऐसा लग रहा है बाबुलनाथ मंदिर में यहाँ आकर शिव भगवान का दर्शन करके, और क्या कुछ सुन रखा था आपने इस मंदिर के बारे में?
7: बाबुलनाथ मंदिर बहुत प्राचीन काल से है, मैं यहाँ 26 साल से आ रही हूँ इनका, और अशोक महाराज जी के कृपा से मैं इनका अभिषेक करती हूँ। हर साल मैं सावन के सोमवार आती हूँ, आज हमारा लास्ट सोमवार है तो बहुत ही आनंद आता है यहाँ आके।
6: अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या कुछ आज चढ़ा दिया कि बाबा बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं? क्या लगा आपको, क्या कुछ लाया था आपने आपकी थाली में फूलों वाली?
7: मैं लाई तो थी बाबा के लिए, मिष्ठान लाई थी चढ़ाने के लिए, बट बाबा को मैं क्या चढ़ा सकती हूँ, वो तो खुद ही मुझे सब कुछ देता है, मैं उसको क्या दूँ।
6: ये है श्रद्धा और भक्ति का अपार संपूर्ण मिश्रण। क्या नाम है आपका?
8: भाविका।
6: तो आप भी साथ में ही हैं?
8: हाँ जी, मैं उनकी बेटी हूँ।
6: कैसा लगा बाबा का दर्शन करके, पहले तो ये बताएं?
8: बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो मंदिर कम आती हूँ लेकिन जब श्रावण होता है मैं आती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा।
6: तो पंडित जी आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्या कहेंगे थोड़ा सा कुछ?
9: आज तो सबसे बड़ा है कि हमारे उत्तर भारतीयों का श्रावण सोमवार लास्ट सोमवार है, आज की विशेष महिमा है, और आज एकादशी के साथ द्वादशी भी लग गया है, तो इसके लिए इसका महिमा विशेष बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान महादेव की जो पूजन दर्शन करता है उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि आज विशेष श्रद्धा के साथ लोग व्रत करके आते हैं। जिनको सौभाग्य चाहिए, स्त्री चाहिए, आयु रक्षा चाहिए, दीर्घायु चाहिए, समस्त कष्टों से मुक्ति पाकर के लास्ट में शिव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं।
6: देखिए हम भी कोशिश करते हैं एक बार हमारा कैमरा भीतर की तरफ ले जाने के लिए, और किस तरीके से शिवलिंग की स्थापना यहाँ हुई है, कैसे लोग अपने हाथों में जल के कलश लेकर के और बकायदा आरती की थाली लेकर के, बकायदा फूल हार लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं, और किस तरीके से बाबा को लोग चाह रहे हैं ये देखे। मंदिर भी देखिए पूरी तरह से गोल्डन है, सोने की तरह मंदिर को सजाया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था है, फूल हार की व्यवस्था है, और बकायदा लोग जलाभिषेक करा रहे हैं। रुद्राभिषेक जो है मंदिर के बाहर के परिसर की तरफ किया जाता है, और ये जो वो गेट है जहां से वीआईपी और वीवीआईपी का ताता होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू रेवेनकर के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
0: और तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें आचार्य राज मिश्रा जी, ज्योतिष आचार्य और कथावाचक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी जुड़ रही हैं जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। वान्या आर्या जी ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वान्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ ज्योतिष आचार्य पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, एक तो सावन का महीना और ऊपर से आज का दिन यानी कि आखिरी सोमवार, इस दिन को सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है सनातन में?
10: श्रावण की स्पेशली अगर चार सोमवारों की बात की जाए तो पहला सोमवार जो कि धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा सोमवार श्वेता जी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा सोमवार सांसारिक कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है, और जो चौथा सोमवार है वो जो हमने पूरे सोमवार का व्रत किया है ना, पूरे श्रावण में जो शिव का पूजन किया है, उस पूजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फल है वो चतुर्थ सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करके, और भगवान शंकर से ये प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इस संसार में रहते हुए तो मुझे जो संसार के सुख वैभव है उसको तो प्रदान करें ही, और उसके साथ जब इस संसार से मेरी गति हो, जब मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हो जाएगी इस संसार के बाद, तो चौथा सोमवार जनरली मोक्ष प्राप्ति का सोमवार कहा जाता है। चौथे सोमवार को अगर श्रद्धा से कर लिया जाए तो ही जो पहले तीन सोमवार हमने किए हैं उसका श्रद्धा पूर्वक फल प्राप्त हो पाता है। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी जो चार सोमवार है, चौथा सोमवार वो सोमवार है जिसमें बाकी जो पूर्ण फल है जो पूरे श्रावण का वो प्राप्त होता है। भगवान शंकर के बारे में ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा भी जाता है कि छित फल बिन शिव औराधे और लाही न जोग यज्ञ जप साधे। भगवान शंकर वो देवता है जो हमारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार धन प्रदान कर देते हैं, इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बना देते हैं, हमारे भाग्य को परिवर्तित करने वाले अगर एकमात्र कोई देवता है तो भगवान शंकर है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जो तप करें कुमारे तुम्हारी भावियों में सकेंद्र पुरारी। तो जो भाग्य के परिवर्तन के लिए जो सोमवार श्रावण का माना जाता है वो यही चौथा सोमवार है जिस पर श्रद्धा से आराधना करने से भगवान शिव कृपा करते हैं और आपका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। आज तो वैसे ही आपने अपने रिपोर्ट में बड़ा सुंदर दिखाया श्वेता जी कि हंस नामक योग है और चंद्रमा आज अगर देखा जाए तो धर्म के क्षेत्र बृहस्पति के क्षेत्र में विराजमान है। बहुत सुंदर जी,
0: बिल्कुल हम उस चारों योग के बारे में भी बात करेंगे। नंदिता जी हमारे साथ बनी हुई। नंदिता जी आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि आज शिव जी की तो विशेष करके पूजा की ही जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज शिव जी की पूजा के साथ चंद्रमा का भी संबंध बताया जा रहा है, तो इस मन और चंद्रमा के संबंध को आप कैसे बताएंगे?
11: देखिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है। सावन का महीना है, आखिरी सोमवार है, और अगर आपकी ग्रह नक्षत्रों में कुंडली में चंद्रमा कमजोर है आपको बहुत जल्दी मेंटल एंजाइटीज हो जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, तो ये दिन तो अद्भुत दिन है कि इस दिन अगर आप शिवालय में जाकर अगर मीठे दूध से या चावल से बनी खीर से अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपकी चंद्रमा यहाँ पे एक अच्छा ठोस होता जाता है, अच्छे बेटर रिजल्ट लेके आता है। शिव जी के साथ तो वैसे भी चंद्रमा को उन्होंने अपने मुकुट की तरह धारण करा हुआ है, और उन्होंने ही नहीं, देखिए ये जो सावन का आखिरी सोमवार होता है ना, इस सोमवार और मंगलवार जो मंगला गौरी व्रत होता है, ये दोनों ही दिन शिव जी के अर्ध नारेश्वर स्वरूप का पूजन किया जाता है, और उनके इस पूजन से जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, और इस पूरे सोमवार या पूरे सावन में आपने जो भी संकल्प लेके व्रत रखा या नहीं भी रखा, तो इस दिन और कल मंगलवार के दिन, इन दो दिनों में अगर आप मिलके रखते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। शिव शक्ति की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी व्याधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो सारे हट जाते हैं। सभी ग्रह नक्षत्रों के स्वामी अगर कोई है, आराध्य कोई है, तो वो महादेव है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी, केवल चंद्रमा ही नहीं, किसी भी ग्रह से आप पीड़ित हैं, आज के दिन उस ग्रह से संबंधित किसी भी द्रव्य से अभिषेक करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी। जैसे अगर आपका गुरु वीक है तो आप चने की दाल से करिए, और सबसे ज्यादा तो लोग डरते हैं राहु केतु शनि से, तो अगर आप काले तिल दूध में मिला करके शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो इन तीनों ही चीजों से आपको काफी हद तक का निवारण मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेंगे, जीवन में सुख और शांति आएगी।
0: बिल्कुल, वान्या आर्या जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। वान्या जी, आज सुबह से ही जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं कि शिवालयों में देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है, लोग लगातार आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना जो है उसकी पूर्ति के लिए वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं कि भाई सावन के सोमवार की जो पूजा होती है उसकी सरलतम विधि क्या हो, हम कैसे पूजा करें, तो अगर मैं सरल भाषा में आपसे जानना चाहूंगी तो आप क्या बताएंगे दर्शकों को?
12: जी, थैंक यू सो मच श्वेता जी। आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आखिरी सोमवार है आप सभी के लिए, ये जो सोमवार है ये आपका कंप्लीशन का सोमवार है। जैसे भगवान शिव ने विष पी के संसार की रक्षा की थी, इसीलिए ये जो आखिरी दिन है इस पूजा में अगर आप बैठते हैं तो यहाँ पर ये जो आखिरी आपका दिन है इसमें ये जो है आप अपनी लाइफ की जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको जो है आज आपके दिन जो है आपको वो अपनी लाइफ से से निकालनी है और वो कहीं ना कहीं जब आप जल देंगे तो आप भगवान से ये ईश्वर पर जो है आप समर्पण कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आप पूजा कर सकते हैं, जैसे आप सुबह जल्दी उठे हैं और आपने जो है सिंपल पंचामृत से जो है आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर में जाके प्रदोष काल में स्पेशली अगर वहां बैठकर अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र की जो है आज के दिन आराधना करते हैं, या फिर भगवान शिव पर आप सफेद फूल अगर चढ़ा देते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो दूध में आप थोड़ा सा केसर डाल के भी चढ़ा सकते हैं, अनार के रस से भी आप जो है जल अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसमें एक चीज आप और भी कर सकते हैं, आप शमी के पत्ते जो होते हैं वो भी भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की भी साढ़े साथी चल रही है, जिन लोगों की भी ढैया चल रही है, जैसे अभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि जो है आप जो जिनकी ढैया चल रही है, तो आप शनिदेव से अगर कोई भी रीजन से आप परेशान है तो आप जो है शमी के पत्ते जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, आप रोज वाटर जो है वो आप जो है चढ़ा सकते हैं, और जब आप मंदिर जाए तो चंदन से जो है आप भगवान शिव का श्रृंगार कर सकते हैं और जो है चंदन से जो है आप तिलक कर सकते हैं सफेद।
0: लेकिन आज के दिन मंदिर में जाके शिव जी का श्रृंगार करना बड़ा मुश्किल है श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन हो जाए जल चढ़ा लें यही बहुत है।
12: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो आप सिंपल मंदिर के जो प्रांगण है अगर आपको वहां पर भी जगह नहीं मिलती है तो आप मंदिर के प्रांगण में बैठकर जो है अगर थोड़ा सा, बिकॉज उस प्लेस की वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जब एक बार आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको जो भी जगह वहां पर खाली मिले आप वहां पर बैठकर आप अपने जीवन में जो भी आपको चाहिए आंखें बंद कीजिए और भगवान शिव से जो है मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोले हैं, वो तो एक सिंपल एक सादे से भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, प्रकृति इस टाइम बहुत ज्यादा खुश है, तृप्त है और हर जगह आपको हरियाली दिख रही है, तो मैं ये यही मनोकामना करती हूँ कि आपके आपके जीवन के विशेष भी इसी तरह जो है इसी तरह मैनिफेस्ट हो, तो आज के दिन आप जरूर मैनिफेस्ट कीजिए। और आज आखिरी सोमवार है तो रात भर अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक उस पर अपने विश लेके एक पौधा आज के दिन आप जरूर लगाएं।
0: बिल्कुल, आपने बहुत कई तरह के उपाय बता दिए और किस तरह से पूजा विधि हो वो आपने सरलतम भाषा में आपने बताया। संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन देखिए जो वाने जी ने बताया कि किस तरह से आप पूजा शिवालयों में जाके कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि आज के दिन रुद्राभिषेक भी अगर आप करें तो उसका विशेष फल, उसका विशेष महत्व होता है, तो क्या रुद्राभिषेक के लिए कोई खास मुहूर्त है, किस समय लोगों को करना चाहिए?
13: जी, आज का जो मुहूर्त है सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है और शाम को जो है 6:05 तक का मुहूर्त है और निशारात्रि में भी आप कर सकते हैं। कहते हैं भगवान शंकर जो है जागृत अवस्था में, कहते हैं भगवान शंकर ऐसे देव हैं जो हमेशा जागृत अवस्था में ही रहते हैं और निशारात्रि में भी आप पूजा कर सकते हैं। अभिषेक का जो समय अगर शाम तक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर इसको पूरी विधि विधान से जो है करना चाहिए। और आज प्रीति नामक योग, शोभन योग और अच्छे योग भी बन रहे हैं और अमृत सिद्धि योग भी आज के दिन बन रहा है, और इन योगों में जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका जो है फल बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। और आज के दिन एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का जो है प्रभाव भी है, भगवान विष्णु और शिव दोनों की और माँ दुर्गा की, पार्वती जी की पूजा विशेष करके आज के दिन कर लेनी चाहिए। और इसकी विधि क्या है, कहते हैं कि रुद्राभिषेक का जो है तरीका है, आप सबसे पहले स्वच्छ होकर के बिना भोजन किए हुए सुबह और अगर आप शाम को भी करते हैं तो कम से कम जो है आधा घंटे का मौन धारण करके और ईश्वर में ध्यान करके पूरा मेडिटेशन से जो है ध्यान करें। नियम जो रहता है वो उपवास का रहता है और ध्यान का रहता है कि आप उपवास रखें, ध्यान रखें और भगवान को पूरी श्रद्धा से भक्ति से जो है पहले सबसे पहले जो है जल अर्पित करें, उसके बाद में जल अर्पण के बाद में जो है शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल उसमें मिला करके, और फिर दूध दही शहद गंगा जल और पंचामृत से जो है स्नान कराएं, फिर साफ जल से उसको धो करके और वापस से रुद्रीक अष्टाध्यायी का जो मंत्र है, शिव संकल्पमस्तु जो मंत्र है उनका, क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी में 8 अध्याय उनका पाठ, शांतिकरण और शक्ति वाचन आखिरी में पूरा कर लें, उसके बाद पुष्पांजलि कर दें और आरती करके फिर पुष्पांजलि करें। उसमें मंत्रों में जो मंत्र विशेष करके जो मंत्र है एक दो मंत्र मैं बोल देता हूँ, जिनको यजुर्वेद के मंत्र उनका उच्चारण करते हैं तो भगवान आपके मन में एक संकल्प की भावना आ जाती है। एक मंत्र बोलता हूँ, ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुपतस्य तथैवैति दूरं गणं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो तन्मे और मन में बसा है वो भगवान शिव है और उनकी आराधना करके रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करके और शुद्ध जल से आखिरी में स्नान करके फिर उनका पूजन करें और 5 जनेऊ चढ़ाएं, उनको जो है वस्त्र अर्पित करें, पार्वती जी की पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें, नंदी की पूजा करें, भगवान शिव की उपासना करें और जो भी उनके गण हैं उन सब की पूजा करके और विशेष विधि द्वारा जो है आरती करें और थोड़ा सा जल लेकर के अपने मस्तिष्क पे भी लगाएं और भगवान शिव को जो है साक्षात स्वरूप समझकर उनको प्रणाम करें। और घर में अगर आपके पास पारे का शिवलिंग है या कोई और छोटा शिवलिंग है तो उसको जो है उसकी जो पिंडी है उसको नॉर्थ की तरफ जो रखें, साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ रखें और आप ईस्ट की तरफ बैठ करके और ध्यान लगा करके और सिंगी लेकर के जिसे जल डालते हैं उससे घर पे भी अभिषेक कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है 11, 21, 51 और 101, 108 आप अर्पित कर सकते हैं तो उस प्रकार से जो उल्टा करके बेलपत्र चढ़ा दें और धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, शमी के पत्ते चढ़ा दें और भगवान शिव को जो है दूध दही तंडुल ये सब अर्पित किया जा सकता है। पर आज के दिन चावल का प्रयोग ना करें क्योंकि आज जो है आप देखें एकादशी भी है तो चावल ना चढ़ाएं और सफेद चंदन जरूर अर्पित कर दें। इस प्रकार से पूरे विधि विधान से भगवान शंकर के मंत्रों का उच्चारण करें। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापिकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम। इस प्रकार से भगवान शिव का जो है ध्यान करते रहें और ध्यान मग्न हो जाएं और भगवान शिव को अपना सब कुछ अर्पित कर दें और आज का हंस योग यही हमें सिखाता है।
0: बिल्कुल, निराकार मोकार मूलम तरीहम गिरा ज्ञान संसार पारंग तोहम। तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभात्री शरीरम, बहुत ही ये सुकून देने वाला भजन है और कंठस्थ मुझे है। अब एक तरीके से मैं कहूं कि रोज शिव जी की उपासना जब करती हूं तो ये जरूर मैं पढ़ती हूं और आज के दिन जैसा कि संजय जी ने आपने बताया कि ये बहुत जरूरी है। शिव जी की अगर विशेष कृपा आपको चाहिए तो आपको विशेष तरीके से उनकी पूजा भी करनी होगी। राजमिश्रा जी, आपके पास आते हुए हम बात कर रहे थे आज के दिन को लेकर, उसके महत्व को लेकर, हमने पूजन विधि भी जान लिया लेकिन साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं कि सावन के सोमवार के साथ आज विशेष कुछ योग भी बन रहे हैं जिसको लेकर आज का दिन जो है वो और खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे समझना चाहें,

0: सभी वो समय अपने आप सब ग्रह इत्यादि अनुकूल हो जाते हैं। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। श्रीराम चरित मानस के अंतर्गत भगवान राम का जब जन्म होता है तो लिखा है योग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भये अनुकूल। भगवान का स्मरण हुआ, भगवान के अवतरण का समय हुआ, देवताओं ने भगवान का स्मरण किया तो समस्त ग्रह इत्यादि अपने आप अनुकूल हो गए। और आप अभी रुद्राष्टकम की बात ही कर रहे थे, आप लोग चर्चा कर रहे थे श्रीराम चरित मानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 107 से 108 में लिखा, जहां लिखा है भगवान शंकर के लिए कि त्रयासूल निर्मूल नम सूल पाणी अजय हम भवानी पतिम भावगम्यम, जिसके स्मरण से दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की जो ताप है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल योग की बात करूं तो आज का योग भी बहुत सुंदर है। आत्मा का जो स्थान है ज्योतिष में उसको चौथा स्थान कहा जाता है, वहां पर देव गुरु बृहस्पति स्वयं उच्चस्थ होकर के इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं, जिसको हंस नामक योग की आज आपने भी स्टार्टिंग में चर्चा किया था और वो बन रहा है। और एक सौभाग्य की बात देख लीजिए, उस चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति के घर में चंद्रमा नाइन्थ हाउस के अंतर्गत काल पुरुष की गोचर कर रहे हैं, यानी चंद्र का और बृहस्पति का, धर्म का और भाग्य, धर्म का और मन का जो मिलन है वो एक दूसरे के घर में आज गोचर कर रहे हैं। जो चंद्रमा भगवान शंकर के शीर्ष पर विराजित होता है वो चंद्रमा आज बृहस्पति के घर में नौम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहा है। तो इससे सुंदर शायद ज्योतिषीय योग धर्म का कोई नहीं हो सकता है, और इस समय पर आराधना करके फल प्राप्त करने से सुंदर और कोई कार्य नहीं हो सकता है। आत्मा के कारक हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अगर आत्म शुद्धि है तो जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और वो आत्मा के कारक भगवान सूर्य अपने स्वयं की राशि के अंतर्गत मोक्ष के कारक सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट केतु के साथ जाकर के काल पुरुष के पंचम भाव में इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक शानदार योग है, एक शुद्ध योग है, जहां पर भगवान की आराधना करके अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है, अपने जीवन के सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल योग की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजिकल योग के अंतर्गत आज प्रीत योग इत्यादि का संजय जी ने वर्णन ही किया, लेकिन मुझे जो सबसे सुंदर आज एक सुंदरता नजर आया जो शायद बहुत कम मिल पाता है हम सबको, आज चतुर्थ सोमवार के अंतर्गत वो बृहस्पति का और चंद्रमा का एक दूसरे के साथ जो स्थान परिवर्तन नजर आया ये सबसे शानदार योग है। लेकिन मैं फिर उसी अपने विषय पर आता हूं, मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रह खराब हो, कोई भी परिस्थिति खराब हो, गोस्वामी जी ने कहा कि तो माया बस जीव जड़ संत नहीं भूलान और तही पर क्रोध न करिए तो कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब मो पर हो कृपाल श्राप अनुग्रह हो जय नाथ हो रही काल। वो देवाधिदेव महादेव है जिसको बेल का पत्ता और जल सिर्फ आप श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दीजिए और वो तीन जन्मों के आपके पाप को नष्ट कर देता है। तो श्वेता जी आज का समय बहुत सुंदर है और मुझे लगता है शिव की जब आराधना हो जाए तो फिर समय पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। 30 सेकंड और वो कहा था ना कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो मुझे लगता है कि भगवान शंकर की जब पूजा हो जाए तो समझिए दिन अच्छा हो जाता है जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी देवों के देव हैं वो महादेव हैं, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं और हम जानते भी हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत जतन आपको नहीं करने होते हैं, बस हृदय से आप उनका स्मरण कीजिए और हाथ में अगर एक पात्र में आपके पास जल है उसे अर्पित कर दीजिए सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से, तो आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ पूरी करते हैं। नंदिता जी आपके पास आते हुए, आज जिस तरह से हमने योग की भी अब बात कर ली, कितने अद्भुत योग है आज के दिन, तो आज का तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा हम अगर बिना मुहूर्त पूछे भी अगर हम पूजा करें तो भी आपको फलदायी होगा, लेकिन विशेष करके मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन क्या कोई खास जातक है, खास इन योग को देखते हुए कुछ खास ऐसे जातक हैं जिनके लिए आज का दिन या आज अगर वो पूजा करते हैं भोलेनाथ की तो उन्हें विशेष कृपा मिल सकती है।
2: जी देखिए, प्रश्न तो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे पहले राजभूषण जी ने जो बोला तो कंटिन्यूएशन बोले जो योग है चर्मा और गुरु तो वही योग एक राजयोगी में वो भी जहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं तो हंसा नामक राज पुरुष योग तो वही बना रहे। लेकिन आप देखिए ना गुरु कौन है, आदि गुरु कौन, आदि गुरु महादेव है और महादेव की जो स्थिति इस समय कुंडली में है उच्च है क्योंकि सूर्य को इंगित जो करते हैं वो महादेव के राशि में बैठा हुआ है। तो एक ऑफ योग यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जो बन रहा है वो इतना

0: बोले कि आज के दिन कोई भी जाता जनमानस भी अगर सच्ची श्रद्धा से शिव जी का स्मरण करे, केवल शिव हम बोले या नमः शिवाय बोले या महाप्रत्यय का मंत्र बोल दे, बहुत बहुत पावरफुल देता, बहुत अच्छे रिजल्ट आप आते हैं। अगर आप सारे साथी से रहे हैं, यानी कि अगर आप मेष राशि से संबंधित है, आप कुंभ राशि से संबंधित है, मीन राशि से संबंधित है, या यानी कि धनु राशि हो आपकी या सिंह राशि हो, इस विशेषकर आज के दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि सूर्य बलि हो रहा है इसमें, सिंह राशि में है इसमें, गुरु भी बलि है इसमें, वो अपनी उस राशि में बैठे हुए हैं और चंद्र गुरु की राशि में बैठे हुए, तो दिस ब्यूटिफुल इंटरचेंज जो बन रहा है इस
1: बिल्कुल
0: समय, वो आपको काफी शक्ति
1: नंदिता जी,
0: देगा।
1: आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ठीक करवा ले, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जानेंगे, क्योंकि हमने ये तो जाना कि हम शिव जी की पूजा कैसे करें, लेकिन जब हम शिवालय जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो पूजा करने के समय में कई ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो हम ना करें। जानेंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: तो शिव में सावन है। आज आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे में लगातार शिवालयों में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ यहां पर लगी हुई है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की एक तरह से आज के दिन आखिरी कोशिश उनकी हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनका आशीर्वाद मिल जाए, ये वहां पर कोशिश हो रही है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नंदिता जी से हम बात कर रहे थे, लेकिन वान्या जी आपके पास आते हुए यहां पर जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो सर्वोपरि है, आपके अंदर भगवान को लेकर विश्वास, उनको लेकर श्रद्धा, वो सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूजा विधि जब आप कर रहे हैं उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, कुछ चीजें जो डूज एंड डोंट्स में आती है। तो आपसे डोंट्स में जानना चाहूंगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें, आपको नहीं करना चाहिए। वाना जी आपकी आवाज नहीं आ रही,
1: आप मुझे सुन पा रही हैं?
0: जी, बताएं।
1: ओके, तो यहाँ पर जो है आपको कौन सी खास बातों का ध्यान रखना होता है, जब भी आप लोग शिवालय में जाते हैं तो आपको जो जलहरी है उसको नहीं लांघना होता, मतलब यू नो यू डोंट हैव टू क्रॉस दी जलहरी जब भी आप मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। दूसरी बात, जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आपको नंदी जी और शिवलिंग के बीच में जो है वहां पर जो है आपको खड़ा नहीं होना है, रादर आपकी जो भी मनोकामना है वो आप नंदी जी के कान में बोल सकते हैं। तीसरी बात, शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या जो सिंदूर होता है वो आपको कभी भी नहीं चढ़ाना है, वो नहीं चढ़ता है। और इसके अलावा चौथी बात, जब भी आप शिवलिंग पर बैठ के आप पूजा करते हैं जब वहां पर, तो आपका जो मुख होता है वो या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या फिर जो है पूरब की तरफ होना चाहिए। पांचवी बात, जो पांचवी प्रिकॉशन ये होती है कि जब भी आप जाते हैं तो घर से आप स्नान करके जाएं और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं आप कुछ ऐसा नॉनवेज और अल्कोहल ये सब आपने जो है नहीं कंज्यूम करना है, आपको बहुत ही सात्विक रहना है। कोशिश कीजिए आप खाली पेट जाके जल चढ़ाते हैं या अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो वो और ज्यादा अच्छा। छठी बात, जब आप गठबंधन करते हैं, जब आप जो होता है कलावे से माता पार्वती और भगवान शिव का जब आप गठबंधन करते हैं तो वहां पर बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो गांठ बांध देते हैं, तो वो चीज जो है वो गांठ जो होती है वहां पर गांठ नहीं बांधनी होती है, तो उसको आप गठबंधन करेंगे लेकिन आपको गांठ उसको नॉट नहीं करना है। सातवीं बात, जब भी आप करते हैं तो आपको जो है एक सीक्वेंस होता है तो वो आपको जो है हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। आपकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा जो है आपको भगवान गणेश जी से ही जो है आपको शुरुआत करनी होती है, फिर आप कार्तिकेय जी के पास जाते हैं, नंदी जी के पास जाते हैं, तो इस तरह से करना है। जब भी आप पूजा करते हैं आपको नाग देवता को नहीं भूलना है, और बहुत लोग देखा है कि जब गठबंधन करते हैं तो साथ में नाग देवता को भी रैप कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना। आपको जहां पर नाग देवता होते हैं उससे पहले ही आपको जो है वो गठबंधन करना है माता पार्वती और भगवान शिव का, बट बहुत लोगों को देखा कि वो जल्दी जल्दी में नाग देवता को भी बांध देते हैं, तो वो चीज जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आठवीं बात, जब भी आप लोग जो है शिवलिंग पर जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक बहुत ज्यादा खास बात का जैसे ये भी ध्यान रखना है कि बहुत मंदिरों में देखते हैं कि साथ साथ जो है वो सब कुछ हटाते जा रहे होते हैं, जब आप पूजा कर रहे हो तो एक सेकंड में वहां पर लोग जो है वो सफाई कर रहे होते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा एंड में करें बिकॉज आप डाल रहे हो और एक सेकंड बाद ही वो उस चीज को हटा देते हैं तो वो थोड़ा सा समटाइम्स वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, तो ये छोटी चीजों का जो है आपको।
0: मैं आपसे अपने लिए भी या फिर कह लीजिए कि जो लोग हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा तो उनकी तरफ से भी ये पूछ लेना चाहती हूँ कि जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपके मन में आता है कि अभी आपने बेलपत्र चढ़ाए ही और तुरंत उसकी सफाई हो गई, उसे हटा दिया गया, तो आपके मन में एक शंका एक संकोच सा आता है कि मतलब मेरी पूजा सफल भी हुई कि नहीं, तो क्या मुझे ये लगता है कि जो विधि विधान से जिस तरीके से पूजा होती है और जिस तरह से ये तमाम चीजें अर्पित हम शिव जी को करते हैं तो क्या ये पूरा विधान हम घर में कर सकते हैं?
1: जी, थैंक यू श्वेता जी। यहाँ पर जो है जब भी हम घर में जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पास जो शिवलिंग होना चाहिए वो पारद का शिवलिंग सिर्फ हम घर में यूज कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मर्क्यूरी का शिवलिंग कहते हैं, तो वो अगर आप अपने घर में लाके छोटा सा स्थापित कर सकते हैं तो ये आप जो है आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा शिव परिवार जो है वो आइडियली घर में नहीं स्थापित करना चाहिए, वो जो है वो मंदिर में ही होना चाहिए। घर में आप खाली भगवान शिव शिव की पूजा कर सकते हैं, वहां पर आप बेलपत्र, धतूरा, शमी चढ़ा सकते हैं। और जो है शिवलिंग पर एक चीज और थी कि आप, जैसे मैंने आप लोगों को कुमकुम का बोला, तो आप हल्दी जो है वहां पर अवॉइड करें, तुलसी जो है वो अवॉइड करें, तुलसी पत्र, ये छोटी छोटी चीजें हैं। और एक चीज और मेरी ऑब्जर्वेशन में थी कि जब कल मैं मंदिर गई थी तो वहां पर एक कुछ लोग, पंडित जी आपस में बात कर रहे थे, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा तेल जो है बहुत एक्सेस चढ़ा देते हैं वहां पर, जिससे पूरा जो वहां की चीजें चोक हो जाती हैं। तो आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से जो है आप कर सकते हैं, मुझे लगता है वो और चीजें जो है आप किसी गरीब इंसान को दे सकते हैं, जिससे जो है किसी भी चीज की हमें वेस्टेज नहीं करनी है, सिर्फ ये सिंबोलिज्म है। आप अगर शमी का
0: प्रतीकात्मक तौर पर हमें करना चाहिए और इस बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए। संजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए, यहां पर हम पूजन विधि की बात कर रहे थे, विशेष तौर पर देखिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब इस तरह की आराधना या पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि रुद्राभिषेक भी अगर आप कह लीजिए तो कुछ घंटों का पूरा प्रोसेस होता है, अच्छा खासा वक्त लगता है, क्योंकि उसके लिए पहले तैयारी पूरी की जाती है, उसमें तमाम जितनी सामग्रियां लगती हैं उसे ठीक से रखा जाता है, और फिर रुद्राभिषेक वो भी कुछ घंटों का पूरा प्रोसेस होता है, तब जाकर पूजा आपकी संपन्न होती है। ऐसे में अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोग, अक्सर ऐसे लोग जिनके पास समय की कमी रहती है, जिनके पास कुछ घंटों निकाल पाना पूजा के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन हाँ भावना उतनी ही रहती है भोलेनाथ के लिए, वो क्या करें?
2: जी, इसमें क्या है कि भगवान शिव का जो ध्यान करके और जो शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिनके पास समय कम है, क्योंकि रुद्राभिषेक में कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा अगर करेंगे पूरी विधि विधान से, तो जो लोग नहीं कर सकते तो वो पंचामृत बना लें घर पे, दूध दही शहद गंगा जल अघ्रत और मिष्ठान डाल करके, और उसको भगवान शिव को जो है पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, कहते हैं कि नमः जो अर्थ है, ना से होता है पृथ्वी, मा से होता है जल, शी से होता है अग्नि, वायु और आकाश, तो ये जो पांचों तत्व है उनको बैलेंस करने के लिए पंचामृत से स्नान किया जाता है, और भगवान शिव को जो एक लोटा जल इत्यादि अर्पित कर दें, अगर हो सके तो थोड़े से जो है तिल डालकर भी आप कर सकते हैं, और उससे कहते हैं उतना ही फल प्राप्त होता है जो आपको पूरा अभिषेक करने से मिलेगा, और इसको पूरी विधान से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिव के मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, 5 मंत्र कम से कम बोल लेने चाहिए, ये वाला तो जरूर बोले, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये क्या है, पूरा ओम नमः शिवाय पे बेस है, तो इसको आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और भगवान शंकर का ध्यान कर सकते हैं। और सरल करना है तो ओम हूं जूं सः मंत्र जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है, जो त्र्यंबकेश्वर कहते हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र का जो मूल है वह है ओम हूं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनां मृत्युर्मोक्षे मामृतात् स्वः भुवः भू सः जूं हूं ओम। अगर इतना नहीं बोले तो ओम हूं जूं सः बोल के भी आप जल चढ़ा सकते हैं, और जिनका विवाह नहीं हो रहा वो जो है त्र्यंबकं यजामहे पतिवेदनं उर्वारुकमिव वंदनां मृत्युर्मोक्षे मामृतात् इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगला गौरी का पाठ कर सकते हैं, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल जीवन में, कहते हैं कि जो प्रकृति और नेचर है इस वक्त स्वयं जो है बारिश हो रही होती है, आप देखें जो श्रावण मास है आप देखें नेचर प्रकृति सब कुछ हरियाली हो जाती है और पूरा जो मौसम है वो एकदम बैलेंस हो जाता है, प्रकृति खिल उठती है, तो सावन का महीना ऐसा है जो हमें सुख शांति देने वाला है, हरियाली देने वाला है, खुशी देने वाला है, आनंद देने वाला है। कहते हैं कि जिस वक्त पर इतनी बारिश हो जाए, आज का दिन बड़ा भयंकर बारिश थी नोएडा में था मैं जब सुबह, तो क्या है कि बहुत जो है अच्छा खुशहाल मौसम है, और भगवान का ध्यान करते जाएं, मेडिटेशन करें, मंत्र उच्चारण करें, और जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, भगवान में जितना लीन रहेंगे उतना ही आपका भगवान के साथ साक्षात्कार होगा, और आपकी सभी मनोकामनाएं जो भी आप इच्छा रखते हैं मन के अंदर इच्छा रख करके और भगवान शिव को अर्पित कर दें। कहते हैं कि अच्छाई को ग्रहण करते जाएं और नेगेटिविटी को दूर करें और नियम बना लें कि सुबह उठ करके 2 मिनट का ध्यान जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन में सुपर आनंद की प्राप्ति हो।
0: बिल्कुल
2: ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने कही संजय जी। राजमिश्रा जी आपके पास आते हुए थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि शिव जो है वो निराकार भी हैं और शिव को साकार भी कहा गया है। ऐसे में सावन के महीने में शिवलिंग की जो पूजा होती है उसका अर्थ क्या हुआ, कैसे समझे?
3: देखिए बात ध्यान रखिएगा, जब आपने निराकार की बात की और मैं दोबारा आपके उसी विषय पर जाऊं जिसकी आप लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे, श्री रामचरित मानस का रुद्राष्टकम दोहा नंबर 107 निराकार अमोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम तरालम महाकाल कालम कृपालम निराकार अनुसार
0: गुणागार
3: गोति। एक बात ध्यान रखिएगा, देव हाँ गुणागार या तो भगवान शंकर निराकार भी हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारा संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी सदीव। सो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर निराकार भी है और साकार भी है। जिस प्रकार से जब मैं बर्फ को ले लेता हूं और उसको एक पात्र के अंतर घर रख के फ्रिज में लगा देता हूं तो वो एक अपना आकार ले लेता है, और अगर उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं तो फिर वो निराकार हो जाता है। उसी प्रकार जो देवता है भगवान शंकर है वो आपके भावनाओं के ऊपर, जिस प्रकार से आपकी भावना है कहा गया है जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो जिस प्रकार की आपकी भावना है भगवान शंकर उस भावना के अनुसार आपकी पूजन को स्वीकार करते हैं। मैं अगर शिवलिंग को निराकार देव की बात करता हूं तो निराकार देव कहाँ है, देवाधिदेव महादेव हर चीज में, अभी आप शिवलिंग की चर्चा कर रहे थे, शिव पुराण के रुद्र संहिता में बाकायदा इस चीज का वर्णन है कि आपको कुछ ना मिले तो सिर्फ अपने अंगूठे को शिवलिंग मान करके उसका पूजन किया जा सकता है। कहा गया है पुष्प का शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया जा सकता है, यानी हर कण के अंदर शंकर का निवास है।
0: और वैसे अगर देखा जाए राजमिश्रा जी, आप भी जानते हैं समझते हैं और हम भी ग्रामीण परिवेश से जितने भी लोग आते हैं या फिर गांव से जुड़े आज भी जो लोग हैं, आज भी कई घरों में सुबह सुबह मिट्टी से बकायदा शिवलिंग वो बनाया जाता है और उसके बाद उनकी उनकी पूजा की जाती है और रोज नया बनाया जाता है स्नान के पश्चात और उसके बाद उसकी पूजा होती है।
3: तो ये क्योंकि पार्थिव पूजन एक विशेष पूजन है, मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो सुंदरता है वो इसी चीज की है कि किसी भी चीज को भगवान मान करके, अभी तो शिवलिंग का प्रचलन हो गया, नहीं तो गांव में श्वेता जी आपने देखा होगा नदी से पत्थर ला करके और उस पत्थर को घर के बाहर जमा करके उसी को भगवान शंकर मान करके और उसका पूजन किया जाता था। आपने पार्थिव पूजन का वर्णन किया है, पार्थिव पूजन का जो नियम है शास्त्र में उसको सबसे प्रबल माना गया है, तो शायद भगवान शंकर को आप जहां भी श्रद्धा से देखते हैं भगवान शंकर उस पूजन को स्वीकार करते हैं। शिवलिंग एक प्रकार का चिन्ह है देवाधिदेव महादेव का। आप लोगों ने उस कथा को श्रवण किया होगा जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बारे में संप्रभुता को लेकर के बहस छिड़ती है, वहां पर एक आकार प्रकट होता है, वो शिवलिंग प्रकट होता है और वहां पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी पूजा करते हैं, वहीं से शिवलिंग का जो पूजन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई। शिवलिंग का शब्दार्थ है किसी चीज का एक विशेष चिन्ह, यानी जिस प्रकार स्त्रीलिंग और पुलिंग बात की जाती है कि पुरुष का एक पुरुष मतलब शिवलिंग का जो तात्पर्य समाज के अंदर निकाला जाता है वो सब डिफरेंट है, लेकिन वो भगवान शंकर के स्वरूप का एक पहचान जो है उसको शिवलिंग कहा गया है। जी
0: बिल्कुल, और आज के दिन विशेष करके सिर्फ शिव जी की नहीं, आज के दिन तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना की जाती है। नंदिता जी, ऐसे में आज के दिन के बारे में हम कहे न सिर्फ इस पूरे सावन, क्योंकि हम एक तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, हम शिव और शक्ति के मिलन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ये हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा मैसेज देता है कि जिस तरह से माता पार्वती ने जिस तरह से उपासना की, जिस तरह से उन्होंने सालों उनके लिए कठिन तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए वर के रूप में, और ये कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को, आज के समय में लोगों में जिस तरह से पेशेंस की कमी हो गई है और तमाम तरह की चीजें, वो उनसे हम बहुत कुछ आज के समय में शिव और पार्वती से सीख सकते हैं और उनसे संदेश ले सकते हैं।
4: जी बिल्कुल, बहुत ही उत्तम कहा आपने श्वेता जी। और देखिए, जो पार्थिव, उससे पहले मैं बता दूं कि पार्थिव पूजा जो होती है पूरे सावन के पहले दिन से शुरू होकर आखिरी दिन तक है। और जिस प्रदेश से आती है उत्तराखंड में, तो वहां पे तो आप लगा लीजिए कि लगभग 108 बनाते हैं, शिवलिंग बनाए जाते हैं हर दिन। हर किसी के घर में विधि पूजा होती है। दूसरा, घर में मंदिर में ऐसा नहीं है कि आप शिव परिवार नहीं रख सकते। आप हरतालिका तीज में शिव परिवार की पूजा करते हैं। आपके नहीं सारे समय होते हैं शिव परिवार के अपने घर में पूजा करते हैं। और घर में पार्वती जी ने तो शिवलिंग को नदी किनारे बनाया और उसके बाद उसी में प्रतिरूप शिवलिंग में फिर उसके बाद जो तपस्या होने की आपने बताया बेलपत्ती कहीं हुए हैं। इसे शिव जी को बेलपत्ती अत्यंत प्रिय है क्योंकि वो इतना उनका जो रूप था बिल्कुल काला होने लगा। उसके बाद उनको भी खो गया था और उसके बाद शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया।
5: नंदिता जी, अब कुछ मुझे लगता है कि दिक्कत है वॉइस में, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। वान्या जी, इसी बात को मैं आपसे समझना चाहूंगी कि शिव और पार्वती से आज के जीवन में जितने भी कपल्स हैं, जो भी दाम्पत्य जीवन में हैं लोग, वो क्या कुछ संदेश ले सकते हैं और सीख सकते हैं?
1: आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है श्वेता जी। यहाँ पर जो है भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम इनके जीवन से त्याग सीख सकते हैं कि कैसे हम एक मैरिड लाइफ में एक पेशेंस के साथ, एक त्याग के साथ, जैसा माता पार्वती ने जो है भगवान शिव के लिए सरेंडर किया था और इतने साल जो उन्होंने तपस्या की थी, तो ये उसी जब का तब का कि मैरिज जो है एक पूरा कमिटमेंट है। मैरिज में बहुत ज्यादा सरेंडर जो है करना होता है, पेशेंस होता है। जैसे भगवान शिव ने विष पी के पूरे संसार की रक्षा की, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम भी जो है वो नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से निकाल के, अगर किसी व्यक्ति पर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, तो एक बार हम ये देख लें कि उसने जीवन में हमारे लिए क्या क्या चीजें त्यागी हैं, हमारे लिए क्या क्या किया है। तो पेशेंस हो गया, समर्पण हो गया, सरेंडर हो गया, डिविनिटी हो गया, कमिटमेंट हो गया। एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी कि कैसे सालों साल जब माता पार्वती ने भगवान शिव की साधना की, आराधना की, जब उनका खुद का वर्ण जो है वो भी काला पड़ चुका था, जब जंगल में इतने साल जो है वो तपस्या करी थी। तो अगर आपका रिलेशनशिप ट्रू है, अगर आप लाइफ में एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, अगर आपका ट्रू लव है, तो कभी कभी उसमें जो है बहुत सारा सरेंडर जो है हमें लाइफ में करना पड़ता है। और जब हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं किसी चीज के लिए, जब हमारे अंदर ऑलरेडी उस चीज के लेके बहुत ज्यादा सरेंडर होता है, प्यार होता है, तो अपने आप हम उस रिलेशनशिप के लिए खुद ही करते हैं। तो आपके लाइफ में अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, थिक्स एंड थिन्स आपका रिलेशनशिप बहुत टर्मोइल दिखाएगा, बट आप टिके रहिए एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहिए।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने बताई। और यहाँ पर सावन के इस महीने में, खास के दिन, खास करके जब आज आखिरी सोमवार है, तो हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि भोलेनाथ को हमने क्या कुछ चढ़ाया, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमने अपने अंदर से क्या कुछ छोड़ा है। हमने क्रोध, नकारात्मकता, अहंकार, ये सब छोड़ा है कि नहीं, क्योंकि भोलेनाथ सिर्फ शिवालयों में नहीं विराजते हैं, वो हमारी चेतना में विराजते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बन रहे हैं हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब आपको रायबरेली से आई एक शानदार तस्वीर का दीदार करवाते हैं, जहां रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बेहद निराला अंदाज देखने को मिला। यहां सरकारी स्कूल की छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें राखी बांधी। इस दौरान बच्चियों ने सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तिलक किया, इसके बाद छात्राओं ने अपने हाथों से सीएम योगी की कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधने के बाद छात्राओं ने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बच्चियों को उपहार भेंट किए और उन्हें स्नेह और आशीर्वाद। जैसलमेर को इस मॉनसून में बादलों की बेरुखी झेलनी पड़ रही है, ऐसे में जैसलमेर के लोग अच्छी बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहां के पुरोहितेश्वर मंदिर में अच्छी बारिश के लिए महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है।

0: जैसलमेर का पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। सावन के पावन महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर समेत पूरे पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों अलनीनो का असर दिख रहा है। मानसूनी बादलों के रूठने से पूरा इलाका बारिश के लिए तरस रहा है। ऐसे में बरखा बहार की मन्नत के लिए सैकड़ों भक्त महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे हैं।
1: रुद्र का आयोजन किया जा गया है जैसलमेर में पुरोहितेश्वर महादेव में 121 पंडितों द्वारा आज अति रुद्र का रुद्राभिषेक किया जा रहा है और भगवान महादेव से प्रार्थना की जा रही है तो जल्द से जल्द यहाँ पे बारिश करे और यहाँ पे जो किसान वर्ग है वो अत्यंत खुश होकर अपनी फसल इत्यादि आराम से बो सके और उसका सब कुछ उनको अच्छा फल मिल सके।
0: इसी सिलसिले में जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में पुरोहितों की बगीची और गड़ीसर तालाब में भव्य महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्री पाठ और महारुद्राभिषेक किया गया। इस आयोजन में आसपास प्रसिद्ध रुद्रापीठ पंडितों को बुलाया गया।
2: और ये आज महारुद्र का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। महादेव को तीन तरीके के रुद्र होते हैं, रुद्र महारुद्र अति रुद्र। जैसलमेर में ये दूसरी बार महारुद्र हो रहा है यहाँ पर, जिसमें एक साथ 121 रुद्र पार्टी मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं दूध से, जल से, पंचामृत से, भांग से और अन्य कई चीज़ों से। अलग अलग ऋचाओं के यहाँ लोग करते हैं, जैसे दूध के साथ में एक ऋचा चलती है, केसर के दूध के साथ दूसरी ऋचा चलती है, इस तरह के 16 ऋचाओं के साथ में ही अभिषेक पूरे अनुभव 4 से 5 घंटे चलता रहेगा।
3: यादव पुरोहित, यहाँ महारुद्राभिषेक चल रहा है जैसलमेर का दूसरा, पहला भी यही हुआ था, दूसरा भी यही हो रहा है। महारुद्राभिषेक में 121 रुद्री पाठी पंडित होते हैं जो ऋग्वेद की ऋचाओं को जोर जोर से बोलते हैं और इसे रुद्री पाठ कहते हैं। आज महारुद्राभिषेक हो रहा है, पिछली बार भी यही महारुद्राभिषेक हुआ था। इसे समाज की भलाई के लिए हम कर रहे हैं, समाज में, देश में, राष्ट्र में सब जगह सुख शांति बनी रहे, इसलिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है।
0: इस महाआयोजन में श्री भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में प्रसाद बनाने से लेकर भगवान को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। एक सौ 121 वेद पाठियों ने आयोजन स्थल पर देवी देवताओं के पूजन, अग्नि स्थापना, हवन और ब्रह्मा पूजन समेत कई धार्मिक अनुष्ठान को पूरे विधान से संपन्न कराया गया। हवन कुंड में आहुतियां अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव के जयकारे लगाए। ये भव्य आयोजन शिव भक्तों के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामूहिक स्वर से महादेव के स्मरण और पूजन का दिव्य अवसर भी बन गया। भक्तों का अटूट विश्वास है कि महादेव अपने भक्तों की ये पूजा स्वीकार करेंगे और उनके आशीर्वाद से सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा किसकी होगी आपको बताएंगे, लेकिन चाय कैसी है पहले शगुफ्ता से पूछ लेते हैं।
0: To be very honest, very good. Long very good. चाय हम पी रहे हैं ना, अच्छा मीठा, एकदम सटल मीठा।
3: क्या बात है,
0: बारिश के हिसाब से चाय।
3: इसलिए आपको चाय अच्छी। लोगों को बता तो दें वेदर कैसा गुड है, वो तो आप बताइए। बारिश में आए होंगे आप,
0: वेदर ऑसम,
3: बहुत ऑसम मौसम, ऑसम है। आपको बता दें आज सुबह से ही तेज और अच्छी बारिश हो रही है, जिनको भी लग रहा है कि बारिश यहाँ नहीं हो रही है, हम बता दें अच्छी खासी बारिश हो रही है।
0: आधे लोग तैर के आए
3: ये एक अलग परेशानी हो जाती है। तो आपको बता दें कि आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले उस खास ताज की हम बात करेंगे, जो कि सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सपनों की जीत का भी प्रतीक है, और इस प्रतीक को अपने सिर सजाया है केरल की कैसिया लिज मेज ने। तो कौन है 53 भारतीयों के बीच खुद को आजमाने वाली कैसिया, जिन्होंने अपना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज, इसकी जानकारी आपको हम देंगे और साथ ही सीनियर सिटीजन के स्पेशल रैंप वॉक भी आपको दिखाएंगे।
0: नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आज सावन महीने के आखिरी सोमवार पर देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में उमड़ी आस्था की तस्वीरें दिखाएंगे। यही नहीं, 131 मीटर लंबी हनुमान की पूंछ रूपी कांवड़ यात्रा में भी लेकर चलेंगे। साथ ही गणेशोत्सव आने से पहले महाराष्ट्र में बिखर रहे रंग कैसे हैं उसकी तस्वीरें लाए हैं आपके लिए।
4: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, लोगों से अपनी पहचान को लेकर छोटी सी शिकायत करने वाली अरुणाचल प्रदेश की 4 साल की वायरल गर्ल टिंकल गोंगो से भी आपको मिलवाएंगे, जो अब शिकायत नहीं बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान लेकर कह रही हैं कि अब हम इंडिया हो गए मम्मी। इसके साथ ही बीजिंग में जारी दूसरी वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश भर के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार की रौनक, श्रद्धालु कर रहे महादेव का जलाभिषेक, हर हर महादेव की गुंज। राजस्थान के पाली में झूला महोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण के लिए बनाए गए खास झूले, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा जारी, अब तक 2,73,000 श्रद्धालुओं ने टीका मत्था, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड। दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स की गई डायवर्ट। एक शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित, शिक्षक दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की धूम, बीजिंग में दिखा संतुलन, नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का अनोखा संगम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: द The beauties are going to talk about being beautiful and the beauty. दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या चर्चा होने वाली है. देखिए, किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट का ताज सिर्फ सिर पर नहीं बल्कि अपनी पहचान उपलब्धियों पर सजता है. वो ताज लाखों सपने दुनिया को प्रेरित करने का हौसला होता है. कहते हैं कि ताज चमकता है लेकिन असली चमक उस महिला के आत्मविश्वास में होती है जो उसे पहनती है. कुछ यही आत्मविश्वास और खुशी के साथ लबरेज दिखी मिस इंडिया यूनिवर्स बनी केरल की कैजिया लिज मेजो. रविवार देर रात जयपुर के एक ऑडिटोरियम में ये पूरा प्रोग्राम हुआ. 53 सुंदरियों के बीच हुआ कड़ा मुकाबला. सभी ने अपना टैलेंट, अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया. बिफोर वी प्रोसीड, कैसा लगा ये देखकर श्वेता? यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर.
3: अमेजिंग. देर रात देख रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स आपको याद है कि जब से ये पेजेंट शुरू हुआ है ना, हमेशा देर रात ही ये प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं. और हम एकदम टकटकी लगाए टीवी पे देख रहे होते हैं कि कौन किसके सर पर ये ताज सजेगा.
0: लेकिन कैसी लगी कैजिया?
3: मुझे बहुत अच्छी लगी. और इनफैक्ट मैं सभी के लिए ये बोलूंगी, शगुफ्ता आप और दीपिका आप भी बोलेंगी, कि इन लड़कियों का आप कॉन्फिडेंस देखिए, क्या जबरदस्त आत्मविश्वास है. और मैं कहूं कि भले ही आज कैजिया ने इस ताज को जीता हो लेकिन इस मंच तक पहुंच पाना, क्योंकि कई राउंड्स होते हैं, आप भी जानते हैं, कई एलिमिनेशन राउंड होते हैं, कई में छटकर और कितने पैरामीटर्स को पार कर तब जाकर यहाँ पर लड़कियां पहुंचती हैं. मुझे तो लगता है कि सभी के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हमें देना ही चाहिए.
0: हैट्स ऑफ टू देम एंड हैट्स ऑफ टू द विनर्स.
4: बिल्कुल. देखिए, आखिर के दौर तक आते आते फाइनल स्पर्धा के टॉप टू पोजीशन पर केरल और तमिलनाडु की प्रतिभागी पहुंची. लेकिन मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज केरल की युवा प्रतिभा कैजिया लिज मेजो को पहनाया गया. इस ब्यूटी पेजेंट में साल 1994 की मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, साल 2001 की मिस इंडिया यूनिवर्स सेलिना जेटली भी रैंप वॉक करती नजर आई. इसके अलावा इस मिस इंडिया यूनिवर्स पेजेंट का फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े कई और चेहरे भी नजर आए.

0: पल का मानो इंतजार था 19 साल की कैजिया लिज वीडियो को। जिन्होंने आखिरी राउंड में कुछ सेकंड्स के दरमियान अपने जीवन के संघर्ष, कठिन हालात में सकारात्मक सोच और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने बेबाक अंदाज और बुद्धिमत्ता के बूते ऐसा क्लोजिंग रिमार्क छोड़ा जो जजेस के दिल को गहराई से छू गया। भविष्य को लेकर अपना नजरिया बखूबी बयां करने वाली कैजिया रविवार रात करीब 2:30 बजे मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज पहनते वक्त ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूली नहीं।
1: I feel on top of the world and actually on top of the universe. This has been a dream for as long as I can remember, and being able to actually wear this crown, to be able to bear the fruits of all my years of hard work, it feels so surreal, but I know that destiny works wonders and I'm so grateful to God. I've been preparing for this journey for over 3 years now, and Miss Universe has always been the goal, and now it is time for me to showcase to the world what it means to be India, and I'm ready to do everything to bring back the crown. We have a few months before me and I promise you that I will do everything in my powers to make sure that our country is proud at Miss Universe.
0: देर रात जयपुर के एक ऑडिटोरियम में 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सभी ने अपने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया। और फिर आखिर के दौर तक आते आते फाइनल स्पर्धा के टॉप 2 पोजीशन पर केरल और तमिलनाडु की सुंदरियां पहुंची, लेकिन मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज केरल की युवा प्रतिभा कैजिया लिज मिजो को पहनाया गया। उन्नीस साल की कैजिया को 2025 की विजेता रही मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स के सम्मान से नवाजा। कैजिया एक लॉ स्टूडेंट, मॉडल और ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। इससे पहले कैजिया टीम इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और फर्स्ट रनर अप भी रही। इतना ही नहीं, उनके नाम मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी है। अब मिस इंडिया यूनिवर्स बनी कैजिया प्यूर्टो रिको में होने वाले मिस यूनिवर्स खिताब के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इससे पहले मिस इंडिया यूनिवर्स के टॉप 5 फाइनलिस्ट में केरल की कैजिया लिज मिजो के अलावा फर्स्ट रनर अप तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रही, सेकंड रनर अप रही गुजरात की अनुश्री सातवालेकर, थर्ड रनर अप का खिताब महाराष्ट्र की तेजस्विनी श्रीवास्तव को मिला, जबकि फोर्थ रनर अप के रूप में उत्तराखंड की अनुभा वशिष्ठ रही। मिस इंडिया यूनिवर्स की इन सभी हुनरमंद प्रतिभागियों ने भी आखिरी राउंड के उन चुनिंदा सेकंड्स में ज्यूरी के सामने भविष्य को लेकर अपना नजरिया और अभी तक मिली चुनौतियों पर अपनी अपनी राय रखी। मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया 2026 के जज पैनल में साल 1994 की मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, साल 2001 की मिस इंडिया यूनिवर्स सेलिना जेटली के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर प्रज्ञा कपूर और मिस इंडिया यूनिवर्स पेजेंट के मालिक निखिल आनंद समेत फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े कई चेहरे इस ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रहे। वहीं इस ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान की संस्कृति और जयपुर की मेहमान नवाजी के साथ आधुनिक भारत का ग्लैमर भी नजर आया, जहां देश दुनिया से जुड़े करीब 800 फैशन डिजाइनर और डेलीगेट्स ने समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। फिलहाल तो इस भव्य समारोह में मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 चुनी गई कैजिया लिज मिजो अब मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये वही मंच होगा जहां सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू जैसी प्रतिभाओं ने भारतीय ब्यूटी और इंटेलिजेंस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उम्मीद है कि अब 2026 की मिस इंडिया यूनिवर्स कैजिया लिज मिजो भारत की विविधता, संस्कृति, प्रतिभा और नई पीढ़ी का हुनर प्यूर्टो रिको जैसी वैश्विक मंच पर पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्यों शगुप्ता?
3: एंड जयपुर चर्चा इज आल्सो अ शो ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, नो? यू वुड एग्री?
2: ऑफ कोर्स। लेकिन ये बताइए, चलिए आप दोनों से मैं पूछती हूँ। अभी हमने देखा सुष्मिता भी थी, लारा दत्ता भी आई हुई थी, तो आप दोनों में से, दोनों से पूछती हूँ कि आपने किसका लाइव देखा था जब वो पेजेंट
3: मैंने सुष्मिता का देखा था,
2: देखा था
3: सुष्मिता की स्टोरी भी मुझे याद है, उनकी ग्लव्स की स्टोरी, सॉक्स से बनी हुई स्टोरी बनाई थी, नीचे टेलर ने बनाया,
2: टेलर ने बनवाई थी।
3: दीज आर इंस्पायरिंग स्टोरीज ना, आप कहां से उठकर कहां पहुंचते हैं, तो दीज थिंग विल इंस्पायर अस।
2: बिल्कुल, आपने
1: मैंने हरनास का देखा था जब हुआ था, बेहद ही खूबसूरत उनकी जर्नी रही थी, उसके बाद भी जिस तरह के उनके जवाब थे चीजों को लेकर, इंसानियत के लिए वो क्या सोचती है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होते हैं कि इंसान सही चूज किया गया है, जिसको क्राउन पहनाया गया है,
2: बिल्कुल वो डिजर्विंग है, बिल्कुल ये नहीं कि सिर्फ हम ब्यूटी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि वो वाकई डिजर्व करता है कि नहीं वो क्राउन। देखिए एक और खूबसूरत आपको हम फैशन शो ही कुछ इसी तरह का मिलता जुलता आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी बेहद दिलचस्प है, खूबसूरत मॉडल्स यहां पर आपको रैंप वॉक करते नहीं नजर आएंगे, लेकिन नागपुर में हुए एक अनोखे फैशन शो ने इस सोच को बदल दिया है। यहां पर रैंप पर मॉडल्स नहीं बल्कि 65 से 80 साल की उम्र के सीनियर सिटीजन्स ने अपना जलवा बिखेरा। उम्र को पीछे छोड़ते हुए बुजुर्गों ने पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ रैंप पर वॉक किया।
3: बिल्कुल, देखिए नागपुर के इस फैशन शो में सिर्फ कपड़े और स्टाइल ही नहीं था, बल्कि इन सीनियर सिटीजन्स का आत्मविश्वास, जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 65 से लेकर 80 साल की उम्र के प्रतिभागियों ने जिस एनर्जी के साथ रैंप पर वॉक किया, उसे देखकर हर कोई तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गया।

0: आमतौर पर रैंप पर मॉडल्स की कैटवॉक आपने खूब देखी होगी, लेकिन नागपुर में जब रैंप पर ये चेहरे उतरे तो नजारा ही कुछ अलग था। किसी की चाल में ठहराव था तो किसी के अंदाज में गजब की शरारत। किसी ने अपने जमाने का स्टाइल लेकर रैंप पर एंट्री मारी तो किसी ने ओल्ड फैशन से न्यू फैशन का दामन थाम लिया। 65 से 80 साल की उम्र, लेकिन जोश ऐसा कि अच्छे अच्छे मॉडल्स को मात दे दें, तो किसी ने रेट्रो लुक के साथ पुराने दौर की यादें ताजा कर दी। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्टाइलिश और फंकी अंदाज में बता दिया कि फैशन की कोई उम्र नहीं होती।
1: ये रैंप में आने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसा लगा कि हम बचपन में आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हम बहुत ही खुश रहे। जैसी प्रेरणा मिली हम लोगों को बीच टूडी के पैकिंग से, तो हमने तुरंत सोच लिया कि हम यहाँ पे आएंगे और अपना परफॉर्मेंस, अपना एज भूल के सब अच्छे से काम करेंगे।
2: हम लोग यहाँ पे बुढ़ापे में जवानी हमारे अंदर आ गई है और बड़ा ही आनंद आ रहा है और सभी एक एक से बढ़ के एक पार्टिसिपेंट है।
0: नागपुर में हुए सेकंड इनिंग सीनियर सिटीजन फैशन शो में जैसे ही ये सीनियर सिटीजन रैंप पर पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। किसी ने अपनी चाल से दिल जीता, किसी ने अपनी मुस्कान से और किसी ने अपनी अदाओं से। ये सिर्फ फैशन शो नहीं था, ये उस सोच के खिलाफ एक खूबसूरत जवाब था जो मानती है कि उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी की चमक फीकी पड़ जाती है। यहाँ हर कदम कह रहा था उम्र बढ़ सकती है, लेकिन स्टाइल, आत्मविश्वास और जिंदगी जीने का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। नागपुर से योगेश वसंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए बात सावन की करते हैं, भोलेनाथ की करते हैं। देखिए आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, यानी भोलेनाथ की भक्ति और आराधना का वो आखिरी सोमवार जब देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं शिव भक्त जल अभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर गोरखपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई और जयपुर तक हर जगह भोलेनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है।
4: और इस बार के आखिरी सावन के सोमवार को खास बना रहा है एक बेहद शुभ संयोग। मान्यता है कि आज प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ प्रदोष काल का भी संयोग बन रहा है, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। और यही वजह है कि शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं।
0: सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़ा आस्था का समंदर, शिवालयों से ज्योतिर्लिंगों तक बहती रही भक्त की अविरल धारा। सावन का सोमवार सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही अहम नहीं है, ये दिन भगवान शिव की साधना आराधना को समर्पित है। और जब सावन का आखिरी दिन आया तो देश भर के शिव मंदिरों में आस्थावान श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा, भक्त की अविरल धारा बह उठी। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर गोरखपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, जयपुर, इन तमाम जगहों पर मौजूद शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त तड़के से ही पहुंचने लगे।
5: हम इस वक्त प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में हैं, जहां पर भोलेनाथ श्रद्धालुओं के मन की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी करते हैं। और कहा जाता है कि श्रद्धालु यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाए तो उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं और यहाँ पर उनकी जो मनोकामनाएं हैं श्रद्धालुओं की वो भगवान पूरी करते हैं। ये गर्भगृह है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी हुई है और सभी एक लोटा जल चढ़ाकर श्रद्धालु भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, सेवा कर रहे हैं, क्या कहें?
6: बस बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा हो जाए, बस बाबा भोलेनाथ खुश हो जाए। बस
7: भोलेनाथ से यही कामना है कि सबको सुख समृद्धि दे, सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, बस उनकी कृपा ही मिल जाए, यही सबसे बड़ी वो है।
8: हमारी तो बहुत मनोकामना पूरी हुई, यहाँ को हमको आते हुए 20 साल हो गए हैं।
0: मुंबई में तो आज सावन का दूसरा सोमवार ही था, यहाँ के सबसे प्राचीन शिवालयों में से एक बाबुलनाथ मंदिर में शिव शक्ति के मिलन की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। पवित्र जल और दूध के साथ पुष्प, बेलपत्र और चंदन लेकर मंदिर पहुँचे शिव भक्त पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में सराबोर दिखे।
9: ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, यही गूंज मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में गूंज रही है। हर शिव भक्त घंटों कतार में खड़े रहने के बाद बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से यहां पर लोग स्पेशली बाबुलनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या रोजाना यहाँ आती है, करीब 10,000 से ज्यादा के लोग रोजाना आते हैं, लेकिन जब बात श्रावण और सोमवार की हो तो भक्तों का आंकड़ा तकरीबन 1,00,000 पार हो जाता है। ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये लगभग 2-2.5 घंटे लोग कतार में खड़े होकर के यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और फाइनली बाबा के पास आकर के एक अलग ही तरह की ऊर्जा यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है।
10: बाबुलनाथ मंदिर बहुत प्राचीन काल से है, मैं यहाँ 26 साल से आ रही हूँ इनका, और अशोक महाराज जी के कृपा से मैं इनका अभिषेक करती हूँ, तो बहुत ही आनंद आता है यहाँ आके।
0: शिवालयों के साथ साथ भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों पर भी श्रद्धा और भक्ति का ऐसा ही उत्साह और उल्लास नजर आया। सुबह से ही बाबा के इन धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ धाम हो या वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम, इन तमाम ज्योतिर्लिंगों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया, बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की।
11: सावन का पावन माह हो और अंतिम सोमवार, ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनके जलाभिषेक करने से भक्त कैसे अछूते रह सकते हैं। यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि पूरे सावन माह में जो भक्त शिव भक्त दर्शन नहीं कर पाते हैं बाबा का, उनका जलाभिषेक नहीं कर पाते, वे आज सावन के इस अंतिम दिन बाबा के दर्शन कर लेते हैं और जलाभिषेक कर लेते हैं तो पूरे सावन का पुण्य उनको मिलता है। यही कारण है कि आज शिव भक्त न केवल बनारस बल्कि प्रयागराज से भी जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जी लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं।
0: सावन के अंतिम सोमवार पर एक साथ बने कई दुर्लभ संयोगों ने भी इस सोमवार को खास बना दिया। इस बार सिंह राशि में सूर्य बुध की युति से प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रा एकादशी, वैष्णव हंस राजयोग और बुधादित्य राजयोग बने। उत्तर भारत में सावन का अंतिम सोमवार महादेव में श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति के साथ धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। अब सावन के सोमवार को भगवान शिव की विशेष आराधना का अवसर एक वर्ष बाद ही मिलेगा। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ ही सावन का ये पावन महीना समाप्त हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में सावन में शिव भक्ति अभी जारी रहेगी। 7 सितंबर को वहां सावन का अंतिम सोमवार मनाया जाएगा और तब तक महादेव के दरबार में शिव भक्तों का सैलाब यूं ही उमड़ता रहेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सावन के अंतिम सोमवार का पूरा देश बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज रहा है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है तो कांवड़िये भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ चले हैं। इसी बीच यूपी के कासगंज से कांवड़ यात्रियों का एक ऐसा जत्था गुजरा जिसे देखकर हर कोई ठिठक गया। दरअसल इन कांवड़ियों की यात्रा सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं थी बल्कि इसमें भक्ति के साथ एक अलग ही रंग नजर आया। जत्थे में शामिल कांवड़िये अपने अनोखे अंदाज और खास तैयारी के साथ निकले थे जिसे देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। कोई तस्वीर लेने लगा तो कोई वीडियो बनाने लगा और पूरा माहौल भोले की भक्ति में रंग गया।
12: सावन मास के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कांवड़ लेकर भी भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने भक्त पहुंच रहे हैं। यूपी के कासगंज से गुजर रहा भगवान भोले शंकर के भक्तों का ये जत्था आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सोरंजी के लारा गंगा घाट से जल भरकर 40 कावड़ियों का ये जल जहां जहां से गुजरा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। इस दल की अगुवाई करता व्यक्ति हनुमान जी की वेशभूषा में, तो बाकी सदस्य बतौर वानर रूपी सेना हनुमान जी की पूंछ उठाकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 131 मीटर लंबी हनुमान जी की पूंछ रूपी इस कावड़ में 251 लीटर जल लेकर कावड़ियों का ये जत्था सोरंजी, प्रहलादपुर, गोराहा, भिटौना, कासगंज होते हुए फिरोजाबाद की ओर रवाना हुआ। फिरोजाबाद के नवा गांव का ये कावड़ दल अपने नजदीक के शिवालय में भगवान शिव को जल अर्पित करने आगे बढ़ता चला गया।
13: सोरों से भर के लाए बाबा नीम करोरी स्थान पर ले जाएंगे, करीब 45 251 लीटर जल है।
14: ये तो अपनी अपनी भाई सेवा है, आप जैसे कहो तो जनता ने कही चलो तो चलो।
12: हनुमान जी के रूप में मौजूद शिव भक्त बॉबी निगुआ के अनुसार वो ऐसी कावड़ बनाना चाहते थे जो अनूठी हो और एकदम अलग दिखे, और इसी सोच के साथ उन्होंने हनुमान जी की थीम पर यह कावड़ बनाई। आज दलबल के साथ निकल पड़े लहरा गंगा घाट के लिए, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके जल भरा गया और फिर कावड़ दल फिरोजाबाद के नाउवा गाँव के लिए चल पड़ा। इस दौरान पूरा रास्ता बम बम भोले के जय घोष से गूंजता रहा और जगह जगह इस कावड़ दल का स्वागत किया गया।
14: जो कैंप है कांवड़ियों के लिए लगाए गए हैं सेवा के लिए, वहाँ पे महिला आयोग की जो सदस्य है रेणु गौड़ वो थी मौजूद, उन्होंने कांवड़ का स्वागत किया, हनुमान जी के गले में पटका डाल करके उनका स्वागत किया। ये अनोखी कांवड़ लोगों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है।
12: कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था को और मजबूत करती है। ये यात्रा युवाओं समेत हर किसी को भक्ति से जोड़ने का एक संदेश देती है। सावन के इस पवित्र मास में जगह जगह आस्था की इस यात्रा के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। कासगंज से देवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: और मुंबई में अब गणेशोत्सव का रंग पूरी तरह से चढ़ने लगा है। गलियों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया। तो बप्पा की भव्य मूर्तियां अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और उनके स्वागत में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ढोल ताशों की गूंज, गुलाल की खुशबू और भक्तों की उमड़ी भीड़ बता रही है कि माया नगरी अपने सबसे बड़े त्यौहार के स्वागत के लिए तैयार है।
16: और देखिए, मुंबई में इन दिनों सड़कों पर कदम रखिए तो हर तरफ एक ही उत्साह आपको नजर आएगा। कहीं ढोल की थाप है, कहीं ताशों की गूंज है, कहीं बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बन गया है। गणेशोत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ दिन बाकी हों, लेकिन मुंबई ने अभी से बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

आ रहे हैं गणपति बप्पा। ढोल ताशों की गूंज, हर तरफ भक्ति का उल्लास। मुंबई में दिखने लगा है गणेश उत्सव का उत्साह। गणेश उत्सव में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस पर्व के रंग अभी से मुंबई में गहराने लगे हैं। गजानन की प्रतिमाएं अब पंडालों की तरफ आने लगी हैं। इस आगमन का उल्लास भी अब मुंबई की सड़कों पर दिखने लगा है। रविवार को जब मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा सड़क पर उतरी तो उनके स्वागत के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर मौजूद।

0: के साथ हर तरफ ढोल ताशे की गूंज सुनाई दे रही है। ध्वजाधारकों का डांस माहौल को और जोशीला बना रहा है। बाप्पा की सवारी के साथ हजारों लोग डांस करते हुए चल रहे थे। बाप्पा की सवारी जब अपने पंडाल की तरफ बढ़ी तो पूरा इलाका जश्न के रंग में रंगता जाता है। गणेश चतुर्थी में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन बाप्पा के आने की खुशी ने हर भक्त को जोश से भर दिया है। काला चौकीचा महाराज के साथ कामराजचा महाराज की खूबसूरत प्रतिमा भी रविवार को दिखी। कामराजचा महाराजा ने एक हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है तो दूसरे हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाप्पा की इस सवारी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इनमें बच्चे बड़े सभी शामिल थे।
1: हम लोग मतलब जैसा विसर्जन होता है, विसर्जन होने के 2 महीने बाद ही हमारा फिर से तैयारी चालू हो जाता है कि गणपति का क्या क्या प्लानिंग है, मीटिंग्स वगैरह ये है। और गणपति बप्पा हमारे मेहमान नहीं है, वो हमारे ही है, हमारे बीच के ही है। हम सब में गणपति बप्पा है और हम हमेशा गणपति बप्पा को बहुत प्राथमिकता दिया हम लोगों ने। हमारे मंडल को आज 23 साल हो गए, इसीलिए हम लोग 23 तारीख को आगमन रखे हैं सर। मतलब 23 साल हो गए और ये आगमन गढ़ है 23, वो हिसाब से हम लोग ने रखा था।
0: जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में बाप्पा के भक्तों का जोश बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब बाप्पा अपने विशाल पंडाल में विराजमान होंगे और गणेश चतुर्थी के दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नागपुर में गणेशोत्सव की तैयारी के बीच ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक साथ हजारों लोग हाथों में ढोल ताशे और गूंजता संगीत। नागपुर में 4,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ ढोल ताशा बजाकर नया रिकॉर्ड दिया है और इस दौरान माहौल ऐसा था कि पूरा इलाका ढोल ताशे की आवाज से गूंज उठा।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि इस खास आयोजन ने न सिर्फ लोगों का जोश बढ़ाया बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा को भी एक अलग पहचान दिलाई। और जब इस रिकॉर्ड को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली तो इस पल की खुशी दुगुनी हो गई।

0: 4000 से ज्यादा ढोल ताशे जब एक साथ बजे तो इस जोशीले संगीत ने विश्व कीर्तिमान बना दिया है। नागपुर में इन ढोल ताशों की गूंज जमीन से लेकर आसमान तक सुनाई दी। रविवार का दिन नागपुर में इन ढोल ताशा ग्रुप के नाम रहा। जेंजी संवाद मुहिम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मकसद था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना। करीब 585 ध्वज धारकों ने अपने अपने ग्रुप्स के साथ इस महा आयोजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के लिए नागपुर समेत विदर्भ के अलग अलग शहरों से 2000 से ज्यादा ढोल ताशा ग्रुप्स को बुलाया गया था। इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ मौजूद थे। हर ग्रुप के ध्वजाधारक ने अपने ढोल ताशा ग्रुप का नेतृत्व किया। सभी ने मिलकर जब एक ही लय में ढोल बजाया तो वहां मौजूद हर शख्स जोश से भर गया और इस आयोजन ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को इस विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट भी दिया। नागपुर में हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आयोजन का मकसद भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, लेकिन इस आयोजन के जरिए महाराष्ट्र के तमाम ढोल ताशा ग्रुप्स को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका भी मिला और ये आयोजन नौजवानों के जोश और उत्साह की मिसाल बन गया। नागपुर से योगेश वसंत पांडे, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर छाई अरुणाचल की बच्ची ने क्यों सबको कहा थैंक यू।
2: हेलो गाइस, हमको एक अमीना हम कैसे बोले एक आप साइनी से कैसे बोले मेरा
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देश भर के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार की रौनक, श्रद्धालु कर रहे महादेव का जलाभिषेक, हर हर महादेव की गूंज। राजस्थान के पाली में झूला महोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण के लिए बनाए गए खास झूले, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा जारी, अब तक 273,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई। इक्कीस शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्र पुरस्कार, 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित, शिक्षक दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की धूम, बीजिंग में दिखा संतुलन नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का अनोखा संगम। भाई जिस बात की शुरुआत श्वेता ने की थी ना कि चाय कैसी है, क्यों आई है इतनी अच्छी चाय, द रीजन इज मौसम इज ऑसम। क्या मौसम है,
5: चर्चा इसलिए भी करनी पड़ती है ना कि आप रोज चाय नहीं पीती हैं।
3: हाँ,
5: जब मौसम बहुत अच्छा हो, चाय बहुत अच्छी हो, तब आप चाय पीती हैं। और आज तो प्रोग्राम हमारा शुरू होने से पहले ही आप लोगों को बता दें कि इन्होंने सबसे पहले चाय ले ली थी,
3: जो कभी नहीं करती,
5: जो यूजुअली नहीं करती है ये, इसलिए मुझे पूछना बन गया शुरुआत में कि भाई क्या खास बात है, क्या वजह है, तो वो है मौसम।
3: बिल्कुल, चलिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दीपिका का रिएक्शन भी ले लेते हैं। दीपिका कैसा लगा?
6: मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सुबह से दिन की शुरुआत ही मेरी बारिश से हुई है।
3: हाँ।
6: अभी भी मौसम अच्छा है, उम्मीद है आगे भी बारिश होगी, तो घर जाते वक्त भी कुछ ऐसा ही मिल जाए तो बेहतर होगा।
5: दीपिका ये बताइए कि बारिश में अभी भी आप भीगती है, क्योंकि बचपन में तो हम भीगा करते थे।
6: आपको पता है मुझे डर लगता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, लेकिन थोड़ा सा ना मैं भीग लेती हूँ कि वो ना बचपन ताजा हो जाता है, मजा आता है।
3: छींटे सोसाइटी में नीचे बच्चे कर रहे
5: एग्जैक्टली। और मैंने वीडियो भी बनाई, और पता है शगुप्ता मुझे अच्छी बात क्या लगी, पहले ना हमें बहुत डांट पड़ती थी, और आज लिटरली मैंने सोसाइटी में देखा, जो बात आपने जिक्र की मैंने वीडियो भी बनाया शेयर करूंगी, कि बच्चे स्कूल से आए और पेरेंट्स साथ में थे, और बकायदा एक जगह पे थोड़ा सा पानी जमा हुआ था, बच्चे खूब कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और पेरेंट्स वीडियो बना रहे थे। तो आजकल डांट नहीं पड़ती है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों की, मंडी हाउस की दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं, साथ ही दिल्ली में आप देखिए लोधी रोड जो है उसका इलाका आपको दिखा रहे हैं, साउथ एवेन्यू, साथ ही बारिश में नोएडा की स्थिति क्या है वो भी आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हर तरफ फिलहाल चूंकि लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो कुछ इलाकों में तो वाटर लॉगिंग हुई, लेकिन ज्यादातर जगहों पे मुझे लगता है शगुफ्ता लोगों ने एंजॉय किया है, बारिश
3: सुकून मिल गया लोगों को, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, तीन दिनों से हम बात भी कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, तो फाइनली बारिश इज हियर।
7: देखिए अगर हम मौसम के बारे में बात करें, तो मुख्य रूप से निम्न दबाव क्षेत्र लो प्रेशर एरिया जो है वो आज सुबह 8:30 बजे के हिसाब से निगेटिव वेस्ट बंगाल और उसके आसपास का जो झारखंड उड़ीसा क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रित था। इसको देखते हुए हमारा अनुमान यह है कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो हो सकती है वही भारत में मुख्य रूप से हम देखेंगे तो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इसके साथ अपने मध्य प्रदेश, इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट में इशू किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त में हम देखेंगे तो दक्षिण में केरल में आज भारी से बहुत भारी चेतावनी जारी की गई है और बाकी कई राज्यों में जो है आज हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी जो है जारी की है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी आज के लिए लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी साथ साथ में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी जो है ऑरेंज अलर्ट साथ में जारी की।
8: देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मॉनसून वापस से दस्तक दे चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मौसम है वो पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। इंडिया गेट की तस्वीरें दिखा रही हूँ, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको नजर आने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, उमस से परेशान हो रहे थे और हर किसी को इंतजार था कि एक बार फिर से कब राहत की बारिश जो है वो देश की राजधानी में दस्तक देगी। आखिरकार सुबह से ही जो है मौसम कुछ इसी तरीके से बना हुआ और आज देखा जाए तो आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। इस वजह से भी जो है अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की जो है इस वक्त बारिश जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि सावन के समय जो है बारिश जरूर देखी जाती है, लेकिन मौसम वाकई में इस वक्त बेहद खास हो चुका है। और ये पहले से अनुमान भी था कि एक जो पैच है वो लगातार जो है इस वक्त पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो है वो उनके कुछ हिस्सों में जो है वो लगातार बना हुआ था, जिसकी वजह से जो है बीते कुछ दिनों से वहां पर लगातार तेज बारिश जो है वो देखी जा रही थी। अगर हम इस वक्त में पहाड़ी राज्यों की बात तो वहां पे भी अच्छी खासी बारिश हो रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, लेकिन आज सभी मैदानी इलाकों में रुक रुक कर इसी तरीके से बारिश रहेगी। तापमान में जो है वो कमी जो है वो दर्ज होने वाली, लेकिन अगर बात पूर्वोत्तर भारत की जाए और साथ ही दक्षिण भारत की जाए तो इनके भी कुछ हिस्सों की मैं बात बता दूं कि इस वक्त जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जो है अच्छी खासी जो बारिश है वो देखी गई है और लगातार वहां बारिश जो है वो देखी जा रही है। और उसके साथ ही अगर मैं दक्षिणी छोर की बात करूं तो वहां पर भी जो है अच्छी खासी बारिश का जो है वो अनुमान जो है वो बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार। तो अगले 3 से 4 दिन इसी तरीके से जो है वो मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, जो है वहां पर लगातार जो है इसी तरीके से बारिश देखी जाएगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को वापस से जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि कब राहत की जो बरसात है वो दस्तक देगी, क्योंकि गर्मी से लोग वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो तस्वीरें दिखा रही हूँ, हालांकि कुछ लोग आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर जो इस मौसम का जो है आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और इसी तरीके से जो बारिश है वो लगातार देखी जा रही है, लेकिन वाकई में मौसम जो है अब सुहाना हो चुका है, लोगों को राहत मिली है। और अगर इसी तरीके से रुक रुक कर दिन भर बारिश हुई तो उससे तापमान में भी जो है कमी आ सकती है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे थोड़ा भी वक्त गुजारते हैं, जो हमें पता है कि आप गुजारते ही हैं रोज में, तो उसमें इस बच्चे को आपने जरूर देखा होगा। कुछ दिन पहले हमने भी देखा था, सुबह सुबह प्यारी सी ये बच्ची आई जिसमें अपने आप को वो कह रही थी कि हम इंडिया है, आप हमें इंडिया बोलो। बहुत ही प्यारी बच्ची, ट्विंकल नाम है और अरुणाचल प्रदेश की करीब ये 4 साल की कारगा ट्विंकल है। ट्विंकल की मासूमियत से भरी शिकायत सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई है कि हजारों लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं, लेकिन अब इस नन्ही सी बच्ची की शिकायत दूर हो गई है और चेहरे पर वापस आ गई है वही प्यारी सी मुस्कान।
9: बिल्कुल, आई एम श्योर कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिसमें इन्होंने अपनी शिकायत जब दूर हुई उसके बाद भी एक रिएक्शन दिया है जिसमें ये कहती हैं कि अब हम इंडिया हो गया। अपनी मम्मी को ये रिएक्शन दे रही है, मम्मी भी ये बोल रही है कि आप इंडिया ही हैं, आप इंडिया का ही हिस्सा हैं। और देखिए, इंडिया की बेबी सब लोग उसको बुला रहे हैं, तो बच्ची मुस्कुराकर कहती है अभी हम इंडिया हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों का बहुत सारा प्यार इसको मिला है, ट्विंकल के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है।
10: जिस मासूम आवाज में कुछ दिन पहले एक दर्द छिपा था, आज उसी आवाज में खुशी है। अरुणाचल प्रदेश की 4 साल की टिंकल गोंगो का नया वीडियो सामने आया है और इस बार टिंकल के चेहरे पर शिकायत नहीं बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान है।
11: आपको आपको अभी फेसबुक पे सब आप इंडिया इंडिया बोल के, इंडिया का बेबी है बोल के लिख रहे हैं ना।
12: थैंक यू
11: थैंक यू थैंक यू।
10: फूलों वाली रंग बिरंगी फ्रॉक, बालों में पीले रबर बैंड से बने छोटे छोटे जूड़े, सामने स्टील की थाली और उसमें रखा पराठा। अपने उसी मासूम अंदाज में टिंकल पराठा खाती है, मम्मी से बातें करती है और फिर अचानक ऐसा वाक्य बोलती है जिसने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
11: क्या बोले?
12: अभी इंडिया हो गया।
11: आपको आपको अभी फेसबुक पे सब आप इंडिया इंडिया बोलते, इंडिया का बेबी है बोलते लिख रहे हैं ना।
10: चार साल की बच्ची के ये चंद शब्द शायद उसके लिए बस एक छोटी सी बात हो, लेकिन इन शब्दों में उस प्यार की पूरी कहानी है जो देश भर से टिंकल तक पहुंचा है। उस वीडियो में उसकी आंखों में मासूमियत के साथ एक शिकायत भी थी।
12: आप हम लोग को सही नहीं बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको इससे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया हमको सही नहीं मत बोलो।
10: टिंकल की टूटी फूटी हिंदी, चेहरे के मासूम भाव और अपनी पहचान को लेकर उसकी छोटी सी शिकायत ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने टिंकल के लिए प्यार और मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने कहा तुम हमारी अपनी हो, किसी ने कहा तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, और किसी ने बस इतना कहा तुम इंडियन हो और हमें तुम पर गर्व है। शायद यही प्यार टिंकल तक भी पहुंचा और अब देखिए ना, उसी बच्ची की आंखों में खुशी है, चेहरे पर मुस्कान है और आवाज में भरोसा है।
11: अब इंडिया इंडिया बोलके, इंडिया का बेबी है बोलके लिख रहे ना।
10: टिंकल के इसी वाक्य ने सोशल मीडिया पर जैसे एक नई उम्मीद जगा दी है, क्योंकि टिंकल सिर्फ चार साल की बच्ची नहीं, वो उस भारत की तस्वीर है जहाँ पहचान के नाम पर कोई बच्चा खुद को अकेला महसूस न करे। आज टिंकल मुस्कुरा रही है और शायद उसकी ये मुस्कान हमसे एक छोटी सी उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है, लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कोई अपनी अदा से लोगों का दिल जीत रही है तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई है।
5: बिल्कुल, और खास बात यह है कि इन वायरल बिल्लियों की लिस्ट में एक नाम भारत की भी बिल्ली का है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इन इंटरनेट सेंसेशन बिल्लियों से, जिनकी मासूम शक्ल और अनोखी अदाएं लोगों को बना रही है अपना फैन।
13: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है, लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंदर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी हैं। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीन बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा जुबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर पीएम बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के पीएम बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनके संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वहीं बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
14: तो चलिए, यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में रोबोट्स की शर्मीली दौड़।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सोचिए मैदान पर खिलाड़ी दौड़ रहे हों लेकिन खिलाड़ी इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो। जी हाँ, बीजिंग में चल रहे दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। 5 दिन तक चलने वाले इस खास आयोजन में 16 देशों की 600 से ज्यादा टीमें और करीब 2000 रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ रोबोट सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेल रहे बल्कि दौड़ से लेकर अलग अलग औद्योगिक कामों तक अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि ये मुकाबले सिर्फ जीत हार का खेल नहीं बल्कि ये दिखाने की कोशिश है कि आने वाले वक्त में इंसानों के साथ रोबोट किस तरह काम कर सकते हैं।
0: दरअसल यहाँ 400 मीटर स्मॉल क्लास फाइनल में चीन के एक रोबोट ने 45.66 सेकंड्स में दौड़ पूरी कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में रोबोट सिर्फ दौड़ ही नहीं रहे बल्कि किक बॉक्सिंग, स्पैरिंग और ताइची जैसी प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। बीजिंग के नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में हो रहे इस गेम्स में दुनिया के 16 देशों की 600 से ज्यादा टीमें और करीब 2000 रोबोट्स हिस्सा ले रहे हैं।
3: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
4: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया।
3: यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: तो चलिए बात बॉलीवुड की करते हैं। खिलाड़ी अक्षय कुमार अब एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें उनका मुकाबला सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन से भी होगा। अक्षय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी अपकमिंग फिल्म सामुक की शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी है। फिल्म को निर्माता विपुल अमृतलाल शाह बना रहे हैं और इसे भारत की पहली सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है, यानी कहानी में एक्शन के साथ साथ रोमांच और खतरे का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा।
4: खास बात यह है कि सामुक को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए विदेशी क्रिएटर और स्टंट टीम को भी जोड़ा गया है। फिल्म में एलियन का डिजाइन मशहूर क्रिएटर इफेक्ट्स डिजाइनर एलेक गिलिस ने तैयार किया है, जो कि एलियन और प्रीडेटर जैसी हॉलीवुड फ्रेंचाइजी के लिए काम कर चुके हैं। डायरेक्टर कनिष्क वर्मा की यह फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, यानी कि अक्षय कुमार के फैंस को इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि बॉलीवुड में पहले कम ही देखने को मिला। चलिए चाय पर चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। दिल्ली एनसीआर के लोग मौसम का मजा लीजिए, चाय पकौड़े खाइए, शाम का वक्त है। शगुफ्ता भी आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान होगा?
5: हाँ, पर आप साथ में चलेंगे तो फिर चलते हैं दोनों।
4: चलिए फिलहाल मैं बुलेटिन कर लेती हूँ। चलिए रुकेंगे इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, कल मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: देश भर के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार की रौनक, श्रद्धालु कर रहे महादेव का जलाभिषेक, हर हर महादेव की गूंज। राजस्थान के पाली में झूला महोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण के लिए बनाए गए खास झूले, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की धूम, बीजिंग में दिखा संतुलन नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का अनोखा संगम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, जेएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज सावन का अंतिम सोमवार है, यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने का दिव्य मौका। जो भक्त इस सावन में किसी वजह से शिवालयों में जाकर भगवान शिव का अभिषेक नहीं कर पाए थे, उनके लिए आज अलौकिक अवसर है आशुतोष को प्रसन्न कर मनोरथ पूरा करने का। कहते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं को पूरा पुण्य फल मिल जाता है, और यही वजह है कि आज 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा।

0: सावन का आखिरी सोमवार यानी देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का अद्भुत अवसर। भगवान भोले भंडारी के जो भक्त सावन के बीते तीन सोमवार को किसी कारणवश शिवालय जाकर महादेव की विधिवत पूजा आराधना नहीं कर सके, उनके लिए सावन का अंतिम सोमवार विशेष अवसर लेकर आता है। सावन के अंतिम सोमवार को जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग का गंगाजल, दूध, शहद आदि से अभिषेक कर बेलपत्र, भांग, धतूरा वगैरह अर्पित कर देते हैं, उन पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मन वांछित फल प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। यही कारण है कि सावन के आखिरी सोमवार को देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सावन के आखिरी सोमवार को अविनाशी शिव की नगरी काशी में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा। दक्षिणी वाहिनी गंगा के दशाश्वमेध घाट पर स्थित बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कपाट खुलते ही आधी रात से ही कतार में लगे भक्तों ने जयकारा लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया और दूध गंगा जल से अपने आराध्य का पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ अभिषेक किया।
1: सावन का पावन माह हो और अंतिम सोमवार, ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनके जलाभिषेक करने से भक्त कैसे अछूते रह सकते हैं। यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। बीती रात से ही भक्तों के आने का सिलसिला, कतार में लगने का सिलसिला जारी हो गया था। मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया और कांवड़िया, आम भक्त, डाक बम, तमाम इन रूपों में भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। माना जाता है कि पूरे सावन माह में जो भक्त, शिव भक्त दर्शन नहीं कर पाते हैं बाबा का, उनका जलाभिषेक नहीं कर पाते, वे आज सावन के इस अंतिम दिन बाबा के दर्शन कर लेते हैं और जलाभिषेक कर लेते हैं तो पूरे सावन का पुण्य उनको मिलता है। यही कारण है कि आज शिव भक्त न केवल बनारस बल्कि प्रयागराज से भी जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जी लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं।
0: सावन के अंतिम सोमवार को देश के हर हिस्से से काशी पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर नजर आया। इस पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और उनके अभिषेक का अवसर मिलने के बाद श्रद्धालु इतने गदगद दिखे मानो उन्हें कई जन्मों का पुण्य फल मिल गया हो। इस पावन अवसर पर कई लोग पूरे परिवार संग काशी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर अपना जीवन धन्य किया।
2: सावन के सोमवार के दिन बाबा के दर्शनों का सौभाग्य बहुत बिरलों को मिल पाता है और हम दोनों आए और दर्शन हो गए, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं प्रभु की कृपा के। बाबा के का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। श्रावण का आखिरी सोमवार था, उस दिन हम लोग पहुंच पाए और दर्शन हुए, तो इसके लिए हम लोगों को बड़ा अलौकिक अनुभव है।
3: लखनऊ से आए हैं हम लोग और यहाँ पे बस हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज दर्शन कर पाए आज के ऑस्पिशियस दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके।
4: आज का ये सौभाग्य हमें मिला है बाबा भोले की कृपा से। हम मुंबई में रहते हैं, ये हमारी धर्मपत्नी रजनी सिन्हा है। दो दिन पहले अचानक शायद बाबा का बुलावा आया, मैंने इनसे पूछा, बोले चल चलें और आज दर्शन होकर बाहर निकले हैं। ये अविश्वसनीय है हम लोग के जीवन में। बाबा वैद्यनाथ धाम का हम लोग दर्शन कर चुके हैं और जाके रामेश्वरम में दर्शन कर चुके हैं वगैरह वगैरह, बट यहाँ का जो क्या बोलते हैं सबसे अच्छा माना जाता है वो दर्शन हुआ और इतने अच्छे से हुआ, इतने कम समय की प्लानिंग में हुआ, इसका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। बाबा के चरणों में बारम्बार प्रणाम।
0: गंगा के पावन तट पर स्थित बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब आपको लेकर चलते हैं समंदर किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर की प्रतिष्ठा प्रथम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूरी दुनिया में है। सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर भी गुजरात के गीर जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर का माहौल उत्सव जैसा नजर आया। प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने देश के विभिन्न हिस्से से आए शिव भक्त यहाँ पहुंचकर इतने उत्साहित दिखे मानो उन्हें सारे जमाने की खुशियाँ एक साथ मिल गई हों। इस अवसर पर उत्साह और उमंग की तरंग से सराबोर शिव भक्तों के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर ही गूंज उठा।
5: आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ भगवान महादेव मंदिर का दर्शन किया है। तो इधर का हम जो स्वच्छता देखा वो अपने सब लोकप्रिय है, मतलब स्वच्छता की महत्व बहुत इधर है। और भगवान का महादेव का दर्शन भी मस्त हुआ। और इधर जो दर्शन विर्शन का जो सब जो ग्रुप है इधर सोमनाथ महादेव मंदिर का जो ट्रस्टी का है वो उसको मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि जो सब जो लाइन बीन है वो जबरदस्त ये पुलिस बंदोबस्त रहेगा, इधर कमेटी का रहेगा, उसका काम बहुत अच्छा है।
6: हम पहले द्वारका गए थे, द्वारका से सोमनाथ आए हैं और कल ही आए थे और सुबह सुबह दर्शन के लिए आए। भीड़ भी कम थी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी मैनेज हो रही थी। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, सब बहुत अच्छा है, सुरक्षाकर्मी हर जगह आए और जितनी आसानी से दर्शन यहाँ हुए बिल्कुल भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम और जगह गए तो वहाँ पर फिर भी मुश्किल होती है लेकिन जितनी आसानी से यहाँ हमें दर्शन हुए उतनी आसानी से हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब कुछ बहुत साफ सफाई सुथरा।
0: सावन के अंतिम सोमवार पर महाकाल के दरबार की छटा भी अलौकिक दिखी। रात 12 बजे से ही महाकाल दरबार के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए तड़के 2:30 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही सबसे पहले महाकाल को हरिओम जल अर्पित किया गया। इसके बाद दिव्य अलौकिक भस्म आरती की शुरुआत हुई। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। पूजन श्रृंगार की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। महाकाल के अभिषेक पूजन और श्रृंगार का अद्भुत दृश्य देखकर देश के तमाम हिस्सों से आए श्रद्धालु भक्तिभाव से अभिभूत हो उठे।
7: बाबा महाकालेश्वर के दरबार में प्रातःकाल बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई है। कुंटलो दूध दही से बाबा का अभिषेक किया गया है। चूंकि बाबा का आज अंतिम सोमवार है इसलिए बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है, विशेष पूजन अर्चन की गई है। उसके पश्चात भगवान महाकाल के दरबार में भक्त लोग जय महाकाल का उद्घोष कर रहे हैं और साल भर तक बाबा महाकाल इस सोमवार का इंतजार करते हैं और आज बाबा महाकाल का ये सोमवार दिव्य दर्शन भक्त लोगों को दिए जा रहे हैं। जय महाकाल।
0: आपको बता दें कि सावन का पावन महीना धर्मनगरी उज्जैन के लिए किसी दिव्य अलौकिक उत्सव जैसा ही होता है। सावन माह में देश विदेश से श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए यहां आते हैं। सावन का अंतिम सोमवार महाकाल को प्रसन्न करने का इस सावन में अद्भुत अलौकिक मौका था, लिहाजा देश विदेश के लाखों श्रद्धालु महाकाल लोक में उमड़ पड़े।
8: तो इतना ब्लेस्ड फीलिंग आ रही है कि मैं सावन के लास्ट सोमवार महाकाल में हूँ, जो मैं मतलब एक साल से अर्जी लगा रही थी और आज जाके ये अर्जी लगी है। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब और ये इतनी पावन जगह है, इतनी एनर्जी है यहाँ पे कि मैं तो आज धन्य हो गई।
9: मैं कह रहा हूँ जीवन में ऐसा सुख कभी नहीं मिला जो आज मिल रहा है। हम आज पहली बार आए हैं और हमारे को पहली बार बस मारती में बैठने का मौका मिला, नंदीग्रह में बैठने का मौका मिला। अंदर से इतनी पावरफुल फीलिंग आ रही है कि हम बयान नहीं कर सकते कि जो दुख दे सब खत्म हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में खड़े हैं आज। इससे अच्छी और मतलब कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं कह सकता इसके बाद।
0: सावन के अंतिम सोमवार पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का ऐसा हुजूम उमड़ा कि मंदिर परिसर के चारों तरफ श्रद्धालुओं के सिर ही सिर नजर आ रहे थे। बाबा का अभिषेक करने के लिए भक्त पवित्र कलश में गंगा जल लेकर ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचने के लिए इतने आतुर थे कि धक्का मुक्की की स्थिति तक बन गई। जयकारों के जय घोष की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि आसमान भी गुंजायमान हो उठा। जिला प्रशासन ने इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए अपनी तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। प्रशासन का भी अनुमान है कि आखिरी सोमवार को देश भर से करीब 3 लाख श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं।
10: 3 लाख भी बहुत ह्यूज नंबर है हमारे इस कैंपस के लिए, मंदिर परिसर के लिए, और जो हमारे जो रूट्स वगैरह हैं सक्रिय रूट्स हैं, तो हमारी तैयारी पूरी उसी तरह है जैसे पिछले 3 सोमवार को थी और बाकी अन्य दिनों की। और हम लोग चाहते हैं कि 4th सोमवार और बाकी अन्य जो 4 दिन हैं वो भी बहुत सुगमतापूर्वक सभी श्रद्धालु लेंगे।
0: सावन के महीने में हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति मंदिर की आभा भी अलौकिक हो जाती है। दरअसल इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। अब जिस स्थान पर भगवान भोले के स्वयं निवास की मान्यता हो, उस पावन स्थान पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक ही है। सावन के अंतिम सोमवार को दक्षेश्वर प्रजापति मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। चूंकि ये परम पुनीत स्थान भगवान शिव की ससुराल माना गया है, लिहाजा पूरे सावन, खास तौर पर सावन के सोमवार को श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं और मनवांछित फल पाते हैं।
11: इस दक्ष के इस सावन माह में तो इसकी ऐसी कृपा है भोलेनाथ की, यहाँ जो भी आपको कुछ मांगेगा वो फल लेने जाएगा, उसको जरूर प्राप्ति होगी। यहाँ से भोलेनाथ का ऐसा स्थान है।
12: आज के दिन महत्व होता है कि मतलब सावन के सोमवार का लास्ट आखिरी सोमवार है आज, और एकादशी का भी महापर्व है, तो एकादशी भी पुत्रदा एकादशी है, तो दोनों ही विष्णु और शिव जो दोनों एक ही माने जाते हैं, तो उन दोनों का आज है, तो आज के दिन का और भी महत्व बढ़ गया है।
0: सावन के अंतिम सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रसिद्ध शिवालयों के अलावा देश भर में स्थित शिव के तमाम मंदिरों और धामों पर सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। शिव भक्त अपनी सामर्थ्य और सुविधा के हिसाब से ही शिवालयों में पहुंच रहे हैं, ताकि इस साल सावन के अंतिम पावन अवसर पर यथासंभव भगवान भोले का अभिषेक और पूजन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: सावन को आदिकाल से ही भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। सावन के सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की परंपरा आज की नहीं, दरअसल भगवान शिव को आशुतोष भी माना जाता है। आशुतोष मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य तो ये भी है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते, बल्कि अनादिकाल से अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है।

0: सनातन धर्म के आत्मिक या अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र, सृजन, पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनीन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणा मूर्ति का। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित हैं। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्त वत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात, लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें दिन भर जारी है। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। बाजारों में सजी राखियों की दुकानें ग्राहकों को अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रही हैं। खासकर महिलाओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और बहनें अपने भाइयों के लिए पसंदीदा राखी की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। ऐसी ही रौनक वाली तस्वीरें आपको बाजारों में इन दिनों नजर आ जाएंगी। बहनें अपनी अपनी तरह की कस्टमाइज राखियां भी अपने भाई के लिए बनवा रही हैं। इस बार राखियों के बाजार में आपको डिजाइन और वेरायटी की कोई कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि डिजाइन और वेरायटी की यहां पर भरमार है। दुकानदारों का ये दावा है कि करीब 15,000 नए डिजाइन बाजार में इस बार खास तौर से उतारे गए हैं, क्योंकि हर बार किसी ना किसी की डिमांड रहती है कि ऐसी राखियां हमें नहीं मिलती हैं, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसी राखियां आपको कस्टमाइज

0: डिजाइनर और प्रीमियम राखियों की कीमत 800 रुपए तक पहुंच रही है, तो वहीं अमेरिकन डायमंड और नाग डिजाइन वाली राखियां 300 से 400 रुपए की कीमत में खासतौर पर पसंद की जा रही हैं। जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा है, सहारनपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह भी इसी तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। चमोली की तस्वीरें देख लीजिए। विश्व धरोहर फूलों की घाटी भी इस बार पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। मॉनसून के बीच यहां पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 22,000 से ज्यादा पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं। इनमें 150 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं, जबकि पिछले साल 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच कुल 15,924 पर्यटक यहां पहुंचे थे। इस साल बारिश के बावजूद फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए लगातार खुली रही। यात्रा मार्ग सुचारू रहा, मौसम ने साथ दिया और बारिश के बाद खिली धूप ने घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। रंग बिरंगे फूलों से सजी घाटी, सुहाना मौसम और चारों तरफ बिखरी प्राकृतिक खूबसूरती, यही वजह है कि सैलानी यहां खिंचे चले आते हैं। इस बार पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई गुड न्यूज की करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा सुविधा केंद्र पर पूरी तरह स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल शेर का पहला सफल परीक्षण किया गया है। ये राइफल इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बनाई गई है। ये कंपनी 2019 में भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित हुई थी, जिसका मकसद भारत में AK-203 राइफलों का निर्माण करना था। परीक्षण की गई इन राइफल्स को अगले महीने सितंबर में भारतीय सेना को ट्रायल के लिए सौंपने की योजना है। कुल मिलाकर यह भारत की रक्षा निर्माण क्षमता में बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: और धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: देशभर के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार की रौनक, श्रद्धालु कर रहे हैं महादेव का जलाभिषेक, हर हर महादेव की गूंज। राजस्थान के पाली में झूला महोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण के लिए बनाए गए खास झूले, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की भारी डिमांड। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स की गई डायवर्ट। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम

0: की धूम, बीजिंग में दिखा संतुलन, नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का अनोखा संगम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: कटिहार के प्राचीन गोरखनाथ धाम में आस्था का सैलाब, हेलीकॉप्टर से हजारों शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। हर महादेव से गूंजा गोरखनाथ धाम, बोलबम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। गोरखनाथ धाम में भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ धाम में दिखा भव्य नजारा, शिव भक्तों ने अपने आराध्य के प्रति दिखाया जबरदस्त उत्साह। सावन में मनिहारी गंगा घाट से जल लेकर पहुंचते हैं कांवड़िये, मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पवित्र सावन का अंतिम सोमवार आज देवघर से लेकर काशी तक हर महादेव के जयकारे। काशी महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार, सुबह से मंदिर के बाहर लंबी कतारें। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों ने लगाया बाबा के नाम के जयकारे, माहौल हुआ अद्भुत। गाजियाबाद के श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, शिव भक्तों ने किया महादेव का अभिषेक। सावन के आखिरी सोमवार पर मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में उमड़े लाखों श्रद्धालु, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। बाबा बाबुलनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें, हर हर महादेव के जयकारों के बीच दर्शन पूजा। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़े कांवड़िये, बाबा का पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक। कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, कतारों में लगकर भक्तों ने दर्शन किए। समस्तीपुर में अंतिम सोमवारी पर प्रसिद्ध थानेश्वर स्थान मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, हर हर महादेव के जयकारे। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में सुबह सुबह भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन पूजन किए। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने बेलपत्र गंगा जल से भोलेनाथ की पूजा की। गुजरात में दूसरे सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। लखनऊ में सावन के आखिरी सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में बड़ा आस्था का जनसैलाब, आखिरी सोमवार में भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल की भस्म आरती में उमड़ी भक्तों की भीड़, दूध दही घी शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना। जयपुर में सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने ताड़केश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार में कनखल महादेव मंदिर में पूजा पाठ का दौर जारी है, भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। रोहतास में पायलट बाबा आश्रम स्थित सोमनाथ मंदिर में अघोरेश्वर महादेव की शिवलिंग की हुई विशेष पूजा अर्चना, साल में दो बार ही खुलते हैं द्वार। बाघा में सावन की आखिरी सोमवारी पर नर्मदेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 80,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। हजारीपुर बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, भक्तिमय माहौल। पाली में सावन के दौरान मंदिर में आकर्षक झूलों में झुलाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को। रंगजी मंदिर में चलत झांकियों के साथ भगवान के मनमोहक स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। रघुनाथ मंदिर के आदम का कद झूले भी श्रद्धालुओं को खींच रहे हैं अपनी ओर। गोपीनाथ मंदिर में कृत्रिम फूलों से हरियाली के बीच सजाया गया भगवान का झूला, दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। भारी बारिश और ठंड के बीच हेमकुंड साहिब पहुंच रहे श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान करके गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं यात्री। हेमकुंड साहिब की 23 मई से शुरू हुई थी यात्रा, अब तक 273,300 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। मानसून की चुनौतियों के बीच यात्रा मार्ग पर आवाजाही लगातार जारी, श्रद्धालुओं के लिए लंगर और गर्म भोजन के साथ मेडिकल टीम तैनात। इस साल अब तक 22,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। फूलों की घाटी, रंग बिरंगे फूल और बारिश के बीच धूप बढ़ा रही है घाटी की खूबसूरती। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, ड्राई फ्रूट से किया गया श्रृंगार। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर वंदे भारत ट्रेन का ड्रोन विजुअल शेयर किया। जंगल के बीच लकीर से गुजरती ट्रेन से विजुअल लोगों को कर रहे हैं काफी पसंद, रेल मंत्री ने लिखा मेक इन इंडिया के नए ट्रेन का जमाने की ट्रेन। दमन में मॉनसून फेस्टिवल का भव्य आगाज, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी मुख्य अतिथि। फेस्टिवल में सांस्कृतिक परेड, लाइव बैंड और म्यूजिकल नाइट्स बनी मुख्य आकर्षण। दमन के मॉनसून फेस्टिवल 2026 में मुखौटे पहनकर पहुंचे लोग, भांगड़ा और ढोल ने जमाया रंग। शतरंज की दुनिया से भारत के लिए शानदार खबर, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने जीता कानिशा ओपन शतरंज टूर्नामेंट। नौवें रोमांचक दौरे के बाद प्रणेश ने दर्ज की जीत, बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर बने विजेता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने नए चैंपियंस को बधाई दी। रविंद्र जडेजा ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ मैदान में कदम रखते ही रच दिया इतिहास, WTC के इतिहास में 50 मैच खेलने वाले पहले एशियाई और भारतीय क्रिकेटर बन गए। रविंद्र जडेजा ने साल 2012 में किया था अपना टेस्ट डेब्यू, अब तक खेले गए अपने 50 मैचों में उन्होंने 2675 रन बनाए हैं, 160 विकेट लिए हैं। उत्तरकाशी के मुखवा गांव में प्राकृतिक सामग्री से बन रही है अनोखी राखियां, मुखवा की महिलाओं ने राखी से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, स्थानीय संस्कृति के साथ स्वरोजगार का मिल रहा है बढ़ावा। मुखवा की प्राकृतिक राखियों को बाजार में उतारने की तैयारियां, प्लास्टिक राखियों के बीच बना रही है अपनी पहचान। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार में तेंदुए के खतरे से निपटने की तैयारियां, वन्य जीवों को दूर रखने के लिए लगाया गया अलार्म सिस्टम। पुत्रदा एकादशी के मौके पर सोमनाथ महादेव का खास हरिहर चंदन श्रृंगार, चंदन से सजे भोलेनाथ के दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत, अमेठी में बनी 100% स्वदेशी AK-203 शेर असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल। अमेठी के कोरवा में बनाए जा रहे हैं स्वदेशी हथियार। INSAS राइफलों की जगह लेगी AK-203 राइफल के सभी पुर्जे और कच्चा माल पूरी तरीके से स्वदेशी। ऑर्डिनेंस कारखाने की का तेजी से किया जा रहा है विस्तार, लगभग 6,00,000 राइफलों की सप्लाई का लक्ष्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका का होगा पहला बड़ा मिलिट्री अभ्यास, भारत के 350 सैनिक लेंगे हिस्सा। रायबरेली के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिले को दी 879 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बांधी राखी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने खोला तोहफों का पिटारा, महिलाओं को पोंगल 2027 से हर साल मिलेंगे 3 LPG सिलेंडर मुफ्त। सालाना 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार की होंगी मुफ्त के 3 सिलेंडर पाने के अधिकारी। दिल्ली एनसीआर में सावन के आखिरी सोमवार पर मॉनसून ने जबरदस्त करवट ली, आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ही तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, लोगों को उमस से मिली राहत। दिल्ली मूसलाधार बारिश से खड़क सिंह बार के कई इलाकों में भर गया पानी, कोनॉट प्लेस के पास शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बाहर जल जमाव। गाजियाबाद में हुई जोरदार बारिश के से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, मौसम सुहाना हुआ। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में तेज बारिश, बिजली चमकने के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चली हवाएं। देश के कई राज्यों को मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध का एक हिस्सा टूट गया, सैकड़ों एकड़ में फसल डूबी। बिहार के दानापुर में गंगा और सोन नदी के जलस्तर खतरे के निशान के पार, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। संगम नगरी प्रयागराज में भी बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। वाराणसी से रात की खबर, धीरे धीरे कम हो रहा है गंगा का जलस्तर, घाट से उतर रहा है पानी। चीन के बीजिंग में ऑड्स टू हीरोज अनोखा शो, परंपरा और आधुनिकता का दिखा अद्भुत संगम, डांस ड्रामा ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। व्यंग्य नृत्य बना मुख्य आकर्षण, प्राचीन लोक नृत्य को मिला आधुनिक मंच। नृत्य में मार्शल आर्ट्स का तड़का, थिएटर और युद्ध कौशल का शानदार मेल। लोक संस्कृति को आधुनिक संगीत से जोड़ा गया, शो का मकसद संस्कृति को पहचानना। चीन के बीजिंग में यमाकान लोक कला की गूंज, हेजिन लोक कला पर आधारित नाटक पेश हुआ। नेशनल थिएटर में यमाकान की शानदार प्रस्तुति दी गई, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त यमाकान कला है। नाटक के जरिए जापान के साथ युद्ध की प्रस्तुति, यमाकान गीत और कहानी के रूप में पेश। चीन में 40 डिग्री गर्मी में अनोखा हॉट पॉट, चोंगकिंग में पानी के बीच बैठकर खाया तीखा हॉट पॉट। पर्यटकों ने अनोखे अनुभव का आनंद लिया, हॉट पॉट और ठंडे पानी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने खींचा सभी का ध्यान। रोबोट ने पानी की बोतल पहुंचाई, काम करने की दिखी शानदार क्षमता। ह्यूमनॉइड रोबोट ने नूडल्स उबाले, किचन के काम में भी दिखाई दक्षता, रोबोटिक डॉग ने भी किया प्रभावित। हांगकांग में दिखानों का नजारा, रोबोट्स ने स्टेज पर बच्चों के साथ ताइची की शानदार प्रस्तुति दी, इंसान रोबोट की शानदार जुगलबंदी। ह्यूमनॉइड रोबोट ने दिखाया स्मूथ मूव्स। बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया, रोबोट ने जिमनास्टिक में दिखाया दमखम। 400 मीटर ऑब्स्टिकल रेस में ह्यूमनॉइड रोबोट के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, ऑब्स्टिकल रेस में दिखी शानदार दक्षता। सीढ़ियां चढ़ने के नजर आए ह्यूमनॉइड रोबोट, पार की कई मुश्किल बाधाएं, ह्यूमनॉइड रोबोट ने पोल के बीच में भी लगाई दौड़। मुश्किल ट्रैक पर रोबोट ने दिखाई फुर्ती, तेज मूवमेंट और संतुलन की जबरदस्त परीक्षा। ऑब्स्टिकल रेस में जीता दर्शकों का दिल, दर्शकों ने इस सबसे मजेदार इवेंट को बताया। वॉशिंगटन डीसी में कायल किर्कवुड ने जीती इंडी कार फ्रीडम 250 रेस। वॉकवुड ने कड़ी रेस के बाद हासिल किया खिताब, क्रिश्चियन दूसरे पायदान पर है, विल पावर तीसरे पायदान पर। स्विट्जरलैंड के दावोस में ब्रांटून और बीली बने स्विस एपिक चैंपियन। महिलाओं में वाइन बियर पैरिटी का दबदबा, स्विस इटावली जोड़ी बनी चैंपियन। सियोल में एनसीटी 127 का नया एल्बम ब्लिंगी रिलीज हुआ। जापान में भीषण गर्मी से पालतू जानवरों को बचाने की शानदार पहल, डॉग्स और कैट्स को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए फैन सूट किया गया तैयार। टोक्यो की कंपनी ने बनाया है पंखे लगे हुए पफी जैकेट। जापान में 40 डिग्री तक पहुंच रहे हैं तापमान, के बीच में पैट कूलिंग जैकेट की बढ़ी डिमांड। सिनसिनाटी ओपन कोको गॉफ बनी चैंपियन, फिल्स ने जीता पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब। अमेरिका की कोको गॉफ ने जेसिका पेगोला को 6-2, 6-4 से मात दी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: सैनिकों को जाते देख क्यों रोने लगी महिलाएं? अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के घुसने पर हड़कंप। यूपी के बाराबंकी में एक बुजुर्ग मुस्लिम को पीटा गया। उम्र छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। देखिए वैभव शुक्ला के साथ वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रयागराज में सावन महीने की पवित्र पुत्रदा एकादशी के मौके पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तस्वीरें देखिए, यहां पर 51 बटुक अपने आचार्य के साथ दशाश्वमेश्वर घाट में पहुंचे और घाट पर सबसे पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और मां गंगा की आरती विशेष तौर पर की गई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी 51 बटुकों ने गंगा जल से 51 कलश भरे। कलश में गंगा जल भरने के बाद बटुक एक कतार में पैदल आश्रम के लिए रवाना हुए। इन 51 कलशों में लाए गए पवित्र गंगा जल से श्री शंकराचार्य आश्रम परिसर स्थित मैदानीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विशेष पूजन महारुद्राभिषेक किया जाएगा। दशाश्वमेश्वर घाट से शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ गंगा जल भरने की परंपरा नहीं है, बल्कि गुरु गंगा और महादेव के प्रति आस्था का संगम है। चमोली में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में मॉनसून की बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह को डिगा नहीं पा रही है। भारी बारिश और बढ़ती ठंड के बीच भी बड़ी संख्या में सिख संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रही हैं। श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं और गुरबाणी का श्रवण कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। मौसम चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 23 मई से शुरू हुई थी और अभी तक का आंकड़ा देखें तो 273,300 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि मानसून की चुनौती के बावजूद यात्रा मार्ग को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन और संबंधित एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। यहां भी मार्ग बाधित हुआ, वहां पर तत्काल कार्रवाई करके यातायात बहाल कर दिया गया। मुंबई में अब गणेशोत्सव का रंग पूरी तरीके से चढ़ने लगा है। गलियों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया। बप्पा की भव्य मूर्तियां अलग अलग इलाकों में पहुंच रही हैं और उनके स्वागत में श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ढोल ताशों की गूंज, गुलाल और खुशबू, भक्तों की उमड़ी भीड़ बता रही है कि माया नगरी अपने सबसे बड़े त्यौहार के स्वागत करने के लिए तैयार है।

0: आ रहे हैं गणपति बप्पा। ढोल ताशों की गूंज, हर तरफ भक्ति का उल्लास। मुंबई में दिखने लगा है गणेशोत्सव का उत्साह। गणेशोत्सव में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस पर्व के रंग अभी से मुंबई में गहराने लगे हैं। गजानन की प्रतिमाएं अब पंडालों की तरफ आने लगी हैं। इस आगमन का उल्लास भी अब मुंबई की सड़कों पर दिखने लगा है। रविवार को जब मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा सड़क पर उतरी तो उनके स्वागत के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर मौजूद थे। एक भव्य जुलूस के साथ काला चौकी के महाराज की सवारी आगे बढ़ी। काला चौकी चा महाराज की प्रतिमा इस बार बेहद खूबसूरत दिख रही है। बाप्पा के सिर पर शेषनाग की छवि उकेरी गई है। उनके हाथ में एक चक्र है जबकि दूसरे हाथ में शंख सुसज्जित है। तीसरे हाथ से बाप्पा भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। गजानन की इस सवारी के साथ हर तरफ ढोल ताशे की गूंज सुनाई दे रही है। ध्वजा धारकों का डांस माहौल को और जोशीला बना रहा है। बाप्पा की सवारी के साथ हजारों लोग डांस करते हुए चल रहे थे। बाप्पा की सवारी जब अपने पंडाल की तरफ बढ़ी तो पूरा इलाका जश्न के रंग में रंगता जाता है। गणेश चतुर्थी में अभी कुछ ही दिन बाकी है लेकिन बाप्पा के आने की खुशी ने हर भक्त को जोश से भर दिया है। काला चौकीचा महाराज के साथ कामराजचा महाराज की खूबसूरत प्रतिमा भी रविवार को दिखी। कामराजचा महाराजा ने एक हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है तो दूसरे हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाप्पा की सवारी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इनमें बच्चे बड़े सभी शामिल थे।
1: लोग देख मतलब जैसा विसर्जन होता है, विसर्जन होने के 2 महीने बाद ही हमारा फिर से तैयारी चालू हो जाता है कि गणपति का क्या क्या प्लानिंग है, मीटिंग्स वगैरह ये है। और गणपति पापा हमारे मेहमान नहीं है, वो हमारे ही है, हमारे बीच के ही है। हम सब में गणपति पापा है और हम हमेशा गणपति पापा को बहुत प्राथमिकता दिया हम लोगों ने। हमारे मंडल को आज 23 साल हो गए, इसीलिए हम लोग 23 तारीख को आगमन रखे हैं सर। मतलब 23 साल हो गए और ये आगमन का डेट 23, वो हिसाब से हम लोग ने रखा था।
0: जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में बाप्पा के भक्तों का जोश बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब बाप्पा अपने विशाल पंडाल में विराजमान होंगे और गणेश चतुर्थी के दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: भर के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार की रौनक, श्रद्धालु कर रहे महादेव का जलाभिषेक, हर हर महादेव की गूंज। राजस्थान के पाली में झूला महोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण के लिए बनाए गए खास झूले, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड। बिहार के बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, मंदिर को कहा जाता है सीमांचल का देवघर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में संस्कृत महोत्सव का आयोजन, छात्र छात्राओं ने किया कला का प्रदर्शन, नई पीढ़ी को प्राचीन भाषा से जोड़ने का लक्ष्य।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर,
2: गुड न्यूज टुडे।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज सावन का आखिरी सोमवार है, यानी कि आज भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष दिन और तिथि, इसलिए सुबह से ही देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है सावन का आखिरी सोमवार, शिव भक्ति अपार। जी हां, शिव मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, बम बम भोले जय शिव शंकर के नारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान है। तो चलिए आपको देश के प्रमुख शिवालयों की तस्वीरें दिखाते हैं।

0: शिव मंदिरों में आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। भगवान शिव के दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। भगवान शिव को सावन महीना प्रिय है और सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन माना जाता है। ऐसे में सावन के आखिरी सोमवार का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में भक्तों का शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ना लाजमी है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसे में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। सावन के आखिरी सोमवार को प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु सोमनाथ पहुंचे। इस पावन अवसर पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की प्राचीन और भव्य परंपरा के अनुसार भगवान सोमनाथ महादेव की विशेष पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। फूलों से सुसज्जित पालकी में भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को विराजमान किया गया। पालकी यात्रा के दौरान ढोल, शहनाई और डमरू की मंगल ध्वनि के बीच यात्रा निकली तो मानो देवलोक धरती पर उतर आया।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है, अनुभव बहुत अच्छा रहा है, दर्शन बहुत सुंदर हुए हैं। आज आखिरी सोमवार है हमारे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से सावन का, तो वैसे ही महत्व बहुत होता है सावन का, सोमवार का, तो अनुभव बहुत अच्छा रहा।
0: श्रावण मास के आखिरी सोमवार को प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में होने वाली भस्म आरती के लिए रात से ही मंदिर के बाहर कतार लगना शुरू हो गई थी। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खुले। सबसे पहले भगवान को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके बाद भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया गया। आरती पूजन का यह अद्भुत नजारा देखकर भक्त अभिभूत हो उठे।
2: मेरे को तो इतना ब्लेस्ड फीलिंग आ रही है कि मैं सावन के लास्ट सोमवार महाकाल में हूँ, जो मैं मतलब एक साल से अर्जी लगा रही थी और आज जाके ये अर्जी लगी है। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब और ये इतनी पावन जगह है, इतनी एनर्जी है यहाँ पे कि मैं तो आज धन्य हो गई।
3: आरती अटेंड कर दी, लेकिन पहले वो वाला सुख नहीं मिला जो आज मिला है। आज तो ऐसे बाबा ने दर्शन दिए है ना, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, समझ लो। जय जय महाकाल।
0: देवघर में सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर बाबा बैजनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी। यहां पर मान्यता है कि समुद्र मंथन में सावन की चौथी सोमवारी को लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जानकारों के अनुसार आज के दिन पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के जल अभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महादेव के दर्शन के लिए तड़के से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह सुबह करीब 10 किलोमीटर लंबी कतार लग चुकी थी। सावन का पावन माह हो और उस पर से अंतिम सोमवार, भक्त शिव पूजन के बिना कैसे रह सकते हैं। ऐसे में बाबा काशी विश्वनाथ का जल अभिषेक और दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे। देर रात से ही दर्शन के लिए यहां पर भक्तों की कतार लग गई थी। मान्यता है कि सावन के आखिरी सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही सभी तरह के पाप कट जाते हैं।
4: लखनऊ से आए हैं हम लोग और यहाँ पे बस हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज दर्शन कर पाए आज के ऑस्पिशियस दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके।
0: वैसे तो सावन का हर सोमवार शिव आराधना को लेकर विशेष माना जाता है, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार की बात ही कुछ अलग होती है। पूरे देश में इस खास अवसर पर आस्था का मेला लगा है। हरिद्वार से लेकर कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर वाराणसी तक हर ओर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। हर ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़ने वाले भक्तों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर समितियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मेल सर्विस यानी कि आरएमएस की ओर से अलग स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है भाइयों तक राखी पहुंचाने के लिए रेलवे की तैयारी। आपको बता दें कि शादी के बाद कई बहनें पारिवारिक जिम्मेदारियों, नौकरी और अन्य कारणों से अपने भाइयों के पास राखी बांधने नहीं जा पाती। ऐसे में डाक सेवा उनके लिए भाई तक प्यार और आशीर्वाद पहुंचाने का भरोसेमंद माध्यम बनता जा रहा है। अकोला रेलवे स्टेशन परिसर स्थित रेल मेल सर्विस यानी कि RMS के पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से अन्य स्पेशल अलग से काउंटर शुरू किया गया है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है। इतना ही नहीं, RMS में रात 9 बजे तक राखी पोस्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में बारिश से राखी खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए यह सुविधा बहनों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है।
6: राखी का एक पवित्र जो त्यौहार है उससे मद्देनजर रखते हुए हमने एक बहनों के लिए एक स्पेशल सेवा शुरू की है और हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इससे मद्देनजर जो भीड़ है उस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है ताकि हमारी जो बहनें हैं जो राखी भेजने के लिए आई है उनको कम से कम तकलीफ हो। और बहुत सारी बहनें जो है वो एक जॉब करती है या किसी वजह से वो सुबह के वक्त में नहीं आ सकती है पोस्ट ऑफिस में, तो हमने जो टाइमिंग है हमारा वो 4 से 9 बजे तक के रखा है और इसका हमारी बहनों जो है वो पूरा लाभ उठा रही है।
5: और हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था की अनोखी तस्वीर सामने आई है। देवभूमि माने जाने वाले हिमाचल के मंदिरों में पिछले 3 सालों में करीब 420 करोड़ रुपए की रकम चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है हिमाचल के मंदिरों में 420 करोड़ का चढ़ावा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 36 बड़े मंदिरों को पिछले 3 साल में बंपर चढ़ावा मिला है। इन मंदिरों को 419 करोड़ 88 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला है। इन पैसों को मंदिरों के रखरखाव पर खर्च किया जा रहा है।
7: हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थलों की पूरी परंपरा है। यहाँ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी आस्था है। श्री बाबा बालकनाथ मंदिर, माता चिंतपूर्णी मंदिर, श्री महामाया बालक सुंदरी मंदिर, श्री नैना देवी मंदिर, श्री ज्वालामुखी मंदिर, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर जैसे मंदिरों की पूरी श्रृंखला है और दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। हिमाचल को भी देव भूमि माना जाता है और यहाँ के मंदिरों में लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए भक्त दिल खोलकर भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। अगर पिछले 3 सालों की बात की जाए तो हिमाचल के 36 बड़े मंदिरों में 419 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ाया। ये जानकारी राज्य की सरकार ने विधानसभा में दी है।
8: देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है।
7: 2024, 2025 और 2026 की बात की जाए तो 1 अगस्त तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 99.19 करोड़ रुपए का दान हमीरपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में आया है। नैना देवी मंदिर को 86.94 करोड़ रुपए, ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी मंदिर 85.72 करोड़ रुपए, ज्वालामुखी मंदिर को 36.57 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ, त्रिलोकपुर स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 28.99 करोड़ रुपए, कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 13.76 करोड़ रुपए। मंदिर में आए चढ़ावे का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, सौंदर्यकरण, सफाई, लाइटिंग, गौशालाओं को चलाने, धार्मिक आयोजनों, मेलों और पुजारियों में मंदिर के कर्मचारियों की सैलरी देने में किया जाता है। अब हिमाचल सरकार ने मंदिरों में आने वाले चढ़ावे के रखरखाव, गिनती और निगरानी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश ना रहे। विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे।
5: जब धर्मनगरी हरिद्वार के घाटों पर आस्था का समंदर उमड़ता है तो परंपराएं केवल रंगों में नहीं बल्कि पवित्रता के अनूठे रूपों में ढल जाती है। यहां की पावन हर की पैड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है जिसमें श्रद्धा और उल्लास की धाराएं एक साथ बहती है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है हरिद्वार में दूध की भव्य होली। आपको बता दें कि हरिद्वार में 116वां मुल्तान जोत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पर मां गंगा के आंचल दूध की धार और आस्था की जोत मिली तो पूरा वातावरण अलौकिक हो उठा। ये केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस अटूट परंपरा का जीवंत प्रतीक है।
9: धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आस्था का अनोखा संगम नजर आया। यहां देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे मुल्तान समाज के लोगों ने हर की पैड़ी पहुंचकर अनोखे धार्मिक माहौल को आस्था के रंग में रंग दिया। हर की पैड़ी पर देश के कोने कोने से लोग स्नान करने आते रहे हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मुल्तान समाज के लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं दूध से। गंगा के तट पर फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियां लेकर ये लोग मां गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और मां गंगा को दूध अर्पित कर उनके साथ खूब दूध की होली खेली।
10: ऐसा है कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम मां गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता हम प्रवाहित करते हैं, पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
9: मुल्तान जोत महोत्सव के रूप में मुल्तान समाज के लोग माँ गंगा से दूध की होली खेलकर देश हित और समाज की खुशहाली और गंगा माँ की स्वच्छता साथ ही रक्षा और गंगा को पवित्र रखने की कामना करते हैं। इस साल यहाँ 116वां मुल्तान जोत महोत्सव मनाया गया जिसके माध्यम से गंगा की पवित्रता और निर्मलता बनाए रखने का संकल्प लिया गया।
11: हम सब यही चाहते हैं कि सब अपने परिवार के साथ यहाँ पर गंगा जी के पास आए और ये एक मुल्तान जोत महोत्सव जो दिल्ली के कोने कोने से और भारत के कोने कोने से हर जगह से लोग आते हैं, मुल्तानियों की एक परंपरा है जो बहुत सालों से चली आ रही है, तो आज बहुत खुशी हुई यहाँ पर सबको देखकर। तो मैं तो यही चाहती हूँ सब यहाँ आए और यहाँ पर भागीदार बने गंगा जी के दर्शन।
9: कहते हैं कि 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हों। कहा जाता है कि उनकी मनोकामना पूरी भी हुई थी और उसके बाद से ही हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के बाद यहाँ पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहाँ पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं।
10: तब से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उस
9: इस खास उत्सव में शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम देते हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: नागपुर में ढोल ताशा बजाने का एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। यहां पर 4,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक साथ ढोल ताशा बजाया। ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 4,000 युवाओं ने बनाया ढोल ताशे में रिकॉर्ड। जी हां, नागपुर में जब 4,000 से ज्यादा ढोल ताशों को युवाओं ने एक साथ बजाया तो इस जोशीले संगीत ने विश्व कीर्तिमान बना दिया। नागपुर में बजते इन ढोल ताशों की गूंज जमीन से आसमान तक सुनाई दी। इस खास कार्यक्रम का आयोजन रविवार को जेंजी संवाद मुहिम के तहत किया गया था। यहां मौजूद ढोल ताशा ग्रुप्स का मकसद एक विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम करने का था, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां ढोल ताशों के अलावा करीब 585 ध्वज धारकों ने अपने अपने ग्रुप्स के साथ इस महाआयोजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के लिए नागपुर समेत विदर्भ के अलग अलग शहरों से 200 से ज्यादा ढोल ताशा ग्रुप्स को बुलाया गया था। इन नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर पहुंचे थे। हर ग्रुप के ध्वज धारक ने अपने ढोल ताशा ग्रुप का नेतृत्व किया। सभी ने मिलकर जब एक ही लय में ढोल बजाए तो वहां मौजूद हर शख्स जोश से भर गया और इस आयोजन ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को इस विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट भी दिया। इस आयोजन का मकसद भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, लेकिन इस आयोजन के जरिए महाराष्ट्र के तमाम ढोल ताशा ग्रुप्स को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका भी मिला और यह आयोजन नौजवानों के जोश और उत्साह की मिसाल बन गया। और इस समय उत्तर भारत में मॉनसून की बारिश हो रही है, लेकिन जैसलमेर को इस मॉनसून में भी बादलों की बेरुखी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में जैसलमेर के लोग अच्छी बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। बारिश के लिए रुद्राभिषेक। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसलमेर में सावन के मौके पर शिव मंदिरों में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर, पुरोहितों की बगीची, गड़ीसर तालाब में भव्य महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया।

0: जैसलमेर का पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। सावन के पावन महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर समेत पूरे पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों अलनीनो का असर दिख रहा है। मॉनसूनी बादलों के रूठने से पूरा इलाका बारिश के लिए तरस रहा है। ऐसे में बरखा बहार की मन्नत के लिए सैकड़ों भक्त महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे हैं।
1: का आयोजन किया जा गया है जैसलमेर में पुरोहितेश्वर महादेव में 121 पंडितों द्वारा आज अति रुद्र का रुद्राभिषेक किया जा रहा है और भगवान महादेव से प्रार्थना की जा रही है तो जल्द से जल्द यहां पे बारिश करे और यहां पे जो किसान वर्ग है वो अत्यंत खुश होकर अपनी फसल इत्यादि आराम से बो सके और उसका सब कुछ उनको अच्छा फल मिल सके।
0: इसी सिलसिले में जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में पुरोहितों की बगीची और गड़ीसर तालाब में भव्य महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्री पाठ और महारुद्राभिषेक किया गया। इस आयोजन में आसपास प्रसिद्ध रुद्रापीठ पंडितों को बुलाया गया। इस महाआयोजन में शिव भक्तों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में प्रसाद बनाने से लेकर भगवान को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। एक सौ 121 वेद पाठियों ने आयोजन स्थल पर देवी देवताओं के पूजन, अग्नि स्थापना, हवन और ब्रह्मा पूजन समेत कई धार्मिक अनुष्ठान को पूरे विधान से संपन्न कराया गया। हवन कुंड में आहुतियां अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव के जयकारे लगाए। ये भव्य आयोजन शिव भक्तों के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामूहिक स्वर से महादेव के स्मरण और पूजन का दिव्य अवसर भी बन गया। भक्तों का अटूट विश्वास है कि महादेव अपने भक्तों की ये पूजा स्वीकार करेंगे और उनके आशीर्वाद से सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे।
2: जयपुर में देश की प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में केरल के केजिया लीज मेजो ने अपने आत्मविश्वास, प्रभावशाली व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता से निर्णायक मंडल को प्रभावित करते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। ऐसे में आज की हमारी सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। केजिया बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। जी हां, आपको हम बता दें कि ग्लैमर, आत्मविश्वास, प्रतिभा और भारतीय संस्कृति से सजे इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देशभर से चयनित प्रतिभागियों ने अपने प्रतिभा और व्यक्तित्व का शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बाजी मारी केरल की केजिया लीज मेजो ने।

0: अपनी जिंदगी के इसी पल का मानो इंतजार था 19 साल की कैजिया लिज मेजो को। जिन्होंने आखिरी राउंड में कुछ सेकंड्स के दरमियान अपने जीवन के संघर्ष, कठिन हालात में सकारात्मक सोच और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने बेबाक अंदाज और बुद्धिमत्ता के बूते ऐसा क्लोजिंग रिमार्क छोड़ा जो जजेस के दिल को गहराई से छू गया। भविष्य को लेकर अपना नजरिया बाखूबी बयां करने वाली कैजिया रविवार रात करीब 2:30 बजे मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज पहनते वक्त ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूली नहीं।
1: I feel on top of the world and actually on top of the universe. This has been a dream for as long as I can remember and being able to actually wear this crown, to be able to bear the fruits of all my years of hard work, it feels so surreal but I know that destiny works wonders and I'm so grateful to God.
0: देर रात जयपुर के एक ऑडिटोरियम में 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सभी ने अपने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया। और फिर आखिर के दौर तक आते आते फाइनल स्पर्धा के टॉप 2 पोजीशन पर केरल और तमिलनाडु की सुमेरिया पहुंची, लेकिन मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज केरल की युवा प्रतिभा कैजिया लिज मेजो को पहनाया गया। उन्नीस साल की कैजिया को 2025 की विजेता रही मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स के सम्मान से नवाजा। कैजिया एक लॉ स्टूडेंट, मॉडल और ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। इससे पहले कैजिया टीम इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और फर्स्ट रनर अप भी रहीं। इतना ही नहीं, उनके नाम मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी है। अब मिस इंडिया यूनिवर्स बनी कैजिया प्यूर्टो रिको में होने वाले मिस यूनिवर्स खिताब के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इससे पहले मिस इंडिया यूनिवर्स के टॉप 5 फाइनलिस्ट में केरल की कैजिया लिज मेजो के अलावा फर्स्ट रनर अप तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रही, सेकंड रनर अप रही गुजरात की अनुश्री सातवालेकर, थर्ड रनर अप का खिताब महाराष्ट्र की तेजस्विनी श्रीवास्तव को मिला, जबकि फोर्थ रनर अप के रूप में उत्तराखंड की अनुभा वशिष्ठ रही। मिस इंडिया यूनिवर्स की इन सभी हुनरमंद प्रतिभागियों ने भी आखिरी राउंड के उन चुनिंदा सेकंड्स में ज्यूरी के सामने भविष्य को लेकर अपना नजरिया और अभी तक मिली चुनौतियों पर अपनी अपनी राय रखी। मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया 2026 के जज पैनल में साल 1994 की मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, साल 2001 की मिस इंडिया यूनिवर्स सेलिना जेटली के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर प्रज्ञा कपूर और मिस इंडिया यूनिवर्स पेजेंट के मालिक निखिल आनंद समेत फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े कई चेहरे इस ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रहे। वहीं इस ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान की संस्कृति और जयपुर की मेहमान नवाजी के साथ आधुनिक भारत का ग्लैमर भी नजर आया, जहां देश दुनिया से जुड़े करीब 800 फैशन डिजाइनर और डेलीगेट्स ने समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। फिलहाल तो इस भव्य समारोह में मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 चुनी गई कैजिया लिज मेजो अब मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये वही मंच होगा जहां सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू जैसी प्रतिभाओं ने भारतीय ब्यूटी और इंटेलिजेंस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उम्मीद है कि अब 2026 की मिस इंडिया यूनिवर्स कैजिया लिज मेजो भारत की विविधता, संस्कृति, प्रतिभा और नई पीढ़ी का हुनर प्यूर्टो रिको जैसी वैश्विक मंच पर पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके
4: सैनिकों को जाते देख क्यों रोने लगी महिलाएं? अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के घुसने पर हड़कंप। यूपी के बाराबंकी में एक बुजुर्ग मुस्लिम को पीटा गया। उम्र छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। देखिए वैभव शुक्ला के साथ वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार की रौनक, श्रद्धालु कर रहे हैं महादेव का जलाभिषेक, हर हर महादेव की गूंज। बिहार के बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, मंदिर को कहा जाता है सीमांचल का देवघर। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खासी डिमांड। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बनाए जा रहे हैं कान्हा के सिंहासन, दिल्ली से लेकर देहरादून तक डिमांड। छत्तीसगढ़ के भिलाई में संस्कृति महोत्सव का आयोजन, छात्र छात्राओं ने किया कला का प्रदर्शन, नई पीढ़ी को प्राचीन भाषा से जोड़ने का लक्ष्य।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है, और अब लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। या हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है, कैमरा है, और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही वजह है कि कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला ये कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हार

0: नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते हुए वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने कई भारतीय गांवों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है और कई जगह चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। इसी कड़ी में अब ये वीडियो भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की गिरफ्त में, घर घर तिरंगा तो देशवासी खुद लहरा लेंगे, लेकिन देश के बॉर्डर पर कौन लहराएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे जो है रोती हुई महिलाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और देखिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का लग रहा है। इसे गौर से देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कब्जे का वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सैनिकों ने इलाके पर कब्जा किया होता तो लोग रोते नहीं बल्कि उनके चेहरे पर भय देखने को मिलता, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता। लेकिन पूरी वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वर्दीधारियों के जाने की वजह से लोग यहां पर रो रहे हैं। साथ में वीडियो के बैकग्राउंड में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाओं से अलग नजर आती हैं। और इसके अलावा वीडियो में हमारी नजर जीप में बैठे वर्दी पहने लोगों की ड्रेस के लोगों पर भी गई और जब हमने इसे जूम करके देखा और गौर से देखा तो ये सामने कर आए कि इस तरह का लोगो इस्तेमाल जो है मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी करते हैं। जी हां, साल 1990 में इस संगठन ने मणिपुर पीपल्स आर्मी नाम से अपनी सशस्त्र विंग बनाई थी। यह संगठन जो है लंबे समय तक सुरक्षा बलों के खिलाफ संघर्ष में शामिल रहा है और भारत सरकार ने बैन कर दिया था। 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ यूएनएलएफ के पैम्बी गुट ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के बाद संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर हथियार डाले और लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से समाज की मुख्यधारा में वो शामिल हो गए। ये शांति समझौता अभी भी लागू है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। भारत सरकार और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को सिरे से खारिज किया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। क्या सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक फेसबुक यूजर के वॉल पर पहुंचे, जहां 30 जून 2026 को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। मणिपुर के इम्फाल स्थित एक स्थानीय न्यूज पोर्टल के फेसबुक पेज पर भी 30 जून 2026 को वायरल वीडियो पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। मणिपुर की एक वेबसाइट पर 30 जून 2026 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नोंगशुम इलाके के आसपास के गांवों के लोगों ने यूएनएलएफ के नोंगशुम कैंप को नम आंखों से विदाई दी। यह कदम लंबी बातचीत और इस आश्वासन के बाद उठाया गया कि 10वीं इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान तुरंत कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उसके जाने के बाद 10वीं आईआरबी के जवानों ने नोंगशुम कैंप पहुंचकर उनकी जगह ले ली। सत्ताईस जून 2026 को पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएलएफ के पामबेई के नेतृत्व वाले गुट ने नवंबर 2023 में केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता किया था। हाल ही में 19 जून को भारत सरकार के प्रतिनिधियों और यूएनएलएफ नेताओं के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। इस दौरान एक तय प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे के तहत कैंप को दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो को लेकर झूठा दावा किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। वीडियो का अरुणाचल प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी करते हुए मारपीट की। वायरल हो रहे वीडियो का जब सब फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को सजा देने की अपील की जा रही है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाराबंकी के शहर में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार किया गया। कई लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनकी दाढ़ी को खींचा। इंसान चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज्जत सबकी बराबर होती है। मेरे शासन और प्रशासन से यही अपील है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा मिले। धर्म चाहे कोई भी हो, सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग शख्स को पीट रहे हैं। एक शख्स बुजुर्ग की दाढ़ी को भी खींचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का है, जहां पर मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो जो है इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने उसे ध्यान से सुना तो यह सामने निकल कर आया कि यह बांग्ला है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बांग्ला नहीं बोली जाती। ऐसे में हमने वीडियो के दावे पर हमको शक हुआ, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असली वीडियो बांग्लादेशी मीडिया चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। इसे 7 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो के साथ बताया गया था कि यह शख्स जैनल ओबेदीन है, जो चोर जुबली यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के पूर्व महासचिव हनीफ चौधरी का छोटा भाई है। जुबली लीग के नेता जैनल ओबेदीन को बांग्लादेश के नोआखली में स्थानीय लोगों ने नशीले पदार्थों के साथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान ये वीडियो हमें एक और फेसबुक अकाउंट पर भी मिला। इसे 8 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। वीडियो के साथ ये जानकारी दी गई थी कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी और सुबरनाचर उपजिला की चार जुबली यूनियन के पूर्व चेयरमैन के छोटे भाई जैनल ओबेदीन पर मादक पदार्थ रखने के आरोप में जमात बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, फिर उन्हें बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच के दौरान हमें बांग्लादेश के एक यूट्यूब चैनल पर भी एक खबर मिली। इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी देखने को मिला। वीडियो में सबको बांग्ला भाषा में बोलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बताया गया था कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला के सुबरनाचर क्लार्क यूनियन में पूर्व यूनियन परिषद चेयरमैन और अवामी लीग नेता हनीफ चौधरी के भाई जैनुल ओबेदीन को स्थानीय लोगों ने नशीली दवा के साथ पकड़ा। ये सारा हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो बांग्लादेश का है।
1: इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: बच्चों की दुनिया तो कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चे का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है, उसने ये सब देखा। चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। न कोई दिखावा, न कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।

0: when I reached Indore to catch my bus to Delhi, my mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas, because she knows that I can't have anything without namkeen.
1: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है, जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे, वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चले।
1: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि रिश्तों के त्योहार रक्षाबंधन के लिए बाजार में इस बार स्मार्ट राखियों का जलवा दिख रहा है। साथ ही श्रावण मास के आखिरी सोमवार पर चार महासंयोग शिवालय में गूंज रहा हर हर महादेव। वहीं देवभूमि हिमाचल में आस्था का चढ़ावा, 3 साल में 400 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। तमाम खबरें होंगी लेकिन पहले हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने 4 स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकियां। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड। देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, यूपी के सहारनपुर में बनाए जा रहे कान्हा के सिंहासन, दिल्ली से लेकर देहरादून तक से डिमांड। और अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात आज रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये त्यौहार 3 दिन बाद देशभर में मनाया जाने वाला है, जिसे देखते हुए बाजार तरह तरह की राखियों से सज गए हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड और ट्रेंड को देखते हुए बाजार में एक से बढ़कर एक राखी मिल रही है। इनमें कुछ राखी इको फ्रेंडली भी है, जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार की गई है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी, जरी गोटे वाली राखी, मोती और रुद्राक्ष वाली राखी, फूलों के डिजाइन वाली राखी, स्टोन्स वाली राखी, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी और देवी देवताओं वाली राखियां बाजार में इन दिनों बिक रही हैं। भाई की कलाई पर सजने वाली ये राखी अब सिर्फ धागे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें फैशन, स्टाइल, भावनाओं के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी जुड़ गया है। लिहाजा इस बार बाजार में स्मार्ट राखियां भी देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है।
3: शुरू तो 500 होती है, 500 से लेके 500, तो जो पसंद है बहनों को वो ले सकती है। बच्चों की राखियां, लेडीज राखी चल रही है इस टाइम, लेडीज राखी बहुत लगती है इस तरह की। लेडीज
0: ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए बाजारों में राखियों की कई वैरायटी मौजूद है, जिनकी शुरुआत 10 रुपए से लेकर 300 और 400 रुपए होती है, और कुछ राखियों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल राखियों की कीमत काफी बढ़ी है। बावजूद इसके भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहने महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी में जुटी है। चाहे करनाल का बाजार हो या गया का बाजार या फिर देश का कोई और बाजार, राखियों की खरीदारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
4: मुझे नहीं लगता है कि इसमें महंगाई को देख करके बहन को पीछे हट जाना चाहिए, और भाई भी जो होता है वो करता ही करता है। तो एक बहन भांती है किस धागे के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए। तो महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है, इसमें सब चीज़ की क्वालिटी आई है, महंगी भी है सस्ती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो, तो बांधिए, प्यार से खरीदिए, ये प्यार का चीज़ है। भाई बंधन एक प्यार होता है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहन को देखना चाहिए कि महंगाई है महंगाई में। सब तो ऑलरेडी साल में तो अपने लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, फैमिली के लिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो बहन अपने भाई के लिए प्यार से राखी बांधती है और खरीदती है।
5: आप एक मौली भी बांधती हो तो भाई बहन के प्यार में तो कोई असर नहीं होनी चाहिए। आप मौली से भी एक रक्षाबंधन का अपना भाई का प्यार बांध सकते हो, ऐसा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन के प्यार में कोई असर नहीं होगा।
6: इस बार राखी देखिए हर रेंज का है, आप खुदरा में खुदरा बेचने लायक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ज़्यादा हम लोग के यहाँ 10, 20 और 30 का मेल ज़्यादा रहा, भी सेल रहा फैंसी, उससे ऊपर हम लोग 120 रुपये, 100, 60, 70, 80 वाला उसका सेल नहीं रहा।
0: वहीं फैंसी और डिजाइनर राखियों के बीच बाजार में इको फ्रेंडली राखियाँ भी बिक रही हैं, जो गाय के गोबर और लकड़ी से बनी है। खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती हैं। इन राखियों में पारंपरिक कला, रचनात्मकता और स्थानीय हुनर की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। गोबर से बनी इन राखियों की एक खासियत यह भी है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक लोग इन्हें खासा पसंद कर रहे हैं। इस तरह की राखी के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
7: मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूं और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूं और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूं। तो प्लास्टिक से बहुत सारी ऐसे राखियां भी बनती हैं, तो मैं वो ना बनाकर मैंने इस गाय के गोबर से बहुत सारी ऐसी राखियां बनाई हैं।
8: इस गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है, आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कला मतलब कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार मिठाई के बगैर अधूरा है, लेकिन त्योहार से ठीक पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मिठाई की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि यूपी के झांसी में मिठाई कारोबार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने रक्षाबंधन तक कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भारत भूषण जोशी और झांसी से प्रमोद गौतम, गुड न्यूज टुडे।
9: रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार और रिश्ते का पर्व है। इस मौके पर हम आपको एक ऐसी भाई बहन की जोड़ी से मिलवा रहे हैं जो कि छोटी उम्र में देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये हैं गिरिशा, जिन्होंने महज 4 साल 5 महीने की उम्र में पूरी दुनिया के नक्शे पर आधारित 75 पीस का पजल सिर्फ 7 मिनट 56 सेकंड में असेंबल कर रिकॉर्ड बनाया है। जबकि महज 6 साल की उम्र में नमिश ने दुनिया के सभी देशों के झंडों को पहचान कर और उनके नाम बोलकर रिकॉर्ड कायम किया है। नमिश ने 4 मिनट 49 सेकंड में दुनिया के सभी झंडों को पहचान कर उनका उच्चारण किया और अपना नाम नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। दोनों बच्चों की इस कामयाबी के पीछे उनके माता पिता का कहना है कि उन्होंने बच्चों को मोबाइल में व्यस्त रखने के बजाय अपना समय उनके साथ बिताया। परिजन कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ सुविधाएं देना ही काफी नहीं बल्कि उनके साथ समय बिताना और उनकी रुचियों को समझना भी ज्यादा जरूरी है।
10: प्यारी सी बहन है, छोटा सा भाई है, राखी है, मिठाई है, ये सब कुछ तो है ही, लेकिन जरा आप इन बच्चों के पीछे देखिए, इनके पास कितने सारे रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट्स रखे हैं, मेडल्स रखे हैं और बहुत कुछ रखा हुआ है। पूरा परिवार मेरे साथ में है। गिरिशा जब 4.5 साल की थी तो उसने अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया था। नमिश जब 6 साल का था तो उसने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया था। इंदु बालाजी, उनकी माँ मेरे साथ में है और उनके फादर अंकुर मेरे साथ में है। पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि इतनी छोटी सी बच्ची, इतना बड़ा अचीवमेंट उसने क्या किया और कितने टाइम में कर दिया था?
11: सर, इसने वर्ल्ड मैप पजल जोड़ी थी जो कि 10 मिनट 14 सेकंड में जोड़ी थी सर, पूरे वर्ल्ड की। उसमें सर ये था कि कुछ भी करने के लिए हमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कुछ भी चीज़ हम जब कंसिस्टेंसी से करते हैं हम कुछ भी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि हमें लगता है, हमें हर चीज़ ही हार्ड लगती है जब हम करनी स्टार्ट करते हैं, बट सर प्रैक्टिस उसको बहुत ईजी बना देती है लाइफ में। इसलिए सर हमें बिना रुके जो काम स्टार्ट किया है उसको पूरी मेहनत से करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में।
10: फादर मेरे साथ में है अंकुश, नमिश आपकी गोद में है। जब 6 साल का था तो हमारी मुलाकात हुई थी इससे, तब इसने 6 साल की उम्र में, इसको आप दुनिया का कोई भी फ्लैग दिखा दीजिए ये उसका नाम बता पा रहा था, उसका कॉन्टिनेंटल भी बता पा रहा था। दो बच्चे दोनों इस तरह से, पहले आपने नमिश की तैयारी करवाई, अब गिरिशा भी उसी पेज पर आ गई है, कैसा लगता है बीइंग अ फादर?
12: सर, बीइंग अ फादर आई फेल्ट वेरी प्राउड, बट द होल एफर्ट्स आर ऑफ देयर मदर्स। उनकी मदर के जो एफर्ट्स हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। हालांकि मेरे को तो सिर्फ ये था कि मैंने तो इनको रिसोर्सेज ही उपलब्ध करवाए थे, लेकिन इन्होंने इसको, इन बच्चों को इनकी मदर ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
10: कैसे शुरू हुआ सिलसिला?
12: जी, जब हमने नमिश को सिखाना शुरू किया था तभी ये मात्र 2.5 साल का था, तो उस टाइम कोरोना का समय चल रहा था। तो मेरी मिसिज ने मुझसे एक दिन रात में बोला कि इनको फोन से दूर रखने के लिए मैंने कुछ सोचा है, तो हमने कहा ठीक है बताएं। बोले कि मुझे आप सिर्फ इंडिया का मैप मंगवा कर दे दीजिए, मैं इस बच्चे को इंडिया के फ्लैग इंडिया का मैप सिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास समय भरपूर है, लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं वर्ल्ड का मैप मंगवा लेता हूँ और उसमें फ्लैग्स भी आ जाएंगे जैसा आपको ठीक लगे। तो इन्होंने देखते ही देखते, मात्र इसकी उम्र सिर्फ उस टाइम 3 साल की ही थी जब ये पूरे विश्व के झंडों को पहचानना सीख गया था।
9: चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात सावन के आखिरी सोमवार की। इस मौके पर देश भर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जो गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही और फल फूल लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने पहुंचे। मान्यता है कि श्रावण मास में देवादिदेव महादेव की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है और यही वजह है कि आज शिवालयों के बाहर दिन भर श्रावण मास के आखिरी सोमवार पर भक्तों का रेला लगा रहा।

0: आस्था का ये अनंत सैलाब श्रावण मास के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ा है। क्या उज्जैन और क्या रायसेन, क्या गाजियाबाद, क्या मुरादाबाद, क्या प्रयागराज और क्या वाराणसी, क्या अयोध्या और क्या देवघर, लोग देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिरों के अंदर और बाहर शिव भक्तों का हुजूम बढ़ता चला गया। कोई परिवार संग पहुंचा दर्शन और पूजन के लिए, तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए, जिसकी एक तस्वीर बाबा महाकाल नगरी उज्जैन से सामने आई। यहाँ सावन मास के अंतिम सोमवार पर भस्म आरती में शामिल होने के लिए लोग रात से ही कतारों में लग गए। तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खुले तो सबसे पहले भगवान महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया, जिसे देख भक्त अभिभूत हो उठे। पूजन श्रृंगार के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई।
1: भर तक बाबा महाकाल इस सोमवार का इंतजार करते हैं और आज बाबा महाकाल का ये सोमवार दिव्य दर्शन भक्त लोगों को दिए जा रहे हैं।
2: मेरे को तो इतना ब्लेस्ड फीलिंग आ रही है कि मैं सावन के लास्ट सोमवार महाकाल में हूँ, जो मैं मतलब एक साल से अर्जी लगा रही थी और आज जाके ये अर्जी लगी है। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब और ये इतनी पावन जगह है, इतनी एनर्जी है यहाँ पे कि मैं तो आज धन्य हो गई।
0: आस्था और भक्ति का ऐसा ही माहौल प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम में भी नजर आया। हर हर महादेव का जयकारा लगाते भक्त भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए अपने साथ फल, फूल, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और दही लेकर आए। काशी विश्वनाथ में दर्शन की आस लिए कतारों में खड़े शिव भक्तों पर प्रशासन ने जब फूलों की बारिश की तो उनका जोश और उत्साह देखते ही बना। उज्जैन की तरह ही बाबा विश्वनाथ का भी अंतिम सोमवार पर विशेष श्रृंगार हुआ, जिसे देख भक्त भाव विभोर हो गए।
3: सावन का पावन माह हो और अंतिम सोमवार, ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनके जलाभिषेक करने से भक्त कैसे अछूते रह सकते हैं। यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। बीती रात से ही भक्तों के आने का सिलसिला, कतार में लगने का सिलसिला जारी हो गया था। मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया और कांवड़िया, आम भक्त, डाक बम, तमाम इन रूपों में भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं।
4: बाबा के का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। श्रावण का आखिरी सोमवार था, उस दिन हम लोग पहुंच पाए और दर्शन हुए, तो इसके लिए हम लोगों को बड़ा अलौकिक अनुभव है।
5: सबसे अच्छा माना जाता है वो दर्शन हुआ और इतने अच्छे से हुआ, इतने कम समय की प्लानिंग में हुआ, इसका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता।
6: यहाँ पे बस हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज दर्शन कर पाए आज के ऑस्पिशियस दिन पर।
0: श्रावण मास शिव साधना के लिए सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग पूरे श्रावण मास के दौरान शिव साधना में लीन रहते हैं। खासकर कांवड़ यात्री जो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना करते हैं। सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम शिव भक्त कांवड़ियों की पहली पसंद होता है। यहाँ जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का मेला हर दिन लगा रहता है। आज अंतिम सोमवार पर ऐसा ही देखने को मिला।
7: 3 लाख भी बहुत ह्यूज नंबर है हमारे इस कैंपस के लिए, एक मंदिर परिसर के लिए, और जो हमारे जो रूट्स वगैरह हैं, सकते रूट्स हैं, तो हमारी तैयारी पूरी उसी तरह है जैसे पिछले तीन सोमवार को थी और बाकी अन्य दिनों की। और हम लोग चाहते हैं कि चौथा सोमवार और बाकी अन्य जो चार दिन हैं वो भी बहुत सुगमतापूर्वक सभी श्रद्धालु लेंगे।
0: वैसे तो श्रावण मास का हर दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है, लेकिन सोमवार को भक्तों में खासा उत्साह रहता है। यही उत्साह और यही उमंग आज हर शिव मंदिर में दिन भर नजर आई। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात देवभूमि हिमाचल की। वैसे आस्था के साथ चढ़ावे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति भाव से दिया गया चढ़ावा लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले प्रमुख मंदिर भी आस्था के इस भाव से अब अछूते नहीं है। वहां भी चढ़ावे के रूप में बड़ी धनराशि अर्पित की जा रही है। सिर्फ तीन वर्षों में मंदिरों को 419 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा हासिल हुआ है, जिनमें एक निश्चित धनराशि का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, निशुल्क लंगर के अलावा दूसरे सामाजिक कार्यों में किया जाता है।

0: वैसे तो दोनों का कनेक्शन नहीं, लेकिन मंदिरों में आस्था के साथ चढ़ावा भी बढ़ता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किए जाने वाला चढ़ावा केवल धन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक भी हो जाता है। देवभूमि हिमाचल में छोटे बड़े 2000 से ज्यादा मंदिर है। इनमें श्री ज्वालामुखी, माता चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, नैना देवी और चामुंडा देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठ भी शामिल है, जो आस्था के साथ चमत्कार के भी प्रतीक है। अक्सर किसी मनोकामना के पूरी होने पर भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था से चढ़ावा अर्पण करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हिमाचल के मशहूर मंदिरों को भी लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के तौर पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले 36 प्रमुख मंदिर हैं, जिनको पिछले 3 साल में श्रद्धालुओं की तरफ से कुल 4 अरब 20 करोड़ यानी 420 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं।
1: हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है।
0: आस्था और चढ़ावा आपस में कैसे गहराई तक जुड़े हैं, इसका प्रमाण बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध मंदिर में मिलता है, जो चढ़ावे के मामले में पहले स्थान पर रहा। मंदिर को चढ़ावे के तौर पर 99.19 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद नैना देवी मंदिर को 86.94 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं। फिर बारी आती है माँ ज्वालामुखी मंदिर की, जिसे 36.57 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। वहीं त्रिलोकपुर स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 26.99 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर आए हैं। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 13.76 करोड़ रुपए श्रद्धालुओं ने भेंट स्वरूप चढ़ाया। वहीं चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर और आदि हिमानी समूह में 11.68 करोड़ रुपए मिले हैं। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में 8.82 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। मंदिर के प्रति जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, वैसे वैसे मंदिरों में आने वाला चढ़ावा भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावे के रखरखाव, गिनती और निगरानी को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से भी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के तहत मंदिरों में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए।
0: धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए चढ़ावे को लेकर कुछ नियम भी बने हुए हैं। जिन मंदिरों का संचालन सरकार के हाथ में होता है, उनका पैसा मंदिर के अलावा देश के विकास योजनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। करंट टैक्स रूल को देखें तो धर्मार्थ या फिर धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति से होने वाली आय कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त भी होती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज पथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: क्या चांदी के प्रयोग से मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या चांदी के प्रयोग से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है? क्या चांदी का प्रयोग करने से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है? कौन से हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चांदी के बारे में। चांदी यानी सिल्वर जो धातु है, उसका ज्योतिष में क्या महत्व है और चांदी के प्रयोग से आपको किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 6:20 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 10:51 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल

ऐसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं चांदी के बारे में। चांदी का महत्व क्या है? देखिए, चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। मानते हैं कि चांदी का उद्भव, इसका प्राकट्य भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था। ज्योतिष में चांदी का संबंध माना जाता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के जल तत्व को और कफ धातु को नियंत्रित करती है। चांदी मध्यम मूल्यवान होने की वजह से ज्यादा प्रयोग की जाती है और चांदी का असर आपके मन पर, आपके सोच पर बहुत जल्दी पड़ता है। चांदी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब हम चांदी का प्रयोग करते हैं तो चांदी किस प्रकार से हमारे शरीर पर और ग्रहों पर असर डालती है। चांदी का अगर आप बुद्धिमानी से प्रयोग करें तो आपका मन मजबूत होता है। इसके साथ ही साथ चांदी का प्रयोग करने से दिमाग तेज हो जाता है। जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो ये चंद्रमा की समस्याओं को शांत कर देती है और ये शुक्र को मजबूत करके आपके मन को प्रसन्न रखती है। जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो शरीर में जमा हुआ विष निकल जाता है और त्वचा कांतिवान हो जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है। जो लोग चांदी के गिलास से पानी पीते हैं उनको त्वचा की समस्या कम होती है और उनके शरीर में विष जमा होने
नहीं पाता है। चांदी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो चांदी बड़े फायदेमंद धातु है और जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो चांदी का प्रयोग कैसे करेंगे? चांदी का एक छल्ला सबसे छोटी उंगली में कनिष्ठा अंगुली में धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। जब आप सबसे छोटी उंगली में चांदी पहनते हैं तो इससे चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, मन का संतुलन अच्छा हो जाता है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप चांदी की एक मोटी सी चेन भी अपने गले में पहन सकते हैं और चांदी की चेन गले में पहनने से वाणी शुद्ध हो जाती है और हार्मोन्स संतुलित हो जाते हैं। अगर आप अपनी कलाई में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो इससे कफ, वात और पित्त नियंत्रित होते हैं। अगर आप नियमित रूप से चांदी के गिलास से पानी पिएं तो सर्दी जुकाम की समस्या से राहत मिलती है, शरीर स्वच्छ होता है और मन प्रसन्न रहता है। चांदी की कटोरी से या चांदी की चम्मच से अगर आप शहद का सेवन करें तो शरीर विषमुक्त हो जाएगा। छोटे बच्चे जो बार बार सर्दी जुकाम के शिकार होते हैं या बार बार बीमार होते हैं, उन्हें पानी या दूध जो भी पिलाएं वो चांदी के गिलास या चांदी की कटोरी में रखकर पिलाएं, या खाना भी खिला रहे हैं तो खट्टी चीज छोड़कर चावल, दाल, फल, दूध ये चांदी की कटोरी से या चांदी की चम्मच से खिलाएं तो बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में
और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपकी उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, चांदी के कुछ आपको चमत्कारी प्रयोग बताते हैं जिनको करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द रहता है तो चांदी के दो छल्ले बनवा के अपने दोनों पैरों के अंगूठे में धारण कर लीजिए, जोड़ों के दर्द में, पैरों के दर्द में राहत मिलेगी। अगर आप इमोशनली बहुत कमजोर हैं, अगर भावनात्मक रूप से आपको दिक्कतें बहुत होती हैं, बहुत जल्दी मेंटली कमजोर हो जाते हैं, तो चांदी का एक छल्ला बनवाकर दाहिने हाथ के अंगूठे में आपको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर आपके स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहती हैं, सेहत की समस्याएं आपको हमेशा परेशान करती हैं, तो चांदी के गिलास से या चांदी के लोटे से शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव पालने की आदत है, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं, तो चांदी की एक चेन आपको गले में पहननी चाहिए। और अगर चांदी की ये चेन आप अपनी माता के हाथ से लेकर गले में पहने तो आपको बहुत लाभ होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में हमेशा कलेश और अशांति रहती हो तो चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में अक्षत यानी चावल के बिना टूटे हुए दो चार दाने रख दें, डिब्बी बंद कर दें और इसको पूजा स्थान पे रख दें, घर की अशांति और कलेश दूर हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए,
घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: उज्जैन में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाबा महाकाल की चौथी सवारी पूरे राजसी वैभव और भक्ति भाव के साथ नगर भ्रमण पर निकली। मंदिर में पूजन अर्चन के बाद जैसे ही बाबा की सवारी मुख्य द्वार राजाधिराज का अभिनंदन, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा में बाबा महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। सावन में बाबा अपनी प्रजा का हाल जानने और भक्तों के भाव स्वीकार करने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। करीब 5 किलोमीटर के सवारी मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ हर हर महादेव के जय घोष और पुष्प वर्षा से पूरा शहर शिवमय नजर आया। बाबा महाकाल ने भक्तों को 4 दिव्य स्वरूपों में दर्शन दिए। रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश और गज पर मन महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के इन अलौकिक रूपों को निहार कर श्रद्धालु भाव विभोर उठे।

और अब जरा मध्य प्रदेश के आगरमालवा से आई तस्वीरों को आपको हम दिखाते हैं, जहां बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी पूरे भक्ति और उल्लास के साथ निकली। करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा शहर शिवमय नजर आया। शाही सवारी की शुरुआत बाबा बैजनाथ मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती के साथ हुई। इसके बाद शिवलिंग को चांदी की पालकी में विराजमान किया गया। पुलिस बैंड की मधुर धुनों के बीच बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शाही सवारी नगर भ्रमण पर निकल पड़ी। इंदौर से आए ढोल पार्टी की करीब 50 लोगों की टीम ने अपनी खास प्रस्तुतियों से माहौल में जोश भर दिया। गुलाब की पंखड़ियों में सवारी मार्ग सजाया, जगह जगह स्वागत द्वार, मंच, भव्य झांकियां और अखाड़े श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। सवारी में लड़कियां तलवार लेकर करतब दिखाती नजर आई तो घोड़ों के रोमांचक प्रदर्शन ने भी लोगों का मन मोह लिया। शिव भक्ति के रस में यूपी का झांसी भी डूबा नजर आया। भव्य कांवड़ यात्रा ने माहौल को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। आलम यह है कि कहीं गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक हुआ तो कहीं हजारों कांवड़ियों ने कदम बोल बम के जयकारों के साथ शिव धाम की ओर बढ़ते नजर आए। झांसी के मैया महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की तो वहीं भव्य कांवड़ यात्रा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। यात्रा में 1000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें करीब 400 महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थीं। रास्ते भर हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष गूंजते रहे। मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। यात्रा में डाक कांवड़ की रफ्तार और भक्ति का जोश भी देखने को मिला। भव्य झांकियां, डीजे, ढोल नगाड़े के साथ मौजूद कलाकारों ने यात्रा को और भव्य बना दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: ब्रज में झूलन उत्सव की रौनक, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला। सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगर मालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मड़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकिया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार सहारनपुर में, 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड।

0: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा 131 मीटर लंबे अनूठे कावड़ की भी है। आइए देखते हैं।
1: मध्य प्रदेश के गुना में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। यहां बीनागंज में खेतों में पलटे ऑयल टैंकर से लोग तेल लूटते नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं। ऑयल टैंकर पलटने की खबर लगते ही बाल्टी डिब्बा बर्तन जिसको जो मिला लेकर तेल लूटने पहुंच गया। मामला तब गंभीर हो गया जब पुलिस को पता चला कि पलटे ऑयल टैंकर में खाद्य तेल नहीं बल्कि तारपीन का तेल था। ऐसे में आनंद फानंद में प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि कोई भी तेल को खाद्य तेल की तरह खाने पीने में उपयोग न करें। प्रयागराज में गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर सनातन संस्कृति की सुंदर तस्वीर दिखी। यहां पुत्रदा एकादशी के मौके पर श्री शंकराचार्य आश्रम अलोपी बाग से जुड़े 51 बटुक ब्राह्मण अपने गुरु के साथ दशाश्वमेध घाट पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना और मां गंगा की आरती के बाद 51 पवित्र कलशों में गंगा जल भरा और इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जय घोष के बीच पैदल यात्रा करते हुए श्री शंकराचार्य आश्रम के लिए रवाना हुए। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इन कलशों के पवित्र जल से आश्रम परिसर स्थित मैदानेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया जाएगा। ये कोई रस्सी नहीं, हनुमान जी की पूंछ है। करीब 131 मीटर लंबी और इस 131 मीटर लंबी पूंछ में भरा है गंगा जल, जिसे लेकर चले हैं फिरोजाबाद जिले के नाउवा गांव के करीब 40 शिव भक्त। असल में ये एक अनूठी कांवड़ यात्रा है जिसमें एक कांवड़िया हनुमान जी के वेश में है और उसकी कांवड़ है ये 131 मीटर लंबी पूंछ, जिसे 40 कांवड़िया उठाकर चल रहे हैं। यूपी के कासगंज में आस्था और भक्ति की इस अनूठी तस्वीर की खूब चर्चा है। विशाल कांवड़ को देखने के लिए रास्ते में जगह जगह लोगों की भीड़ जुटती रही। स्थानीय लोगों ने शिव भक्तों का स्वागत किया और पूरा यात्रा मार्ग बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। कर्नाटक के मांड्या से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला के घर से 30 लाख रुपए से ज्यादा नकद मिला है। महिला का नाम हुर उन्निसा बताया जा रहा है। रविवार को उनकी मौत के बाद जब स्थानीय लोगों ने उनके घर की तलाशी ली तो रुपयों से भरी थैलियां सामने आई। इनमें सिक्के भी थे। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बहन की मौत के बाद यहां के गुथालू इलाके में एक किराए के घर में अकेली रहती थी। दोनों बहनें अविवाहित थी। जोश और उत्साह से भरी ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। यहाँ 4000 से ज्यादा ढोल ताशा युवा कलाकारों के हाथ एक साथ जब वाद्य यंत्रों पर थिरके तो नजारा देखने लायक था। छत्रपति शिवाजी महाराज और हर हर महादेव के जय घोष के साथ शुरू हुए इस जोशीले संगीत ने न सिर्फ लोगों का मन मोहा बल्कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह भी बनाई। इस कार्यक्रम के लिए नागपुर समेत विदर्भ के अलग अलग शहरों से 200 से ज्यादा ढोल ताशा ग्रुप्स को बुलाया गया था। करीब 585 ध्वज धारकों ने भी अपने अपने ग्रुप्स के साथ इस महाआयोजन में हिस्सा लिया। इन नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ मौजूद थे।
0: और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में बारिश की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज झमाझम बारिश हुई जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी के तेवर थोड़े कम पड़ गए हैं। यानी कि एक बार फिर से बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव होने से ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

0: झमाझम बारिश की ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और तापमान में गिरावट के साथ मौसम बेहद सुहाना हो गया है।
1: देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मॉनसून वापस से दस्तक दे चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मौसम है वो पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। इंडिया गेट की तस्वीरें दिखा रही हूँ, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको नजर आने वाली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, उमस से परेशान हो रहे थे और हर किसी को इंतजार था कि एक बार फिर से कब राहत की बारिश जो है वो देश की राजधानी में दस्तक देगी। आखिरकार सुबह से ही जो है मौसम कुछ इसी तरीके से बना हुआ और आज देखा जाए तो आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। इस वजह से भी जो है अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की जो है इस वक्त बारिश जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि सावन के समय जो है बारिश जरूर देखी जाती है, लेकिन मौसम वाकई में इस वक्त बेहद खास हो चुका है और ये पहले से अनुमान भी था कि एक जो पैच है वो लगातार जो है इस वक्त पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो है वो उनके कुछ हिस्सों में जो है वो लगातार बना हुआ था, जिसकी वजह से जो है बीते कुछ दिनों से वहां पर लगातार तेज बारिश जो है वो देखी जा रही थी।
0: दिल्ली में हो रही बारिश से गर्मी से कुछ निजात तो मिली, लेकिन ये बारिश आफत लेकर भी आई है। दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बाहर भी सड़क पर काफी जलजमाव है।
2: दिल्ली में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है कि इसके बाद मूसलाधार बारिश हो रही है। कनॉट प्लेस के पास मैं इलाके पे हूँ, शिवाजी स्टेडियम का ये इलाका, और ये देखिए पूरी सड़क का एक हिस्सा जो है ये मूसलाधार बारिश के बाद महज कुछ मिनटों की बरसात और सब कुछ मानो जलमग्न है। तो कनॉट प्लेस के आसपास और खासकर दिल्ली के उन इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पर जैसे ही बारिश हुई है तेज, उसके बाद जल जमा। देखिए अब इस पूरी सड़क पर लगभग एक फीट पानी है और आगे लगभग 300 से 400 मीटर का ये पूरा हिस्सा है वो डूबा हुआ है। ये दिल्ली का दिल है, कनॉट प्लेस के बाद बिल्कुल हनुमान मंदिर के पास, और शिवाजी मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ पर है, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। और जैसे आप आगे जा रहे देखिए जितनी गाड़ियां हैं सब वो डूबते हुए जा रही हैं। तो ये आपको दिखाई पड़ रही हैं कनॉट प्लेस की तस्वीरें, जितनी आगे गाड़ियां जा रही हैं और इसी के साथ साथ निचले इलाकों पर जैसे देखिए इधर से भी जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी इस समय पूरी तरह से जो है सड़कें जो है वो जलमग्न नजर आ रही हैं। ये सड़क मानो किसी तरह नाला उफान आया हो, हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं, जिसके बाद बारिश शुरू हुई है तो निचले इलाकों पे लो लाइन इलाकों पर जल जमाव शुरू हो गया है और उसके बाद आपको लग रहा है कि नदी मानो जो है ये सड़क जो है वो किसी नदी या सैलाब में तब्दील हो गई हो।
0: मूसलाधार बारिश के कारण कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल, जनपथ मार्केट और हनुमान रोड जैसे प्रमुख हिस्सों में भी भारी जलभराव देखने को मिला।
1: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। वाटर पंप वहां पर चालू है, लेकिन उसके बावजूद जो देश की राजधानी दिल्ली, जिसका दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, वहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया है, ये देखिए आपको लोग भी पानी में चलते हुए नजर आएंगे। मैं खुद भी इस समय पानी के अंदर खड़ी हूँ। धीरे धीरे करके पंप से कोशिश तो की जा रही है कि पानी को हटाया जा सके, लेकिन फिर भी कई सारे इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि पानी बहुत ज्यादा भर चुका है और ये थोड़ी सी देर की बारिश में ही ये मंजर यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, वो भी अगर पानी कम हो जाए तो इस पानी को सूखने में। पंप चालू है आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद कई सारे इलाकों से और कई बड़े बड़े इलाकों से, कई महत्वपूर्ण इलाकों से, जैसे मैं इस समय कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ, वहाँ का मंजर कुछ ऐसा ही है।
0: कनॉट प्लेस से सटे जंतर मंतर रोड पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात धीमा हो गया, जिससे आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
3: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश कई इलाकों में इस वक्त हो रही है। मैं लुटियन दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर मौजूद हूं। यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इतनी बारिश के बाद यहां पर जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जंतर मंतर रोड से ये सीधे अशोका रोड की तरफ रास्ता जाता है और आप देखिए कि ऑटो जो निकल रहे हैं उनके पहिए पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं और गाड़ियां जो निकल रही हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि काफी देर से मूसलाधार बारिश यहां पर इस पूरे इलाके में हो रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये रास्ता जाता है रायसीना रोड की तरफ और हेडलाइट जला करके लोगों को इस वक्त यहाँ पर आना पड़ रहा है क्योंकि मौसम काफी खराब हो गया है और यहाँ पर विजिबिलिटी भी काफी कम है इस वक्त। इस वजह से लोगों को हेडलाइट जला करके गाड़ियों में आना पड़ रहा है और ये रास्ता सीधा जो है संसद भवन की तरफ जाता है। यहाँ भी जो सड़क के साइड का किनारा है जहाँ पर काफ़ी जल जमाव की सिचुएशन दिखाई पड़ रही, लेकिन जंतर मंतर रोड जो कि ये सीधा रास्ता जाता है यहाँ पर जल जमाव की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है।
0: कुछ ऐसे ही हालात साउथ एवेन्यू में देखने को मिला जहाँ बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गईं।
1: तेज बारिश और हवाओं ने दिल्ली की रफ्तार को रोक दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं साउथ एवेन्यू में मौजूद हूं जहां पर इस पूरी सड़क पर पानी भर गया है। लगभग 1.5 से 2 फीट तक यहां पानी भरा है और पंप लगाए जा रहे हैं इस पानी को निकालने के लिए, लेकिन पिछले आधे घंटे से लगातार इसी तरह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग रिपोर्ट की गई है और तमाम ऐसी जगहें हैं दिल्ली में जहाँ पर इस तरह से सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सोमवार का दिन है, लोगों को अपने ऑफिसेज में पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो बिजी सड़कें हैं वहां पर ट्रैफिक और ज़्यादा धीरे हो गया है, ट्रैफिक की गति धीमी हो गई है और ये जो बारिश है ये मौसम विभाग के येलो और ऑरेंज अलर्ट के दौरान रिपोर्ट की गई है। मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली के अलग अलग पॉकेट्स को ऑरेंज और रेड अलर्ट के लिए पहले ही चेतावनी दी थी और यहाँ पर इस बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएँ और जो बिजली कड़क रही है लगातार इस तरह की चेतावनी भी जारी की गई है। और आप देखिए कि जो लोग हैं जिन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है उन्हें काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, पानी भर गया है सड़कों पर और ये जो स्थिति है वो सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, बहुत सारे इलाके जो NCR के हैं, चाहे वो फरीदाबाद का इलाका हो, चाहे वो नोएडा के कुछ हिस्से हो या फिर गुड़गांव का इलाका हो, वहाँ पर भी इसी तरह से जलभराव की शिकायतें आ रही हैं, वहाँ से भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं।
0: भारी जल जमाव की वजह से पहियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, ऐसे में किसी को ऑफिस पहुंचने में, किसी को एयरपोर्ट तो किसी को साकेत कोर्ट पहुंचने में देर हो रही है, गाड़ियों को निकलने में तो परेशानी हो ही रही है।
4: दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही, लेकिन जाम की समस्या अब सामने आ गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के ITO इलाके पर जहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पर जल भराव हो गया है। लोगों को आप देख सकते हैं खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कई जो दो पहिया चालक हैं वो लगातार हो रही बारिश की वजह से बस स्टैंड पर खड़े हो गए हैं और जब वो खड़े हुए हैं तो उनके उनके जो दो पहिया वाहन हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। साथ साथ इस जाम का असर यातायात पर पड़ रहा है और आप देखिए एक एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक में यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। ये रास्ता लक्ष्मी नगर से होता हुआ ITO की तरफ आता है और आप देखिए कितना ट्रैफिक इस रास्ते पर है। अगर दाईं ओर थोड़ा देखेंगे तो आप देखिए कैसे पूरा पानी यहाँ पर भर चुका है, ये फुटओवर ब्रिज है और जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो इस इलाके में इस तरह के हालात हो जाते हैं।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली और इससे सटे शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
5: देखिए अगर हम मौसम के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से एक निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया जो है वो आज सुबह 8:30 बजे के हिसाब से गंगेटी वेस्ट बंगाल और उसके आसपास का जो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रित था, जिसको देखते हुए हमारा अनुमान ये है कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो हो सकती है पूरी भारत में। मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और इसके साथ में मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है इशू किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान ये है कि ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो दक्षिण में केरल में आज जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है और बाकी कई राज्यों में जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी जो है वो जारी की गई।
0: हालांकि मॉनसून के अगस्त अंत तक कमजोर होने की आशंका है जिसमें अलिनो का असर भी शामिल है। फिलहाल देश में बारिश की कमी सामान्य से 13% है जो और बढ़ सकती है। खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की कमी 27% तक पहुंच गई है। बारिश की सबसे ज्यादा कमी दक्षिण भारत और मध्य भारत में दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 77% कम और मध्य भारत में 76% कम बारिश हुई है। वहीं अगर पूरे मॉनसून सीजन यानी 1 जून से अब तक की बात करें तो देश में कुल मिलाकर सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और मॉनसून के दौरान इसके और मजबूत होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में भी बारिश पर इसका असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
6: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया बिहार विद्या साथी ऐप। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: चीनी उद्योग की मुख्य संस्था ISMA यानी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और रिटेल मार्केट में भी कीमतें कम होने की उम्मीद है। ISMA के प्रेसिडेंट नीरज शिरगांवकर के मुताबिक कम उत्पादन और जमाखोरी की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सरकार के 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाजत देने के फैसले के बाद अब कीमतें कम होने लगी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया। इसका लाभ 38 जिलों के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 24/7 निःशुल्क लाइव शिक्षक उपलब्ध होंगे और करीब 75,000 शिक्षक 1-to-1 लाइव ट्यूटर सपोर्ट देंगे। CM के मुताबिक इसका मकसद है विद्यार्थी जहां और जब पढ़ें शिक्षक का सहयोग उनके साथ उपलब्ध रहे। देश ने रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेठी के कोरबा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 100% स्वदेशी AK-203 शेर असॉल्ट राइफल का निर्माण किया गया है। खास बात यह है कि इसमें लगा हर छोटा बड़ा पुर्जा भारतीय मटेरियल से बना है। देश की इस पहली 100% स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल का नाम शेर रखा गया है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा में मॉनसून के बीच भी श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह बरकरार है। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में सिख संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रही है। अब तक 2,73,300 से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू हुई थी। बिहार के कटिहार में गोरखनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर यहां बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। यहां 300 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर है। यहां सावन के पवित्र महीने में नेपाल भूटान समेत कई देश और राज्यों से लाखों श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं।
6: और अब बात पावन सावन के आखिरी सोमवार की। सावन के आखिरी सोमवार पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ, जहां शिव भक्तों ने गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही और फल फूल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। मान्यता है कि श्रावण मास में महादेव की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव के लिए सोमवार का दिन बहुत खास माना जाता है, क्योंकि सोम का अर्थ चंद्रमा है और माना जाता है कि भगवान शिव ने इसे अपने सिर पर धारण किया है।

0: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। शिव भक्त बेलपत्र, दूध और जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर गोरखपुर, दिल्ली गाजियाबाद से लेकर मुंबई और जयपुर तक तमाम शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे।
1: सावन का महीना चल रहा है और सावन का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। हम इस वक्त प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में हैं, जहां पर भोलेनाथ श्रद्धालुओं के मन की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी करते हैं। और कहा जाता है कि श्रद्धालु यहां पर एक लोटा जल चढ़ाएं तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं और यहां पर उनकी जो मनोकामनाएं हैं श्रद्धालुओं की वो भगवान पूरी करते हैं। ये गर्भगृह है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी हुई है और सभी एक लोटा जल चढ़ाकर श्रद्धालु भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ पर भक्त हैं लगातार भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये बताइए, सेवा कर रहे हैं, क्या कहें?
2: बस बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा हो जाए, बस बाबा भोलेनाथ खुश हो जाए। बस
1: सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी,
2: बस सुबह 4 बजे में बाबा कृपा है हो रही है, बाबा जल चढ़ रहा है। आप लोग बाबा की बस यही कृपा है, सबको बुलाते रहे, दर्शन देते रहे, यही भक्त का निवेदन है बाबा।
0: शिवालयों के साथ साथ भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धा और भक्ति का ऐसा ही उत्साह और उल्लास नजर आया। गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव का दिव्य हरिहर चंदन श्रृंगार किया गया। इस विशेष श्रृंगार के जरिए शिव और विष्णु के एक रूप होने का संदेश दिया गया। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या देवघर का बैद्यनाथ धाम या फिर वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम, इन ज्योतिर्लिंगों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं।
3: सावन का पावन माह हो और अंतिम सोमवार, ऐसे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनके जलाभिषेक करने से भक्त कैसे अछूते रह सकते हैं। यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। बीती रात से ही भक्तों के आने का सिलसिला, कतार में लगने का सिलसिला जारी हो गया था। मंगला आरती के बाद से भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया और कांवड़िया, आम भक्त, डाक बम, तमाम इन रूपों में भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। माना जाता है कि पूरे सावन माह में जो भक्त शिव भक्त दर्शन नहीं कर पाते हैं बाबा का, उनका जलाभिषेक नहीं कर पाते, वे आज सावन के इस अंतिम दिन बाबा के दर्शन कर लेते हैं और जलाभिषेक कर लेते हैं तो पूरे सावन का पुण्य उनको मिलता है।
4: हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आज दर्शन कर पाए आज के ऑस्पिशियस दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके।
0: ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में होने वाली भस्म आरती के लिए रात से ही मंदिर के बाहर कतार लगना शुरू हो गई थी। रात के 2:30 बजे मंदिर के पट खुले, सबसे पहले भगवान को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके बाद भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया गया।
5: को तो इतना ब्लेस्ड फीलिंग आ रही है कि मैं सावन के लास्ट सोमवार महाकाल में हूँ, जो मैं मतलब एक साल से अर्जी लगा रही थी और आज जाके ये अर्जी लगी है। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता।
6: पहले वो वाला सुख नहीं मिला जो आज मिला है। आज तो ऐसे बाबा ने दर्शन दिए है ना, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, समझ लो। जय जय महाकाल।
0: देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। महादेव के दर्शन के लिए तड़के से भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया और सुबह सुबह करीब 10 किलोमीटर लंबी कतार लग चुकी थी। वहीं मुंबई के सबसे प्राचीन शिवालयों में से एक बाबूलनाथ मंदिर में शिव शक्ति के मिलन की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी।
7: हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, यही गूंज मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में गूंज रही है। हर शिव भक्त घंटों कतार में खड़े रहने के बाद बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये लगभग 2-2.5 घंटे लोग कतार में खड़े होकर के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और फाइनली बाबा के पास आकर के एक अलग ही तरह की ऊर्जा यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है। शिव भगवान के ठीक सामने नंदी जी विराजे हैं, जिन्हें फूलों से सजाया गया है। पूरा मंदिर सोने के कलर का होता है। खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में जो भी मिन्नतें कही जाए उसी से शिव भगवान तक पहुंच जाती हैं। ऐसा लग रहा है बाबुलनाथ मंदिर में यहाँ आकर शिव भगवान का दर्शन करके, और क्या कुछ सुन रखा था आपने इस मंदिर के बारे में?
8: बाबुलनाथ मंदिर बहुत प्राचीन काल से है, मैं यहाँ 26 साल से आ रही हूँ इनका, और अशोक महाराज जी के कृपा से मैं इनका अभिषेक करती हूँ। हर साल मैं सावन के सोमवार आती हूँ, आज हमारा लास्ट सोमवार है, तो बहुत ही आनंद आता है यहाँ आके।
7: अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या कुछ आज चढ़ा दिया कि बाबा बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं? क्या लगा आपको, क्या कुछ लाया था आपने आपकी थाली में फूलों वाली?
8: मैं लाई तो थी बाबा के लिए, मिष्ठान लाई थी चढ़ाने के लिए, बट बाबा को मैं क्या चढ़ा सकती हूँ, वो तो खुद ही मुझे सब कुछ देता है।
0: वैसे तो सावन का हर सोमवार शिव आराधना को लेकर विशेष माना जाता है, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार की बात ही कुछ अलग होती है। लिहाजा पूरे देश में इस खास अवसर पर आस्था का मेला लगा हुआ है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
9: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 171 अंकों की गिरावट के साथ 77,369 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ 24,219 पर बंद हुआ। 24 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.74 के स्तर पर बंद हुआ। बजाज ऑटो ने भारतीय टू व्हीलर मार्केट में अपनी सबसे पॉपुलर कंप्यूटर बाइक्स ऑल न्यू पल्सर 125 और पल्सर 150 को लॉन्च कर दिया है। नई पल्सर 125 की शुरुआती कीमत 92,990 रुपए रखी गई है। वहीं पल्सर 150 की शुरुआती कीमत 115,233 रुपए है। कंपनी ने दोनों मॉडल को नए प्लेटफॉर्म, नए डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया है।
9: फिल्म महाकाली में शुक्राचार्य के किरदार में अक्षय खन्ना का दिखा रौद्र रूप। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
0: इमरान हाशमी आवारा पंटू के बाद अब फिल्म गन मास्टर G9 में नजर आएंगे। इसका टीजर कल यानी मंगलवार को जारी होगा। फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना अहम रोल में हैं। इस फिल्म के जरिए करीब 2 दशक बाद बतौर डायरेक्टर आदित्य दत्त, म्यूजिक कम्पोजर के रूप में हिमेश रेशमिया और अभिनेता के तौर पर इमरान हाशमी साथ आ रहे हैं। फिल्म धुरंधर में अपने अभिनय से तहलका मचाने वाले अक्षय खन्ना अब एक बार फिर सुर्खियां बटोरने के लिए तैयार हैं। उनकी नई फिल्म महाकाली का टीजर आ गया है और इसके साथ ही फिल्म में उनके किरदार की पहली झलक भी सामने आ गई है।
10: केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा सदैव के लिए।
0: इस माइथोलॉजिकल एक्शन एडवेंचर फिल्म में वो असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के रोल में बेहद खौफनाक नजर आए हैं। करीब 3 मिनट के इस फर्स्ट लुक वीडियो में अक्षय खन्ना को पहचानना लगभग मुश्किल है। उनका लुक काफी इंप्रेसिव है।
10: रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो।
0: वहीं माँ काली के रूप में अभिनेत्री भूमि शेट्टी का लुक भी रोंगटे खड़े करने वाला है। फिल्म अगले साल 8 जनवरी को सिनेमाघरों में 5 भाषाओं में रिलीज होगी।

0: एक्शन और कॉमेडी के बादशाह अक्षय कुमार अब एलियन की दुनिया में नजर आएंगे। उनकी अपकमिंग एलियन एक्शन थ्रिलर फिल्म समुक की शूटिंग शुरू हो गई है। ये बड़े पैमाने पर बन रही एक सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें इंटरनेशनल क्रिएटर्स और स्टंट टीम भी शामिल है। क्रिएटिव इफेक्ट्स डिजाइनर एलेक गिलिस हैं, जिन्होंने एलियन और प्रेडेटर फ्रेंचाइजी पर काम किया है। इन्होंने फिल्म के मुख्य एलियन को डिजाइन किया है। अभिनेता वीर पहाड़िया की अपकमिंग फिल्म प्रेम कीटाणु का नया पोस्टर जारी हो गया, जो बेहद मजेदार है। रंगों से भरपूर इस पोस्टर में वीर का चुलबुला अवतार देखने को मिल रहा है, जो बता रहा है कि ये एक हल्के फुल्के अंदाज वाली मनोरंजक फिल्म होने वाली है।
1: लड़कियों के पीछे भागे हो
0: ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी। इसमें वीर पहाड़िया के अलावा अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी और आफिया सैयद अहम रोल में हैं।
1: इन सब के बीच में पढ़ाई करने का कहाँ टाइम मिलता है यार।
0: फिल्म जॉम्बी रेड्डी का सीक्वल बनेगा। अभिनेता तेजा सज्जा के जन्मदिन पर निर्माताओं ने इसका ऐलान किया। इसका नाम जॉम्बी रेड्डी 2 नेक्स्ट लेवल रखा गया है। इसमें तेजा सज्जा लीड रोल में होंगे। वहीं से एडवेंचर से

0: यात्रा में मनमोहन शाह किया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र। कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: सच है, चाह और लगन अगर पक्की है तो राही मुश्किलों से नहीं घबराते। इन छोटी बच्चियों को देखिए, कितने कठिन डगर है पढ़ाई की, लेकिन मुश्किलों से डरकर जो हार मान जाए ये वो नहीं है। आसमान बरस रहा है, पहाड़ी रास्ता है, कीचड़ है, फिसलने का डर है, लेकिन भारी बैग कांधे पे लादे संभल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। छोटी बच्चियों का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है।

वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, ये बात जानवर और पंछी भी खूब समझते हैं। अब मटके का नहीं नल का जमाना है, सो उसी हिसाब से खुद को तैयार कर लिया है। वैसे ये भी तो नए जमाने के ही हैं, इन्हें नल से पानी निकालना और फिर उसे बंद करना बखूबी आता है। मानना पड़ेगा, मटका हो या नल, कौवे का दिमाग अब भी उतना ही तेज चलता है। आए हाय, अदाएं देखिए इनकी, जींस टॉप और उस पर से काला चश्मा, गजब ढा रही है मैडम। और चाल तो देखिए इनकी, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे वलखा रही हैं जैसे रैंप पर उतरी हैं। बच्ची का कॉन्फिडेंस और उसकी क्यूटनेस लोगों का दिल चुरा रही है। सब अपने ख्यालों में व्यस्त हैं और ये पेट पूजा में लगे हैं। देखिए कैसे ठेले पर रखे अंगूर में से एक एक अंगूर निकालकर मजे से मुंह में रख रहा है, मानो थाली में परोस कर मिला है खाने को। और सब कुछ इतने आराम से हो रहा है कि ना तो हाथ थामे उनकी मामा को उनके कारनामे की खबर लगी, ना ही उस दुकानदार को जिसके ठेले से अंगूर खाया जा रहा है। बच्चे की मासूमियत पर लोग मुस्कुरा रहे हैं।

0: माँ तो माँ है, अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी मिसाल, जो कभी हार मानना नहीं जानती। कम से कम अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो हरगिज नहीं। हर हालात से लड़ जाती है, पर बच्चों के होठों की मुस्कान कम नहीं होने देती। इस माँ ने भी हार नहीं मानी। बच्चे को माँ के साथ रहना था और माँ को स्टेज पर परफॉर्म करना था। बीच का रास्ता निकाला और बेटी को साथ लेकर स्टेज पर पहुंची और कमाल कर दिया।
1: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया के लिए वायरल रील बनाने के लिए हद से ज्यादा बढ़ते क्रेज की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक इन्फ्लुएंसर ने जो किया वो हैरान करने वाला है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रकृति गौर ने हाल ही में इंदौर के लैंटर्न चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की जेब्रा क्रॉसिंग पर लेटकर एक रील बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन इस रील की वजह से ये इन्फ्लुएंसर कानूनी केस में फंस गई। शहर की तुकोगंज पुलिस ने प्रकृति गौर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह की हरकतें यातायात में बाधा डालने के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है। घटना के बाद युवती ने भी सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया है। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे स्टंट या फिर वीडियो ना बनाएं जिनसे कि यातायात बाधित हो या फिर किसी की जान जोखिम में पड़े।
2: हाँ, तो गूगल में एक FIR रजिस्टर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाई किया गया था।

0: उसमें एक युवती जो यातायात नियमों को बाधित कर रही थी और रोड पर लेट गई थी, इस तरह का जो अवैधानिक कृत्य किया गया था, इस पर से उसके द्वारा माफी का वीडियो भी जारी किया गया था और इस पर एक FIR भी थाना तपोवन में रजिस्टर की गई, जिसमें धारा 270 और 285 VNS के तहत केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि यातायात को बाधित करना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन, स्वयं का जीवन या और दूसरे किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, और पब्लिक न्यूसेंस की धाराओं में FIR रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है सोशल मीडिया पर जो भी अगर आप कंटेंट डालते हैं तो कृपया ये देख लें कहीं वो इलीगल कंटेंट ना हो, कहीं वो ऐसा ना हो जिससे कि जो कि इसमें जो कि प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर का, किसी प्रकार की कोई मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऐसा जो गलत फैक्ट जो अगर आप इसको फॉरवर्ड करते, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ 230 का के तहत VNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा।
1: इंदौर में सोशल मीडिया रील से जुड़े मामले पर हमने दिल्ली में युवाओं से बात की और उनकी राय जानी।
2: देखिए उस पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि लोगों को एक अपने सेंस रहनी चाहिए कि कहाँ पे रील बनानी चाहिए, कब बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए। आप एंटरटेनमेंट के कुछ भी नहीं कर सकते, औरों को भी प्रॉब्लम होती है इससे, तो आई फील लाइक यू सही किया, होना भी चाहिए और देयर शुड बी सम रूल्स कि कैसा लोगों को लोगों की ओपननेस, इंडिपेंडेंस, देयर शुड बी सम लिमिट्स।
3: जरूरी है एक्शन लेना क्योंकि ऐसे कोई कहीं भी पब्लिक एरिया पे रील्स नहीं बना सकता, एक्शन लेना उस पर जरूरी है। ऐसे उसको जीब्रा क्रॉसिंग पे रील नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि वहाँ आने जाने का रास्ता है, लोग वगैरह आते जाते पब्लिक, तो वहाँ वो बीच में रील बना रही है, सिर्फ ट्रैफिक होगा और भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर जो लोग हैं वो उससे यही सीखेंगे कि मतलब कहीं भी रील बना दो ऐसे बिना देखे।
4: देखिए जो भी मतलब ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं, रील बनाना इज़ नॉट बैड, बट ऐसे जगहों पे जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो या पब्लिक प्लेस हो या फिर जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हो, उन सब जगहों पे बनाना सही नहीं होता है। लड़का हो या लड़की हो तो उसके लिए एक्शन मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन ना हो, एक्शन लिया जाए उनको बट वार्न करा जाए कि आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए।
5: हाँ होनी चाहिए, लिमिटेशन पता होनी चाहिए क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग में रील बनाना इज़ नॉट सेफ, गर्ल्स हो बॉयज़ हो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए और ऐसा लेना चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई भी गलती किसी से भी ना हो।
6: लाइक इट इज़ क्वाइट डेंजरस कि जेब्रा क्रॉसिंग पे रील्स शूट कर रहे हो तुम लोग फॉर सम काइंड ऑफ फॉलोवर्स गेन करने के लिए, इट्स टू रिस्की, तुम्हारी जान को खतरा है, इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी लेना चाहिए, थोड़ा लूज भी करना चाहिए ताकि अगली बार ये ना हो। और इसके लिए बच्चों को थोड़ा ये होना चाहिए कि इफ अगर वो अपनी एज से छोटे हैं सो उनको नहीं करनी चाहिए सारी चीज़, हर एज के कर रहे हैं, बट स्टिल इफ अगर आपको अपनी जान खतरे में डालनी है तो करो, बट फॉर किड्स के लिए मैं बोलूँ और फॉर यंगस्टर्स या टीनेजर्स के लिए बोलूँ तो इट्स क्वाइट डेंजरस, प्लीज़ ये सब मत करो क्योंकि तुम्हारे घर में भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं जिनको तुम्हारी बहुत ज़्यादा नीड है, उधर जाओ, उधर उनके साथ रील्स बनाओ, उधर उनके साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम ये सब कर रहे हो, इट्स क्वाइट डेंजरस फॉर एवरीवन।
1: किसी भी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट का ताज सिर पर नहीं बल्कि अपनी पहचान और उपलब्धियों पर सजता है। कहते हैं कि ताज चमकता है लेकिन असली चमक उस महिला के आत्मविश्वास में होती है जो इसे पहनती है। कुछ यही आत्मविश्वास और खुशी से लवरेज दिखी मिस इंडिया यूनिवर्स बनी केरल की कैजिया लिज मेजो। रविवार को जयपुर में 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सभी ने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया।

0: इसी पल का मानो इंतजार था 19 साल की कैजिया लिज वीडियो को। जिन्होंने आखिरी राउंड में कुछ सेकंड्स के दरमियान अपने जीवन के संघर्ष, कठिन हालात में सकारात्मक सोच और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने बेबाक अंदाज और बुद्धिमत्ता के बूते ऐसा क्लोजिंग रिमार्क छोड़ा जो जजेस के दिल को गहराई से छू गया। भविष्य को लेकर अपना नजरिया बाखूबी बयां करने वाली कैजिया रविवार रात करीब 2:30 बजे मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज पहनते वक्त ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूली नहीं।
1: I feel on top of the world and actually on top of the universe. This has been a dream for as long as I can remember, and being able to actually wear this crown, to be able to bear the fruits of all my years of hard work, it feels so surreal, but I know that destiny works wonders and I'm so grateful to God. I've been preparing for this journey for over 3 years now, and Miss Universe has always been the goal, and now it is time for me to showcase to the world what it means to be India, and I'm ready to do everything to bring back the crown. We have a few months before me and I promise you that I will do everything in my powers to make sure that our country is proud at Miss Universe.
0: देर रात जयपुर के एक ऑडिटोरियम में 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सभी ने अपने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया। और फिर आखिर के दौर तक आते आते फाइनल स्पर्धा के टॉप 2 पोजीशन पर केरल और तमिलनाडु की सुंदरियां पहुंची, लेकिन मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज केरल की युवा प्रतिभा कैजिया लिज मिजो को पहनाया गया। उन्नीस साल की कैजिया को 2025 की विजेता रही मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स के सम्मान से नवाजा। कैजिया एक लॉ स्टूडेंट, मॉडल और ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। इससे पहले कैजिया टीम इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और फर्स्ट रनर अप भी रही। इतना ही नहीं, उनके नाम मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी है। अब मिस इंडिया यूनिवर्स बनी कैजिया प्यूर्टो रिको में होने वाले मिस यूनिवर्स खिताब के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इससे पहले मिस इंडिया यूनिवर्स के टॉप 5 फाइनलिस्ट में केरल की कैजिया लिज मिजो के अलावा फर्स्ट रनर अप तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रही, सेकंड रनर अप रही गुजरात की अनुश्री सातवालेकर, थर्ड रनर अप का खिताब महाराष्ट्र की तेजस्विनी श्रीवास्तव को मिला, जबकि फोर्थ रनर अप के रूप में उत्तराखंड की अनुभा वशिष्ठ रही। मिस इंडिया यूनिवर्स की इन सभी हुनरमंद प्रतिभागियों ने भी आखिरी राउंड के उन चुनिंदा सेकंड्स में ज्यूरी के सामने भविष्य को लेकर अपना नजरिया और अभी तक मिली चुनौतियों पर अपनी अपनी राय रखी। मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया 2026 के जज पैनल में साल 1994 की मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, साल 2001 की मिस इंडिया यूनिवर्स सेलिना जेटली के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर प्रज्ञा कपूर और मिस इंडिया यूनिवर्स पेजेंट के मालिक निखिल आनंद समेत फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े कई चेहरे इस ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रहे। वहीं इस ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान की संस्कृति और जयपुर की मेहमान नवाजी के साथ आधुनिक भारत का ग्लैमर भी नजर आया, जहां देश दुनिया से जुड़े करीब 800 फैशन डिजाइनर और डेलीगेट्स ने समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। फिलहाल तो इस भव्य समारोह में मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 चुनी गई कैजिया लिज मिजो अब मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये वही मंच होगा जहां सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू जैसी प्रतिभाओं ने भारतीय ब्यूटी और इंटेलिजेंस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उम्मीद है कि अब 2026 की मिस इंडिया यूनिवर्स कैजिया लिज मिजो भारत की विविधता, संस्कृति, प्रतिभा और नई पीढ़ी का हुनर प्यूर्टो रिको जैसी वैश्विक मंच पर पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
2: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स यानी कि रोबोट ओलंपिक कई मायनों में खास है। मैदान में उतरते रोबोट, दौड़ते रोबोट, फुटबॉल खेलते रोबोट और बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे को चुनौती देते रोबोट। एक पल के लिए आपको लगेगा जैसे ये कोई असली ओलंपिक हो। इस रोबोट ओलंपिक में दुनिया भर से 2000 से ज्यादा ह्यूमनाइड रोबोट हिस्सा ले रहे हैं।
3: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
4: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में
0: नया इतिहास रचा गया।
3: यहाँ पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद हजार से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत। गुड न्यूज टुडे।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के।
4: कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 503 रन पर पारी घोषित की और ध्रुव जुरेल ने बनाया शतक। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही शानदार खबरों को जानने के लिए, इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको खेल चक्कर।
11: कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया है। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर पर घोषित की। साथ ही दिन का खेल खत्म होने से पहले श्रीलंका के महज 8 रन पर 2 विकेट भी गिरा दिए। ध्रुव जुरेल ने शतक पूरा किया, वे 177 बॉल पर 115 रन बनाकर नाबाद लौटे। जुरेल ने ये दूसरा टेस्ट शतक लगाया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो के बीच हुए विवाद पर आईसीसी ने दोनों की 25-25 फीसदी मैच फीस काट ली है और दोनों खिलाड़ियों के खाते में एक एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया है। फर्नांडो ने यशस्वी को बोल्ड किया था, इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे के सिर से सिर मार दिया। बाद में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी गलती मान ली। भारत के साथ T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया है। अगले महीने खेली जाने वाली 3 मैचों की सीरीज में इब्राहिम जादरान कप्तान होंगे। स्टार खिलाड़ी राशिद खान भी टीम में शामिल हैं। तीनों मैच पहले से तय शेड्यूल 13, 15 और 17 सितंबर को ही होंगे। अफगानिस्तान के लिए यह सीरीज ऐतिहासिक होगी। ऐसा पहली बार होगा जब अफगानिस्तान भारत के खिलाफ बायलैटरल सीरीज की मेजबानी करेगा। हालांकि सभी मैच भारत में ही होंगे।
4: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
12: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: राज्य में झूलन उत्सव की रौनक, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी। महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगर मालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव। मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकियां। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार। सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र। कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सौंदर्य के ताज की और इस साल मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली कैजिया की। जयपुर में हुए इस मुकाबले में 19 साल की कैजिया ने न सिर्फ ताज पर कब्जा जमाया बल्कि अपने जवाबों से जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज आपको मिस यूनिवर्स इंडिया मुकाबले की खूबसूरत तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, साथ ही साथ कैजिया की जीत का यादगार लम्हा भी वो दिखाएंगे और उनके साथ रनरअप रही प्रतिभागियों से भी आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इस मुकाबले में जीत के बाद अब कैजिया मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके लिए उनकी क्या तैयारियां हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे और आखिर में बात होगी रिटायरमेंट के बाद रैंप पर जलवा बिखेरने वाले बुजुर्गों से, जिन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। तो आइए शुरुआत करते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 में ताज अपने नाम करने वाली कैजिया से। केरलम की रहने वाली 19 साल की कैजिया ने न सिर्फ अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच बल्कि अपनी हाजिर जवाबी से इस मुकाबले में बाजी मार ली। 19 साल की कैजिया ने जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में 52 कॉन्टेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम कर लिया और इस वक्त पूरे देश में उनके विनिंग मोमेंट की चर्चा हो रही है, क्योंकि आखिरी राउंड के सवाल जवाब में उन्होंने अपनी समझ और हाजिर जवाबी से सभी को दंग कर दिया। देखिए रिपोर्ट।

0: the two incredibly beautiful women from Tamil Nadu and Kerala. The first runner up will represent India at Miss International, and the winner represents India at Miss Universe. Ladies and gentlemen, the new Miss Universe India is.
1: ये वो पल है जब धड़कने थम गई, वक्त ठहर गया, और तभी जैसे ब्रह्मांड के अंधेरे से एक चमकता सितारा निकला.
0: Contestant number 18,

सितारा जिसने अपनी रोशनी अपनी मौजूदगी से पहले जजों का दिल और फिर मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया। केरलम की कैजिया लिज मेजर।

इंद्रधनुषी रोशनी से सजे मंच पर सौंदर्य के इस कठिन मुकाबले में 52 कॉन्टेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए 19 साल की कैजिया ने इस खिताब पर कब्जा किया।

आंखों में खुशी के आंसू, चेहरे पर आत्मविश्वास। अभी तक कैजिया का जैसा सफर रहा है, उनको यकीन था कि बाजी उनके हाथ रहेगी और यही हुआ।

मिस यूनिवर्स इंडिया के मुकाबले में सभी का अपना अंदाज था और कमाल था। अलग अलग राउंड में सभी ने अपना टैलेंट दिखाया, आत्मविश्वास, बातचीत करने का तरीका और भारतीय संस्कृति की अपनी समझ दिखाई। लेकिन इस प्रतियोगिता में सिर्फ फैशन और खूबसूरती ही नहीं बल्कि प्रतियोगियों की सोच, लीडरशिप क्वालिटी और उनका कॉन्फिडेंस असली पैमाना होता है, जहां कैजियो दूसरों पर भारी पड़ी। आखिरी राउंड में कैजियो से पूछा गया कि क्या आप खामोशी की आवाज के बारे में बता सकते हैं। इस पर आत्मविश्वास से भरी कैजियो का जवाब सभी को प्रभावित कर गया।

0: try the sound of silence in your life.
1: Namaskaram, India, and hello to the universe. To me, silence, I believe, is what I experienced just a few minutes ago. The calm before I enter a stage. I was born and brought up on stage as a classical dancer, as an actor, and of course, as a pageant lover. I fell in love with the world of pageants, with the stage, with the spotlight, having a microphone in my hand. But it seems difficult to believe, but I feel silence, and I feel calm, and I feel at my most peaceful self right before I enter a stage, because I feel at home. To me, that is silence, when you feel at home, when your heart lets you take a deeper breath, when your pulse calms down, and you know that you belong. And that's exactly where I'm standing today, India. Thank you so much. The top five, ladies and gentlemen!
2: इससे पहले मुकाबले में 5 प्रतिभागियों ने फाइनल में अपनी जगह बनाई. फर्स्ट रनर अप रही तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश.
3: जब टॉप 5 एक्चुअली अनाउंस हुआ बहुत एंग्शियस ऐसी एक फीलिंग होती है. बट व्हाट आई लाइक टू से इज दैट आई थिंक 5 ऑफ अस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ऑल 50 ऑफ अस एंड आई थिंक वी आर सो ब्यूटिफुली डिफरेंट. बट आई थिंक इट्स जस्ट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एवरी सिंगल टाइम. बट आई एम सो ऑनर्ड टू हैव सच ब्यूटिफुल मिस यूनिवर्स इंडिया एंड द 5 ऑफ अस टुगेदर. आई थिंक वी आर गोना लिव दिस जर्नी एंड हैव दिस सिस्टरहुड फॉर एवर एंड एवर. एंड आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज एक्चुअली मेकिंग सच गुड फ्रेंडशिप्स एंड आई एम गोना रिमेंबर देम एंड हैव सम पार्टी आफ्टरवर्ड्स. बट थैंक यू सो मच. I feel incredibly grateful tonight.
2: इसके अलावा सेकंड रनर अप रही गुजरात की अनुश्री सतवालेकर. थर्ड रनर अप का खिताब महाराष्ट्र की तेजस्विनी श्रीवास्तव ने जीता, जबकि फोर्थ रनर अप के रूप में उत्तराखंड की अनुभा वशिष्ठ रही. मिस इंडिया यूनिवर्स के सभी हुनरमंद प्रतिभागियों ने भी आखिरी राउंड में अपना नजरिया और अभी तक मिली चुनौतियों पर अपनी अपनी राय रखी. कैजियो का अंदाज और उनकी सोच यहाँ भी सबसे ज्यादा पसंद की गयी.
1: Somewhere around the world, there's a little girl watching me right now, questioning whether she has the right to dream this big. I want her to look at me and realize that even the universe is not the limit. I believe that being able to dream audaciously is the biggest form of confidence, and that's exactly why I stand here today, the youngest contestant for Miss Universe India's title. I stand here because I dared to believe audaciously. I stand here with purpose, persistence, and perspective, and that is exactly why I should be your next Miss Universe India. I want all of you listening to my voice to understand, to dream audaciously, to believe recklessly, because I did, and now I stand here ready to make history. This is more than just a comeback, ladies and gentlemen. This is a reminder from the universe that abhi bhi picture baki hai, nahi dost.

0: कैज़िया के नाम से पहले से कई उपलब्धियां हैं, जो एक लॉ स्टूडेंट, मॉडल और ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। इससे पहले कैज़िया टीन इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और फर्स्ट रनर अप भी रही। इतना ही नहीं, उनके नाम मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी है। अब मिस इंडिया यूनिवर्स बनी कैज़िया प्यूर्टो रिको में होने वाले मिस यूनिवर्स खिताब के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी।
1: कैज़िया लिज़मेज़ो।

0: ये वही मंच होगा जहां सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू जैसी प्रतिभाओं ने भारतीय ब्यूटी और इंटेलिजेंस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उम्मीद है अब 2026 की मिस इंडिया यूनिवर्स कैजिया लीज में जो भारत की विविधता, संस्कृति और प्रतिभा को वैश्विक मंच पर पेश करेंगी।
1: Vaishnavi, please come, come ahead for the crowning, please. Manika, please.
2: 32 साल पहले सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करके भारत का परचम लहराया था। उसके बाद साल 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब अपने नाम किया था और 21 साल बाद हरनाज संधू खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई थी। जाहिर सी बात है, जब कैजिया इस मुकाबले में जाएंगी तो भारत को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। गुड न्यूज टुडे से बातचीत करते हुए कैजिया ने क्या कहा, सुनिए।
3: मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 ये सेरेमनी हो चुकी है और आज हमारे साथ में विजेता भी मौजूद हैं। केरला का नाम रोशन कर रही हैं ये विजेता हमारी। इनसे जानेंगे कैसी इनकी अब तक की जर्नी रही, क्या कुछ उम्मीदें आगे इनको अपने आप से है, किस तरीके से देश को ये रिप्रेजेंट करने वाली। सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। हाउ डू यू फील राइट नाउ, अभी कैसा महसूस हो रहा है जब सर पे ताज सच?
4: I feel on top of the world and actually on top of the universe. This has been a dream for as long as I can remember, and being able to actually wear this crown, to be able to bear the fruits of all my years of hard work, it feels so surreal, but I know that destiny works wonders and I'm so grateful to God.
3: आने वाले कुछ समय में आप देश को रिप्रेजेंट करेंगी और मिस यूनिवर्स का जो प्लेटफॉर्म है वहां आप खड़ी रहेंगी, कैसी क्या तैयारियां आप आने वाले समय में करने वाली?
4: I've been preparing for this journey for over 3 years now, and Miss Universe has always been the goal. And now it is time for me to showcase to the world what it means to be India, and I'm ready to do everything to bring back the crown. We have a few months before me, and I promise you that I will do everything in my powers to make sure that our country is proud at Miss Universe.
3: मिस टीन से लेके मिस यूनिवर्स तक की जो आपकी जर्नी है उसके बारे में बताइए, और सबसे खास पल जो उसका रहा है वो भी बताइए।
4: I was initially Miss Teen India in 2024 and I represented India internationally at Miss Teen International 2025 and finished as the first runner-up. I believe that experience also taught me so much, and I believe failures are also incredibly important for you to learn. They are the stepping stones to your success. As cliche as it sounds, it builds character, it builds audacity, tenacity, and it builds you to be a better human for tomorrow. And I'm very grateful for all the experiences I've had, and I hope that these experiences, these opportunities, I can bring to the youth of India.
3: What all challenges did you face in this journey of yours?
4: The most obvious challenge always starts from within, and that is believing that you are enough. When you come for a stage as big as Miss Universe India, you are bound to have doubts within. Am I enough? Am I ready? But the question is that the universe doesn't reward those who wait, it rewards those who dare. And that is what I believed, and that's exactly why I'm standing here today.
3: मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जितने बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने भी इस पेजेंट में आपके साथ में हिस्सा लिया, वो टॉप 52 तक पहुंचे, उनके लिए क्या कहेंगे?
4: All the girls, all the way from the audition to the state pageant, to the girls that are standing beside me today, all of them have taught me something that I will always carry with me as I carry India to the universe. All these stories, all these memories, all these experiences, cultures, that is what I want to represent, and they are always and forever going to be a part of me, and I thank them for being such amazing contestants, for teaching me so much and for guiding me so much as well.
3: देखिए यहाँ हमारे साथ में 2026 की मिस यूनिवर्स इंडिया बनी कैजिया लिस मेजो थी, और उन्होंने बताया कितनी खुशी इस पल में उन्हें महसूस हो रही है जब ये ताज उनके सर पे सज चुका है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 एक ऐसा पेजेंट जिसका सपना बहुत सारी लड़कियां देखती है, पूरे भारत से लड़कियां इस पेजेंट की तैयारी करती है, और जयपुर के इस मंच पे हर साल ये जो पेजेंट होता है यहाँ खुद को रिप्रेजेंट करती है, खुद के प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है, और फिर उनको नवाजा जाता है इस टाइटल से। जयपुर के जी स्टूडियोज में मौजूद हूँ जहाँ पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जा चुके हैं, और इस बार जो क्राउन है वो केरल के नाम आया है। केरल की कैजिया लिज मेजो नाम की जो लड़की है उन्होंने ये क्राउन खुद के सर पे सजाया है। आपको बता दें कि ये जो लड़की है ये पहले मिस टीन रह चुकी है जिसके बाद में इनको मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज आज मिला है। और इन्होंने कहा है कि आने वाला समय जो है उनके लिए चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज से भरा होने वाला है। यहाँ पे समय पे बहुत सारी लड़कियां जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो मौजूद हैं, सभी अपने क्राउन को अपने सर पे सजा के अपने उस पल को जी रही हैं और जो उम्मीदें हैं वो इस समय पे उनके परिवार की आंखों में भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ में जो ये रिप्रेजेंट भारत को करने वाली है आने वाले कुछ समय में वो एक उम्मीद सभी के मन में जगा चुकी है।
2: देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया सिर्फ सुंदरता या फैशन का मुकाबला नहीं होता, इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व को कसौटी पर कसा जाता है। देश, समाज और उससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रतिभागियों की राय समझी जाती है। जिसके पास मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है, लिहाजा उसमें संस्कृति और परंपरा की समझ होने की उम्मीद की जाती है। जयपुर में संपन्न हुए इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देश और राजस्थान की संस्कृति की छाप नजर आई। रिपोर्ट देखिए।

0: एक रात जब जयपुर रोशन चेहरों से जगमगा उठा। मौका था मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का, जहां नजरें तो देश भर से आई प्रतिभागियों पर रही, लेकिन इस ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान की संस्कृति और जयपुर की मेहमान नवाजी के साथ आधुनिक भारत का ग्लैमर भी नजर आया। देश दुनिया से जुड़े करीब 800 फैशन डिजाइनर और डेलीगेट्स ने समारोह की भव्यता को बढ़ा दिया। चमकता हुआ ताज जब कैजिया लीज के सिर पर सजा तो ये शाम यादगार हो गई और सुष्मिता सेन की मौजूदगी से 32 साल पुरानी यादें भी ताजा हो गईं। साल था 1994 जब सुष्मिता सेन ने फिलीपींस में मिस यूनिवर्स कंपटीशन में 77 देश की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। उससे पहले सुष्मिता ने मिस इंडिया का ताज जीता था और उन्हें यूनिवर्स कंपटीशन के लिए भेजा गया था। ये पहली बार था जब भारत ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना परचम लहराया था। जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया मुकाबले में सुष्मिता सेन बतौर जज शामिल हुई। अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ उन्होंने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। सुष्मिता के साथ 2001 की मिस इंडिया यूनिवर्स सेलिना जेटली भी इस मुकाबले में बतौर जज मौजूद रही।
1: It was 32 years ago. It will be 33 this year. Time flies, ladies and gentlemen, and a platform like this represents that face that will represent us on a global level, on an international platform. We're not just changing the life of a little girl, we are changing the face of India. And for that, a huge round of applause for everyone.
0: अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे पहले सुष्मिता ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन उनके बाद लारा दत्ता और हरनाज कौर संधू ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। सौंदर्य के साथ देश की संस्कृति और परंपरा को दुनिया के सामने रखा और स्त्रीत्व को नए मायने दिए। असल में इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मतलब भी यही है, यहाँ सिर्फ खूबसूरती मायने नहीं रखती बल्कि देश दुनिया समाज को लेकर सकारात्मक और नई सोच भी जांची परखी जाती है। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम करने वाले बखूबी जानते हैं कि ये खिताब अपनी पहचान के अलावा देश के सम्मान से भी जुड़ा है।
2: यूनिवर्स 2025 की विजेता हमारे साथ में अभी मौजूद है मनिका विश्वकर्मा। हम उनसे जानेंगे उनकी क्या जर्नी रही है, कितने चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और आगे जब आज वो क्राउन पास करने जा रही हैं तो कैसा उनको महसूस हो रहा है।
3: आई फील लाइक कोई भी लेगेसी होती है तो उसको पास ऑन करना इज ऑलवेज एन ऑनर, एंड एवर सिंस द डे आई गॉट क्राउन्ड मेरा हमेशा से ये सपना था, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज बट on the other side of the table, this is my chance to actually give some contribution and making sure that the best representative usko chuna jaye for Miss Universe, kyunki I think India deserves the best and puri ki puri journey behad khoobsurat rahi hai.
2: Manika, ek saal jab aapne Bharat ko represent kiya alag alag manch pe aur wo pura ek crown kyunki aapke sar pe ek zimmedari thi, to kya kuch challenges bite ek saal mein aaye hain aur kya kuch aapne seekha?
3: आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि द मोमेंट यू गेट क्राउंड, हमारा हमेशा सपना होता है कि हम एक सिंपल इंसान है एंड द मोमेंट वी गेट द क्राउन हम मिस इंडिया बन जाएंगे, बट वेन यू एक्चुअली गेट द क्राउन एक बहुत ज़्यादा वेट फील होता है अचानक से अपने कंधों पर, एंड दैट इज द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई फील लाइक एवरीबडी उसके बाद में चाहे जो भी हो आपको एक मिस इंडिया की नज़र से देखता है, एक भारत की आवाज़ की तरह से देखता है, एंड एक छोटी सी भी गलती वो आपको बहुत चुभती है। सो तब आप एक इंसान नहीं रहते, यू बिकम इंडिया, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि उसके बाद में चाहे आपके पास एनर्जी हो ना हो, चाहे आप कितना भी ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप कितना भी काम कर रहे हो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट बिकॉज देयर इज़ नो चांस यू कैन लेट योर कंट्री डाउन इवन फॉर अ स्प्लिट सेकेंड।
0: ये मंच, ये मुकाबला सिर्फ ग्लैमर का नहीं, परंपरा के साथ स्त्रीत्व की पहचान और उससे जुड़ी आधुनिक सोच का है। मणिका विश्वकर्मा ने कैजिया को ताज पहनाया, साथ ही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी सौंपी। आत्मविश्वास से भरी कैजिया का इरादा भी एक बार फिर मिस यूनिवर्स का खिताब भारत लाने का है। जयपुर से रिदम चैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर।

0: खबरें तो आ।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ब्रज में झूलन उत्सव की रौनक, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगर मालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकियां। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खासी डिमांड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की चौथी सवारी, चार दिव्य स्वरूपों में दिए दर्शन, सवारी मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। नगर भ्रमण पर राजा महाकाल, चंद्रमौलेश्वर, उमा महेश, मनमहेश और शिव तांडव स्वरूप में दर्शन दिए। पुष्प वर्षा से बाबा महाकाल का भव्य स्वागत किया गया, पुलिस बैंड की धुन पर महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कड़ाबीन अश्वारोही दल और पुलिस बैंड रहे आकर्षक, राजसी अंदाज में निकली बाबा महाकाल की सवारी। डमरू झांझ और भजनों से भक्तिमय हुआ उज्जैन, शिप्रा जल से हुआ भगवान का अभिषेक पूजन। आगर मालवा में निकली बाबा बैजनाथ की शाही सवारी, 1.25 लाख श्रद्धालुओं से शिवमय हुआ शहर, हर हर महादेव के जयकारे। अखाड़े झांकियां और बैंड रहे आकर्षण का मुख्य केंद्र, चांदी की पालकी में विराजे बाबा बैजनाथ। बाबा की सवारी में दिखा सामाजिक सौहार्द, सवारी मार्ग पर नेताओं ने थामी झाड़ू, सांसद विधायक ने दिया स्वच्छता का संदेश। 50 सदस्यीय ढोल पार्टी ने बांधा समा, महिलाओं की ढोल प्रस्तुति ने किया मंत्रमुग्धमय, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। तलवारबाजी और घोड़ों के करतब ने मनमोह लिया, दिखाए हैरतअंगेज करतब। झांसी के मढ़िया महादेव मंदिर में 16वां महागंगा अभिषेक, उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़, भोलेनाथ का जलाभिषेक। ओरछा से नाव गेट तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, 1,000 से ज्यादा शिव भक्त शामिल हुए। 25 से 30 हजार कांवड़ियों ने किया नगर प्रवेश, फूलों की बारिश से हुआ कांवड़ियों का शानदार स्वागत। कांवड़ यात्रा में देखी भव्य धार्मिक झांकियां, डीजे ढोल नगाड़े और डमरू पार्टी ने बांधा समा।

0: 400 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर यात्रा की। डाक कांवड़ टीम ने एक घंटे में पूरा किया सफर। कटिहार के प्राचीन गोरखनाथ धाम में आस्था का सैलाब। हेलीकॉप्टर से हजारों शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। हर हर महादेव से गूंजा गोरखनाथ धाम। बोलबम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। गोरखनाथ धाम में भक्तों ने भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ धाम में देखा भव्य नजारा। शिव भक्तों ने अपने आराध्य के प्रति दिखाया जबरदस्त उत्साह। सावन में मनिहारी गंगा घाट से जल लेकर पहुंचते हैं कांवड़िये। मिनी बाबा धाम कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब। 51 बटकों ने कलशों में भरा गंगा जल। मदनेश्वर महादेव का हुआ महारुद्राभिषेक। हर हर महादेव के जय घोष। बटकों ने मां गंगा की आरती करके भरा जल। वैदिक मंत्रोच्चार से भक्तिमय हुआ घाट। नमक चमक पाठ के बीच भरे गए 51 कलश। गुरुदेव के साथ गंगा जल लेकर निकली बटकों की यात्रा। गंगा घाट से आश्रम तक दिखा भक्तिमय नजारा। पुत्रदा एकादशी पर शिव आराधना का विशेष आयोजन। 51 बटुक बने शिव अभिषेक के सहभागी। सहारनपुर में जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए सज रहे हैं रंग बिरंगे सिंहासन। कान्हा के सिंहासन और झूलों की बड़ी डिमांड। ₹300 से 5,000 तक के भव्य सिंहासन। मोर ओम और राधे राधे डिजाइन में खूब आकर्षण। रंग बिरंगे सिंहासन और झूले बने श्रद्धालुओं की पहली पसंद। कान्हा के लिए छोटे से बड़े आकार के तैयार हो रहे हैं सिंहासन। रंग बिरंगे कपड़े और गोटे से सज रहे हैं आकर्षक डिजाइन। कान्हा के श्रृंगार में चार चांद लगाएंगे खूबसूरत सिंहासन। सहारनपुर से दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून तक पहुंच रहे हैं ऑर्डर्स। रक्षाबंधन से पहले रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हुआ सहारनपुर का बाजार। राखियों की 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन। कपल राखी बनी आकर्षण का केंद्र। फैमिली पैक की भी भारी डिमांड। बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां हिट। स्पाइडरमैन छोटा भीम और टॉम एंड जेरी राखी का भी जबरदस्त क्रेज। अमेरिकन डायमंड राखियों की भारी मांग। 300 से 400 रुपए तक की राखियों की डिमांड। 10 रुपए से 800 रुपए तक की राखियों की रेंज। फैमिली पैक में राखियों की खास कॉम्बिनेशन। पाली में डाक विभाग का राखी से रक्षा अभियान। 25,000 से ज्यादा राखियां सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा चुकी हैं। पाली के डाकघर में स्कूली बच्चों ने सैनिकों को भेज रहे हैं वो राखियां। सीमा पर तैनात जवानों को याद कर रहे हैं बच्चे। डाकघर परिसर में सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। सेल्फी पॉइंट पर स्कूली बच्चे खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में आस्था और भक्ति का सैलाब। भोलेनाथ की जयकारों की गूंज। सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का होगा समापन। भिलाई में संस्कृत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। 25 स्कूलों के 300 छात्रों ने लिया भाग। 50 से ज्यादा संस्कृत शिक्षकों की रही सहभागिता। संस्कृत गीत प्रतियोगिता बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। पोस्टर्स सुलेख और ग्रीटिंग कार्ड में दिखी प्रतिभा। बच्चों की रचनात्मकता ने जीत लिया सभी का दिल। ईश्वर एक नाम अनेक प्रतियोगिता में दिखा उत्साह। 6 अंक लाने वाले 234 छात्रों के साथ अभिभावकों का भी सम्मान। सर्वे भवंतु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। संस्कृत के जरिए मानवीय मूल्यों से जुड़ने की अपील। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया बिहार विद्या साथी ऐप। 700 मॉडल स्कूलों में शुरू हुई डिजिटल पढ़ाई। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सुविधा। 38 जिलों के लिए 3,00,000 छात्रों को मिलेगा लाभ। 75,000 शिक्षक देंगे लाइव ट्यूटर सपोर्ट। भारत में बिल्डिंग द टैक इनसाइड द टैक पर जोर। चिप्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को मिली रफ्तार। सेमीकंडक्टर में ग्लोबल हब बनने की ओर भारत, मोबाइल, सीसीटीवी और एचपीसी के लिए चिपसेट का विकास। भारी बारिश और ठंड के बीच भी हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पवित्र सरोवर में स्नान करके गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं यात्री। हेमकुंड साहिब की 23 मई से शुरू हुई यात्रा, अब तक 273,300 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मॉनसून की चुनौती के बावजूद यात्रा मार्ग पर आवाजाही लगातार जारी। इस साल अब तक 22,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी। रंग बिरंगे फूलों और बारिश के बीच खिली धूप बढ़ा रही आकर्षण। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, ड्राई फ्रूट से किया गया श्रृंगार। प्रकृति के बीच आधुनिकता का शानदार नजारा, रेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर वंदे भारत ट्रेन का ड्रोन विजुअल शेयर किया। जंगल के बीच लकीर से गुजरती हुई नजर आई ट्रेन, खूब पसंद कर रहे हैं लोग। दमन मॉनसून फेस्टिवल का भव्य आगाज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी मुख्य अतिथि। फेस्टिवल में सांस्कृतिक परेड, लाइव बैंड और म्यूजिकल नाइट्स बनी मुख्य आकर्षण। दमन के मॉनसून फेस्टिवल 2026 में मुखौटे पहनकर पहुंचे लोग, भांगड़ा और ढोल ने जमाया रंग। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत, अमेठी में बनी 100% स्वदेशी AK-203 शेर असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल। अमेठी के कोरबा में बनाए जा रहे हैं स्वदेशी हथियार, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिख रही है मिसाल। INSAS राइफलों की जगह देगी AK-203 राइफल के सभी पुर्जे और कच्चा माल पूरी तरीके से स्वदेशी। ऑर्डिनेंस कारखाने का तेजी से किया जा रहा है विस्तार, लगभग 6,00,000 राइफलों की सप्लाई का लक्ष्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका का होगा पहला बड़ा मिलिट्री अभ्यास, भारत के 350 सैनिक भाग लेंगे। रायबरेली के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिले को दी 879 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती, समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बांधी राखी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने खोला तोहफों का बटारा, महिलाओं को पोंगल 2027 से हर साल मिलेंगे 3 LPG सिलेंडर मुफ्त। सालाना 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार ही होंगे मुफ्त 3 सिलेंडर पाने के अधिकारी। चीन के बीजिंग में ऑड्स टू हीरोज अनोखा शो, परंपरा और आधुनिकता का दिखा अद्भुत संगम, डांस ड्रामा ने दर्शकों का मन मोह लिया। यंग के नृत्य बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, प्राचीन लोक नृत्य को आधुनिक मंच। नृत्य में मार्शल आर्ट्स का तड़का, थिएटर्स और युद्ध कौशल का अद्भुत मेल। लोक संस्कृति को आधुनिक संगीत से जोड़ा गया, शो का मकसद संस्कृति की पहचान दिखाना। चीन के बीजिंग में यमाकान लोक कला की गूंज, हेजेन लोक कला पर आधारित है नाटक। नेशनल थिएटर में यमाकान की शानदार प्रस्तुति, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। नाटक के जरिए जापान के साथ युद्ध की प्रस्तुति, यमाकाना गीत और कहानी के रूप में पेश। चीन में 40 डिग्री गर्मी का अनोखा हॉट पॉट, चोंगकिंग में पानी के बीच बैठकर खाया तीखा हॉट पॉट। पर्यटकों ने अनोखे अनुभव से आनंद लिया, हॉटपॉट और ठंडे पानी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में ह्यूमनॉइड रोबोट ने खींचा सभी का ध्यान, सामान उठाते हुए नजर आए रोबोट्स। रोबोट्स ने पानी की बोतल भी पहुंचाई, काम करने के लिए अव्वल। ह्यूमनॉइड रोबोट ने नूडल्स वाले, किचन के काम में भी दिखाई दक्षता। रोबोटिक डॉग ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। हांगकांग में दिखाने का नजारा, रोबोट्स ने स्टेज पर बच्चों के साथ ताई ची की शानदार प्रस्तुति दी। विनर रोबोट ने दिखाया स्मूथ मूव्स, पुशिंग हैंड्स और ताई ची पोज। बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, रोबोट ने जिमनास्टिक में दिखाया दमखम। 400 मीटर ऑब्स्टिकल रेस में ह्यूमनॉइड रोबोट ने बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, ऑब्स्टिकल रेस में दिखी शानदार दक्षता। सीढ़ियां चढ़ते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, पार की मुश्किलें। मुश्किल ट्रैक पर रोबोट्स ने दिखाई फुर्ती, तेज मूवमेंट और संतुलन की जबरदस्त परीक्षा। ऑब्स्टिकल रेस ने जीत लिया दर्शकों का दिल, दर्शकों ने इसे सबसे मजेदार इवेंट बताया। वॉशिंगटन डीसी में काइल किर्कवुड ने जीती इंडी कार फ्रीडम 250 रेस। किर्कवुड ने कड़ी रेस के बाद हासिल किया खिताब। स्विट्जरलैंड के दावोस में बाराडुन और बीली बने स्विस एपिक चैंपियन। महिलाओं में वाइन बियर पैरिटी का दबदबा कायम। सियोल में एनसीटी 127 का नया एल्बम ब्लिंगी ले रिलीज।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: आपको दिखा दें ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कोई अपनी अदा से लोगों को दिल जीत रही है लगातार, तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है।
5: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है, लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गांसू में भी हैं। गांसू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनके संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वहीं बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
11: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: ब्रज में झूलन उत्सव की रौनक का, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने 4 स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकियां। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं विशेष स्नान के बारे में। इसके साथ ही ये बात जुड़ी है कि अलग अलग ग्रहों की दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करने के लिए या फिर ग्रहों की शांति के लिए विशेष स्नान से किस तरह से आप इन तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे, उपाय बताएंगे, महाउपाय के बारे में बताएंगे, राशियों के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।

0: के बावजूद आपके करियर में सुधार नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिए और हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। अपने घर में या मंदिर में ऐसा करें, आपके करियर में आपकी उन्नति अवश्य होगी।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 25 अगस्त 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 6:20 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 10:51 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, हम बात कर रहे हैं विशेष स्नान के बारे में। पहला सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्या स्नान से ग्रहों की बाधा दूर हो सकती है, क्या इसका भी भाग्य के साथ, किस्मत के साथ कोई कनेक्शन है पंडित जी?
0: जी, हम आज आपको ये बता रहे हैं कि ग्रहों की समस्या को, ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए आप विशेष तरीके से अगर स्नान करें तो आपको लाभ होगा। तो क्या नहाने से भी आपके ग्रह बेहतर हो सकते हैं? देखिए, स्नान करना, नहाना स्वास्थ्य और मन के लिए हमेशा लाभदायक है। जहां तक हो सके रोज स्नान करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से स्नान नहीं करते तो चंद्रमा और शुक्र कमजोर होते हैं। हालांकि ये देश काल पात्र पर निर्भर करता है। जो दुनिया की ठंडी जगहें हैं वहां रोज डेली स्नान नहीं हो सकता, लेकिन वहां भी जब संभव हो स्नान करना चाहिए। अगर आप स्नान करने का अवसर होने के बावजूद स्नान नहीं करते तो इससे आपकी मानसिक स्थिति पर और जीवन के आनंद पर, जीवन के सुख पर खराब असर पड़ता है। हम दैनिक जीवन में सामान्य ठंडे या गुनगुने पानी से स्नान करते हैं जिससे हमें लाभ होता है, लेकिन विशेष जल से, विशेष तरीके के पानी से नहाने पर न केवल रोगों को दूर कर सकते हैं बल्कि ग्रहों से भी लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से पूछने हैं। आते हैं राशिफल पर और पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज का लिखा है।
0: मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए प्रश्न लेते हैं पंडित जी से। सवाल पंडित जी आपसे ये है कि किसी की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो उसको अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो किस तरह का विशेष स्नान किया जा सकता है जिससे इसका फायदा होगा?
0: अब ये जानते हैं कि सूर्य को बेहतर करने के लिए किस प्रकार स्नान करना चाहिए। देखिए, सूर्य की गड़बड़ी के कारण हड्डियों की, आंखों की और हृदय की समस्या जीवन में होती है और सूर्य के कमजोर होने पर यश और मान प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं या सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य के सामने स्नान करिए या जल में केसर, लाल फूल या लाल चंदन डालकर अगर आप नहाएं तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, अब ये बताइए कि सूर्य के बारे में तो आपने जानकारी दे दी कि सूर्य को मजबूत कैसे करना है, चंद्रमा को मजबूत कैसे करना है, कौन सा विशेष स्नान है जो किया जा सकता है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए?
0: अगर आपको चंद्रमा से लाभ लेना है, चंद्रमा को मजबूत करना है तो कैसे नहाएंगे? चंद्रमा का सीधा संबंध होता है मन के साथ। मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण मनोरोग, डिप्रेशन, नींद की समस्या, सर्दी जुखाम, मानसिक तनाव की समस्या होती है। चंद्रमा के कमजोर होने पर माता या स्त्री का सुख जीवन में नहीं मिल पाता। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए शंख में जल भर करके नहाइए या जल में सुगंधित फूल डालकर या सफेद चंदन डालकर नहाइए तो आपको लाभ होगा।
1: चले आते हैं राशिफल पर वापस और अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बताते हैं। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी आपको, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फ्लैश हो रही है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला सवाल कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न कृतिका जी ने हमें लिखा है और कृतिका जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म तारीख है 23 नवंबर 2008, जन्म का समय रात में 9:10, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है और आगे विदेश जा करके पढ़ाई करना चाहता है, क्या वो विदेश जा सकेगा? विदेश भेजकर पढ़ाई करवाना कितना उचित रहेगा? कृतिका जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से 12वीं के बाद इतनी दूर जाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका बेटा कोई कंप्यूटर की, कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो अपने देश में ही करने की सलाह दीजिए। भले ही लखनऊ से दूर जाना पड़े, लेकिन अभी अगले 4 साल तक विदेश भेजना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपके बेटे की कुंडली में भटकने की, बिगड़ने की संभावना बहुत है, इसीलिए जब भी भेजेंगे सही समय पर भेजेंगे, अभी विदेश भेजने का उपयुक्त समय नहीं है। आपके बेटे का स्वास्थ्य ठीक रहे, जीवन में बेहतर रास्ते पे चल सके, इसके लिए आप रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप अपने बेटे के लिए करिए और अपने बेटे के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके बेटे की स्थिति बेहतर होगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक ने इस शो में पंडित जी के लिए भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें बेंगलोर से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1980, जन्म का समय सुबह के 7:10, जन्म का स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेल लिख रहे हैं बेंगलोर से। ये कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपना काम करना चाहता हूं कि नौकरी के साथ साइड में कोई व्यापार कर लूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए उचित रहेगा और मेरा भविष्य कैसा होगा। विकास जी, अगर नौकरी के साथ साइड में आप खाने पीने की चीजों का, ड्राई क्लीनिंग का, फूलों का, सुगंध का कोई व्यापार करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन क्षेत्रों में आप कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के चैतन्य रहिए। सेहत को लेकर के फरवरी 2027 तक आपकी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं। व्यापार जून 2027 के बाद आप नौकरी के साथ पैरेलल शुरू कर सकते हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए सूर्य और चंद्रमा के बारे में तो आपने जान लिया, बात करते हैं पंडित जी से मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो कौन सा विशेष स्नान है जो इसके साथ सीधा जुड़ता है और सीधा फायदा आपको होने वाला है, उसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे।
0: अगर आप मंगल को बेहतर करना चाहते हैं या मंगल से लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे नहाएंगे? मंगल का सीधा संबंध होता है आपके साहस के साथ, आपके आत्मविश्वास के साथ। मंगल अगर गड़बड़ हो गया तो भय की, रक्त की, ज्वर यानी बुखार की और चोट चपेट की समस्या जीवन में होती है। मंगल के कमजोर होने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी होने लगती है।

0: बेल की छाल, लाल चंदन या चुटकी भर गुड़ डालकर स्नान करिए, या तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे से जल भर भर कर नहाइए तो मंगल आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: चलिए अब जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। पंडित जी ये बताइए कि बुध ग्रह को अगर कोई शख्स मजबूत करना चाहता है, इसकी वजह से जीवन में कोई गड़बड़ियां आ रही हैं, तो कौन सा विशेष स्नान है जो लाभकारी सिद्ध होगा?
0: अगर बुध गड़बड़ है तो इसे स्नान से कैसे बेहतर करें? बुध का मुख्य संबंध है त्वचा से और शरीर की गंध के साथ। बुध के कारण त्वचा की, वाणी की और गंध की समस्या होती है, और अगर बुध गड़बड़ हुआ तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव भी आता है। बुध को बेहतर करने के लिए जल में गोरोचन, हरी सौंफ या जायफल घिसकर डालिए और उस जल से स्नान करिए, आपका बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: चलिए तमाम ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, अब आते हैं बृहस्पति ग्रह के ऊपर। बृहस्पति ग्रह को कहते हैं कि इसकी वजह से अगर ये गड़बड़ा जाता है तो बीमारियां भी आपको लगती हैं। इसको अगर आप सही करना चाहते हैं अपनी कुंडली में तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन सा विशेष स्नान किया जा सकता है, पंडित जी बताएंगे।
0: बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति से लाभ लेने के लिए कैसे स्नान करेंगे? बृहस्पति के कारण पेट की समस्या, हेपेटाइटिस, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बृहस्पति के कमजोर होने पर ज्ञान नहीं मिलता और व्यक्ति के अंदर अहंकार की समस्या आ जाती है। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए जल में हल्दी, केसर या जरा सा शहद डालकर स्नान करना चाहिए, या पीतल के पात्र से, पीतल के लोटे से जल भर भर कर स्नान करना भी लाभकारी होता है।
1: चलिए अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से अब जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी आती है अब तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि अगर ये कुंडली में कमजोर हो जाता है, किसी कारणवश दिक्कतें देता है आपको, तो इसको ठीक करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कौन सा विशेष स्नान किया जा सकता है पंडित जी?
0: अब ये जानते हैं कि शुक्र को स्नान के द्वारा कैसे बेहतर करेंगे। शुक्र के कारण आंखों की, हार्मोन की, मधुमेह की और कभी कभी रक्त की समस्या भी होती है, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, प्रोस्टेट की दिक्कत भी शुक्र की वजह से आती है। और शुक्र अगर गड़बड़ हो गया तो ये चरित्र दोष भी देगा और पारिवारिक जीवन को खराब भी करेगा। अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो जल में इलायची, गुलाब जल या सफेद फूल डालकर स्नान करिएगा। शीशे के पात्र से, कांच के मग से जल भरकर नहाने से भी आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, अब शनि ग्रह के, जिससे अक्सर हम लोग जिसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, शनि की अगर गड़बड़ है कुंडली में, शनि ग्रह को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो फिर कौन सा उपाय किया जा सकता है और कौन सा विशेष स्नान आप बताएंगे?
0: अब ये जानते हैं कि शनि को बेहतर करने के लिए कैसे स्नान करेंगे। शनि के कारण स्नायु तंत्र की बीमारी, भयंकर दुर्घटना और अपंगता जैसी स्थिति पैदा होती है लंबी चलने वाली बीमारी के पीछे शनि होता है। खराब शनि रोजगार और करियर के अवसरों को रोक डालता है। अगर आपको शनि को बेहतर करना है या शनि से राहत पानी है तो जल में काले तिल, सुरमा या लोबान डालकर नहाना चाहिए। लोहे की बाल्टी में कुछ समय तक पानी रख करके अगर आप उस जल से स्नान करें तो ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा।
1: चले आते हैं राशिफल के अंत की तरफ और अब आपको बताएंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में।
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन आएगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का अगला सवाल। पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि कौन से दर्शक का अगला सवाल है। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न जयंत जी ने हमें लिखा है और जयंत जी हमें पश्चिम बंगाल कोलकाता से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1975। जन्म का समय दोपहर में 2 बजे। जन्म स्थान है कोलकाता। जयंत जी कह रहे हैं कि व्यापार में कुछ नुकसान होने की वजह से मुझे कर्ज हो गया है, कर्ज की स्थिति काफी विकट हो गई है, तो कर्ज से छुटकारा मुझे

0: अष्टक का पाठ करिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को रोज, और एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं कि अंतिम सवाल कौन से दर्शक का अब तक आया है।
0: जी अंतिम प्रश्न हमें अनिल जी ने लिखा है और अनिल जी हमें मेल लिखते हैं हिमाचल प्रदेश से। अनिल जी की जन्म की तारीख है 19 मई 1981, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, जन्म का स्थान है मंडी हिमाचल प्रदेश। अनिल जी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर बार बार समस्याएं आ रही हैं, कोई ना कोई विवाद पैदा हो रहा है, मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं लेकिन बेच नहीं पा रहा हूं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अनिल जी आप अक्टूबर 2026 के बाद कोशिश करिएगा प्रॉपर्टी बेचने की, तो आप प्रॉपर्टी जरूर बेच पाएंगे। और जो विवाद या जो समस्याएं प्रॉपर्टी की हैं वो अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएंगी। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 25 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: दिन 25 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर के बदलाव और लाभ की स्थिति बन रही है, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी आपको बताएंगे आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर भोजन में बार बार आपके कंकड़ निकलते हों तो इसका क्या अर्थ है? भोजन में बार बार कंकड़ निकलना अच्छा संकेत नहीं है। ये बताता है कि आपके ऊपर मंगल का खराब प्रभाव है। ऐसे में भोजन बनाने और परोसने में सावधानी रखनी चाहिए।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 25 अगस्त 2026 मंगलवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वर्तमान में जो समस्या

0: क्या चल रही है उस समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आज की गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की गुडलक राशि है कर्क। इनको अपनी भावनाओं और मन पर ध्यान देना चाहिए और इनको नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए ताकि इनका जीवन बेहतर हो सके।
1: चलिए, तमाम उपायों के बारे में तो आपने जानकारी ले ली है, अब बात करते हैं महा उपाय के बारे में। तो आज का खास उपाय यानी महा उपाय क्या है, पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
0: जी,

0: बताते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम मंगल के मंत्र का जप करेंगे, ओम अंग अंगारकाय नमः। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, महिलाएं लाल फूल अर्पित करेंगी और लाल रंग के वस्त्रों के प्रयोग से परहेज करें, बचाव करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: बात करते हैं रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये त्योहार 3 दिन बाद देश भर में मनाया जाने वाला है, जिसे देखते हुए बाजार तरह तरह की राखियों से पूरी तरीके सज चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड और ट्रेंड को देखते हुए बाजार में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है। इनमें कुछ राखी इको फ्रेंडली भी है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार की गई है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी, जरी गोटे वाली राखी, मोती और रुद्राक्ष वाली राखी, फूलों के डिजाइन वाली राखी, स्टोन्स वाली राखी, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी और देवी देवताओं वाली राखियाँ बाजार में इन दिनों बिक रही हैं। भाई की कलाई पर सजने वाली ये राखी अब सिर्फ धागे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें फैशन, स्टाइल, भावनाओं के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी जुड़ गया है। लिहाजा इस बार बाजार में स्मार्ट राखियाँ भी देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियाँ हैं, आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफेक्ट बच्चों की भी राखियाँ बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़की के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियाँ हैं।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहने आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है।
3: शुरू तो 500 होती है, 500 से लेके 500, तो जो पसंद है बहनों को वो ले सकती है। बच्चों की राखियां, लेडीज राखी चल रही है इस टाइम, लेडीज राखी बहुत लगती है इस तरह की लेडीज।
0: ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए बाजारों में राखियों की कई वैरायटी मौजूद है, जिनकी शुरुआत 10 रुपए से लेकर 300 और 400 रुपए होती है, और कुछ राखियों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल राखियों की कीमत काफी बड़ी है। बावजूद इसके भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहने महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी में जुटी है। चाहे करनाल का बाजार हो या गया का बाजार या फिर देश का कोई और बाजार, राखियों की खरीदारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
4: मुझे नहीं लगता है कि इसमें महंगाई को देख करके बहन को पीछे हट जाना चाहिए, और भाई भी जो होता है वो करता ही करता है। तो एक बहन भांति है किस धागे के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए। तो महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है, इसमें सब चीज़ की क्वालिटी आई है, महंगी भी है सस्ती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो, तो बांधिए, प्यार से खरीदिए, ये प्यार का चीज़ है। भाई बंधन एक प्यार होता है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहन को देखना चाहिए कि महंगाई है महंगाई में। सब तो ऑलरेडी साल में तो अपने लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, फैमिली के लिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो बहन अपने भाई के लिए प्यार से राखी बांधती है और खरीदती है।
5: आप एक मोली भी बांधती हो तो भाई बहन के प्यार में तो कोई असर नहीं होनी चाहिए। आप मोली से भी एक रक्षाबंधन का अपना भाई का प्यार बांध सकते हो, ऐसा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, भाई बहन के प्यार में कोई असर नहीं होगा।
6: इस बार राखी देखिए हर रेंज का है, आप खुदरा बेचने लायक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ज्यादा हम लोग के यहाँ 10, 20 और 30 का मेल ज्यादा रहा, भी सेल रहा। फैंसी उससे ऊपर हम लोग 120 रुपया, 160, 70, 80 वाला उसका सेल नहीं रहा।
0: वही फैंसी और डिजाइनर राखियों के बीच बाजार में इको फ्रेंडली राखियाँ भी बिक रही हैं, जो गाय के गोबर और लकड़ी से बनी है। खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती हैं। इन राखियों में पारंपरिक कला, रचनात्मकता और स्थानीय हुनर की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। गोबर से बनी इन राखियों की एक खासियत यह भी है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक लोग इन्हें खासा पसंद कर रहे हैं। इस तरह की राखी के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
7: मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूं और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूं और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूं। तो प्लास्टिक से बहुत सारी ऐसे राखियां भी बनती हैं, तो मैं वो ना बनाकर मैंने इस गाय के गोबर से बहुत सारी ऐसी राखियां बनाई हैं।
8: इस गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है, आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार मिठाई के बगैर अधूरा है, लेकिन त्योहार से ठीक पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मिठाई की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि यूपी के झांसी में मिठाई कारोबार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने रक्षाबंधन तक कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भारत भूषण जोशी और झांसी से प्रमोद गौतम, गुड न्यूज टुडे।
9: बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। वैसे आस्था के साथ चढ़ावे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति भाव से दिया गया चढ़ावा लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले प्रमुख मंदिर भी आस्था के इस भाव से अब अछूते नहीं है। वहां भी चढ़ावे के रूप में भी बड़ी धनराशि अर्पित की जा रही है। सिर्फ 3 वर्षों में मंदिरों को 419 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा हासिल हुआ है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, निःशुल्क लंगर के अलावा दूसरे सामाजिक कार्यों में किया जाता है।

0: वैसे तो दोनों का कनेक्शन नहीं, लेकिन मंदिरों में आस्था के साथ चढ़ावा भी बढ़ता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किए जाने वाला चढ़ावा केवल धन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक भी हो जाता है। देवभूमि हिमाचल में छोटे बड़े 2000 से ज्यादा मंदिर है। इनमें श्री ज्वालामुखी, माता चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, नैना देवी और चामुंडा देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठ भी शामिल है, जो आस्था के साथ चमत्कार के भी प्रतीक है। अक्सर किसी मनोकामना के पूरी होने पर भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था से चढ़ावा अर्पण करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हिमाचल के मशहूर मंदिरों को भी लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के तौर पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले 36 प्रमुख मंदिर हैं, जिनको पिछले 3 साल में श्रद्धालुओं की तरफ से कुल 4 अरब 20 करोड़ यानी 420 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं।
1: हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है।
0: आस्था और चढ़ावा आपस में कैसे गहराई तक जुड़े हैं, इसका प्रमाण बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध मंदिर में मिलता है, जो चढ़ावे के मामले में पहले स्थान पर रहा। मंदिर को चढ़ावे के तौर पर 99.19 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद नैना देवी मंदिर को 86.94 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं। फिर बारी आती है माँ ज्वालामुखी मंदिर की, जिसे 36.57 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। वहीं त्रिलोकपुर स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 26.99 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर आए हैं। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 13.76 करोड़ रुपए श्रद्धालुओं ने भेंट स्वरूप चढ़ाया। वहीं चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर और आदि हिमानी समूह में 11.68 करोड़ रुपए मिले हैं। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में 8.82 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। मंदिर के प्रति जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, वैसे वैसे मंदिरों में आने वाला चढ़ावा भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावे के रखरखाव, गिनती और निगरानी को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से भी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के तहत मंदिरों में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए।
0: धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए चढ़ावे को लेकर कुछ नियम भी बने हुए हैं। जिन मंदिरों का संचालन सरकार के हाथ में होता है, उनका पैसा मंदिर के अलावा देश के विकास योजनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। करंट टैक्स रूल को देखें तो धर्मार्थ या फिर धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति से होने वाली आय कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त भी होती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन के अंतिम सोमवार पर पूरा देश बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो कांवड़िए भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कासगंज से कांवड़ यात्रियों का ऐसा जत्था गुजरा जिसे देखकर हर कोई ठिठक गया।
3: सावन मास के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कांवड़ लेकर भी भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने भक्त पहुंच रहे हैं। यूपी के कासगंज से गुजर रहा भगवान भोले शंकर के भक्तों का ये जत्था आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सोरंजी के लारा गंगा घाट से जल भरकर 40 कांवड़ियों का ये जल जहाँ जहाँ से गुजरा, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। इस दल की अगुवाई करता व्यक्ति हनुमान जी की वेशभूषा में, तो बाकी सदस्य बतौर वानर रूपी सेना हनुमान जी की पूंछ उठाकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 131 मीटर लंबी हनुमान जी की पूंछ रूपी इस कावड़ में 251 लीटर जल लेकर कावड़ियों का ये जत्था सोरंजी, प्रहलादपुर, गोराहा, भिटौना, कासगंज होते हुए फिरोजाबाद की ओर रवाना हुआ। फिरोजाबाद के नवा गांव का ये कावड़ दल अपने नजदीक के शिवालय में भगवान शिव को जल अर्पित करने आगे बढ़ता चला गया।
4: सोरों से भर के लाए बाबा नीम करौरी स्थान पर ले जाएंगे। करीब 45 लीटर जल है।
5: ये तो अपनी अपनी भाई सेवा है, आप जैसे कहो तो जनता ने कही चलो तो चलो।
3: हनुमान जी के रूप में मौजूद शिव भक्त बॉबी निगुआ के अनुसार वो ऐसी कावड़ बनाना चाहते थे जो अनूठी हो और एकदम अलग दिखे, और इसी सोच के साथ उन्होंने हनुमान जी की थीम पर यह कावड़ बनाई। आज दलबल के साथ निकल पड़े लहरा गंगा घाट के लिए, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके जल भरा गया और फिर कावड़ दल फिरोजाबाद के नावा गाँव के लिए चल पड़ा। इस दौरान पूरा रास्ता बम बम भोले के जय घोष से गूंजता रहा और जगह जगह इस कावड़ दल का स्वागत किया गया।
5: जो कैंप है कांवड़ियों के लिए लगाए गए हैं सेवा के लिए, वहाँ पे महिला आयोग की जो सदस्य है रेणुगौड़ वो थी मौजूद। उन्होंने कांवड़ का स्वागत किया, हनुमान जी के गले में पटका डाल करके उनका स्वागत किया। ये अनोखी कांवड़ लोगों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है।
3: कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था को और मजबूत करती है। ये यात्रा युवाओं समेत हर किसी को भक्ति से जोड़ने का एक संदेश देती है। सावन के इस पवित्र मास में जगह जगह आस्था की इस यात्रा के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। कासगंज से देवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मुंबई में अब गणेश उत्सव का रंग पूरी तरीके से चढ़ने लगा है। गलियों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा की भव्य मूर्तियां अलग अलग इलाकों में पहुंच रही हैं और उनके स्वागत में श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ढोल ताशों की गूंज, गुलाल की खुशबू और भक्तों की उमड़ी भीड़ बता रही है कि माया नगरी अपने सबसे बड़े त्यौहार के स्वागत करने के लिए तैयार है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ब्रज में झूला उत्सव की रौनक, का मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगर मालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकिया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल बेलपत्र और धतुरे के अर्पण से हो जाते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, उसका विधान और सावधानियां भी बताई गई है। तो ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा क्या है।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्र, सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। वे देवताओं के भी हैं और असुरों के भी। तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है।
1: देखिए, श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव से अपने कल्याणार्थ कृपा प्राप्त करने का चातुर्मास में से सबसे अच्छा समय कहलाता है। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, रुद्राभिषेक जलाभिषेक आदि कर लेते हैं, तो पूरे श्रावण मास का शुभ फल आप प्राप्त कर लेते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शंकर रुद्र है और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वरहा बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। माना जाता है कि शिव शंकर को जलाभिषेक सबसे अधिक प्रिय है और वो रुद्राभिषेक से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं।
1: शिव कल्याणार्थ है, शिव का अर्थ ही कल्याण देने वाला है। अगर आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकती है। शिव पूजन में उसकी अलग अलग प्रकार की वस्तु या सामग्री से भगवान का अभिषेक करने से भगवान क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं। एक लोटे जल से ही जो आपको वरदान दे दे, वो केवल भगवान शिव ही है। शिव अपने भक्तों में देव है, दानव है, मनुष्य है, कोई भेद नहीं करते। उनसे मांगने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
0: रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक में शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहाँ की नकारात्मकता का अंत होता है।
1: भगवान को अभिषेक बहुत पसंद है, तो जल दूध शहद आदि से जो अभिषेक करता है वो अपने मनोकामना मन इच्छित वरदान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कंठ में भगवान के हलाहल विष है, नीलकंठ नाम तभी है उनका, तो जो भगवान को जल अर्पण करता है भगवान को उससे अति आनंद अनुभव होता है और भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद देते हैं, उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
0: रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और खास जानकारियाँ देंगे। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन की कोई भी तिथि हो, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काट कर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।

0: शिव पुराण में है रुद्राभिषेक का गुणगान। जलधारा के पान से महादेव देंगे वरदान। माना जाता है कि रुद्राभिषेक से न सिर्फ पाप का नाश होता है बल्कि रोग संबंधित बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विशेष कामनाओं के लिए रुद्राभिषेक से जुड़े प्रयोग अमोघ माने जाते हैं। किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। रुद्राभिषेक की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं।
1: देखिए रुद्र अभिषेक में भगवान का जो रुद्राष्टाध्यायी कहलाता है यानी कि भगवान के प्रशंसा के जो मुख्य मंत्र हैं, वो भगवान के आगे सम्मुख में कहे जाते हैं। वेद ध्वनि भगवान को अति प्रिय है क्योंकि वेदों को भगवान ने उत्पन्न किया है। साथ में अनवरत रूप से जल और दूध से अभिषेक चलता रहता है तो भगवान को तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं।
0: शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें? मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं।
1: किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराएं, क्योंकि रुद्रा अभिषेक करने के लिए जो वेद मंत्र है वो ब्राह्मणों के कंठ में है। यदि ब्राह्मणों के बाद न करें तो केवल ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर मंत्र या नमः शिवाय से आप कर सकते हैं, जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। परंतु विधि विधान पूर्वक सभी प्रकार की सामग्रियों के साथ में, 16 प्रकार की सामग्रियों के साथ में भगवान का अभिषेक करें। साथ में बिल्वार्चन अवश्य करें, साथ में बिल्व पत्र को भगवान के 1008 नामों के साथ उनको अर्पण करें। ऐसा कौन सा सुख है धन संपत्ति विवाह जीवन में रोग मुक्ति जो इस प्रकार से अभिषेक करने से सफल ना हो जाए।
0: कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी, अब ये भी जान लीजिए। रुद्राभिषेक की वस्तुएं और प्रभाव। घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने रुद्राभिषेक कितना मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिवजी का निवास का ध्यान जरूरी करना है, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। महादेव का रुद्राभिषेक किन तिथियों पर करना है और किन तिथियों पर नहीं करना, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे।
2: शिव ही रुद्र हैं और मन में कामना कोई भी हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूरी कर देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवादि देव नहीं दे सकते। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही है शिव, उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। महाशिवरात्रि सावन और प्रदोष की तिथि शिव को प्रसन्न करने और कामना पूर्ति के लिए सबसे मंगलकारी मानी गई है। हर तिथि पर अलग विधान के साथ अलग पूजन सामग्री के साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिससे अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा, इसलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है तब क्यों रखना चाहिए हमें समय का ध्यान।
1: सबसे पहले अपना ध्यान न भटकने दे और अपने पवित्रता का ध्यान रखें, शिवमय होके करें। देवो भूता देवो भवेत हम जब कहते हैं तो भगवान के जैसा पहले स्वयं बनना पड़ता है, तब भगवान का पूजन करना चाहिए। तो स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके त्रिपुंड आदि चंदन या भस्म आदि युक्त होकर फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए, तब उसका सुफल प्राप्त होता है।
0: रुद्राभिषेक में रखें ध्यान, बिना शिव जी का निवास देखे कभी रुद्राभिषेक ना करें, इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना जरूरी है जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा हो। आस्था कहती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वे कभी माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकार का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। शिववास और रुद्राभिषेक, मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिवजी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे तो शिवजी का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीय व दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। आदिदेव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब नहीं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई हैं। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन तिथियों पर करें अभिषेक।
1: देखिए, सबसे सुंदर तो प्रदोष कहा गया है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी द्वादशी का संयोग या त्रयोदशी में आने वाला ये सुंदर समय है और प्रत्येक दिन में भी, जैसे सोमवार भगवान को अति प्रिय है, प्रदोष काल जब होता है तब करना चाहिए या शिवरात्रि पे करना चाहिए। उस समय तो चार पहर का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
0: शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। तो देखा आपने, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना फलकारी है रुद्राभिषेक। तो आप भी शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं का ध्यान रखते हुए कीजिए देवादिदेव महादेव का श्रृंगार, जिससे त्रिलोकी नाथ की आप पर कृपा बरसेगी अपार। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: बात करते हैं रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये त्योहार 3 दिन बाद देश भर में मनाया जाने वाला है, जिसे देखते हुए बाजार तरह तरह की राखियों से पूरी तरीके सज चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड और ट्रेंड को देखते हुए बाजार में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है। इनमें कुछ राखी इको फ्रेंडली भी है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार की गई है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी, जरी गोटे वाली राखी, मोती और रुद्राक्ष वाली राखी, फूलों के डिजाइन वाली राखी, स्टोन्स वाली राखी, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी और देवी देवताओं वाली राखियां बाजार में इन दिनों बिक रही हैं। भाई की कलाई पर सजने वाली ये राखी अब सिर्फ धागे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें फैशन, स्टाइल, भावनाओं के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी जुड़ गया है। लिहाजा इस बार बाजार में स्मार्ट राखियां भी देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़की के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है।
3: शुरू तो 500 होती है, 500 से लेके 500, तो जो पसंद है बहनों को वो ले सकती है। बच्चों की राखियां, लेडीज राखी वो चल रही है इस टाइम, लेडीज राखी बहुत लगती है इस तरह की। लेडीज
0: ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए बाजारों में राखियों की कई वैरायटी मौजूद है, जिनकी शुरुआत 10 रुपए से लेकर 300 और 400 रुपए होती है, और कुछ राखियों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल राखियों की कीमत काफी बड़ी है। बावजूद इसके भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी में जुटी हैं। चाहे करनाल का बाजार हो या गया का बाजार या फिर देश का कोई और बाजार, राखियों की खरीदारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
4: मुझे नहीं लगता है कि इसमें महंगाई को देख करके बहन को पीछे हट जाना चाहिए, और भाई भी जो होता है वो करता ही करता है। तो एक बहन भांती है किस धागे के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए। तो महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है, इसमें सब चीज़ की क्वालिटी आई है, महंगी भी है सस्ती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो, तो बांधिए, प्यार से खरीदिए, ये प्यार का चीज़ है, भाई बंधन एक प्यार होता है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहन को देखना चाहिए कि महंगाई है महंगाई में। सब तो ऑलरेडी साल में तो अपने लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, फैमिली के लिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो बहन अपने भाई के लिए प्यार से राखी बांधती है और खरीदती है।
5: आप एक मौली भी बांधती हो तो भाई बहन के प्यार में तो कोई असर नहीं होनी चाहिए। आप मौली से भी एक रक्षाबंधन का अपना भाई का प्यार बांध सकते हो, ऐसा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन के प्यार में कोई असर नहीं होगा।
6: इस बार राखी देखिए हर रेंज का है, आप खुदरा में खुदरा बेचने लायक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ज़्यादा हम लोग के यहाँ 10, 20 और 30 का मेल ज़्यादा रहा, भी सेल रहा फैंसी, उससे ऊपर हम लोग 120 रुपये, 100, 60, 70, 80 वाला उसका सेल नहीं रहा।
0: वहीं फैंसी और डिजाइनर राखियों के बीच बाजार में इको फ्रेंडली राखियाँ भी बिक रही हैं, जो गाय के गोबर और लकड़ी से बनी है। खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती हैं। इन राखियों में पारंपरिक कला, रचनात्मकता और स्थानीय हुनर की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। गोबर से बनी इन राखियों की एक खासियत यह भी है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक लोग इन्हें खासा पसंद कर रहे हैं। इस तरह की राखी के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
7: मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूं और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूं और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूं। तो प्लास्टिक से बहुत सारी ऐसे राखियां भी बनती हैं, तो मैं वो ना बनाकर मैंने इस गाय के गोबर से बहुत सारी ऐसी राखियां बनाई हैं।
8: इस गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है, आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार मिठाई के बगैर अधूरा है, लेकिन त्योहार से ठीक पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मिठाई की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि यूपी के झांसी में मिठाई कारोबार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने रक्षाबंधन तक कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भारत भूषण जोशी और झांसी से प्रमोद गौतम, गुड न्यूज टुडे।
9: आपको दिखा दें ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कोई अपनी अदा से लोगों को दिल जीत रही है लगातार, तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है।
10: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरित, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसको कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे एक कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है। लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी है। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ही बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनकी संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वही बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है। गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: ब्रज में झूलन उत्सव की रौनक, का मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकियां। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
11: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है, और अब लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। या हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है, कैमरा है, और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही वजह है कि कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला ये कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
11: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते हुए वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
17: अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने कई भारतीय गांव की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, और कई जगह चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। इसी कड़ी में अब ये वीडियो भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की गिरफ्त में, घर घर तिरंगा तो देशवासी

0: झूठे दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे जो है रोती हुई महिलाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और देखिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का लग रहा है। इसे गौर से देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कब्जे का वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सैनिकों ने इलाके पर कब्जा किया होता तो लोग रोते नहीं बल्कि उनके चेहरे पर भय देखने को मिलता, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता। लेकिन पूरी वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वर्दीधारियों के जाने की वजह से लोग यहां पर रो रहे हैं। साथ में वीडियो के बैकग्राउंड में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाओं से अलग नजर आती हैं। और इसके अलावा वीडियो में हमारी नजर जीप में बैठे वर्दी पहने लोगों की ड्रेस के लोगों पर भी गई और जब हमने इसे जूम करके देखा और गौर से देखा तो ये सामने निकल कर आया कि इस तरह का लोगो इस्तेमाल जो है मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी करते हैं। जी हां, साल 1990 में इस संगठन ने मणिपुर पीपल्स आर्मी नाम से अपनी सशस्त्र विंग बनाई थी। यह संगठन जो है लंबे समय तक सुरक्षा बलों के खिलाफ संघर्ष में शामिल रहा है और भारत सरकार ने बैन कर दिया था। 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ यूएनएलएफ के पैम्बी गुट ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के बाद संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर हथियार डाले और लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो गए। ये शांति समझौता अभी भी लागू है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। भारत सरकार और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को सिरे से खारिज किया है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक फेसबुक यूजर के वॉल पर पहुंचे, जहां 30 जून 2026 को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। मणिपुर के इम्फाल स्थित एक स्थानीय न्यूज पोर्टल के फेसबुक पेज पर भी 30 जून 2026 को वायरल वीडियो पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। मणिपुर की एक वेबसाइट पर 30 जून 2026 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नोंगशुम इलाके के आसपास के गांवों के लोगों ने यूएनएलएफ के नोंगशुम कैंप को नम आंखों से विदाई दी। यह कदम लंबी बातचीत और इस आश्वासन के बाद उठाया गया कि 10वीं इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान तुरंत कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उसके जाने के बाद 10वीं आईआरबी के जवानों ने नोंगशुम कैंप पहुंचकर उनकी जगह ले ली। सत्ताईस जून 2026 को पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएलएफ के पाम्बेई के नेतृत्व वाले गुट ने नवंबर 2023 में केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता किया था। हाल ही में 19 जून को भारत सरकार के प्रतिनिधियों और यूएनएलएफ नेताओं के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। इस दौरान एक तय प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे के तहत कैंप को दूसरी जगह ले जाने के

0: प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो को लेकर झूठा दावा किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। वीडियो का अरुणाचल प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी करते हुए मारपीट की। वायरल हो रहे वीडियो का जब सब फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को सजा देने की अपील की जा रही है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाराबंकी के शहर में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार किया गया। कई लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनकी दाढ़ी को खींचा। इंसान चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज्जत सबकी बराबर होती है। मेरे शासन और प्रशासन से यही अपील है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा मिले। धर्म चाहे कोई भी हो, सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग शख्स को पीट रहे हैं। एक शख्स बुजुर्ग की दाढ़ी को भी खींचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का है, जहां पर मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो जो है मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने उसे ध्यान से सुना तो यह सामने निकल कर आए कि यह बांग्ला है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बांग्ला नहीं बोली जाती। ऐसे में हमने वीडियो के दावे पर हमको शक हुआ, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असली वीडियो बांग्लादेशी मीडिया चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। इसे 7 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो के साथ बताया गया था कि यह शख्स जैनल ओबेदीन है, जो चोर जुबली यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के पूर्व महासचिव हनीफ चौधरी का छोटा भाई है। जुबली लीग के नेता जैनल ओबेदीन को बांग्लादेश के नोआखली में स्थानीय लोगों ने नशीले पदार्थों के साथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान ये वीडियो हमें एक और फेसबुक अकाउंट पर भी मिला। इसे 8 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। वीडियो के साथ ये जानकारी दी गई थी कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी और सुबरनाचर उपजिला की चार जुबली यूनियन के पूर्व चेयरमैन के छोटे भाई जैनल ओबेदीन पर मादक पदार्थ रखने के आरोप में जमात बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, फिर उन्हें बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच के दौरान हमें बांग्लादेश के एक यूट्यूब चैनल पर भी एक खबर मिली। इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी देखने को मिला। वीडियो में सबको बांग्ला भाषा में बोलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बताया गया था कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला के सुबरनाचर क्लार्क यूनियन में पूर्व यूनियन परिषद चेयरमैन और अवामी लीग नेता हनीफ चौधरी के भाई जैनुल ओबेदीन को स्थानीय लोगों ने नशीली दवा के साथ पकड़ा। ये सारा हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो बांग्लादेश का है।
1: इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: बच्चों की दुनिया पे कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्ची का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्ची जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश कि सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।

0: Indore to catch my bus to Delhi. My mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas, because she knows that I can't have anything without namkeen.
1: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है, जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे, वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। वैसे आस्था के साथ चढ़ावे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति भाव से दिया गया चढ़ावा लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले प्रमुख मंदिर भी आस्था के इस भाव से अब अछूते नहीं है। वहां भी चढ़ावे के रूप में भी बड़ी धनराशि अर्पित की जा रही है। सिर्फ 3 वर्षों में मंदिरों को 419 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा हासिल हुआ है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, निःशुल्क लंगर के अलावा दूसरे सामाजिक कार्यों में किया जाता है।

0: वैसे तो दोनों का कनेक्शन नहीं, लेकिन मंदिरों में आस्था के साथ चढ़ावा भी बढ़ता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किए जाने वाला चढ़ावा केवल धन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक भी हो जाता है। देवभूमि हिमाचल में छोटे बड़े 2000 से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें श्री ज्वालामुखी, माता चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, नैना देवी और चामुंडा देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठ भी शामिल है, जो आस्था के साथ चमत्कार के भी प्रतीक है। अक्सर किसी मनोकामना के पूरी होने पर भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था से चढ़ावा अर्पण करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हिमाचल के मशहूर मंदिरों को भी लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के तौर पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले 36 प्रमुख मंदिर हैं, जिनको पिछले 3 साल में श्रद्धालुओं की तरफ से कुल 4 अरब 20 करोड़ यानी 420 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं।
1: हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है।
0: आस्था और चढ़ावा आपस में कैसे गहराई तक जुड़े हैं, इसका प्रमाण बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध मंदिर में मिलता है, जो चढ़ावे के मामले में पहले स्थान पर रहा। मंदिर को चढ़ावे के तौर पर 99.19 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद नैना देवी मंदिर को 86.94 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं। फिर बारी आती है माँ ज्वालामुखी मंदिर की, जिसे 36.57 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। वहीं त्रिलोकपुर स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 26.99 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर आए हैं। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 13.76 करोड़ रुपए श्रद्धालुओं ने भेंट स्वरूप चढ़ाया। वहीं चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर और आदि हिमानी समूह में 11.68 करोड़ रुपए मिले हैं। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में 8.82 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। मंदिर के प्रति जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, वैसे वैसे मंदिरों में आने वाला चढ़ावा भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावे के रखरखाव, गिनती और निगरानी को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से भी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के तहत मंदिरों में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए।
0: धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए चढ़ावे को लेकर कुछ नियम भी बने हुए हैं। जिन मंदिरों का संचालन सरकार के हाथ में होता है, उनका पैसा मंदिर के अलावा देश के विकास योजनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। करंट टैक्स रूल को देखें तो धर्मार्थ या फिर धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति से होने वाली आय कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त भी होती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: ब्रज में झूलन उत्सव की रौनक, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने 4 स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालु ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। और पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकियां। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से हो जाते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, उसका विधान और सावधानियां भी बताई गई हैं। तो ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा क्या है।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्र, सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। वे देवताओं के भी हैं और असुरों के भी, तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है।
1: देखिए, श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव से अपने कल्याणार्थ कृपा प्राप्त करने का चातुर्मास में से सबसे अच्छा समय कहलाता है। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, रुद्राभिषेक जलाभिषेक आदि कर लेते हैं, तो पूरे श्रावण मास का शुभ फल आप प्राप्त कर लेते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शंकर रुद्र है और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वरहा बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। माना जाता है कि शिव शंकर को जलाभिषेक सबसे अधिक प्रिय है और वो रुद्राभिषेक से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं।
1: शिव कल्याणार्थ है, शिव का अर्थ ही कल्याण देने वाला है। अगर आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकती है। शिव पूजन में उसकी अलग अलग प्रकार की वस्तु या सामग्री से भगवान का अभिषेक करने से भगवान क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं। एक लोटे जल से ही जो आपको वरदान दे दे, वो केवल भगवान शिव ही है। शिव अपने भक्तों में देव है, दानव है, मनुष्य है, कोई भेद नहीं करते। उनसे मांगने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
0: रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक में शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहाँ की नकारात्मकता का अंत होता है।
1: भगवान को अभिषेक बहुत पसंद है। जल, दूध, शहद आदि से जो अभिषेक करता है वो अपने मनोकामना, मन इच्छित वरदान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कंठ में भगवान के हलाहल विष है, नीलकंठ नाम तभी है उनका, तो जो भगवान को जल अर्पण करता है, भगवान को उससे अति आनंद अनुभव होता है और भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद देते हैं, उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
0: रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और खास जानकारियाँ देंगे।
2: कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन की कोई भी तिथि हो, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काट कर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।

0: शिव पुराण में है रुद्राभिषेक का गुणगान।
1: कानन
0: जलधारा के पान से महादेव देंगे वरदान। माना जाता है कि रुद्राभिषेक से न सिर्फ पाप का नाश होता है बल्कि रोग संबंधित बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विशेष कामनाओं के लिए रुद्राभिषेक से जुड़े प्रयोग अमोघ माने जाते हैं। किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। रुद्राभिषेक की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं।
2: देखिए रुद्र अभिषेक में भगवान का जो रुद्राष्टाध्यायी कहलाता है यानी कि भगवान के प्रशंसा के जो मुख्य मंत्र हैं वो भगवान के आगे सम्मुख में कहे जाते हैं। वेद ध्वनि भगवान को अति प्रिय है क्योंकि वेदों को भगवान ने उत्पन्न किया है। साथ में अनवरत रूप से जल और दूध से अभिषेक चलता रहता है तो भगवान को तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं।
0: शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें? मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं।
2: किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराएं क्योंकि रुद्रा अभिषेक करने के लिए जो वेद मंत्र है वो ब्राह्मणों के कंठ में है। यदि ब्राह्मणों के बाद न करें तो केवल ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर मंत्र या नमः शिवाय से आप कर सकते हैं, जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। परंतु विधि विधान पूर्वक सभी प्रकार की सामग्रियों के साथ में, 16 प्रकार की सामग्रियों के साथ में भगवान का अभिषेक करें। साथ में बिल्वार्चन अवश्य करें, साथ में बिल्व पत्र को भगवान के 1008 नामों के साथ उनको अर्पण करें। ऐसा कौन सा सुख है धन संपत्ति विवाह जीवन में रोग मुक्ति जो इस प्रकार से अभिषेक करने से सफल ना हो जाए।
0: कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी, अब ये भी जान लीजिए। रुद्राभिषेक की वस्तुएं और प्रभाव। घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने रुद्राभिषेक कितना मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिवजी का निवास का ध्यान जरूरी करना है, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। महादेव का रुद्राभिषेक किन तिथियों पर करना है और किन तिथियों पर नहीं करना ये सब आपको विस्तार से बताएंगे।
3: शिव ही रुद्र है और मन में कामना कोई भी हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूरी कर देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवादिदेव नहीं दे सकते। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही हैं शिव। उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। महाशिवरात्रि, सावन और प्रदोष की तिथि शिव को प्रसन्न करने और कामना पूर्ति के लिए सबसे मंगलकारी मानी गई है। हर तिथि पर अलग विधान के साथ, अलग पूजन सामग्री के साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिससे अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा, इसलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है तब क्यों रखना चाहिए हमें समय का ध्यान।
1: सबसे पहले अपना ध्यान ना भटकने दे और अपने पवित्रता का ध्यान रखें, शिवमय होके करें। देवो भूता देवो भवेत हम जब कहते हैं तो भगवान के जैसा पहले स्वयं बनना पड़ता है, तब भगवान का पूजन करना चाहिए। तो स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके, त्रिपुंड आदि चंदन या भस्म आदि युक्त होकर फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए, तब उसका सुफल प्राप्त होता है।
0: रुद्राभिषेक में रखें ध्यान, बिना शिव जी का निवास देखे कभी रुद्राभिषेक ना करें, इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना जरूरी है जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा हो। आस्था कहती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। वे कभी माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकार का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। शिववास और रुद्राभिषेक। मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिवजी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे तो शिवजी का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीय व दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। आदिदेव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब नहीं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई हैं। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन तिथियों पर करें अभिषेक।
1: देखिए, सबसे सुंदर तो प्रदोष कहा गया है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी द्वादशी का संयोग या त्रयोदशी में आने वाला ये सुंदर समय है और प्रत्येक दिन में भी, जैसे सोमवार भगवान को अति प्रिय है, प्रदोष काल जब होता है तब करना चाहिए या शिवरात्रि पे करना चाहिए। उस समय तो चार पहर का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
0: शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। तो देखा आपने, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना फलकारी है रुद्राभिषेक। तो आप भी शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं का ध्यान रखते हुए कीजिए देवादिदेव महादेव का श्रृंगार, जिससे त्रिलोकी नाथ की आप पर कृपा बरसेगी अपार। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: बात करते हैं रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये त्योहार 3 दिन बाद देश भर में मनाया जाने वाला है, जिसे देखते हुए बाजार तरह तरह की राखियों से पूरी तरीके से सज चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड और ट्रेंड को देखते हुए बाजार में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है। इनमें कुछ राखी इको फ्रेंडली भी है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार की गई है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी, जरी गोटे वाली राखी, मोती और रुद्राक्ष वाली राखी, फूलों के डिजाइन वाली राखी, स्टोन्स वाली राखी, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी और देवी देवताओं वाली राखियां बाजार में इन दिनों बिक रही हैं। भाई की कलाई पर सजने वाली ये राखी अब सिर्फ धागे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें फैशन, स्टाइल, भावनाओं के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी जुड़ गया है। लिहाजा इस बार बाजार में स्मार्ट राखियां भी देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है।
3: शुरू तो 500 होती है, 500 से लेके 400, तो जो पसंद है बहनों को वो ले सकती है। बच्चों की राखियां, लेडीज राखी चल रही है इस टाइम, लेडीज बहुत लगती है इस तरह की लेडीज।
0: ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए बाजारों में राखियों की कई वैरायटी मौजूद है, जिनकी शुरुआत 10 रुपए से लेकर 300 और 400 रुपए होती है, और कुछ राखियों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में साल राखियों की कीमत काफी बड़ी है। बावजूद इसके भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी में जुटी हैं। चाहे करनाल का बाजार हो या गया का बाजार या फिर देश का कोई और बाजार, राखियों की खरीदारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
4: मुझे नहीं लगता है किसी महंगाई को देख करके बहन को पीछे हट जाना चाहिए, और भाई भी जो होता है वो करता ही करता है। तो एक बहन भांती है किस धागे के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए। तो महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है, इसमें सब चीज़ की क्वालिटी आई है, महंगी भी है सस्ती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो, तो बांधिए, प्यार से खरीदिए, ये प्यार का चीज़ है। भाई बंधन एक प्यार होता है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहन को देखना चाहिए कि महंगाई है महंगाई में। सब तो ऑलरेडी साल में तो अपने लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, फैमिली के लिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो बहन अपने भाई के लिए प्यार से राखी बांधती है और खरीदती है।
5: आप एक मौली भी बांधती हो तो भाई बहन के प्यार में तो कोई असर नहीं होनी चाहिए। आप मौली से भी एक रक्षाबंधन का अपना भाई का प्यार बांध सकते हो, ऐसा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन के प्यार में कोई असर नहीं होगा।
6: इस बार राखी देखिए हर रेंज का है, आप खुदरा में खुदरा बेचने लायक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ज्यादा हम लोग के यहाँ 10, 20 और 30 का मेल ज्यादा रहा, भी सेल रहा। फैंसी उससे ऊपर हम लोग 120 रुपया, 160, 170, 180 वाला उसका सेल नहीं रहा।
0: वही फैंसी और डिजाइनर राखियों के बीच बाजार में इको फ्रेंडली राखियां भी बिक रही हैं, जो गाय के गोबर और लकड़ी से बनी है। खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती हैं। इन राखियों में पारंपरिक कला, रचनात्मकता और स्थानीय हुनर की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। गोबर से बनी इन राखियों की एक खासियत यह भी है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक लोग इन्हें खासा पसंद कर रहे हैं। इस तरह की राखी के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
7: मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूं और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूं और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूं। तो प्लास्टिक से बहुत सारी ऐसे राखियां भी बनती है, तो मैं वो ना बनाकर मैंने इस गाय के गोबर से बहुत सारी ऐसी राखियां बनाई हैं।
8: इस गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है, आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार मिठाई के बगैर अधूरा है, लेकिन त्योहार से ठीक पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मिठाई की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि यूपी के झांसी में मिठाई कारोबार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने रक्षाबंधन तक कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भारत भूषण जोशी और झांसी से प्रमोद गौतम, गुड न्यूज टुडे।
9: आपको दिखा दें ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कोई अपनी अदा से लोगों को दिल जीत रही है लगातार, तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है।
10: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है। लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी हैं। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनके संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वहीं बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है। रिपोर्ट
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: Thank you.
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: ब्रज में झूलन उत्सव की रौनक का मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकियां। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है, और अब लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है, या हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है, कैमरा है, और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही वजह है कि कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला ये कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते हुए वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
13: अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने कई भारतीय गांव की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, और कई जगह चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। इसी कड़ी में अब ये वीडियो भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की गिरफ्त में, घर घर तिरंगा तो देशवासी खुद लहरा लेंगे, लेकिन देश के बॉर्डर पर कौन लहराएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे जो है रोती हुई महिलाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश

0: ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और देखिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का लग रहा है। इसे गौर से देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कब्जे का वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सैनिकों ने इलाके पर कब्जा किया होता तो लोग रोते नहीं बल्कि उनके चेहरे पर भय देखने को मिलता, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता। लेकिन पूरी वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वर्दीधारियों के जाने की वजह से लोग यहां पर रो रहे हैं। साथ में वीडियो के बैकग्राउंड में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाओं से अलग नजर आती हैं। और इसके अलावा वीडियो में हमारी नजर जीप में बैठे वर्दी पहने लोगों की ड्रेस के लोगों पर भी गई, और जब हमने इसे जूम करके देखा और गौर से देखा तो ये सामने निकल कर आया कि इस तरह का लोगो इस्तेमाल जो है मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी करते हैं। जी हां, साल 1990 में इस संगठन ने मणिपुर पीपल्स आर्मी नाम से अपनी सशस्त्र विंग बनाई थी। यह संगठन जो है लंबे समय तक सुरक्षा बलों के खिलाफ संघर्ष में शामिल रहा है और भारत सरकार ने बैन कर दिया था। 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ यूएनएलएफ के पैम्बी गुट ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, और इस समझौते के बाद संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर हथियार डाले और लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो गए। ये शांति समझौता अभी भी लागू है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। भारत सरकार और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को सिरे से खारिज किया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक फेसबुक यूजर के वॉल पर पहुंचे, जहां 30 जून 2026 को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। मणिपुर के इम्फाल स्थित एक स्थानीय न्यूज पोर्टल के फेसबुक पेज पर भी 30 जून 2026 को वायरल वीडियो पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। मणिपुर की एक वेबसाइट पर 30 जून 2026 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नोंगशुम इलाके के आसपास के गांवों के लोगों ने यूएनएलएफ के नोंगशुम कैंप को नम आंखों से विदाई दी। यह कदम लंबी बातचीत और इस आश्वासन के बाद उठाया गया कि 10वीं इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान तुरंत कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उसके जाने के बाद 10वीं आईआरबी के जवानों ने नोंगशुम कैंप पहुंचकर उनकी जगह ले ली। सत्ताईस जून 2026 को पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएलएफ के पाम्बेई के नेतृत्व वाले गुट ने नवंबर 2023 में केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता किया था। हाल ही में 19 जून को भारत सरकार के प्रतिनिधियों और यूएनएलएफ नेताओं के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। इस दौरान एक तय प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे के तहत कैंप को दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो को लेकर झूठा दावा किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। वीडियो का अरुणाचल प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।

देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी करते हुए मारपीट की। वायरल हो रहे वीडियो का जब सब फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को सजा देने की अपील की जा रही है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाराबंकी के शहर में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार किया गया। कई लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनकी दाढ़ी को खींचा। इंसान चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज्जत सबकी बराबर होती है। मेरे शासन और प्रशासन से यही अपील है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा मिले। धर्म चाहे कोई भी हो, सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग शख्स को पीट रहे हैं। एक शख्स बुजुर्ग की दाढ़ी को भी खींचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का है, जहां पर मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो जो है इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने उसे ध्यान से सुना तो यह सामने निकल कर आया कि यह बांग्ला है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बांग्ला नहीं बोली जाती। ऐसे में हमने वीडियो के दावे पर हमको शक हुआ, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असली वीडियो बांग्लादेशी मीडिया चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। इसे 7 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो के साथ बताया गया था कि यह शख्स जैनल ओबेदीन है, जो चोर जुबली यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और सुबर नाचर उपजिला अवामी लीग के पूर्व महासचिव हनीफ चौधरी का छोटा भाई है। जुबली लीग के नेता जैनल ओबेदीन को बांग्लादेश के नोआखली में स्थानीय लोगों ने नशीले पदार्थों के साथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान ये वीडियो हमें एक और फेसबुक अकाउंट पर भी मिला। इसे 8 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। वीडियो के साथ ये जानकारी दी गई थी कि नोआखाली के सुबर्नाचर उपजिला अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी और सुबर्नाचर उपजिला की चार जुबली यूनियन के पूर्व चेयरमैन के छोटे भाई जैनल ओबेदीन पर मादक पदार्थ रखने के आरोप में जमात बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, फिर उन्हें बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच के दौरान हमें बांग्लादेश के एक यूट्यूब चैनल पर भी एक खबर मिली। इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी देखने को मिला। वीडियो में सबको बांग्ला भाषा में बोलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बताया गया था कि नोआखाली के सुबर्नाचर उपजिला के सुबर्नाचर क्लार्क यूनियन में पूर्व यूनियन परिषद चेयरमैन और अवामी लीग नेता हनीफ चौधरी के भाई जैनुल ओबेदीन को स्थानीय लोगों ने नशीली दवा के साथ पकड़ा। ये सारा हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो बांग्लादेश का है।
1: इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्ची का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता, कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश कि सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।
5: And I told my mama not to keep me anything. When I reached Indore to catch my bus to Delhi, my mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas. Because she knows that I can't have anything without namkeen.
4: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे। वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इंदर में एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। वैसे आस्था के साथ चढ़ावे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति भाव से दिया गया चढ़ावा लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले प्रमुख मंदिर भी आस्था के इस भाव से अब अछूते नहीं है। वहां भी चढ़ावे के रूप में भी बड़ी धनराशि अर्पित की जा रही है। सिर्फ 3 वर्षों में मंदिरों को 419 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा हासिल हुआ है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, निःशुल्क लंगर के अलावा दूसरे सामाजिक कार्यों में किया जाता है।

0: वैसे तो दोनों का कनेक्शन नहीं, लेकिन मंदिरों में आस्था के साथ चढ़ावा भी बढ़ता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किए जाने वाला चढ़ावा केवल धन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक भी हो जाता है। देवभूमि हिमाचल में छोटे बड़े 2000 से ज्यादा मंदिर है। इनमें श्री ज्वालामुखी, माता चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, नैना देवी और चामुंडा देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठ भी शामिल है, जो आस्था के साथ चमत्कार के भी प्रतीक है। अक्सर किसी मनोकामना के पूरी होने पर भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था से चढ़ावा अर्पण करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हिमाचल के मशहूर मंदिरों को भी लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के तौर पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले 36 प्रमुख मंदिर हैं, जिनको पिछले 3 साल में श्रद्धालुओं की तरफ से कुल 4 अरब 20 करोड़ यानी 420 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं।
1: हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है।
0: आस्था और चढ़ावा आपस में कैसे गहराई तक जुड़े हैं, इसका प्रमाण बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध मंदिर में मिलता है, जो चढ़ावे के मामले में पहले स्थान पर रहा। मंदिर को चढ़ावे के तौर पर 99.19 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद नैना देवी मंदिर को 86.94 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं। फिर बारी आती है माँ ज्वालामुखी मंदिर की, जिसे 36.57 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। वहीं त्रिलोकपुर स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 26.99 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर आए हैं। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 13.76 करोड़ रुपए श्रद्धालुओं ने भेंट स्वरूप चढ़ाया। वहीं चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर और आदि हिमानी समूह में 11.68 करोड़ रुपए मिले हैं। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में 8.82 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। 8.82 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से भी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के तहत मंदिरों में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए।
0: धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए चढ़ावे को लेकर कुछ नियम भी बने हुए हैं। जिन मंदिरों का संचालन सरकार के हाथ में होता है, उनका पैसा मंदिर के अलावा देश के विकास योजनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। करंट टैक्स रूल को देखें तो धर्मार्थ या फिर धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति से होने वाली आय कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त भी होती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: ब्रज में झूला उत्सव की रौनक का मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला। सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी। महाकाल ने 4 स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकिया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से हो जाते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, उसका विधान और सावधानियां भी बताई गई हैं। तो ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा क्या है।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। वे देवताओं के भी हैं और असुरों के भी, तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है।
1: देखिए, श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव से अपने कल्याणार्थ कृपा प्राप्त करने का चातुर्मास में से सबसे अच्छा समय कहलाता है। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, रुद्राभिषेक जलाभिषेक आदि कर लेते हैं, तो पूरे श्रावण मास का शुभ फल आप प्राप्त कर लेते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शंकर रुद्र है और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वरहा बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। माना जाता है कि शिव शंकर को जलाभिषेक सबसे अधिक प्रिय है और वो रुद्राभिषेक से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं।
1: शिव कल्याणार्थ है, शिव का अर्थ ही कल्याण देने वाला है। अगर आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकती है। शिव पूजन में उसकी अलग अलग प्रकार की वस्तु या सामग्री से भगवान का अभिषेक करने से भगवान क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं। एक लोटे जल से ही जो आपको वरदान दे दे, वो केवल भगवान शिव ही है। शिव अपने भक्तों में देव है, दानव है, मनुष्य है, कोई भेद नहीं करते। उनसे मांगने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
0: रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है, इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक में शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहाँ की नकारात्मकता का अंत होता है।
1: भगवान को अभिषेक बहुत पसंद है, जल दूध शहद आदि से जो अभिषेक करता है वो अपने मनोकामना मन इच्छित वरदान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कंठ में भगवान के हलाहल विष है, नीलकंठ नाम तभी है उनका, तो जो भगवान को जल अर्पण करता है भगवान को उससे अति आनंद अनुभव होता है और भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद देते हैं, उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
0: रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द है। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और खास जानकारियाँ देंगे। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन की कोई भी तिथि हो, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काट कर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।

0: शिव पुराण में है रुद्राभिषेक का गुणगान।
1: कानन
0: जलधारा के पान से महादेव देंगे वरदान। माना जाता है कि रुद्राभिषेक से न सिर्फ पाप का नाश होता है बल्कि रोग संबंधित बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विशेष कामनाओं के लिए रुद्राभिषेक से जुड़े प्रयोग अमोघ माने जाते हैं। किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। रुद्राभिषेक की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं।
2: देखिए रुद्र अभिषेक में भगवान का जो रुद्राष्टाध्यायी कहलाता है यानी कि भगवान के प्रशंसा के जो मुख्य मंत्र हैं, वो भगवान के आगे सम्मुख में कहे जाते हैं। वेद ध्वनि भगवान को अति प्रिय है क्योंकि वेदों को भगवान ने उत्पन्न किया है। साथ में अनवरत रूप से जल और दूध से अभिषेक चलता रहता है तो भगवान को तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं।
0: शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें? मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं।
2: किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराएं क्योंकि रुद्रा अभिषेक करने के लिए जो वेद मंत्र है वो ब्राह्मणों के कंठ में है। यदि ब्राह्मणों के बाद न करें तो केवल ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर मंत्र या नमः शिवाय से आप कर सकते हैं, जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। परंतु विधि विधान पूर्वक सभी प्रकार की सामग्रियों के साथ में, 16 प्रकार की सामग्रियों के साथ में भगवान का अभिषेक करें। साथ में बिल्वार्चन अवश्य करें, साथ में बिल्व पत्र को भगवान के 1008 नामों के साथ उनको अर्पण करें। ऐसा कौन सा सुख है धन संपत्ति विवाह जीवन में रोग मुक्ति जो इस प्रकार से अभिषेक करने से सफल ना हो जाए।
0: कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी, अब ये भी जान लीजिए। रुद्राभिषेक की वस्तुएं और प्रभाव। घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने रुद्राभिषेक कितना मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिवजी का निवास का ध्यान जरूरी करना है, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। महादेव का रुद्राभिषेक किन तिथियों पर करना है और किन तिथियों पर नहीं करना, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे।
3: शिव ही रुद्र हैं और मन में कामना कोई भी हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूरी कर देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवादि देव नहीं दे सकते। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही है शिव, उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। महाशिवरात्रि, सावन और प्रदोष की तिथि शिव को प्रसन्न करने और कामना पूर्ति के लिए सबसे मंगलकारी मानी गई है। हर तिथि पर अलग विधान के साथ, अलग पूजन सामग्री के साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिससे अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा, इसलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है तब क्यों रखना चाहिए हमें समय का ध्यान।
1: सबसे पहले अपना ध्यान ना भटकने दे और अपने पवित्रता का ध्यान रखें, शिवमय होके करें। देवो भूता देवो भवेत हम जब कहते हैं तो भगवान के जैसा पहले स्वयं बनना पड़ता है, तब भगवान का पूजन करना चाहिए। तो स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके, त्रिपुंड आदि चंदन या भस्म आदि युक्त होकर फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए, तब उसका सुफल प्राप्त होता है।
0: रुद्राभिषेक में रखें ध्यान, बिना शिव जी का निवास देखे कभी रुद्राभिषेक ना करें, इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना जरूरी है जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा हो। आस्था कहती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वे कभी माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकार का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। शिववास और रुद्राभिषेक, मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिवजी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे तो शिवजी का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीय व दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। आदिदेव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब नहीं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई हैं। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन तिथियों पर करें अभिषेक।
1: देखिए, सबसे सुंदर तो प्रदोष कहा गया है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी द्वादशी का संयोग या त्रयोदशी में आने वाला ये सुंदर समय है और प्रत्येक दिन में भी, जैसे सोमवार भगवान को अति प्रिय है, प्रदोष काल जब होता है तब करना चाहिए या शिवरात्रि पे करना चाहिए। उस समय तो चार पहर का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
0: शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। तो देखा आपने, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना फलकारी है रुद्राभिषेक। तो आप भी शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं का ध्यान रखते हुए कीजिए देवादिदेव महादेव का श्रृंगार, जिससे त्रिलोकीनाथ की आप पर कृपा बरसेगी अपार। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बात करते हैं रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये त्योहार 3 दिन बाद देश भर में मनाया जाने वाला है, जिसे देखते हुए बाजार तरह तरह की राखियों से पूरी तरीके से सज चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड और ट्रेंड को देखते हुए बाजार में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है। इनमें कुछ राखी इको फ्रेंडली भी है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार की गई है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी, जरी गोटे वाली राखी, मोती और रुद्राक्ष वाली राखी, फूलों के डिजाइन वाली राखी, स्टोन्स वाली राखी, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी और देवी देवताओं वाली राखियां बाजार में इन दिनों बिक रही हैं। भाई की कलाई पर सजने वाली ये राखी अब सिर्फ धागे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें फैशन, स्टाइल, भावनाओं के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी जुड़ गया है। लिहाजा इस बार बाजार में स्मार्ट राखियां भी देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़की के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है।
3: शुरू तो 500 होती है, 500 से लेके 400, तो जो पसंद है बहनों को वो ले सकती है। बच्चों की राखियां, लेडीज राखी चल रही है इस टाइम, लेडीज राखी बहुत लगती है। लेडीज
0: ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए बाजारों में राखियों की कई वैरायटी मौजूद है, जिनकी शुरुआत 10 रुपए से लेकर 300 और 400 रुपए होती है, और कुछ राखियों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल राखियों की कीमत काफी बड़ी है। बावजूद इसके भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी में जुटी हैं। चाहे करनाल का बाजार हो या गया का बाजार या फिर देश का कोई और बाजार, राखियों की खरीदारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
4: मुझे नहीं लगता है कि इसमें महंगाई को देख करके बहन को पीछे हट जाना चाहिए, और भाई भी जो होता है वो करता ही करता है। तो एक बहन भांति है किस धागे के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए। तो महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है, इसमें सब चीज़ की क्वालिटी आई है, महंगी भी है सस्ती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो, तो बांधिए, प्यार से खरीदिए, ये प्यार का चीज़ है। भाई बंधन एक प्यार होता है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहन को देखना चाहिए कि महंगाई है महंगाई में। सब तो ऑलरेडी साल में तो अपने लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, फैमिली के लिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो बहन अपने भाई के लिए प्यार से राखी बांधती है और खरीदती है।
5: आप एक मोली भी बांधती हो तो भाई बहन के प्यार में तो कोई असर नहीं होनी चाहिए। आप मोली से भी एक रक्षाबंधन का अपना भाई का प्यार बांध सकते हो, ऐसा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन के प्यार में कोई असर नहीं होगा।
6: इस बार राखी देखिए हर रेंज का है, आप खुदरा में खुदरा बेचने लायक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ज़्यादा हम लोग के यहाँ 10, 20 और 30 का मेल ज़्यादा रहा, बिग सेल रहा। फैंसी उससे ऊपर हम लोग 120 रुपये, 160, 170, 180 वाला उसका सेल नहीं रहा।
0: वही फैंसी और डिजाइनर राखियों के बीच बाजार में इको फ्रेंडली राखियाँ भी बिक रही हैं, जो गाय के गोबर और लकड़ी से बनी है। खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती हैं। इन राखियों में पारंपरिक कला, रचनात्मकता और स्थानीय हुनर की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। गोबर से बनी इन राखियों की एक खासियत यह भी है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक लोग इन्हें खासा पसंद कर रहे हैं। इस तरह की राखी के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
7: मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूं और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूं और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूं। तो प्लास्टिक से बहुत सारी ऐसे राखियां भी बनती है, तो मैं वो ना बनाकर मैंने इस गाय के गोबर से बहुत सारी ऐसी राखियां बनाई हैं।
8: इस गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है, आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार मिठाई के बगैर अधूरा है, लेकिन त्योहार से ठीक पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मिठाई की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि यूपी के झांसी में मिठाई कारोबार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने रक्षाबंधन तक कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भारत भूषण जोशी और झांसी से प्रमोद गौतम, गुड न्यूज टुडे।
9: आपको दिखा दें ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कोई अपनी अदा से लोगों को दिल जीत रही है लगातार, तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है।
10: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है। लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी है। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनके संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वही बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: ब्रज में झूला उत्सव की रौनक का मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकिया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है, और अब लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। या हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है, कैमरा है, और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही वजह है कि कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला ये कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
9: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते हुए वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
14: अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने कई भारतीय गांव की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, और कई जगह चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। इसी कड़ी में अब ये वीडियो भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की गिरफ्त में, घर घर तिरंगा तो देशवासी खुद लहरा लेंगे, लेकिन देश के बॉर्डर पर कौन लहराएगा? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे जो है रोती हुई महिलाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो

0: पहाड़ी इलाके का लग रहा है। इसे गौर से देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कब्जे का वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सैनिकों ने इलाके पर कब्जा किया होता तो लोग रोते नहीं बल्कि उनके चेहरे पर भय देखने को मिलता, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता। लेकिन पूरे वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वर्दीधारियों के जाने की वजह से लोग यहां पर रो रहे हैं। साथ में वीडियो के बैकग्राउंड में जो आवाजें सुनाई दे रही वो अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाओं से अलग नजर आती हैं। और इसके अलावा वीडियो में हमारी नजर जीप में बैठे वर्दी पहने लोगों की ड्रेस के लोगों पर भी गई, और जब हमने इसे जूम करके देखा और गौर से देखा तो ये सामने निकल कर आया कि इस तरह का लोगो इस्तेमाल जो है मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी करते हैं। जी हाँ, साल 1990 में इस संगठन ने मणिपुर पीपल्स आर्मी नाम से अपनी सशस्त्र विंग बनाई थी। ये संगठन जो है लंबे समय तक सुरक्षा बलों के खिलाफ संघर्ष में शामिल रहा है और भारत सरकार ने बैन कर दिया था। 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ UNLF के पैम्बी गुट ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, और इस समझौते के बाद संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर हथियार डाले और लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से समाज की मुख्यधारा में वो शामिल हो गए। ये शांति समझौता अभी भी लागू है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। भारत सरकार और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को सिरे से खारिज किया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम एक फेसबुक यूजर के वॉल पर पहुंचे, जहां 30 जून 2026 को पोस्ट किया गया वीडियो मिला। मणिपुर के इम्फाल स्थित एक स्थानीय न्यूज पोर्टल के फेसबुक पेज पर भी 30 जून 2026 को वायरल वीडियो पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। मणिपुर की एक वेबसाइट पर 30 जून 2026 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नोंगशुम इलाके के आसपास के गांवों के लोगों ने UNLF के नोंगशुम कैंप को नम आंखों से विदाई दी। यह कदम लंबी बातचीत और इस आश्वासन के बाद उठाया गया कि 10वीं इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान तुरंत कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उसके जाने के बाद 10वीं IRB के जवानों ने नोंगशुम कैंप पहुंचकर उनकी जगह ले ली। सत्ताईस जून 2026 को पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक UNLF के पाम्बेई के नेतृत्व वाले गुट ने नवंबर 2023 में केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता किया था। हाल ही में 19 जून को भारत सरकार के प्रतिनिधियों और UNLF नेताओं के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। इस दौरान एक तय प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे के तहत कैंप को दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। साफ है, वायरल हो रहे वीडियो को लेकर झूठा दावा किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो मणिपुर के नोंगशुम इलाके में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नोंगशुम कैंप छोड़ने के दौरान का है। वीडियो का अरुणाचल प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी करते हुए मारपीट की। वायरल हो रहे वीडियो का जब सब फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ

0: वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को सजा देने की अपील की जा रही है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाराबंकी के शहर में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार किया गया। कई लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनकी दाढ़ी को खींचा। इंसान चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज्जत सबकी बराबर होती है। मेरे शासन और प्रशासन से यही अपील है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा मिले। धर्म चाहे कोई भी हो, सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग शख्स को पीट रहे हैं, एक शख्स बुजुर्ग की दाढ़ी को भी खींचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का है, जहां पर मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो जो है इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने उसे ध्यान से सुना तो यह सामने निकल कर आया कि यह बांग्ला है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बांग्ला नहीं बोली जाती। ऐसे में हमने वीडियो के दावे पर हमको शक हुआ, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असली वीडियो बांग्लादेशी मीडिया चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। इसे 7 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो के साथ बताया गया था कि यह शख्स जैनल ओबेदीन है, जो चोर जुबली यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के पूर्व महासचिव हनीफ चौधरी का छोटा भाई है। जुबली लीग के नेता जैनल ओबेदीन को बांग्लादेश के नोआखली में स्थानीय लोगों ने नशीले पदार्थों के साथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान ये वीडियो हमें एक और फेसबुक अकाउंट पर भी मिला। इसे 8 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। वीडियो के साथ ये जानकारी दी गई थी कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी और सुबरनाचर उपजिला की चार जुबली यूनियन के पूर्व चेयरमैन के छोटे भाई जैनल ओबिद्दीन पर मादक पदार्थ रखने के आरोप में जमात बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, फिर उन्हें बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच के दौरान हमें बांग्लादेश के एक यूट्यूब चैनल पर भी एक खबर मिली। इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी देखने को मिला। वीडियो में सबको बांग्ला भाषा में बोलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बताया गया था कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला के सुबरनाचर क्लार्क यूनियन में पूर्व यूनियन परिषद चेयरमैन और अवामी लीग नेता हनीफ चौधरी के भाई जैनुल ओबेदीन को स्थानीय लोगों ने नशीली दवा के साथ पकड़ा। ये सारा हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो बांग्लादेश का है।
1: इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठा कर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चे का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। न कोई दिखावा, न कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।
5: And I told my mama not to keep me anything. When I reached Indore to catch my bus to Delhi, my mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas. Because she knows that I can't have anything without namkeen.
4: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे। वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीखों के पुल बांध रहे हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। वैसे आस्था के साथ चढ़ावे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति भाव से दिया गया चढ़ावा लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले प्रमुख मंदिर भी आस्था के इस भाव से अब अछूते नहीं है। वहां भी चढ़ावे के रूप में भी बड़ी धनराशि अर्पित की जा रही है। सिर्फ 3 वर्षों में मंदिरों को 419 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा हासिल हुआ है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, निशुल्क लंगर के अलावा दूसरे सामाजिक कार्यों में किया जाता है।

0: वैसे तो दोनों का कनेक्शन नहीं, लेकिन मंदिरों में आस्था के साथ चढ़ावा भी बढ़ता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किए जाने वाला चढ़ावा केवल धन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक भी हो जाता है। देवभूमि हिमाचल में छोटे बड़े 2000 से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें श्री ज्वालामुखी, माता चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, नैना देवी और चामुंडा देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठ भी शामिल है, जो आस्था के साथ चमत्कार के भी प्रतीक है। अक्सर किसी मनोकामना के पूरी होने पर भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था से चढ़ावा अर्पण करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हिमाचल के मशहूर मंदिरों को भी लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के तौर पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले 36 प्रमुख मंदिर हैं, जिनको पिछले 3 साल में श्रद्धालुओं की तरफ से कुल 4 अरब 20 करोड़ यानी 420 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं।
1: हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है।
0: आस्था और चढ़ावा आपस में कैसे गहराई तक जुड़े हैं, इसका प्रमाण बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध मंदिर में मिलता है, जो चढ़ावे के मामले में पहले स्थान पर रहा। मंदिर को चढ़ावे के तौर पर 99.19 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद नैना देवी मंदिर को 86.94 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं। फिर बारी आती है माँ ज्वालामुखी मंदिर की, जिसे 36.57 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। वहीं त्रिलोकपुर स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 26.99 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर आए हैं। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 13.76 करोड़ रुपए श्रद्धालुओं ने भेंट स्वरूप चढ़ाया। वहीं चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर और आदि हिमानी समूह में 11.68 करोड़ रुपए मिले हैं। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में 8.82 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। मंदिर के प्रति जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, वैसे वैसे मंदिरों में आने वाला चढ़ावा भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावे के रखरखाव, गिनती और निगरानी को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से भी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के तहत मंदिरों में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए।
0: धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए चढ़ावे को लेकर कुछ नियम भी बने हुए हैं। जिन मंदिरों का संचालन सरकार के हाथ में होता है, उनका पैसा मंदिर के अलावा देश के विकास योजनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। करंट टैक्स रूल को देखें तो धर्मार्थ या फिर धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति से होने वाली आय कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त भी होती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
4: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी ना
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: ब्रज में झूला उत्सव की रौनक। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने 4 स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगर मालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकिया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से हो जाते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, उसका विधान और सावधानियां भी बताई गई हैं। तो ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा क्या है।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। वे देवताओं के भी हैं और असुरों के भी, तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है।
1: देखिए, श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव से अपने कल्याणार्थ कृपा प्राप्त करने का चातुर्मास में से सबसे अच्छा समय कहलाता है। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, रुद्राभिषेक जलाभिषेक आदि कर लेते हैं, तो पूरे श्रावण मास का शुभ फल आप प्राप्त कर लेते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शंकर रुद्र है और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। माना जाता है कि शिव शंकर को जलाभिषेक सबसे अधिक प्रिय है और वो रुद्राभिषेक से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं।
1: शिव कल्याणार्थ है, शिव का अर्थ ही कल्याण देने वाला है। अगर आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकती है। शिव पूजन में उसकी अलग अलग प्रकार की वस्तु या सामग्री से भगवान का अभिषेक करने से भगवान क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं। एक लोटे जल से ही जो आपको वरदान दे दे, वो केवल भगवान शिव ही है। शिव अपने भक्तों में देव है, दानव है, मनुष्य है, कोई भेद नहीं करते। उनसे मांगने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
0: रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है, इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक में शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहाँ की नकारात्मकता का अंत होता है।
1: भगवान को अभिषेक बहुत पसंद है, तो जल दूध शहद आदि से जो अभिषेक करता है वो अपने मनोकामना मन इच्छित वरदान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कंठ में भगवान के हलाहल विष है, नीलकंठ नाम तभी है उनका, तो जो भगवान को जल अर्पण करता है भगवान को उससे अति आनंद अनुभव होता है और भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद देते हैं, उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
0: रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और खास जानकारियाँ देंगे। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन की कोई भी तिथि हो, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काट कर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।

0: शिव पुराण में है रुद्राभिषेक का गुणगान। जलधारा के पान से महादेव देंगे वरदान। माना जाता है कि रुद्राभिषेक से न सिर्फ पाप का नाश होता है बल्कि रोग संबंधित बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विशेष कामनाओं के लिए रुद्राभिषेक से जुड़े प्रयोग अमोघ माने जाते हैं। किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। रुद्राभिषेक की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं।
1: देखिए रुद्र अभिषेक में भगवान का जो रुद्राष्टाध्यायी कहलाता है यानी कि भगवान के प्रशंसा के जो मुख्य मंत्र हैं वो भगवान के आगे सम्मुख में कहे जाते हैं। वेद ध्वनि भगवान को अति प्रिय है क्योंकि वेदों को भगवान ने उत्पन्न किया है। साथ में अनवरत रूप से जल और दूध से अभिषेक चलता रहता है तो भगवान को तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं।
0: शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें? मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं।
1: किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराएं क्योंकि रुद्रा अभिषेक करने के लिए जो वेद मंत्र है वो ब्राह्मणों के कंठ में है। यदि ब्राह्मणों के बाद न करें तो केवल ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर मंत्र या नमः शिवाय से आप कर सकते हैं, जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। परंतु विधि विधान पूर्वक सभी प्रकार की सामग्रियों के साथ में, 16 प्रकार की सामग्रियों के साथ में भगवान का अभिषेक करें। साथ में बिल्वार्चन अवश्य करें, साथ में बिल्व पत्र को भगवान के 1008 नामों के साथ उनको अर्पण करें। ऐसा कौन सा सुख है धन संपत्ति विवाह जीवन में रोग मुक्ति जो इस प्रकार से अभिषेक करने से सफल ना हो जाए।
0: कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी, अब ये भी जान लीजिए। रुद्राभिषेक की वस्तुएं और प्रभाव। घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने रुद्राभिषेक कितना मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिवजी का निवास का ध्यान जरूरी करना है, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। महादेव का रुद्राभिषेक किन तिथियों पर करना है और किन तिथियों पर नहीं करना, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे।
2: शिव ही रुद्र हैं और मन में कामना कोई भी हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूरी कर देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवादि देव नहीं दे सकते। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही है शिव, उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। महाशिवरात्रि, सावन और प्रदोष की तिथि शिव को प्रसन्न करने और कामना पूर्ति के लिए सबसे मंगलकारी मानी गई है। हर तिथि पर अलग विधान के साथ, अलग पूजन सामग्री के साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिससे अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा, इसलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है तब क्यों रखना चाहिए हमें समय का ध्यान।
1: सबसे पहले अपना ध्यान न भटकने दे और अपने पवित्रता का ध्यान रखें, शिवमय होके करें। देवो भूता देवो भवेत हम जब कहते हैं तो भगवान के जैसा पहले स्वयं बनना पड़ता है, तब भगवान का पूजन करना चाहिए। तो स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके, त्रिपुंड आदि चंदन या भस्म आदि युक्त होकर फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए, तब उसका सुफल प्राप्त होता है।
0: रुद्राभिषेक में रखें ध्यान, बिना शिव जी का निवास देखे कभी रुद्राभिषेक ना करें, इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना जरूरी है जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा हो। आस्था कहती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वे कभी माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकार का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। शिववास और रुद्राभिषेक, मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिवजी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे तो शिवजी का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीय व दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। आदिदेव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब नहीं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई हैं। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन तिथियों पर करें अभिषेक।
1: देखिए, सबसे सुंदर तो प्रदोष कहा गया है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी द्वादशी का संयोग या त्रयोदशी में आने वाला ये सुंदर समय है और प्रत्येक दिन में भी, जैसे सोमवार भगवान को अति प्रिय है, प्रदोष काल जब होता है तब करना चाहिए या शिवरात्रि पे करना चाहिए। उस समय तो चार पहर का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
0: शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। तो देखा आपने, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना फलकारी है रुद्राभिषेक। तो आप भी शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं का ध्यान रखते हुए कीजिए देवादिदेव महादेव का श्रृंगार, जिससे त्रिलोकी नाथ की आप पर कृपा बरसेगी अपार। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: बात करते हैं रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये त्योहार 3 दिन बाद देश भर में मनाया जाने वाला है, जिसे देखते हुए बाजार तरह तरह की राखियों से पूरी तरीके सज चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड और ट्रेंड को देखते हुए बाजार में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है। इनमें कुछ राखी इको फ्रेंडली भी है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार की गई है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी, जरी गोटे वाली राखी, मोती और रुद्राक्ष वाली राखी, फूलों के डिजाइन वाली राखी, स्टोन्स वाली राखी, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी और देवी देवताओं वाली राखियाँ बाजार में इन दिनों बिक रही हैं। भाई की कलाई पर सजने वाली ये राखी अब सिर्फ धागे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें फैशन, स्टाइल, भावनाओं के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी जुड़ गया है। लिहाजा इस बार बाजार में स्मार्ट राखियाँ भी देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियाँ आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफेक्ट बच्चों की भी राखियाँ बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियाँ हैं।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहने आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है।
3: शुरू तो 500 होती है, 500 से लेके 400, तो जो पसंद है बहनों को वो ले सकती है। बच्चों की राखियां, लेडीज राखी चल रही है इस टाइम, लेडीज राखी बहुत लगती है इस तरह की। लेडीज
0: ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए बाजारों में राखियों की कई वैरायटी मौजूद है, जिनकी शुरुआत 10 रुपए से लेकर 300 और 400 रुपए होती है, और कुछ राखियों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल राखियों की कीमत काफी बड़ी है। बावजूद इसके भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी में जुटी हैं। चाहे करनाल का बाजार हो या गया का बाजार या फिर देश का कोई और बाजार, राखियों की खरीदारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
4: मुझे नहीं लगता है कि इसमें महंगाई को देख करके बहन को पीछे हट जाना चाहिए, और भाई भी जो होता है वो करता ही करता है। तो एक बहन भांति है किस धागे के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए। तो महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है, इसमें सब चीज़ की क्वालिटी आई है, महंगी भी है सस्ती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो, तो बांधिए, प्यार से खरीदिए, ये प्यार का चीज़ है। भाई बंधन एक प्यार होता है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहन को देखना चाहिए कि महंगाई है महंगाई में। सब तो ऑलरेडी साल में तो अपने लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, फैमिली के लिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो बहन अपने भाई के लिए प्यार से राखी बांधती है और खरीदती है।
5: आप एक मोली भी बांधती हो तो भाई बहन के प्यार में तो कोई असर नहीं होनी चाहिए। आप मोली से भी एक रक्षाबंधन का अपना भाई का प्यार बांध सकते हो, ऐसा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन के प्यार में कोई असर नहीं होगा।
6: इस बार राखी देखिए हर रेंज का है, आप खुदरा बेचने लायक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ज्यादा हम लोग के यहाँ 10, 20 और 30 का मेल ज्यादा रहा, 20 सेल रहा। फैंसी उससे ऊपर हम लोग 120 रुपया, 160, 170, 180 वाला उसका सेल नहीं रहा।
0: वही फैंसी और डिजाइनर राखियों के बीच बाजार में इको फ्रेंडली राखियां भी बिक रही हैं, जो गाय के गोबर और लकड़ी से बनी है। खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती हैं। इन राखियों में पारंपरिक कला, रचनात्मकता और स्थानीय हुनर की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। गोबर से बनी इन राखियों की एक खासियत यह भी है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक लोग इन्हें खासा पसंद कर रहे हैं। इस तरह की राखी के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
7: मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूं और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूं और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूं। तो प्लास्टिक से बहुत सारी ऐसे राखियां भी बनती है, तो मैं वो ना बनाकर मैंने इस गाय के गोबर से बहुत सारी ऐसी राखियां बनाई हैं।
8: इस गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है, आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार मिठाई के बगैर अधूरा है, लेकिन त्योहार से ठीक पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मिठाई की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि यूपी के झांसी में मिठाई कारोबार से जुड़े कुछ व्यापारियों ने रक्षाबंधन तक कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भारत भूषण जोशी और झांसी से प्रमोद गौतम। गुड न्यूज टुडे।
9: आपको दिखा दें ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कोई अपनी अदा से लोगों को दिल जीत रही है लगातार, तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है।
10: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है। लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी है। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनकी संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वही बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ब्रज में झूला उत्सव की रौनक, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने चार स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकिया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है, और अब लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। या हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है, कैमरा है, और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही वजह है कि कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला ये कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते हुए वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने कई भारतीय गांवों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, और कई जगह चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। इसी कड़ी में अब ये वीडियो भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे रोती हुई महिलाओं को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की गिरफ्त में, घर घर तिरंगा तो देशवासी खुद लहरा लेंगे, लेकिन देश के बॉर्डर पर कौन लहराएगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी में जाते वर्दी पहने हुए लोगों के पीछे जो है रोती हुई महिलाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और देखिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हर की फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। वीडियो

0: वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को सजा देने की अपील की जा रही है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाराबंकी के शहर में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार किया गया। कई लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनकी दाढ़ी को खींचा। इंसान चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज्जत सबकी बराबर होती है। मेरे शासन और प्रशासन से यही अपील है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा मिले। धर्म चाहे कोई भी हो, सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग शख्स को पीट रहे हैं। एक शख्स बुजुर्ग की दाढ़ी को भी खींचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का है, जहां पर मुस्लिम होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीटा गया। लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो जो है मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने उसे ध्यान से सुना तो यह सामने निकल कर आया कि यह बांग्ला है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बांग्ला नहीं बोली जाती। ऐसे में हमने वीडियो के दावे पर हमको शक हुआ, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असली वीडियो बांग्लादेशी मीडिया चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। इसे 7 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो के साथ बताया गया था कि यह शख्स जैनल ओबेदीन है, जो चोर जुबली यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के पूर्व महासचिव हनीफ चौधरी का छोटा भाई है। जुबली लीग के नेता जैनल ओबेदीन को बांग्लादेश के नोआखली में स्थानीय लोगों ने नशीले पदार्थों के साथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान ये वीडियो हमें एक और फेसबुक अकाउंट पर भी मिला। इसे 8 अगस्त 2026 को पोस्ट किया गया था। वीडियो के साथ ये जानकारी दी गई थी कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी और सुबरनाचर उपजिला की चार जुबली यूनियन के पूर्व चेयरमैन के छोटे भाई जैनल ओबेदीन पर मादक पदार्थ रखने के आरोप में जमात बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, फिर उन्हें बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच के दौरान हमें बांग्लादेश के एक यूट्यूब चैनल पर भी एक खबर मिली। इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी देखने को मिला। वीडियो में सबको बांग्ला भाषा में बोलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बताया गया था कि नोआखाली के सुबरनाचर उपजिला के सुबरनाचर क्लार्क यूनियन में पूर्व यूनियन परिषद चेयरमैन और अवामी लीग नेता हनीफ चौधरी के भाई जैनुल ओबेदीन को स्थानीय लोगों ने नशीली दवा के साथ पकड़ा। ये सारा हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो बांग्लादेश का है।
1: इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में
3: विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चे का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।
4: And I told my mama not to keep me anything. When I reached Indore to catch my bus to Delhi, my mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas. Because she knows that I can't have anything without namkeen.
5: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे। वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीखों के पुल बांध रहे हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़ कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़ कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। वैसे आस्था के साथ चढ़ावे को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति भाव से दिया गया चढ़ावा लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले प्रमुख मंदिर भी आस्था के इस भाव से अब अछूते नहीं है। वहां भी चढ़ावे के रूप में भी बड़ी धनराशि अर्पित की जा रही है। सिर्फ 3 वर्षों में मंदिरों को 419 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा हासिल हुआ है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, निःशुल्क लंगर के अलावा दूसरे सामाजिक कार्यों में किया जाता है।

0: वैसे तो दोनों का कनेक्शन नहीं, लेकिन मंदिरों में आस्था के साथ चढ़ावा भी बढ़ता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किए जाने वाला चढ़ावा केवल धन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक भी हो जाता है। देवभूमि हिमाचल में छोटे बड़े 2000 से ज्यादा मंदिर है। इनमें श्री ज्वालामुखी, माता चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, नैना देवी और चामुंडा देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठ भी शामिल है, जो आस्था के साथ चमत्कार के भी प्रतीक है। अक्सर किसी मनोकामना के पूरी होने पर भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था से चढ़ावा अर्पण करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हिमाचल के मशहूर मंदिरों को भी लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के तौर पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले 36 प्रमुख मंदिर हैं, जिनको पिछले 3 साल में श्रद्धालुओं की तरफ से कुल 4 अरब 20 करोड़ यानी 420 करोड़ रुपए चढ़ावे के तौर पर मिले हैं।
1: हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि में, हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: ब्रज में झूला उत्सव की रौनक का मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बड़ा आस्था का मेला, सोने और चांदी के झूले पर विराजमान हुए ठाकुर जी। उज्जैन में निकली माँ बाप महाकाल की शाही सवारी, महाकाल ने 4 स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आगरमालवा में निकली बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी, करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। पवित्र सावन महीने में झांसी में गूंजा हर हर महादेव, मढ़िया महादेव मंदिर में महागंगा अभिषेक, विशाल कांवड़ यात्रा में मनमोहक झांकिया। रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार, सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र, कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खूब डिमांड।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से हो जाते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, उसका विधान और सावधानियां भी बताई गई हैं। तो ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा क्या है।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। वे देवताओं के भी हैं और असुरों के भी, तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है।
1: देखिए, श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव से अपने कल्याणार्थ कृपा प्राप्त करने का चातुर्मास में से सबसे अच्छा समय कहलाता है। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, रुद्राभिषेक जलाभिषेक आदि कर लेते हैं, तो पूरे श्रावण मास का शुभ फल आप प्राप्त कर लेते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शंकर रुद्र है और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। माना जाता है कि शिव शंकर को जलाभिषेक सबसे अधिक प्रिय है और वो रुद्राभिषेक से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं।
1: शिव कल्याणार्थ है, शिव का अर्थ ही कल्याण देने वाला है। अगर आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकती है। शिव पूजन में उसकी अलग अलग प्रकार की वस्तु या सामग्री से भगवान का अभिषेक करने से भगवान क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं। एक लोटे जल से ही जो आपको वरदान दे दे, वो केवल भगवान शिव ही है। शिव अपने भक्तों में देव है, दानव है, मनुष्य है, कोई भेद नहीं करते। उनसे मांगने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
0: रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। जानकार बताते हैं कि रुद्राभिषेक में शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहाँ की नकारात्मकता का अंत होता है।
1: भगवान को अभिषेक बहुत पसंद है, जल दूध शहद आदि से जो अभिषेक करता है वो अपने मनोकामना मन इच्छित वरदान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कंठ में भगवान के हलाहल विष है, नीलकंठ नाम तभी है उनका, तो जो भगवान को जल अर्पण करता है भगवान को उससे अति आनंद अनुभव होता है और भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद देते हैं, उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
0: रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द है। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और खास जानकारियाँ देंगे। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन की कोई भी तिथि हो, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काट कर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।

0: शिव पुराण में है रुद्राभिषेक का गुणगान, जलधारा के पान से महादेव देंगे वरदान। माना जाता है कि रुद्राभिषेक से न सिर्फ पाप का नाश होता है बल्कि रोग संबंधित बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विशेष कामनाओं के लिए रुद्राभिषेक से जुड़े प्रयोग अमोघ माने जाते हैं। किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। रुद्राभिषेक की महिमा इतनी विशाल है कि स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं, जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं।
1: देखिए, रुद्र अभिषेक में भगवान का जो रुद्राष्टाध्यायी कहलाता है, यानी कि भगवान के प्रशंसा के जो मुख्य मंत्र हैं, वो भगवान के आगे सम्मुख में कहे जाते हैं। वेद ध्वनि भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि वेदों को भगवान ने उत्पन्न किया है। साथ में अनवरत रूप से जल और दूध से अभिषेक चलता रहता है, तो भगवान को तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं।
0: शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें? मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं।
1: किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराएं, क्योंकि रुद्रा अभिषेक करने के लिए जो वेद मंत्र है वो ब्राह्मणों के कंठ में है। यदि ब्राह्मणों के बाद न करें तो केवल ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर मंत्र या नमः शिवाय से आप कर सकते हैं, जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। परंतु विधि विधान पूर्वक सभी प्रकार की सामग्रियों के साथ में, 16 प्रकार की सामग्रियों के साथ में भगवान का अभिषेक करें। साथ में बिल्वार्चन अवश्य करें, साथ में बिल्व पत्र को भगवान के 1008 नामों के साथ उनको अर्पण करें। ऐसा कौन सा सुख है धन संपत्ति, विवाह, जीवन में रोग मुक्ति, जो इस प्रकार से अभिषेक करने से सफल ना हो जाए।
0: कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी, अब ये भी जान लीजिए। रुद्राभिषेक की वस्तुएं और प्रभाव। घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने रुद्राभिषेक कितना मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिवजी का निवास का ध्यान जरूरी करना है, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। महादेव का रुद्राभिषेक किन तिथियों पर करना है और किन तिथियों पर नहीं करना, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे।
2: शिव ही रुद्र हैं और मन में कामना कोई भी हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूरी कर देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवादिदेव नहीं दे सकते। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही है शिव, उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। महाशिवरात्रि, सावन और प्रदोष की तिथि शिव को प्रसन्न करने और कामना पूर्ति के लिए सबसे मंगलकारी मानी गई है। हर तिथि पर अलग विधान के साथ, अलग पूजन सामग्री के साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिससे अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा, इसलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है तब क्यों रखना चाहिए हमें समय का ध्यान।
1: सबसे पहले अपना ध्यान ना भटकने दे और अपने पवित्रता का ध्यान रखें, शिवमय होके करें। देवो भूता देवो भवेत हम जब कहते हैं तो भगवान के जैसा पहले स्वयं बनना पड़ता है, तब भगवान का पूजन करना चाहिए। तो स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके, त्रिपुंड आदि चंदन या भस्म आदि युक्त होकर फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए, तब उसका सुफल प्राप्त होता है।
0: रुद्राभिषेक में रखें ध्यान, बिना शिव जी का निवास देखे कभी रुद्राभिषेक ना करें, इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना जरूरी है जब मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा हो। आस्था कहती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वे कभी माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकार का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। शिववास और रुद्राभिषेक, मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिवजी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे तो शिवजी का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीय व दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। आदिदेव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब नहीं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई हैं। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन तिथियों पर करें अभिषेक।
1: देखिए, सबसे सुंदर तो प्रदोष कहा गया है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी द्वादशी का संयोग या त्रयोदशी में आने वाला ये सुंदर समय है और प्रत्येक दिन में भी, जैसे सोमवार भगवान को अति प्रिय है, प्रदोष काल जब होता है तब करना चाहिए या शिवरात्रि पे करना चाहिए। उस समय तो चार पहर का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
0: शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। तो देखा आपने, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना फलकारी है रुद्राभिषेक। तो आप भी शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं का ध्यान रखते हुए कीजिए देवादिदेव महादेव का श्रृंगार, जिससे त्रिलोकीनाथ की आप पर कृपा बरसेगी अपार। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करते हैं रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये त्योहार 3 दिन बाद देश भर में मनाया जाने वाला है, जिसे देखते हुए बाजार तरह तरह की राखियों से पूरी तरीके सज चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों की डिमांड और ट्रेंड को देखते हुए बाजार में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है। इनमें कुछ राखी इको फ्रेंडली भी हैं, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार की गई है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी, जरी गोटे वाली राखी, मोती और रुद्राक्ष वाली राखी, फूलों के डिजाइन वाली राखी, स्टोन्स वाली राखी, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी और देवी देवताओं वाली राखियाँ बाजार में इन दिनों बिक रही हैं। भाई की कलाई पर सजने वाली ये राखी अब सिर्फ धागे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें फैशन, स्टाइल, भावनाओं के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी जुड़ गया है। लिहाजा इस बार बाजार में स्मार्ट राखियाँ भी देखने को मिल रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियाँ आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियाँ बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियाँ हैं।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होएं, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है।
3: शुरू तो 500 होती है, 500 से लेके 500, तो जो पसंद है बहनों को वो ले सकती है। बच्चों की राखियां, लेडीज राखी चल रही है इस टाइम, लेडीज राखी बहुत लगती है इस तरह की। लेडीज
0: ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए बाजारों में राखियों की कई वैरायटी मौजूद है, जिनकी शुरुआत 10 रुपए से लेकर 300 और 400 रुपए होती है, और कुछ राखियों की कीमत तो इससे भी ज्यादा है। दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल राखियों की कीमत काफी बढ़ी है। बावजूद इसके भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें महंगाई को पीछे छोड़ते हुए अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी में जुटी हैं। चाहे करनाल का बाजार हो या गया का बाजार या फिर देश का कोई और बाजार, राखियों की खरीदारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
4: मुझे नहीं लगता है कि इसमें महंगाई को देख करके बहन को पीछे हट जाना चाहिए, और भाई भी जो होता है वो करता ही करता है। तो एक बहन भांति है किस धागे के लिए, भाई को रक्षा करने के लिए। तो महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है इसमें, सब चीज़ की क्वालिटी आई है, महंगी भी है सस्ती भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो, तो बांधिए, प्यार से खरीदिए, ये प्यार का चीज़ है। भाई बंधन एक प्यार होता है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बहन को देखना चाहिए कि महंगाई है महंगाई में। सब तो ऑलरेडी साल में तो अपने लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, फैमिली के लिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो बहन अपने भाई के लिए प्यार से राखी बांधती है और खरीदती है।
5: आप एक मोली भी बांधती हो तो भाई बहन के प्यार में तो कोई असर नहीं होनी चाहिए। आप मोली से भी एक रक्षाबंधन का अपना भाई का प्यार बांध सकते हो, ऐसा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन के प्यार में कोई असर नहीं होगा।
6: इस बार राखी देखिए हर रेंज का है, आप खुदरा बेचने लायक 5।
7: आपको दिखा दें ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कोई अपनी अदा से लोगों को दिल जीत रही है लगातार, तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है।
8: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरित, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है, लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटेड स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के सीएफओ के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी है। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी है, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर पीएम बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के पीएम बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनके संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वही बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड